0: स्किन एलर्जी, मस्त से नाखून बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग, यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2 निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद, 7983153386।
1: 25 से 29 सितंबर तक ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में सजेगा यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का महामंच।
2: जापान, रूस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम की साझेदारी से यूपी के कारोबार को मिलेगा वैश्विक बाजार, जिसमें होगी इंटरनेशनल बायर्स के साथ साथ देश के B2B और B2C खरीदारों की भागीदारी। डिफेंस, एरोस्पेस, AI और इलेक्ट्रॉनिक्स पर खास फोकस के साथ 27 से ज्यादा सेक्टर होंगे शामिल।
1: UPITSF बेहद खास, पूरी दुनिया अब यूपी के साथ।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।

0: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
1: प्राथमिक विद्यालयों का संवरता स्वरूप, यूपी में शिक्षा का निखरता रूप।
2: ऑपरेशन कायाकल्प ने प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों की बदली तस्वीर।
1: पीएम पोषण से पौष्टिक भोजन, तो स्मार्ट क्लास से मिल रही है आधुनिक शिक्षा की नई रोशनी।
2: शारदा कार्यक्रम से आउट ऑफ स्कूल बच्चों विद्यालय से जुड़े। समर्थ के माध्यम से दिव्यांग बच्चों की समावेशी शिक्षा के द्वार खुले।
1: अब यूपी में हर बच्चा पढ़ता है, हर बच्चे का आगे बढ़ने का सपना पूरा होता है।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।

DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
1: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
0: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।

आवश्यक सूचना 400 KB बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 KB उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।

0: और उद्योग मंडल एसोचैम के अध्यक्ष निर्मल कुमार मिंडा ने कहा है कि ब्रिक्स सहयोग को ठोस व्यावसायिक परिणामों में बदलने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दृष्टिकोण अत्यंत महत्वपूर्ण है।
1: ब्रिक्स वाज स्टार्टेड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ ओनली ट्रेड।
2: ब्रिक्स का गठन व्यापार के उद्देश्य से हुआ था, लेकिन अब इसका दायरा कई क्षेत्रों तक बढ़ गया है, जैसे वैश्विक राजनीति, आतंकवाद, कृषि और आवागमन से जुड़ी चुनौतियां। इसलिए 11 देशों का इसमें शामिल होना महत्वपूर्ण है। मेरा मानना है कि इन देशों के बीच न सिर्फ व्यापार और सहयोग बढ़ना चाहिए, बल्कि जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी हमेशा कहते हैं, यह दुनिया के लिए वसुधैव कुटुंबकम की भावना को साकार करने वाला मंच बन सकता है।
1: वसुदेव कुटुंबकम।
0: सम्मेलन को देखते हुए आज सवेरे 9:30 बजे से रात 9 बजे तक दिल्ली के प्रमुख मार्गों पर यातायात में परिवर्तन और नियंत्रित आवागमन लागू किया गया है। वहीं दिल्ली मेट्रो कल सवेरे 6 बजे से सभी लाइनों पर अपनी सेवाएं शुरू करेगा। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
5: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किसान मानधन योजना के आज 7 वर्ष पूरे हो गए हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि योजना वर्ष 2019 में आज ही के दिन शुरू की गई थी।
6: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना किसानों के लिए सामाजिक सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनकर उभरी है। वर्ष 2019 में शुरू की गई इस योजना के अंतर्गत फरवरी 2026 तक देश भर में 24,96,000 से अधिक किसान पंजीकृत हो चुके हैं। इनमें हरियाणा राज्य करीब 5,75,000 पंजीकरण के साथ पहले स्थान पर है, जबकि बिहार में 3,46,000 से अधिक किसान इस योजना से जुड़ चुके हैं। फरवरी 2026 तक इस योजना के कार्यान्वयन और इसकी पहुँच आने पर 540 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का उद्देश्य किसानों को वृद्धावस्था में वित्तीय सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित कराना है, जो देश की खाद्य सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। शिवांगी रिपोर्ट के साथ नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: उत्तर प्रदेश में बाढ़ की बिगड़ती स्थिति के बीच राज्य सरकार ने प्रभावित परिवारों की सहायता के लिए राहत और बचाव कार्य तेज कर दिए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
7: राहत आयुक्त कार्यालय के मुताबिक अकेले गुरुवार को लगभग 8,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया, जबकि अब तक लगभग 21,000 लोगों को सुरक्षित बचाया जा चुका है। बाढ़ प्रभावित लोगों को सुरक्षित आश्रय भी मुहैया कराया जा रहा है। बाढ़ के दौरान बीमारियों के फैलने के खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह से सक्रिय है। प्रभावित इलाकों में लगभग 1100 डॉक्टरों की टीमें तैनात की गई हैं। उधर राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के कई जिलों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: सऊदी अरब ने ड्रोन हमले के एक दिन बाद देश भर में फैली एक बड़ी तेल पाइपलाइन को बंद कर दिया है। सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्रालय ने कहा कि हमले के बाद ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन को बंद किया गया है। यमन के हौसी विद्रोहियों ने मोखा बंदरगाह और पेरेम द्वीप पर कब्जा कर लिया है। इससे पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष में एक नया मोर्चा खुल गया है। बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य दुनिया के प्रमुख नौवहन मार्गों में एक है। एशिया कप जूनियर महिला हॉकी के पहले सेमीफाइनल में आज भारत का सामना दक्षिण कोरिया से होगा। चीन के मोकी में ये मैच भारतीय समय के अनुसार सवेरे 9:45 पर खेला जाएगा। इससे पहले कल भारतीय पुरुष टीम ने मलेशिया को 3-1 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। एशिया कप महिला क्रिकेट के फाइनल में कल भारत का मुकाबला श्रीलंका से होगा। श्रीलंका ने कल पाकिस्तान को 4 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। प्रतियोगिता में 7 की विजेता भारत ने सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 40 से हराया था। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
6: धन्यवाद मुकेश। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले बिजनेस फोरम की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान ने सम्मेलन शीर्षक से लिखा है, ब्रिक्स व्यापारिक बाधाएं हटाएं। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, ब्रिक्स से बना ब्रिज, पुतिन से बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा शांति के प्रयासों में मदद के लिए तैयार। जनसत्ता के अनुसार समुद्र में नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित हो। दैनिक जागरण लिखता है, ब्रिक्स मंच पर साथ आए मोदी पुतिन फिजिशियन। अमर उजाला की सुर्खी है, जीडीपी आंकड़ों पर आईएमएफ की मोहर, भारत को दुनिया का ग्रोथ इंजन बताया। कहा आईआईपी और पीपीआई की नई श्रृंखला से बेहतर होगी आंकड़ों की गुणवत्ता। पत्र के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार में $45 अरब की रिकॉर्ड बढ़त। ई कॉमर्स शीर्षक से राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, ऑनलाइन खरीदारी में फर्जी डिस्काउंट पर लगा, एमआरपी बढ़ाकर बड़ा डिस्काउंट का खेल नहीं चलेगा, पिछले 30 की सबसे कम कीमत बतानी होगी। पंजाब केसरी की सुर्खी है, मलेशिया को हरा भारतीय हॉकी टीम फाइनल में, जूनियर एशिया कप में लगातार 4थे और कुल 6ठे खिताब पर नजरें। लोकसत्ता के अनुसार महिला एशिया कप क्रिकेट के फाइनल में पहुंचा भारत, पहले सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 40 से हराया। दैनिक भास्कर ने खास खबर में दिया है, भारतवंशी वसुधा ने अमरीकी गणितज्ञ जोआन को 92 की उम्र में दोबारा गणित से जोड़ा। मैथ से दूरी बना चुकी थी जोआन, लेकिन छात्रा वसुधा की जिद ने भर दी ऊर्जा। गुरु शिष्या के जुगलबंदी ने सुलझाई 100 पुरानी गणित की थ्योरी। जनसत्ता ने दिया है, भारत नवोन्मेष प्रदर्शनी में 37 अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी नवाचार प्रदर्शित। शिक्षा मंत्रालय ने विदेश मंत्रालय के समन्वय से किया आयोजन, नवाचारों को वैश्विक स्तर पर बढ़ाना है उद्देश्य। हिंदुस्तान ने अध्ययन शीर्षक से लिखा है, पश्चिमी विक्षोभ तय करेगा सर्दियों में प्रदूषण। पत्र के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ का सीधा संबंध शरद ऋतु के दौरान समुद्र के तापमान से होता है। इसके आधार पर प्रदूषण की गंभीरता का अनुमान एक मौसम पहले ही लगाया जा सकता है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आज से नई दिल्ली में शुरू। 2 के सम्मेलन में वैश्विक सुशासन, व्यापार, सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखलाओं पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग सहित ब्रिक्स नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। ब्रिक्स व्यापार मंच में प्रधानमंत्री मोदी ने स्थायी वैश्विक व्यापार के लिए सुरक्षित समुद्री और आपूर्ति मार्ग तथा व्यापारिक बाधाएं हटाने पर बल दिया। सऊदी अरब ने हमले के बाद महत्वपूर्ण पाइपलाइन बंद की। यमन में हौसी विद्रोहियों की महत्वपूर्ण द्वीपों पर कब्जे से लाल सागर में प्रमुख नौवहन मार्गों पर पकड़ मजबूत हुई। उत्तर प्रदेश के 25 जिलों में बाढ़ का प्रकोप, राहत और बचाव कार्य तेज। और जूनियर एशिया कप महिला हॉकी के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना दक्षिण कोरिया से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस, 18th ब्रिक्स समिट टू बिगिन इन न्यू दिल्ली टुडे। डिस्कशंस टू फोकस ऑन ग्लोबल गवर्नेंस, ट्रेड, सिक्योरिटी एंड सप्लाई चेन्स एज वर्ल्ड लीडर्स असेंबल फॉर 2-डे समिट। Prime Minister Narendra Modi to hold bilateral talks with Chinese President Xi Jinping and other BRICS leaders today on the sidelines of summit. Prime Minister Modi pushes for secure sea lanes, open supply routes and removal of trade barriers at BRICS Business Forum to sustain global trade. Saudi Arabia shuts vital pipeline after attack. Houthi rebels in Yemen seize strategic islands, tightening grip on key Red Sea shipping route. Uttar Pradesh government steps up relief and rescue operations as flood affect 25 districts. And in hockey, Indian women's team to clash with South Korea in semi-final of Junior Asia Cup in China this morning.

0: आज बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
1: कहा मेरी कसम?
0: मिस कर दिया तो रीलोड।
2: चाय चाय चाय
3: बिंदास मॉर्निंग।
0: सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।
4: आवश्यक सूचना 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
5: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
6: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
7: Hey, you're tuning to FM मुरादाबाद 89.6 FM।

दोस्तों, कभी कभी होता है ना जिंदगी में हमें पछतावा बहुत होता है, तो इसीलिए बाद में पछताने से बेहतर है कि आप आज पूरी ताकत के साथ एक बार फिर से कोशिश में लग जाएं और जो चीज आप पाना चाहते हैं उसके लिए थोड़ी सी मशक्कत और मेहनत और कर लें, शायद बाद में आपको पछतावा ना हो। हेलो, हाय, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, कैसे हालचाल है? आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, सुप्रभात। मेरा नाम आनंद है, आप जुड़ चुके हैं मुरादाबाद की धड़कन के साथ। एग्जैक्टली, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन। दिस इज फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो एफएम मुरादाबाद एंड आनंद की हो गई यहां पर एंट्री। अब से लेके 10 बजे तक मैं रहूंगा आपके साथ इस स्टेशन पे, जहां बातें होंगी, ढेर सारी अच्छे गाने होंगे, अच्छी इन्फॉर्मेशन होंगी और फुल ऑन आपकी मॉर्निंग होगी, सुपर डबल आउट। दिन है आज शनिवार का, यानी सैटरडे की सुबह है, बहुत ही स्पेशल मॉर्निंग है। एंड फिलहाल समय की बात करें तो 8:21 हो गए हैं दोस्तों, और इस समय के साथ हम भी आगे बढ़ेंगे। और बस आपसे इतना ही कहना चाहते हैं कि बस जिंदगी में जो भी कुछ करना चाहते हो ना, उसके लिए सबसे जरूरी है पाजी उस पे विचार करना, है ना। कोई चीज अगर आप पाना चाहते हो, जिंदगी में करना चाहते हो, तो उस पे सबसे पहला फोकस होना बहुत जरूरी है, उस पे विचार करना, अमल करना बहुत जरूरी है कि किस तरीके से आप चीजों को लेकर आगे बढ़ने वाले हो, है ना। और नेगेटिविटी को बिल्कुल मत आने दो अपने आसपास, नेगेटिव लोग आपके आसपास जो है भ्रमण करते रहेंगे, तो उनसे 100 मिलियन दूर रहो यार। आपको बताऊं, मैंने आज एक बड़ी अच्छी लाइन पढ़ी, भगवद गीता में भी ये लिखा है कि परिवर्तन करने से कभी मत डरो, जितना अच्छा आप खो रहे हो यकीन मानना उससे लाख गुना अच्छा आपको मिलेगा। तो अगर आपके हाथ से कुछ छूट रहा है और आपको बहुत पछतावा हो रहा है, तो यकीन रखिए अपने उस परमपिता परमात्मा पर, वो आपके साथ जरूर कुछ ना कुछ बेहतर से बेहतरीन करेगा। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन गीत के साथ आज के सफर की। और हम तो आपसे यही कहना चाहते हैं कि आप भी ऐसे सुंदर बातें, सुंदर विचार हम तक पहुंचा सकते हैं आज की सुबह 9837896896 पर। हाँ जी, आप हमारे नंबर पर मैसेज कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं आज की सुबह। अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो मैंने आपको नंबर बता दिया है। चलिए हम शुरुआत करेंगे आज के सफर की एक खूबसूरत ट्रैक के साथ, सो डोंट गो एनीवेयर, अभी लौट कर आते हैं हम इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे, जहाँ बातें होंगी आपसे और भी ढेर सारी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत गीत के साथ आज के सफर की। बहुत प्यारा ट्रैक है, आपको सुन के आनंद आ जाएगा। और आज की सफर की शुरुआत जिस गाने से मैं कर रहा हूँ ना, ये बहुत ही खूबसूरत ट्रैक है, ऑफ कोर्स आपको मजा आ जाएगा।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
2: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
1: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 705070552।
3: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।

और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

ब्यूटीफुल ट्रैक, वेलकम बैक यू वंस अगेन। आप सुन रहे हैं आनंद को, लेडीज एंड जेंटलमैन। ऑफ कोर्स अच्छे गानों के साथ सस्ती है मेरी और आपकी प्यारी महफिल। ढेर सारे मैसेज मेरे पास पहुंचे हैं आज की सुबह, बहुत बहुत शुक्रिया इन खूबसूरत मैसेजेस के लिए। मेरे पास बड़ा प्यारा मैसेज पहुंचा है। हाय नमस्ते आनंद, गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं? नमस्ते जी, ये प्रतीक्षा मुझे मैसेज करती है, लिखती है आनंद गुड मॉर्निंग, एंड मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ आपके रेडियो के माध्यम से कि एक नया दिन जब आता है तो नई नई ऊर्जा लेकर आता है, नई नई ताजगी लेकर आता है, नई नई पॉजिटिविटी लेकर आता है। हर दिन का सूरज हमें सिखाता है कि आज कल से बेहतर करना है, तो अपनी लाइफ में हमेशा बेहतर करने का प्रयास करो। क्या बात है मैम, थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल मैसेज आज की मॉर्निंग। इसी बीच एक और मैसेज मेरे पास पहुंचा है रोहन का। हाय आनंद, कैसे हैं आप? मैं बहुत ही बढ़िया हूँ रोहन भाई। रोहन भाई लिखते हैं, आनंद आपकी आवाज और गाने दोनों ही फर्स्ट क्लास होते हैं भाई, मजा आता है सुबह सुबह आपको सुन के। यार थैंक यू सो मच, माय प्लेजर ब्रो। एक और मैसेज मेरे पास पहुंचा है आज की सुबह, आनंद गुड मॉर्निंग, कैसे हाल चाल है? एंड अलॉन्ग विद दैट एक और मैसेज आ गया यहाँ पे सुप्रिया जी का, ये मुझे लिखती है, आनंद जी सुबह सुबह आपसे बहुत इन्फॉर्मेशन मिलती है, थैंक यू। ऑल राइट जी। इसी बीच हमारे पास जुल्फी भाई का मैसेज पहुंचा है, लिखते हैं, आनंद जी कल करे सो आज करे सो अब, तो अपने काम को कल पर मत छोड़ो, जो करना है आज ही करो, क्या पता कल हो ना हो। क्या बात है जुल्फी जी। इसी बीच एक मैसेज हमारे पास आया है मोहम्मद तारीख जी का, ये मुझे मैसेज करते हैं, गुड मॉर्निंग जी कैसे हाल चाल है? और ये मैसेज आ रहा है हरथला कॉलोनी से, एंड इन्होंने लिखा है, आनंद जी सुबह सुबह गीत संगीत सुन के मन को जो है काफी सुकून मिलता है और आपकी प्यारी बातें भी हमें सुकून देती हैं। इसी बीच मैं कहना चाहता हूं कि जीवन है तो परेशानियां आती रहेंगी, इन परेशानियों से नहीं डरना है, इन परेशानियों का डटकर सामना करना है। क्या बात है, एक से बढ़कर एक लाजवाब मैसेजेस और एक से बढ़कर एक कलाकार हमारे बीच में मौजूद हैं, प्यारी प्यारी अपनी बातें और अपनी थॉट्स को शेयर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच यार। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी बात के साथ एक और बेहतरीन गाना होगा, उसके बाद मैं आऊँगा तो बताऊँगा आपको आज के दिन के बारे में, मतलब आज कितनी तारीख हो गई यार, आज 12 सितंबर होगी, क्यों स्पेशल है 12 सितंबर की तारीख, बात करेंगे इस पर थोड़ी सी देर में। आप ऐसे ही ट्यून इन रहिएगा हमारे साथ, अपने टाइम की बड़ी सुपर डुपर हिट हीरोइन जिन्होंने लाखों लोगों को जो है अपना दीवाना बनाया अपनी एक्टिंग के दम पर यार, अपनी खूबसूरती के दम पर। यस आई एम टॉकिंग अबाउट ममता कुलकर्णी जी, बहुत खूबसूरत अदाकारा रही हैं यार अपने टाइम की। लता मंगेशकर जी की बहुत प्यारी आवाज में इस गाने को सुनते हुए आगे बढ़ेंगे। आज शनिवार का दिन है, आप सुन रहे हैं आरजे आनंद को, जरा सी देर में हमारी एंट्री होगी आज के इतिहास के पन्नों के साथ। बाकी कुछ कहना चाहते हैं आप तो आप भी जुड़ सकते हैं मेरे साथ। इसी बीच मेरे पास एक और मैसेज आ गया है, हाय गुड मॉर्निंग शिखा, बात कर रही हूँ, क्या हालचाल है वडे ब्रा? बहुत बढ़िया शिखा जी, गुड मॉर्निंग, ये मानसरोवर कॉलोनी से जुड़ती है, दिस इज माई रेगुलर लिसनर। गाइस आप लोग भी व्हाट्सएप कर सकते हो

0: बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
1: क्या मेरी कसम?
0: मिस कर दिया तो रीलोड।
2: चाय चाय चाय
3: बिंदास मॉर्निंग।
0: सुनिए बिंदास मॉर्निंग्स आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।
4: क्या आप एक ही जगह पर दुनिया की सैर और जबरदस्त रोमांच का मजा लेना चाहते हैं? तो चले आइए सात अजूबे पार्क। यहाँ शानदार अजूबों के दीदार के साथ आपको मिलेगा तीरंदाजी और मैकेनिकल बुल राइड जैसी एक्टिविटीज का फुल ऑन थ्रिल। तो पूरे परिवार के साथ आ जाइए सात अजूबे पार्क, न्यू मुरादाबाद।
5: क्या दर्द आपकी जिंदगी रोक रहा है? आप दर्द को नजरअंदाज ना करें। इस सितंबर में श्री साई हॉस्पिटल में हर गुरुवार शाम 5 बजे से 7 बजे तक फ्री क्रॉनिक पेन कैंप, निशुल्क परामर्श, जांच पर 20% तक की छूट और दवाइयों पर 10% तक की छूट। रजिस्ट्रेशन मात्र 100 रुपए में। दर्द से राहत की सही शुरुआत अभी कॉल करें 9412504190। श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।

क्या बात है जी, बहुत बेहतरीन गाने। अच्छा ये गाने पता है मैं बहुत चुन चुन के लेकर आता हूँ कि यार आज ये वाला नहीं ये वाला, बहुत दिन के बाद ये वाला गाने ये वाला, मतलब सुन के जिससे लिसनर्स को मजा आए, कुछ कनेक्टिविटी बने, कुछ फील्स आए, कुछ ऐसे गाने निकाल के लेकर आने की पूरी पूरी कोशिश करता हूँ हर दिन। बिकॉज ये गाने वो है ना, मतलब जो एकदम ओल्ड वाले गाने कहते हैं ना, ओल्ड इज गोल्ड, आप कितनी बार भी इन्हें सुन लो आपको ना बोरनेस फील होनी नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ भाई सच्ची वाली बात। आगे बढ़ते हैं, 8:50 का समय हो रहा है स्टेशन क्लॉक में, आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना कम्युनिटी रेडियो आनंद के साथ हैं आप एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज पे, बातें होती हैं दिल से दिल तक। गाड़ी चलाने के लिए जैसे आपको फ्यूल चाहिए होता है ना, पेट्रोल चाहिए होता है, हैं वैसे ही इंसान को चलाने के लिए अच्छा म्यूजिक चाहिए होता है, मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ भाई साहब।

चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अभी आज के दिन के बारे में। आज का दिन क्यों इतना महत्वपूर्ण है, क्यों इतिहास के पन्नों के लिए बहुत खास है और कुछ छोटी छोटी जानकारियां होती हैं जो आपके और हमारे दिन को और भी स्पेशल और बेहतर से बेहतरीन बना देती है। श्रोताओं, हमारी भी कोशिश होती है हम आपको छोटी छोटी जानकारियां देकर काफ़ी हद तक आपको अपडेट कर दें नई नई जानकारियों से। तो आपको बताते चलें आज का इतिहास। 12 सितंबर का बहुत ही महत्वपूर्ण इतिहास है, तमाम सारी घटनाएँ हैं जो आज के दिन घटित हुई हैं श्रोताओं। और आपको बता दें सन 2026 के साल के अभी 110 दिन बचे हुए हैं एग्जैक्टली। तो मतलब आप लगा लीजिए आज 12 सितंबर होगी, इसके बाद अभी 100 दिन और हैं, यानी कि 110 दिन और बचे हुए हैं आपके पास 2026 के। तो अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो भाई इन 110 दिनों में मैं कह रहा हूँ मतलब ताबड़तोड़ वाली मेहनत कर लो यार, नहीं तो फिर बाद में पछतावा ही रह जाता है यार। 2026 भी चला गया, मैंने ये सोचा था वो सोचा था, मैं कुछ कर नहीं पाया भाई साहब। चलिए पहले फिलहाल काम की बात करते हैं, बैक टू पॉइंट। तो आज ही के दिन सन 1873 को पहला टाइपराइटर ग्राहक को बेचा गया था श्रोताओं, आज ही के दिन यानी कि 12 सितंबर को। हाँ जी, और आपको बताते चले एक और खास चीज हुई आज ही के दिन। अमेरिकन सेना ने पहली बार जर्मनी में प्रवेश किया था 1944 में आज ही के दिन श्रोताओं। और आज ही के दिन एक और बहुत ही खूबसूरत चीज़ जिसने इतिहास के पन्नों को थोड़ा सा स्पेशल बना दिया श्रोताओं। कहते हैं ना हर दिन कुछ ना कुछ तो यूनिक होता है जो हमारे इतिहास को थोड़ा सा डिफरेंट बना देता है ना, वैसे ही आज के दिन एक खास चीज़ हुई थी, उसके बारे में मैं ज़रूर आपके साथ चर्चा करूंगा। लेकिन उससे पहले आपको बताते चलें आज ही के दिन भारतीय महिला टीम विश्व शतरंज चैंपियनशिप में आखिरी तौर पर अमेरिका को 3-1 रन से हराकर सातवें स्थान पर रहे सन 1909 में आज ही के दिन। और एप्पल ने आईफोन 5 और iOS 6 लॉन्च किया था सन 2012 में आज ही के दिन श्रोताओं। और आपको बताते चलें आज के दिन 10वें हिंदी सम्मेलन वर्ष सन 2015 में 10 सितंबर से 12 सितंबर तक भारत के मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आयोजित किया था श्रोताओं आज के दिन सन 2015 में। और इसके अलावा आपको बताते चलें आज के दिन सत्येंद्र नारायण जी का जन्म हुआ था श्रोताओं सन 1917 में। और इसी से जुड़ा एक और नाम आगे जुड़ जाता है, बलदेव प्रसाद मिश्रा जी का सन 1898 में इनका भी जन्म हुआ, जो हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार और लोक सेवक थे श्रोताओं। इनका भी बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है, और कहते हैं ना हर दिन कुछ न कुछ ऐसे महान लोगों को हम याद करते हैं जिन्होंने अपना कॉन्ट्रीब्यूट दिया है हमारे देश को, हमारे इतिहास को स्पेशल बनाने में। तो आप भी कुछ ऐसा करने में लग जाइए दोस्तों जिससे आपका नाम भी आने वाले इतिहास के पन्नों में दर्ज हो सके। लेकिन सिर्फ सोचने से नहीं, एक्शन लेने से काम होता है। छोटे छोटे गोल्स बनाइए, उन पे काम करना शुरू कीजिए। यकीन मानिए आज नहीं तो कल आप अपनी मुकाम पर जरूर पहुंच जाएंगे। आप जो पाना चाहते हैं वो आपको जरूर मिलेगा। हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। तो चलिए ये थी आज के दिन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण चर्चाएं जिसमें हमने बात करी आपके साथ। और फिलहाल आपके संदेश लगातार हम तक पहुंच रहे हैं, ज़रूर हम उनको शामिल करेंगे। और एक छोटा सा सवाल भी आपके लिए लेकर आएंगे भी ज़रा सी देर में। तो आप ऐसे ही ट्यून इन रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए एफ एम मुरादाबाद 89.6। एक बहुत ही खूबसूरत ट्रैक निकल गया है आपके रेडियो सेट पर, जैसे आज का सूरज चमक रहा है वैसे आज के चमचमाते हुए गाने आपको दे रहे हैं पॉजिटिव ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जाओं से भरा ये प्रोग्राम। उदित नारायण एंड साथ में अलका याग्निक जी की आवाज आज की सुबह को थोड़ा फैबुलस बनाने के लिए ये माइंड ब्लोइंग ट्रैक निकाल दिया है मैंने आपके रेडियो सेट पर। वॉल्यूम बढ़ा के एंजॉय कीजिए। कुछ कहना चाहते हैं तो मुझे मैसेज कर सकते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग।

0: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM.
1: आज बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
2: हाँ मेरी कसम.
1: मिस कर दिया. तो रीलोड.
3: चाय चाय चाय.
4: बिंदास मॉर्निंग.
1: बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10.
5: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का थ्रिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंकवेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर.
6: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081.
7: स्किन एलर्जी मस्त से नाखून बालों की समस्या टैटू हटाना कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर रिचा गर्ग, यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2 निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद 7983153386.
1: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग.
8: एग्जैक्टली आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग, मेरे यानी आनंद के साथ. वीकडेज होता हूं आपके साथ लेडीज एंड जेंटलमैन, और आज फाइनली है सैटरडे और आज बहुत सारे लोग अपनी छुट्टी सेलिब्रेट कर रहे हैं. एग्जैक्टली हाँ जी, वंस अगेन वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू एफएम मुरादाबाद 89.6 विद मी. गाइस कहाँ जा रहे हो? बहुत सारे लोग ऑफिस जाने के प्लानिंग में है और बहुत सारे लोग पहुंच रहे होंगे और बहुत सारे लोग आज छुट्टी सेलिब्रेट कर रहे हैं, बिकॉज आज सितंबर का सेकंड सैटरडे है. वैसे में तो बैंक ऑफ रहने वाले, तो जो बैंकर हैं उनकी तो आज बल्ले बल्ले.

चलो अच्छी बात है, कुछ लोग लेट उठने वाले हैं, कुछ लोग उठ के होंगे। गुड मॉर्निंग यार, कैसी हो रही है आज की सुबह? भैया बाहर निकलो, जरा विंडो से पर्दे हटाओ, देखो सूर्य देवता की किरणें घर में आने दो। भैया बहुत अच्छा मौसम है आज, बहुत प्यारा वेदर है बाहर का, और सुबह सुबह आजकल की धूप इतनी प्यारी लगती है ना, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ। अगर आप मॉर्निंग में उठ रहे हो 6 बजे या 7 बजे के समथिंग, तो आपको लगेगा आप बिल्कुल सर्दियों वाली वाइब ले रहे हो, मतलब फुल ऑन माहौल बना हुआ है यार। आजकल सूर्य देवता की जो किरणें वो काफी ब्यूटीफुल हो गई है यार। सुबह सुबह वैसे भी अगर आप सूर्य देवता की किरणों में बैठते हो तो ये आपकी बॉडी के लिए विटामिन डी का काम करते हैं ना, वो आप पहले से सुनते आ रहे हो। एक्चुअल में यार, जब सुबह सुबह आप सूर्य देवता की रोशनी में बैठते हो ना, जब आप सूरज की किरणों में जाते हो सुबह सुबह, तो आपको जो पॉजिटिविटी मिलती है, शायद मैं शब्दों में एक्सप्लेन ना कर पाऊं। हाँ जी, जो जहां भी जा रहे हैं आप पहुंचिए, ऑल द वे बेस्ट। आनंद की ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। वीकेंड है, सैटरडे है, ऑफकोर्स अच्छे गाने भी होंगे आपके लिए। फिलहाल बात करते हैं आज के वेदर की। तो अभी वेदर में आपको बताते हैं, 28 डिग्री सेल्सियस है करंट राइट नाउ, एंड ये हाईएस्ट की बात करूं तो 33 डिग्री पहुंचेगा, एंड लोएस्ट की बात करूं तो 27 डिग्री पहुंच सकता है लोएस्ट पे। एंड वैसे ह्यूमिडिटी 86% रहने वाली है, हवाएं 3 किलो प्रति घंटा की रफ्तार से चलेंगी, एयर क्वालिटी मुरादाबाद में भी अब ठीक ठाक ही हो रही है यार। जब से बारिश वरिश हुई है ना, तो थोड़ी की ये जो अपना पोल्यूटेड एरिया है ना, वो बिल्कुल क्लीन हो गया, लेकिन यार वाटर लॉगिंग बहुत हो जाती है मुरादाबाद में। एनीवेज चलो आगे बढ़ेंगे, फिलहाल ये था आज का वेदर। अब अच्छे गाने भी आपके लिए लगाने वाला हूँ इसी स्टेशन पे, सो डोंट गो एनीवेयर, आप कहीं नहीं जाएंगे, ऐसे ही मेरा साथ बनाकर रखेंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, कुछ कहना चाहते हैं तो ऑफकोर्स आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी चीज लेकर आया हूँ आज की सुबह, जिसको सुन के ना आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी, मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ यार। सरासी दिन में बैंड बाजा बारात का विनी दयाल की आवाज, हरे मरे नमन नमन मन के हिमानी कपूर,

0: जरा सी देर में आप एंजॉय करेंगे इस गाने को आनंद के साथ, सो ऐसे ही ट्यून इन रहिए मेरे साथ, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद, आई विल बी राइट बैक जनता।
1: तन मन सुलगा

0: चार्जर फ्रेंड है लंदन से।
1: टैटू तुमने कब बनवाया?
2: और ये
0: तुमने रिप्लाई किया नहीं ना?
3: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM. You are listening to the biggest hits. The biggest hits, non-stop.

मित्रा मित्रा मोहित चौहान की आवाज, बहुत ही प्यारा गाना, राजनीति से एंजॉय कर रहे हैं आप। सच में यार ये गाना बहुत प्यारा है, सुबह सुबह सुन के ना मजा आ जाता है। इंस्टाग्राम स्टोरी पे सुबह सुबह ये गाना सुनने को मिल जाए तो फिर इससे बड़ी बात और क्या ही हो सकती है। हेलो हाय वेलकम बैक है, यू आर लिसनिंग टू एफएम मुरादाबाद। बंदे का नाम आनंद है जी। चलो यार कुछ काम की बातें फटाफट बता देता हूँ आपको इमीडिएटली। देखो यार इस बार का गणपति बहुत स्पेशल हो रहा है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, और मुरादाबाद में भी अब काफी जगह पर जो है गणपति का क्रेज देखने को मिल ही रहा है, नो डाउट। इसमें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि अब गणपति बप्पा जो है हर गली गली में नजर आने लगे हैं, और अब तो काफी मंदिरों में तो रखे जाते हैं, अब हर गली मोहल्ले में भी गणपति की जो है बड़ी धूमधाम से तैयारियां चल रही है। स्पेशली ये जो अपनी सराफा कमेटी है बाजारगंज की, वहां पर तो स्पेशली बहुत ही भव्य तरीके से जो इस बार गणेश महोत्सव की तैयारियां चल रही है। हां जी, और मतलब काफी धूमधाम के साथ वहां पर गणेश चतुर्थी का ये पर्व मनाया जाएगा। हर बार जो है बहुत अच्छे तरीके से ये इसको सेलिब्रेट किया जाता है वहां पर, और इस बार भी काफी भव्य तरीके से सेलिब्रेट किया जाएगा। 14 सितंबर से लेकर 19 सितंबर तक जो है गणेश महोत्सव आयोजित होगा, और ये 6 दिन का फेस्टिवल ये लोग सेलिब्रेट करने वाले हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, जहां पर मतलब पूजा आरती सांस्कृतिक कार्यक्रम झांकिया हवन महाआरती भंडारा शोभा यात्रा सब कुछ आपको देखने को मिलेगी। और मुरादाबाद की गणपति चौक बाजारगंज में जो है ये 14 से 19 सितंबर के बीच में बहुत ही स्पेशल गणेश उत्सव सेलिब्रेट होगा, और हम कोशिश करेंगे वहां के लोगों से भी बातचीत करें थोड़ा, एंड बहुत ही स्पेशल होने वाला है इस बार का गणपति। आपके एरिया में कि गणेश चतुर्थी सेलिब्रेट हो रही है तो आप मुझे बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, मेरे साथ ढेर सारे लिस्नर जुड़े हैं। हाय गुड मॉर्निंग, कैसे हाल चाल है? अमित जी मेरे साथ जुड़ गए, अमित वर्मा वेलकम टू द शो, गुड मॉर्निंग। लिखते हैं एक नया दिन एक नया सवेरा और एक नई सोच लेकर आता है, और इसी विश्वास के साथ कि भैया आज जिंदगी में सब कुछ डेफिनेटली ठीक होगा। आनंद भाई वेरी गुड मॉर्निंग। यार मैं बहुत ही बढ़िया हूँ, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। हेलो हाय जय श्री राम। दुर्गेश भाई मेरे साथ जुड़े हैं आज की सुबह, लिखते हैं आज हम चंदौसी के मेले में हैं और वहां पर तैयारी चल रही है। अरे वाह, हाँ मैंने आपको बताया था ना चंदौसी में बहुत अच्छा मेला जो है लगता है गणेश उत्सव पर, भव्य तैयारियां चल रही है वहां पर, बहुत ही बढ़िया, मैं भी जरूर ट्राई करूंगा वहां जाने की। एक और मैसेज मेरे पास पहुंचा है, हाय गुड मॉर्निंग कैसे हाल चाल है, माय नेम इज प्रीति। हाय प्रीति गुड मॉर्निंग। एक संदेश पहुंचा है बबलू जी का, ये गुड मॉर्निंग लिखते हैं, कुछ टेक्स्ट मैसेज आए इमीडिएटली पढ़ लेता हूँ। ये मेरे पास टेक्स्ट मैसेज पहुंचा है यहाँ पर, हाय कैसे हाल चाल है आनंद भाई, सुप्रभात आपको, नमस्कार आपको भी नमस्कार जी। ये रोहन जी मुझे यहाँ पर संदेश पहुंचा रहे हैं। एक और मेरे पास टेक्स्ट मैसेज पहुंचा है नेहा का, ये मुझे लवली मॉर्निंग विश कर रही है, हैप्पी लवली मॉर्निंग आपको भी। चलो यार बहुत सारे लवली मैसेजेस मेरे पास पहुंच रहे हैं, अभी जरा एक सवाल के जवाब पहुंचाना, रेडियो की वॉल्यूम बढ़ा के एक छोटा सा क्वेश्चन मेरा जरा सुन लो यार। मैं आपको 3-4 ऑप्शन आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, ए बी सी डी, इन चारों में से आपको कोई एक शॉर्टलिस्ट करना है अपने लिए, और देखते हैं कौन कितना दिमाग लगा सकता है। सो दिस इज माई क्वेश्चन, अगर आपको अपनी जिंदगी में सिर्फ एक चीज बदलने का मौका मिले तो आप क्या बदलना चाहोगे? आई रिपीट माई क्वेश्चन, अगर आपको अपनी जिंदगी में सिर्फ एक चीज बदलने का मौका मिले तो आप क्या बदलना चाहोगे? ऑप्शन ए पैसा, ऑप्शन बी रिश्ते, ऑप्शन सी आपका बीता हुआ समय, या फिर ऑप्शन डी खुद को, इन चारों में से क्या बदलना चाहोगे? अगेन रिपीट कर रहा हूँ अपना सवाल, ध्यान से सुनो। अगर आपको अपनी जिंदगी में सिर्फ एक चीज बदलने का मौका मिले मुरादाबादी, तो आप क्या बदलना चाहोगे? ऑप्शन ए पैसा, ऑप्शन बी रिश्ते, या ऑप्शन सी अपना बीता हुआ समय, या ऑप्शन डी खुद को। हाँ लेकिन ट्विस्ट इसमें यह रहेगा भाई साहब, जो भी आप चुनोगे उसके बाद बाकी 3 चीज सेम ही रहेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि वो बदल जाएंगे। आपको मुझे इमीडिएटली बताना है इन चारों में से आप कौन सा ऑप्शन शॉर्टलिस्ट करने वाले हो अपने लिए। अगर आपको अपनी जिंदगी में सिर्फ एक चीज बदलने का मौका मिले तो आप क्या बदलना चाहोगे? 4 ऑप्शन आपको दिए मैंने आज की सुबह, एंड अगर आप ऑफकोर्स आप इन चारों में से इन ऑप्शन में से किसी एक को शॉर्टलिस्ट कर पा रहे हैं तो मुझे अच्छा लगेगा यार। फटाफट से बता दो जरा सही जवाब मुझे फटाफट यहाँ पर, और अभी आने वाला गाना मैं आपको बताता हूँ कौन सा आने वाला है आपके रेडियो सेट पर। अरे भैया आपका फेवरेट है, चलिए जी जरा सी देर में ओ माही आपकी रेडियो सेट पर पहुंचेगा इस स्टेशन ऑफ द नेशन पर। और एक और गाना है जो मेरे दिल के बड़ा करीब है, एंड आफ्टर लॉन्ग टाइम ये गाना बजेगा।

चलो जी जरा सी दिल में सारे गाने धाकड़ वाले अब तक पहुंचेंगे स्टेशन ऑफ द नेशन पे. आप कहीं मत जाओ, रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाओ, ऐसे ही सुनते रहो FM मुरादाबाद 89.6.

0: You're tuning to FM Moradabad 89.6 FM. सिर दर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। BMC हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरो सर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
2: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
1: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055077052।
3: अरे भैया इसकी बातें हैं चटपटी, गाने सुनाता है मस्त, और जब ये बोलता है ना तो भाई साहब मॉर्निंग और भी हो जाती है जबरदस्त। सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ ओनली ऑन FM मुरादाबाद 89.6 FM। बिंदास मॉर्निंग।

अरिजीत सिंह की आवाज इरशाद कामिल ने लिखा, प्रीतम का म्यूजिक, थैंक यू फॉर ट्रैक। ओ माही, लाखों लोगों का फेवरेट है गाना। हाय हाय हाय हाय, आशिकी के दिल को खुरेट लेने वाला गाना, बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रैक। अभी आप एंजॉय कर रहे थे ओ माही आनंद के साथ। लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक। यू आर लिसनिंग टू एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे। आप सुनते हैं आनंद को, जहां पर बातें होती हैं दिल से दिल तक। भैया वो कहाँ है ना, ए बाबू, रवि किशन भैया का जो है गाना रिलीज हो गया, मनी फ्लोज माय ब्रदर। एंड इसको लेकर रवि किशन जी बड़े एक्साइटेड हैं। यस, एक्टर और नेता रवि किशन जी आजकल मीम्स की वजह से इंटरनेट पर छाए हुए हैं, और उन्हें किसी ने जो है इस बात की एक मजेदार तरीके से, मतलब उनकी एक वो अभी आपने देखा ना, वो एक बहुत ट्रेंड कर रहा था इंस्टाग्राम, उनका एक स्टाइल जिसमें वो स्टेज पर आते हैं, मतलब अलग ही स्वैग में वो बहुत वायरल हुआ उनका। वेल, अभी रवि किशन जी का एक गाना आ गया है जिसको लेकर काफी ट्रेंड में है ये, एंड अच्छी बात है। तो मुझे लगता है कि भैया आपको डेफिनेटली इनका गाना चेक आउट करना चाहिए। रवि किशन जी का मनी फ्लोज माय ब्रदर रिलीज हुआ है, कल इस गाने को रिलीज कर दिया गया है, एंड बढ़िया गाना है, काफी आपको सुनने में इंटरेस्टिंग लगेगा ये। और आगे बढ़ते हैं भाई साहब, जो फास्ट टैग लवर है उनके लिए एक अच्छी इन्फॉर्मेशन मैं फटाफट लेकर आ गया हूँ। हाँ, तो आप जरा ये भी सुन लीजिए। हाँ जी, तो आपको बता दें भाई साहब, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने जो है ग्लोबल एक बहुत ही अच्छी चीज की है कि भैया अब जो है 2026 में उन्होंने लॉन्च किया है वन टैग, एग्जैक्टली फास्ट टैग धारकों को जो है अब अपने बैंक बदलने के लिए गाड़ी पर लगे पुराने स्टिकर को हटाने या नए जो है फिजिकल टैग लगाने की जरूरत नहीं होगी। फास्ट टैग मोबाइल सिम की तरह पोर्ट हो जाएगा। एग्जैक्टली, अभी तक फास्ट टैग यूजर्स को बैंक बदलने के लिए पुराने टैग अकाउंट उनको बंद करना पड़ता था, जबकि अब ऐसा नहीं करना पड़ेगा। तो ये एक अच्छी चीज हो गई है। तो ये एक बहुत ही अल्टीमेट इन्फॉर्मेशन है फास्ट टैग यूजर्स के लिए, एक बड़ी खुशखबरी है कि भैया मोबाइल नंबर की तरह पोर्टेबिलिटी का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, यानी कि अब फास्ट टैग भी एक बैंक से दूसरे बैंक में पोर्ट किया जा सकेगा। एग्जैक्टली, और ये बहुत ही अच्छा चीज है कि एक वन टैग फ्रेमवर्क लॉन्च किया है इन्होंने, बहुत ही यू नो इंटरेस्टिंग चीज है। सो यू नो, अगर आप मौजूदा बैंक से संतुष्ट नहीं है तो आप नए फास्ट टैग खरीदे बिना दूसरे यू नो बैंक में आप इसको शिफ्ट कर सकते हैं। दिस इज वेरी वेरी स्पेशल इंफॉर्मेशन, तो मुझे लगा ठीक है चलो आपको बता देते हैं इमीडिएटली। लेडीज एंड जेंटलमैन, बहुत सारे मैसेज आपके मेरे पास पहुंचे हैं, थैंक यू सो मच। जो लोग अंडे शंडे खाते हैं भैया, उनके लिए थोड़ा सा झटका लग गया। जी, आम लोगों के लिए एक झटका है, एक अंडा जो है थोड़ा सा और महंगा कॉस्टली पड़ रहा है। अंडा जो जिम शिम करते हैं, कहते हैं नहीं पाजी अंडे शंडे खाए करो, बॉडी अच्छी हो जाएगी। तो मैं कह रहा हूँ पाजी पनीर ही खा लो यार, क्या करो पनीर फिर भी बहुत महंगा। आनंद, कोई नहीं पाजी, जो तुसी खाना है खाते रहो, कोई इशू नहीं, लेकिन थोड़े से महंगे हो गए अंडे फंडे, अब क्या ही कर सकते हैं भाई। कुछ कुछ चीजें हैं जो बहुत आजकल एकदम से ना आसमान छू रही हैं। फिलहाल मैं घड़ी देख लेता हूँ, 9:26 हो गए 9:26 स्टेशन क्लॉक में, और सुबह उठते ही नाश्ता करना क्यों जरूरी है, एक्सपर्ट क्या कहते हैं इस पे अभी हम बात करेंगे। अगर आप अपना ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हो ना यार जल्दबाजी में, तो ये मत करो, डोंट डू दैट। अगर आप ऐसा करते हो तो बहुत मुश्किलें हो सकती हैं। तो वेल, सुबह उठते ही आप नाश्ता करना आपके लिए क्यों जरूरी है, इस पर भी बात करूंगा जरा सी देर में जब लौट कर आऊंगा। तो एंड आगे बढ़ते हैं, कुछ और खास चीज़ें हैं जो अभी आपको हौले हौले बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैंने आपसे एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा था, एंड उसके लिए आपने क्या करना था पाजी, मेरे क्वेश्चंस का आंसर करना था। और बहुत सारे मैसेज मेरे पास ऑलरेडी पहुंच चुके हैं आज की सुबह। अब मेरे पास श्वेता का मैसेज आया, लिखती है आनंद जी गुड मॉर्निंग, मुझे ऐसा लगता है कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, खुद को बदलना बहुत जरूरी है। अगर हमने खुद को बदल लिया तो जिंदगी में सब कुछ सही हो जाएगा भाई। अच्छा, इस पे अब मैं क्या बोलूं, मुझे खुद को नहीं समझ में आ रहा है। वेल ठीक है, अगर आपने ये आंसर शॉर्टलिस्ट किया है तो कुछ सोच के ही किया होगा, है ना। मैं कौन होता हूँ भला, मैं तो बस आपको ऑप्शन ही दे सकता हूँ, बाकी तो सब आपके हाथ में है। थैंक यू सो मच आपके मैसेजेस के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया यार इसी बात पे।

और यार देखो सैटरडे है, चलो जी इसी बात पे गाना जरूर आप तक पहुंचेगा। और अभी एक यूपीआई से जुड़ी एक और इन्फॉर्मेशन, आजकल बड़ी तब्दीली हो रही है भाई यूपीआई को लेके, एंड इस पे बहुत सारी बातें चल रही है बैक टू बैक, तो मैं भी इस पे अभी बात करने वाला हूँ। अभी जल्दी से लौट कर आता हूँ इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे, डोंट गो एनीवेयर, आप ऐसे ही ट्यून रहिए आनंद के साथ। और आज की सुबह मैंने एक बहुत ही अच्छा सवाल आपसे पूछा है, उस पर बात कर ले जरा। एग्जैक्टली बिंदास मॉर्निंग सुन रहे हैं आप आनंद के साथ, वीकडेज आपके साथ होते हैं मंडे टू सैटरडे, फाइनली सैटरडे आ गया है। आज 12 सितंबर की सुबह है, लेडीज एंड जेंटलमैन बहुत सिंपल सवाल पूछा है। सबसे पहले अगर आपने अभी जस्ट रेडियो ट्यून इन किया है तो वेलकम बैक है, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे आनंद को, जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। सवाल मेरा बहुत सिंपल है, अगर आपको अपनी जिंदगी में सिर्फ एक चीज बदलने का मौका मिले तो वो आप क्या बदलना चाहोगे। मैंने आपको चार ऑप्शन यहाँ पर दिए हैं, ऑप्शन ए पैसा, ऑप्शन बी रिश्ते, या फिर ऑप्शन सी अपना बीता हुआ समय, या ऑप्शन डी खुद को। इन चारों में से आप क्या शॉर्टलिस्ट करना चाहोगे, ये आपकी चॉइस है, पूरी पूरी जो आपको सही लगता है वो आप शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं आंसर। मैं तो सिर्फ आपको यहाँ पे ऑप्शन प्रोवाइड करा सकता हूँ, बाकी सब कुछ आपके हाथ में है बॉस, आपको जो बेटर लगे आप वो शॉर्टलिस्ट कर सकते हो आज की सुबह। एंड आप मुझे मैसेज करके भी बता सकते हो 9837896896 पर, जो भी आपको लगता है जो आपको बेटर लगे आप मुझे बताओ। वकीन रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपको अपनी जिंदगी में सिर्फ एक चीज बदलने का मौका मिले तो आप क्या बदलोगे, बताओ ना गाइस, मुझे मैसेज करो यार। चार ऑप्शन आपको दे दिए, फिलहाल के लिए गाना सुनते हुए आगे बढ़ते हैं, अभी लौट कर आता हूँ।

0: बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
1: क्या मेरी कसम
0: मिस कर दिया तो रीलोड
2: चाय चाय चाय
3: बिंदास मॉर्निंग
0: सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।
4: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का थ्रिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंकवेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
5: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
6: बसंती इनके सामने मत नाचना।
7: अरे भैया नाचना है तो एफएम मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
8: मेरा इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं।
9: नामुमकिन नामुमकिन नामुमकिन,
7: लेकिन बॉलीवुड के गाने पकड़ना बहुत ही मुमकिन है। सुनिए एफएम मुरादाबाद 89.6 पे 90s बॉलीवुड के अमेजिंग गाने। ट्यून इन कीजिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए गुनगुनाते रहिए।
0: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।
10: बहुत सारे लोग मुझसे इंदर साहनी कॉन्सर्ट के बारे में पूछ रहे हैं कि आज तो 12 सितंबर है, क्या इंदर साहनी कॉन्सर्ट आज होगा? तो इसके बारे में एक बड़ी खबर आपको दे रहा हूँ इस गाने के उस पार्ट।

0: चलो जी, ये गाना भी आपने सुना बैंड बाजा बारात से, बहुत ही अच्छा गाना बेनी दयाल हिमानी कपूर की आवाज में। इस गाने को आप सुन रहे थे आनंद के साथ। वंस अगेन वेलकम बैक है सैटरडे की सुबह। हाँ जी, कैसे हालचाल? आप कहाँ जा रहे हैं पाजी? आप जहाँ भी जा रहे हैं मैं पहुंच जाओ यार पाजी, चाहे आप दिल्ली रोड हो, स्टेशन रोड हो, मैं कह जी आप जिस भी रोड पे हो, आप जहाँ भी जा रहे हो पहुंचो यार। बाकी जो लोग घर में नाश्ता वाश्ता बना रही है उनको भी वेरी गुड मॉर्निंग पर जाएगी कि हालचाल है, सब बढ़िया चल रहा है ना यार। मैं मतलब बड़ी सारी गानों के पीछे रिसर्च करता रहता हूँ, क्या इंटरेस्टिंग आपको बता सकता हूँ, क्या नया आपके लिए मैं यहाँ पर आपको बता सकता हूँ जिससे आपकी सुबह और फैब्यूलस हो जाए। इन एनी वेज, अभी मैं सबसे पहले तो इंदर साहनी कॉन्सर्ट की डिटेल्स आपको देता हूँ। हम इतने दिन से उनका भी यू नो यहाँ पे प्रचार कर रहे थे कि आप आइए, हम भी आपको मिलेंगे। पहले हमने रवि गुप्ता का किया बट वो अनफॉर्चुनेटली कैंसिल हो गया, बट अभी पता चला है कि अभी इंदर साहनी कॉन्सर्ट भी कैंसिल हो गया है। एग्जैक्टली, सो अभी ये कॉन्सर्ट भी नहीं है आज। तो जो लोग आने का प्लान कर रहे हो भाई प्लीज मत करो यार, अभी कैंसिल हो गया। ये अपडेट जैसे आई भैया शो इज कैंसिल, में यार ये हो क्या रहा है, पता नहीं भाई कि चल क्या रहा है ये। मतलब दो शोज होने वाले थे, दोनों ही कैंसिल हो गए। सोचा था यार बड़ी टेंशन में हूँ, चलो जाके थोड़ा सा हंस लेंगे, माइंड फ्रेश हो जाएगा, लेकिन चलो भाई कोई नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है, अब इस बात को फॉलो करेंगे। एनीवेज आगे बढ़िए, आपके मैसेज मेरे पास पहुंचे हैं ढेर सारे, थैंक यू वेरी मच फॉर पार्टिसिपेटिंग। बहुत सारे मैसेज आपने पहुंचाए हैं उसके लिए भर भर के थैंक यू सो मच आप सभी को पूरे दिल से। सच में यार बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस आप करते हो, नो डाउट बहुत ही बेहतरीन हमारे रेडियो लिसनर हैं, मानना पड़ेगा यार। चलिए आगे बढ़ते हैं, पहले तो तालियां बजा दें आपके लिए यार, इतने अच्छे अच्छे मैसेज आप कर रहे हैं, चलो बहुत बढ़िया। अब इसी बात के साथ चलो आपके नाम फटाफट शामिल करते हैं। सहारनपुर से जोन रोजी पलविलीस हमारे लिसनर हैं, हमेशा जुड़ते हैं। इन्होंने मुझे एक बड़ी प्यारी बात लिखकर पहुंचाई है, लिखते हैं बहुत नेक होकर भी आप हर किसी की पसंद नहीं बन सकते क्योंकि फूलों से भी कुछ लोगों को एलर्जी होती है। एग्जैक्टली यार, पॉइंट तो सही बोला है जनाब आपने। हाय गुड मॉर्निंग जी, कैसे हाल चाल है? आनंद जी, दुर्गेश सैनी बात कर रहे हैं कल्याणपुर से। गुड मॉर्निंग सर, मैं बढ़िया हूँ। सुप्रभात। मोहन स्वरूप बिलासपुर रामपुर से जुड़े हैं मेरे साथ आज की सुबह। इसके अलावा हमारे पास मैसेज आया है बुद्धि बिहार से अलका वर्मा जी का, ये ऑप्शन सी को शॉर्टलिस्ट करती हैं। एंड गणेश प्रसाद हुजदार काठमांडू से लिखते हैं बिंदास मॉर्निंग की और आरजे आनंद की जितनी तारीफ की जाए वो कम है, बिकॉज आपके बोलने का स्टाइल मुझे बहुत अच्छा लगता है, आपका शो बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन देते हैं। अरे थैंक यू सो मच जनाब, मतलब अब ठीक है यार, इतना भी मत बोलो कि मैं रो जाऊँ यार, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, दिल की गहराइयों से थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, मैंने आज सवाल आपसे पूछा था अगर आपको अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक चीज़ बदलने का मौका मिले तो आप क्या बदलना चाहोगे। चार ऑप्शन दिए थे, ऑप्शन ए पैसा, ऑप्शन बी रिश्ते, ऑप्शन सी अपना बीता हुआ समय, ऑप्शन डी खुद को। एंड तो अलका वर्मा जी ने ऑप्शन सी को चुना है, यानी कि ये कहना चाहती है मैं अपने बीते हुए समय को बदलना चाहती हूँ। आगे बताता हूँ मैं। हाय गुड मॉर्निंग जी, कैसे हालचाल है? अमरोहा से हमारे पास मैसेज पहुँचा है ये लतिका का, इन्होंने मुझे मैसेज किया है आनंद ऑप्शन डी को मैं शॉर्टलिस्ट करना चाहूँगी। ऑलराइट। एंड यहाँ पर हरिओम महेश्वरी मेरे साथ जुड़े हैं, ये अपने बीते हुए समय को बदलना चाहते हैं, लिखते हैं आनंद जी मैं तो इसी को चेंज करना चाहूँगा, ये भी ऑप्शन सी को शॉर्टलिस्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग पहुँच रहा है मेरे पास यहाँ पर, हाय गुड मॉर्निंग कैसे हालचाल है? ये हमारे पास गीता कश्यप बबली अंजान लक्ष्मी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हाय गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग। साथ में प्रेरणा मेरे साथ जुड़ चुकी है, प्रेरणा लिखना चाहती है आनंद जी मैं तो ऑप्शन सी को ही शॉर्टलिस्ट करूंगी। ओ माय गॉड, एक मैसेज आए हैं, ये लिखते हैं ऑप्शन बी शॉर्टलिस्ट करना चाहूंगा, यानी कि रिश्ते को अपनी जिंदगी में जो है बदलना चाहते हैं। और एक महान व्यक्ति ने लिखा है ऑप्शन ए, वाह क्या बात है यार, बहुत बढ़िया, समझ सकते हैं आपके दिल के हालात। चलो गाइज आगे बढ़ते हैं, इसी बात के साथ एक सवाल आपसे फटाफट और पूछने का टाइम हो गया है, बिकॉज 9:42 हो रहे हैं स्टेशन क्लॉक में, और अभी एक और सवाल है जिसका जवाब देके आप बन सकते हैं सुपरस्टार। एग्जैक्टली, एक बहुत ही प्यारा डायलॉग है, इसको आइडेंटिफाई करना है कौन सी फिल्म का ये डायलॉग मैं आज की सुबह लगा रहा हूँ आपके लिए।
1: मुझसे नहीं होगी इस तरह की नौकरी, क्या इसी नौकरी के लिए मैंने जीत और मेहनत करके पढ़ाई की थी, क्या फायदा इन डिग्रियों का
0: बताओ जी, क्या फायदा रेडियो सुनने का, जवाब जवाब नहीं दे रहे हो मेरे सवाल का, तो फटाफट से मुझे मेरे सवाल का आंसर पहुंचाओ। आज की सुबह मैं जो आपके लिए रेडियो सेट पे अपने डायलॉग प्ले कर रहा हूँ, मतलब आपके रेडियो पे जो डायलॉग भेज रहा हूँ, ये कौन सी फिल्म का डायलॉग है?
1: मुझसे नहीं होगी इस तरह की नौकरी, क्या इसी नौकरी के लिए मैंने जीत और मेहनत करके पढ़ाई की थी, क्या फायदा इन डिग्रियों का।
0: जरा बताओ मुझे मैसेज करके अभी जो आपने सुना ये डायलॉग कौन सी फिल्म का है, अगर आप समझ गए हैं, अगर आपको समझ में आ गया है व्हाट्सएप करो, उठाओ अपना फोन, टाइप करो अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना सही जवाब, उसको सेंड करो मेरे व्हाट्सएप पे 9837896896 पे। आप मुझे चाहो तो टेक्स्ट मैसेज भी लिख सकते हो, मैसेज बॉक्स में जाना है, टाइप करना है अपना नाम, स्पेस देके लिखना है अपने शहर का नाम, स्पेस देके लिखना है अपना राइट आंसर। ठीक है जी, मैं इंतजार कर रहा हूँ आपके मैसेजेस का, और फिलहाल के लिए आगे बढ़ते हुए गाना, वीकेंड है, सैटरडे है, एंड मेरी तरफ से एक बिग शाउट आउट है, वेरी गुड मॉर्निंग।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
2: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
1: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
2: अरे नहीं,
3: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
2: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड कॉइन जीतने का मौका भी है।
1: अच्छा?
3: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता जैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।
4: सीने में दर्द, सांस फूलना या तेज धड़कन को बिल्कुल नजरअंदाज ना करें।
5: श्री साई हॉस्पिटल में डॉक्टर अखिल कौशिक डीएम कार्डियोलॉजी द्वारा
4: एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर एवं अत्याधुनिक कार्डियक कैथ लैब की सुविधा उपलब्ध है, वो भी किफायती रेट्स पर। स्वस्थ दिल, सुरक्षित जीवन, आज ही अपॉइंटमेंट ले। श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल करें 7060002430।
6: सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।

बहुत ही कमाल की फिल्म थी दोस्ताना, एंड बहुत अच्छा गाना प्ले कर रहा हूँ आज की सुबह। वॉल्यूम बढ़ाया करो यार, थोड़ी सी तो बढ़ा लो, है ना, कान रेडियो पे और ध्यान सड़क पे रखो अगर गाड़ी चला रहे हो तो। आनंद को सुन रहे हैं आप, ये कंपनी 10 बजे तक रहेगी आपके साथ एंड ऑलमोस्ट स्टेशन क्लॉक में टाइम हो गया 9:47। मैं आता हूँ वापस, बताता हूँ सुबह का ब्रेकफास्ट क्यों जरूरी है। सुबह सुबह ब्रेकफास्ट टाइम है यार, इस पे बात करना तो बनता है, लेकिन उससे पहले ओए होए मैं नहीं बिगड़ा यार।

0: बहुत बढ़िया है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि सुबह उठते ही आपको चाय चाहिए है नाश्ता, तो मुझे पता है 95% लोग यही बोलेंगे, आनंद जी हमें तो सुबह उठते ही चाय चाहिए। और आपको पता है ना, चाय हमारे लिए कितनी खतरनाक होती है, फिर भी हम पीते हैं यार। ये तो खास बात है हम इंडियंस की है। सामने चीज पे लिखा होगा ये आपकी हेल्थ के लिए खराब है, फिर भी वही चीज खानी है। एनीवेज वेलकम बैक यू वंस अगेन। इसमें हम बात नहीं करेंगे, 9:50 हो गए, अभी बात करेंगे सुबह के ब्रेकफास्ट के बारे में, क्यों इंपॉर्टेंट है सुबह का ब्रेकफास्ट। जो लोग स्किप कर देते हैं ना, उनके लिए खास करके एक रिसर्च में भी पता लगा भाई, देखो सुबह की जो एनर्जी है वो बहुत जरूरी है, पूरे दिन की प्रोडक्टिविटी को मेंटेन रखती है, और उसके लिए आपको ब्रेकफास्ट करना बहुत जरूरी है। सुबह उठते ही आप सबसे पहले क्या लेते हैं, चाय या नाश्ता, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मैं आपको इतना बताना चाहता हूं कि भैया सुबह का टाइम बहुत भाग दौड़ वाला होता है, तो ऐसे में ब्रेकफास्ट स्किप कर देना सही नहीं है यार। आपको बताना, दरअसल रात के खाने के बाद सुबह देर तक हमारा शरीर कई घंटों तक बिना भोजन के रहता है, इसीलिए सुबह का बैलेंस बनाकर रखता है आपका ब्रेकफास्ट। अगर दिन की शुरुआत अच्छी होती है तो भैया उसके लिए आपको एनर्जी भी चाहिए ना, उसके लिए आपको बूस्टर भी चाहिए, तो ये ब्रेकफास्ट आपको काफी हेल्प करता है। तो ब्रेकफास्ट स्किप करने से भाई साहब बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं ना, तो इसीलिए आपको जो है ब्रेकफास्ट जरूर करना चाहिए। अगर आप नहीं करेंगे तो आपकी एनर्जी बहुत लो महसूस होगी, आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत कम रहेगी, और आपका काम करने का भी मन नहीं करेगा। तो इसीलिए सुबह सिर्फ चाय बिस्किट पर बिल्कुल मत रुकिए, कोशिश कि आप थोड़ा सा हेल्दी और प्रोटीन फुल नाश्ता आप लीजिए। इसे आप पोहा ले सकते हैं, आप उपमा ले सकते हैं, आप फल फ्रूट्स को अपने जो है सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में शामिल कर सकते हैं, कुछ हल्की फुल्की सी आप जो है पराठा विद सब्जी आप ले सकते हैं ना, तो ये कुछ हल्की फुल्की चीजें आप लेकर निकले। और ज्यादा भारी नाश्ता भी नहीं होना चाहिए, मतलब एक बैलेंस ब्रेकफास्ट होना चाहिए। मतलब सुबह सुबह मेरा कहने का ये मतलब है कि आप कुछ भी जरूर खाकर निकले, बिना खाए पिए कुछ ना निकले। अगर आप सोचते हैं कि नहीं यार ब्रेकफास्ट स्किप कर दूंगा, रास्ते में कुछ खा लूंगा ये वो, तो इस तरह की चीजें भैया नहीं करनी चाहिए। एक दो दिन चल जाता है, लेकिन बैक टू बैक अगर आप ये करोगे तो ये आपकी लाइफ पर बहुत नेगेटिव असर डाल सकता है। तो इसीलिए सुबह जितना जरूरी है और जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए काम है, उतना जरूरी आपका ब्रेकफास्ट भी है ना। बॉडी चलाने के लिए ब्रेकफास्ट बहुत जरूरी है, सुबह का ब्रेकफास्ट बिल्कुल स्किप मत किया करो बॉस। तो अगर आप सुबह ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं तो बहुत गलत बात है, अब आप बिल्कुल मत करिएगा। सुबह सुबह आप अपना नाश्ता जरूर करके जाएं। अगर आप अभी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, मैं कह रहा हूँ एक पराठा और खा लो यार, कुछ नहीं होता। चलो जी, फिलहाल मुझे भी ब्रेकफास्ट करने के लिए जाना है। अभी के लिए कीप लॉकिंग अप दिस स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6। बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा है मैंने आज की सुबह।
1: मुझसे नहीं होगी इस तरह की नौकरी। क्या इसी नौकरी के लिए मैंने जी तोड़ मेहनत करके पढ़ाई की थी? क्या फायदा है इन डिग्रियों का?
0: नहीं भाई, मेरा फायदा है इन डिग्रियों का, मैं अच्छी नौकरी कर रहा हूँ। आप मुझे बताओ, अभी जो आपने डायलॉग सुना है ये सनी पाजी का डायलॉग है, कौन सी फिल्म का है ये आपको मुझे बताना है। मैसेज करके 9837896896 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं आप मुझे, ठीक है 9837896896 पे इंतजार है मुझे आपके प्यारे प्यारे व्हाट्सएप मैसेजेस का। एक बार फिर से मैं आपके लिए रिपीट कर देता हूं अपना सवाल, ताकि आपको थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाए आपके लिए। ये सनी पाजी का डायलॉग,
1: नहीं होगी इस तरह की नौकरी। क्या इसी नौकरी के लिए मैंने जी तोड़ मेहनत करके पढ़ाई की थी? क्या फायदा है इन डिग्रियों का?
0: चलो मुझे व्हाट्सएप कर देना आप, ठीक है, फटाफट से मैसेज करके बताओ।

0: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM.
1: Koi mil gaya.
2: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
3: बसंती, इनके सामने मत नाचना।
2: अरे भैया, नाचना है तो एफएम मुरादाबाद 89.6 की

0: बसंती इनके सामने मत नाचना।
1: अरे भैया नाचना है तो एफएम मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
2: मेरा इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं,
3: नामुमकिन नामुमकिन नामुमकिन।
1: लेकिन बॉलीवुड के गाने पकड़ना बहुत ही मुमकिन है। सुनिए एफएम मुरादाबाद 89.6 पे 90s बॉलीवुड के अमेजिंग गाने। ट्यून इन कीजिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए गुनगुनाते रहिए।
4: आवश्यक सूचना, 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
5: You are listening to the biggest hits. The biggest hits, non-stop.

0: बहुत ही अच्छा गाना है, सच बता रहा हूँ। सचिन जिगर का म्यूजिक जिस गाने में आ जाए उस गाने की बात ही अलग हो जाती है। तुमसे हमारे दिन की शुरुआत होती है, और क्या ही चाहिए यार, मतलब यही चाहिए अपने को, इससे बढ़िया बात और क्या ही हो सकती है। सुबह सुबह आप लोग इतने बढ़िया मैसेज करते हो, सच में मन खुश हो जाता है यार। सुबह सुबह आपके मैसेजेस से दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब आप लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अब मेरा जाने का समय हो गया है। आज की सुबह 10:06 हो रहे हैं। बहुत सिंपल सवाल मैंने आपसे पूछा था, एक फिल्म का डायलॉग प्ले किया था, ये कौन सी फिल्म का है बताना था।
1: मुझसे नहीं होगी इस तरह की नौकरी, क्या इसी नौकरी के लिए मैंने जीत और मेहनत करके पढ़ाई की।
0: एग्जैक्टली ये आपको बताना था और बहुत सारे लोगों ने जवाब दिए हैं, थैंक यू वेरी मच। और आइए जरा आप मैसेज की तरफ मैं रुख करूंगा। सबसे पहले मेरे पास स्किन का जवाब आया था, अब जरा मैं ये फटाफट चेक कर लेता हूँ। देखिए कुछ लोगों ने जिद्दी लिखा है, कुछ लोगों ने जिद लिखा है, जीत लिखा है, अब समझ नहीं आ रहा है, लेकिन फिलहाल सही जवाब क्या है वो तो ये बता देंगे अपनी आवाज में। जी मैम,
2: राधे राधे आनंद जी। आनंद जी, जो आपने डायलॉग चलाया है वो जिद्दी मूवी का है और ये सनी देओल की आवाज थी।
0: जी बिल्कुल,
2: धन्यवाद। आपका प्रोग्राम काफी अच्छा चल रहा है, आपका प्रोग्राम सुनने से तमाम तरह की जानकारी हमको प्राप्त हो जाती है कि शहर में क्या हो एक्टिविटीज हो रहा है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद मैम, कांग्रेचुलेशन, आपको बहुत बहुत बधाइयां, बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने, जिद्दी फिल्म का ये राइट आंसर है। जोरदार तालियां आपके लिए और बहुत बहुत शुक्रिया पार्टिसिपेट करने के लिए। हमारे साथ कोमल जी भी जुड़ी हैं। कोमल जी बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन आपको भी, आप लोगों ने भी सही जवाब दिया है। भारती जी मेरे साथ जुड़ी हैं आज की सुबह, हाय हेलो हेलो भारती जी, गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग। एंड ये मुझे डीके अरोड़ा जी चंदन नगर से लिखते हैं, अर्जुन फिल्म का है सर, गलत जवाब हो गया है। कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसी बड़ी बड़ी शहरों में छोटी छोटी बातें अक्सर हो जाती हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और मैसेज मेरे पास पहुंचा था, गुड मॉर्निंग सनातूर के नाजिया जी, मुझे लिखनी है गुड मॉर्निंग, आपका शो नेक्स्ट लेवल लगता है, थैंक यू सो मच फॉर योर ब्यूटीफुल वर्ड्स। सनी देओल इज द राइट आंसर, जिद्दी मूवी का डायलॉग था, थैंक यू दर्पण भाई। प्रिंस मेरे साथ जुड़े हैं आज की सुबह, हेलो जी गुड मॉर्निंग, कैसे हालचाल है आदरणीय आरजे जी, गुड मॉर्निंग, मैं बढ़िया हूँ जी। ये व्हाट्सएप मेरे पास पहुंचा है, हाय गुड मॉर्निंग सर, कैसे हालचाल है। दरक्षा मेरे साथ जुड़ी हैं आज की सुबह। मोहन स्वरूप रामपुर से जुड़े थे मेरे पास, संभल से मैसेज आए हैं विवेक कुमार जी का।
3: प्रिंसिपल खुद बन जाए।
0: रिहाना हमारे साथ जुड़ी है, चमनलाल साहब जुड़े हैं पुतली घर रोड से। चलो गाइस थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग, 10:08, मिलता हूँ आपको मंडे की सुबह, रखिए अपना ढेर सारा ख्याल। कुछ टेक्स्ट मैसेज आए हैं, ईदगाह से हमारे पास मैसेज पहुंचा है शफी अहमद अंसारी का, लिखते हैं हाउ आर यू, टेक्स्ट मैसेज आया, मैं बढ़िया हूँ सर, हेलो सर गुड मॉर्निंग, कैसे हालचाल है। नेहा स्वाति मेरे साथ जुड़ी है, गुड मॉर्निंग नेहा जी, बहुत बहुत शुक्रिया पूछने के लिए हालचाल, मैं बहुत ही बढ़िया हूँ। चलिए मैं निकलता हूँ यहाँ से, करता हूँ अभी जाके ब्रेकफास्ट, बहुत सारी बातें हो गई हैं, अगली कंपनी एंजॉय करो नेक्स्ट आरजे के साथ। विक्की सागर जुड़ गए हैं, गुड मॉर्निंग पहुँचाते हैं, चलिए रखिए अपना ढेर सारा ख्याल, बाय बाय, टेक केयर।

0: यहाँ पे छुप जाओ।
1: अरे अंधेरे में मुझे डर लगता है, आ जाओ ना।
0: अरे कुछ नहीं होगा, अरे मेरी बात
1: सानी। फाइनली मैं
2: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
3: सीने में दर्द, सांस फूलना या तेज धड़कन को बिल्कुल नजरअंदाज ना करें। श्री साई हॉस्पिटल में डॉक्टर अखिल कौशिक डीएम कार्डियोलॉजी द्वारा एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टिक, पेसमेकर एवं अत्याधुनिक कार्डियक कैथ लैब की सुविधा उपलब्ध है। मूवी किफायती रेट्स पर, स्वस्थ दिल सुरक्षित जीवन। आज ही अपॉइंटमेंट ले। श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल करें 7060022430।

और भैया मौसम की अगर मैं बात करूं तो बहुत ही कड़ाके वाली धूप। अभी टेम्परेचर की बात करूं तो 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है आज का। यानी कि कभी कभी बादल छा जाते हैं और कभी कभी इतनी तेज धूप निकल जाती है कि बस मन तो यही करता है कि ये दोपहरा वाला फीलिंग क्यों आ रही है। देखिए, अगर अभी तक आप नहीं नहाए हैं ना तो नहा लीजिए, अदरवाइज आप सोचेंगे कि 11 साढ़े 11 बजे हम नहाएंगे, 12 बजे नहाएंगे, तो जो टंकी का पानी है ना वो हम ठंड गर्मी ठंड में ना गर्म पानी करते हैं, वैसा पानी आपको मिलने वाला है कि आप तो अपने हाथ पर रख भी नहीं पाएंगे, गर्म हो जाती है टंकी के पानी भी। तो इसीलिए भैया जो नहीं नहाए हैं जल्दी जल्दी नहा लीजिए, पता चले कि आपको गर्म पानी में नहाना पड़े। वैसे भी ठंड आ जाएगी तब तो गर्म ही पानी में हर कोई नहाता है, लेकिन फिलहाल अभी तो गर्मी है तो इसलिए ठंडे पानी में नहाने का अलग ही मजा आता है। और करेंगे ढेर सारी बातें, यानी कि देश दुनिया में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, क्योंकि आज की तारीख है 12 सितंबर और 12 सितंबर का स्पेशल डे क्या मनाया जाता है, हर चीज के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन आप सभी के जो प्यारे प्यारे मैसेज आते हैं ना भाई साहब, वो भी लाजवाब होते हैं। तो आपने क्या करना है जी, हमें मैसेज भेजना है, नंबर है 9823789689 पर आप मैसेज भेजकर जो भी गाना सुनना चाहते हैं डेफिनेटली सुन सकते हैं। फिलहाल एक और गाना, उसके बाद हम आप सभी के साथ कनेक्ट होंगे और जो आपके प्यारे प्यारे मैसेज आ रहे हैं ना उनको शामिल करेंगे।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
2: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
1: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
2: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
3: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
2: नहीं मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
3: अरे नहीं,
4: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
3: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड क्वाइन जीतने का मौका भी है।
2: अच्छा।
3: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता जैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।

क्या बात है जी, बहुत ही शानदार वाला आपने गाना एंजॉय किया है, बिलोनी तेरा लाल लाल घगरा। हेलो जी, गुड वाली मॉर्निंग है मॉर्निंग मसाला शो में। और समय की बात करूं तो 10:31 हो चुके हैं और आज की तारीख यानी कि 12 सितंबर, और आज का दिन शनिवार, यानी कि शनिवार का शुभ दिन। और आरजे रीना आप सभी के साथ कनेक्ट है शनिवार को, यानी कि आप सभी के साथ कनेक्ट हो जाती है मॉर्निंग शो में ही। और देखिए, अब बात करने वाले हैं यानी कि विमेन क्रिकेट टीम के बारे में, यानी कि अब जो सेमीफाइनल होने वाला यानी कि फाइनल मैच खेला जाएगा वो है श्रीलंका के बीच, यानी कि बांग्लादेश को हराने के बाद अब जो फाइनल मैच होने वाला है वो भारत वर्सेस श्रीलंका के बीच होने वाला है। तो भैया अभी इस मैच को देखने के लिए बहुत उतावले हो रहे हैं, आई नो, मुझे पता है भैया, क्योंकि देखिए जब भी मैच आता है ना भाई, सब दुख दर्द खत्म हो जाते हैं, बस एक फोकस सिर्फ और सिर्फ मैच। चलिए, फिलहाल मेरा फोकस आप सभी के मैसेज की तरफ होना चाहिए और आपका भी फोकस मैसेज की तरफ होना चाहिए। आपने मैसेज भेजना है, नंबर है 9837896896 पर। विक्की सागर जी गुड मॉर्निंग पहुंचाते हैं। गुड मॉर्निंग मैम, ये हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट रामपुर से कनेक्ट होती है नाजिया तुर्क एंड सना, और ये गाना सुनना चाहती है, खुला है मेरा।

और विक्की सागर जी भैया गुड मॉर्निंग के साथ साथ पूछते हैं कैसे हैं आप। बहुत अच्छे हैं और ये गाना सुनना चाहते हैं, होले होले हो जाएगा प्यार ज़पिया होले होले। क्या बात है जी, ये वाला गाना भी आपको डेफिनेटली सुनाएंगे। फिलहाल अगले मैसेज की बात करूँ तो, हेलो रीना जी, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग जी। शाबरीन जी हमारे साथ कनेक्ट होती हैं और ये गाना सुनना चाहते हैं, मेरे हाथों में नो नो चूड़िया। डेफिनेटली हम आपको गाना सुनवाएंगे सर, और फिलहाल आप बिंदास होकर मैसेज करते रहिए और अपना फेवरेट वाला गाना एंजॉय करते रहिए। ताकि देखिए सुबह का टाइम है और ऊपर से भैया गर्मी पूछो मत, धूप इतनी ज़्यादा है कि क्या ही कह सकते हैं। फिलहाल अगर आप बाहर जाए तो छाता ज़रूर लेकर जाइए, क्योंकि इस धूप में ज़रूरी नहीं है कि बारिश आए तभी आपको छाता की ज़रूरत पड़े, बल्कि गर्मी में भी छाते की ज़रूरत पड़ती है। तो आप बाहर जाएँ तो अपने साथ छाता ज़रूर लेकर जाए, ताकि आप इस चिलचिलाती धूप से अपने आप अपनी रक्षा कर सके। और साथ ही साथ आपने पानी की बोतल भी अपने साथ रखना है। चलिए फिलहाल गाना सुनते हैं, खुला है मेरा पिंजरा आ मेरी मैना, कुमार सानू की आवाज़ में और अलका याग्निक जी की आवाज़ में। ये बहुत ही खूबसूरत गाना सुनते हैं, यानी कि नाजिया की रिक्वेस्ट पर ये गाना है।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है नौवा राष्ट्रीय पोषण माह।
2: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
1: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।

हेलो जी, सुखविंदर सिंह की आवाज में बहुत ही शानदार वाला गाना एंजॉय किया है। और समय की बात करूँ तो 10:00 यानी कि 45 मिनट हो चुके हैं और आप सुन रहे हैं आरजेरीना के साथ मॉर्निंग मसाला शो। और देखिए, कहते हैं ना, एक बहुत ही प्यारी कहावत है कि नफरत भी कोई करने की चीज़ है। अगर करना ही है तो सब्र करे, दया करे, माफ़ करे और जाने दे। अगर आप सब्र करना सीख जाते हैं, दया करना सीख जाते हैं, माफ़ करना सीख जाते हैं और फिर कहते हैं जानो दे यार, इसकी गलती नहीं थी, किस्मत में जो होना था वो हो जाता है और हम बेफजूल दूसरों को गलतियां ठहराते हैं कि तूने ऐसा नहीं किया होता ना तो शायद ऐसा होता, और शायद मैंने ऐसा किया होता तो आज ये दिन नहीं देखने पड़ते। यानी कि जो कुछ होता है वो तो विधाता का विधान है, जिन्होंने चैप्टर लिख दिया है उस चैप्टर को हमें पूरा तो करना ही है, चाहे वह किसी के थ्रू गलतियां करवाए या जो होता है लाइफ में ना, वो एक चैप्टर में लिखा हुआ पार्ट ही हम, एक अध्याय होता है जिसको हम पूरा करते हैं। और इसी अध्याय के साथ आप सभी के मैसेज की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही शानदार वाला आपने गाना एंजॉय किया था विक्की सागर की रिक्वेस्ट पर। अगले मैसेज की बात करूं तो नमस्कार, आपका खूबसूरत प्रोग्राम मॉर्निंग मसाला क्या कहना, दिल को खुश कर देता है। और आज जिनकी पसंद का गाना है सुहागन मूवी से तुम ही हो मेरी पूजा। और अगर सिंगर की बात करूं तो लता मंगेशकर जी की आवाज में और मोहम्मद रफी जी की आवाज में, और ये हमारे साथ कनेक्ट होते हैं काठमांडू से गणेश प्रसाद जी। अगले मैसेज की बात करूं तो ये हमारे साथ कनेक्ट होते हैं जय श्री राम, गुड मॉर्निंग रीना जी, वेरी गुड मॉर्निंग सर। दुर्गेश सैनी कल्याणपुर मुरादाबाद से कनेक्ट होते हैं और गाने की बोल है मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डाल दी है। यानी कि जो हनुमान अंश जो भी राइट नाउ भैया थिएटर में भी रिलीज है ये मूवी, तो उसी का गाना है, बहुत ही शानदार गाना है और मूवी उससे भी ज़्यादा खूबसूरत। सच बताऊँ, मूवी और साथ ही साथ गाने जब प्यारे होते हैं ना तो मूवी का पता ही नहीं चलता कब ख़त्म हो जाता है और बस दिल से एक ही आवाज़ आती है, यार इतनी जल्दी क्यों ख़त्म हो गई ये मूवी, है ना? आपके दिल से भी यही आवाज़ आता है ना, मुझे पता है आप भी यही सोचते हैं कि यार नहीं थोड़ी देर तो और बस और देख लेते इस मूवी को। लेकिन ये मूवी है ना बड़ी खूबसूरत से फिल्माया गया है और इस तरीके से इस मूवी की एंडिंग है कि दूसरा पार्ट देखने के लिए आपको कंफ्यूज तो करेगा ही करेगा जी। जिन्होंने फर्स्ट पार्ट देख लिया है ना वो दूसरे पार्ट को देखने के लिए बहुत ज़्यादा उतावले हैं, जैसे कि मैं, कि आखिरकार 10 साल बाद जब वो घर आते हैं और किनके घर आते हैं वो तो मूवी देखने के बाद ही आपको पता लगेगा।

नाथ जी पाकिस्तान से कनेक्ट होते हैं, धक धिक चिका धिक चिका गाना सुनना चाहते हैं, जो बिल्कुल हम आपको ये गाना सुनवाएंगे। अगले मैसेज की बात करूं तो हाय दी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं जी। और ये हमारे साथ कनेक्ट होती है द्रक्षा फातिमा, और गाना सुनना चाहती हैं, क्या दिल ने कहा क्या तुमने सुना। और इनकी दोस्त है रुकैया फातिमा, अफरोज फातिमा और लाइबा काजमी, इनके साथ ये गाना सुनना चाहती है। बिल्कुल जी, हम आपको गाना सुनवाएंगे। और मेरे हाथों में नो नो चूड़िया हम गाना सुनेंगे, यानी कि साबरीन मलिक की आवाज़, मतलब उनके रिक्वेस्ट पर ये गाना थी। उसके बाद फिर कनेक्ट होंगे और करेंगे ढेर सारी बातें।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM. सिरदर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।

क्या बात है जी। लता मंगेशकर की आवाज में बड़ा ही खूबसूरत अब गाना एंजॉय कर रहे हैं सदा बहार गाने, जिनको आप जितनी बार भी सुन लो कभी मन नहीं भरता है। और

0: हम क्योंकि हम उनके जो जिंदगी के अनुभव है, उनके जिंदगी के जो कहानियां हैं वो शायद हमने नहीं देखी है और नहीं सुनी है, तो उनके साथ बैठकर सुनेंगे ना तो आपको बड़ा मजा आएगा। और आज 12 तारीख है और आज का जो कैलेंडर है ना वो ग्रैंड पेरेंट्स डे मनाया जाता है, यानी दादा दादी और नाना नानी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हालांकि अलग अलग देशों में और जगहों पर इसकी तारीख अलग हो सकती है, लेकिन इस दिन का मकसद है अपने घर में उन बुजुर्ग के साथ समय बिताना जिन्होंने हमें प्यार, संस्कार और जिंदगी की समझ दी। और आज इसी भागदौड़ में हम मोबाइल और काम में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि घर के बड़े लोगों से 2 मिनट बात भी करना भूल जाते हैं। इनफैक्ट हमें टाइम ही नहीं मिलता है ना, यही कह देते हैं, यही बहाना होता है ना हमारे पास कि इतना टाइम है नहीं, सुबह यानी कि रात को लेट सोना, सुबह जल्दी नहीं उठना, सुबह भी लेट उठना, और साथ ही साथ जब उठते हैं तो ऑफिस की और स्कूल के टाइम हो जाते हैं, तो उसी में नहा के धोवा के भैया रेडी होकर स्कूल ऑफिस चले जाते हैं, फिर शाम को आते हैं थके हारे बस यही, और जब थक हार कर आते हैं तो सोचते हैं कि यार चलो सो जाते हैं, और इसी में ना हमें टाइम नहीं मिल पाता है। लेकिन इस भाग दौड़ की दुनिया में ना टाइम आपको मिलेगा नहीं, आपको टाइम निकालना पड़ेगा उनसे बात करने के लिए। सोचिए जब फोन नहीं थे तभी भी तो एक साथ बैठकर बातें करते थे और वो दौर कितना अच्छा था। यानी कि अब इंस्टाग्राम की अगर मैं बात करूं तो 90s 80s के फोटो डाले जा रहे हैं। देखिए फोटो 90s 80s के कन्वर्ट करना AI से अच्छी बात है, लेकिन वही संस्कार और वही दौर फिर से लाइए कि सभी के साथ बैठकर बातें करें, एक दूसरे के जो दुख दर्द है उसमें आप मदद करें। क्योंकि कोई परेशान इंसान के साथ अगर आप बैठकर बातें भी करेंगे ना तो उसकी आधी जो दुख है ना वो दुख अपने आप खत्म हो जाती है और उनको भी बहुत अच्छा लगता है। तो अपने आप से एक वादा करिए, अपने दादा दादी या नाना नानी को फोन कीजिए। अगर काफी टाइम से आप घर से दूर रहते हैं और अगर आपने उनको फोन नहीं किया है तो उनसे फोन करिए, उनके पास बैठिए, उनसे बात करिए, अपने दिल की बात करिए उनसे, और आपका दिल आप उनसे ये भी शेयर करिए कि आज हमारा दिन कैसा रहा, उनका दिन कैसा रहा आज का, और उनसे एक ही बात कहिए कि हम हैं आपके साथ, आप बेफिक्र रहे, बेफिक्र होकर हमारे पास कॉल कर सकते हैं, क्योंकि आज वो है तो आपको पूछ रहे हैं, कल को नहीं रहेंगे तो कोई नहीं पूछेगा आपसे, और फिर सिर्फ और सिर्फ यादें रह जाती हैं और हम सोचते हैं काश उस टाइम हमने उनसे बात कर ली होती, उनको वक्त दे दिया होता, उनसे हम ढेर सारी बातें करते। तो बस काश को दूर करिए और उनसे ढेर सारी बातें करिए, उनके पास बैठिए। आप उनके पास बैठेंगे ना तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा और उनके साथ ढेर सारी बातें करेंगे तो आपको और भी ज़्यादा अच्छा लगने वाला है और उनको भी अच्छा लगेगा कि चलो एटलीस्ट हमारे बच्चे हैं, हमें टाइम दे रहे हैं, क्योंकि वो आपकी एक कॉल के लिए ना इंतज़ार करते रहते हैं कि आखिरकार हमारे पास कब कॉल आएगा। तो उनके पास कॉल ज़रूर करिए अगर आपने काफ़ी टाइम से कॉल नहीं किया है तो। चलिए फिलहाल अपने शो में आगे बढ़ते हैं और करेंगे और भी ढेर सारी बातें। फिलहाल आपसे कहेंगे कि रेडियो की सुई है ना बिल्कुल नहीं घुमानी आपने, ठीक है जी। हमारे पास एक वॉइस मैसेज है, उनको सुनवाते हैं आप सभी के बीच के क्या कहना चाहती हैं ये।
1: गुड मॉर्निंग लीना दी, कैसे हो? मैं आपकी दोस्त अफरोज फातिमा एक शायरी अर्ज करना चाहती हूँ। जिंदगी के हर अंधेरे में तूने ही रोशनी दिखाई है, जिंदगी के हर अंधेरे में तूने ही रोशनी दिखाई है, मेरी खामोशी को समझ ले ऐसी तेरी मेरी परछाई है। यूं तो लाखों लोग मिले इस दुनिया में मगर, यूं तो लाखों लोग मिले इस दुनिया में मगर, दिल ने जिसे अपना कहा वो सिर्फ तेरी मेरी रूहानी यारी है। ये शायरी मेरी बेस्ट फ्रेंड लाइबा के लिए है। मुझे एक सॉन्ग सुनना है, हर एक मुस्कुराहट मुस्कान नहीं होती, नफरत हो या मोहब्बत आसान नहीं होती। साथ में मेरी सिस्टर नजमा दरक्सा रामपुर से शबनम भी, आपका प्रोग्राम सुन रहे बहुत अच्छा लग रहा है दी, थैंक यू।

0: मैं आपकी दोस्त अफरोज फातिमा।
1: थैंक यू अफरोज़, आपने बहुत ही अच्छी शायरी सुनाई है और बहुत ही अच्छा अंदाज है आपका शायरी पेश करने का। फिलहाल अगले मैसेज की बात करूँ तो गुड मॉर्निंग, क्या हाल है आपके? बहुत अच्छे हैं जी, आप बताइए कैसे हैं। और ये हमारे साथ कनेक्ट होते हैं लुधियाना पंजाब से मोहम्मद साद जी, और ये गाना सुनना चाहते हैं, याद याद तेरी बस याद रह जाती है। क्या बात है। सो हम आप इसको ये जो गाना है डेफिनेटली सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ कमर्शियल एड ब्रेक का टाइम हो गया है।
2: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
3: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का थ्रिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
4: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
2: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
1: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 705-07-0552।
3: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
4: क्या आप एक ही जगह पर दुनिया की सैर और जबरदस्त रोमांच का मजा लेना चाहते हैं? तो चले आइए सात अजूबे पार्क। यहाँ शानदार अजूबों के दीदार के साथ आपको मिलेगा तीरंदाजी और मैकेनिकल बुल राइड जैसी एक्टिविटीज का फुल ऑन थ्रिल। तो पूरे परिवार के साथ आ जाइए सात अजूबे पार्क, न्यू मुरादाबाद

क्या बात है जी, बहुत ही शानदार वाला आपने गाना एंजॉय किया है उदित नारायण और अलका याग्निक जी की आवाज में। क्या दिल ने कहा, क्या तुमने सुना। फिलहाल देखिए, आप सभी के पुकार तो हमारे तक आ गई है, यानी कि आप सभी के प्यारे प्यारे जो मैसेज है भैया, आहा क्या बात है, क्या मैसेज की बौछार है। और आज मुरादाबाद के टेम्परेचर यानी कि 30 डिग्री सेल्सियस, और आप मॉर्निंग मसाला शो में आरजे रीना के साथ कनेक्ट है, और समय की बात करूं तो 11:15 हो चुका है। और अभी तब आपका ब्रेकफास्ट नहीं हुआ है तो भैया कर लीजिए, क्योंकि समय भी दिखिए, और क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो गया है। और पहले के टाइम में क्या होता था भैया, 8 बजे तक हर कोई ब्रेकफास्ट कर लेता था, और जो जिन्होंने अभी तक नहीं करा, जो कहते हैं कि भैया सुबह सुबह में भूख नहीं लगती है, लेकिन सुबह सुबह खाना बहुत जरूरी है। अगर आप सुबह खाते हैं तो आप स्वस्थ रहते हैं, और साथ ही साथ सुबह का जो खाना है वो हेल्दी होना चाहिए, ऑयली खाना नहीं होना चाहिए। अगर आप ऑयली खाना खाते हैं तो उतना ही मेहनत करिए, बॉडी से पसीना निकालिए, ताकि आप बीमार ना रहे, स्वस्थ रहेंगे। चलिए फिलहाल मैसेज की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारे साथ या कनेक्ट होते हैं देवभूमि उत्तराखंड से। मैडम जी नमस्कार, हम लोग भी आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं। थैंक यू जी, आप सुन रहे हैं तो। उमा शंकर सिंह और अवंतिका सिंह जी कनेक्ट हैं, और ये गाना सुनना चाहते हैं, जो भी ये गाना सुनना चाहते हैं बिल्कुल हम आपको एक गाना सुनाएंगे। अगले मैसेज की बात करूँ तो चल चमेली बाग में झूला झूलाऊंगा, और ये मोहन स्वरूप जी हमारे साथ कनेक्ट होते हैं बिलासपुर रामपुर से। अगले मैसेज की बात करूँ तो रानी नांगल से रिहाना कनेक्ट होती है, गुड मॉर्निंग पहुंचाती है, वेरी गुड मॉर्निंग जी, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं, आप बताइए कैसे हैं, और ये गाना सुनना चाहते हैं। ना जाने एक निगाह में क्या ले गया कोई, आय हाय दिल ले गया कोई ना कोई तो। अगले मैसेज की बात करूं तो रीना मैम गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग जी, आप कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं जी, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है, मजा आ जाता है, और ये गाना सुनना चाहती हैं पहला प्यार है। थैंक यू, बिल्कुल जी, हम आपको पहला प्यार वाला जो गाना है वो डेफिनेटली सुनवाने की कोशिश करेंगे। अगले मैसेज की बात करूं तो जय माता दी, राधे राधे राधे राधे सर, लाजवाब प्रस्तुति, और ये हमारे साथ कनेक्ट होते हैं अजीत कशाना जी, माया देवी, ऋतिक और आदित्य कशाना, काट रोड लधावली मुरादाबाद से। चलिए फिलहाल गाना सुनते हैं, उसके बाद मैं आप सभी के साथ कनेक्ट हो जाती हूँ।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM. सिरदर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग, प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
2: प्राथमिक विद्यालयों का संवरता स्वरूप, यूपी में शिक्षा का निखरता रूप।
3: ऑपरेशन कायाकल्प ने प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों की बदली तस्वीर।
2: पीएम पोषण से पौष्टिक भोजन, तो स्मार्ट क्लास से मिल रही है आधुनिक शिक्षा की नई रोशनी।
3: शारदा कार्यक्रम से आउट ऑफ स्कूल बच्चों विद्यालय से जुड़े, समर्थ के माध्यम से दिव्यांग बच्चों की समावेशी शिक्षा के द्वार खुले।
2: अब यूपी में हर बच्चा पढ़ता है, हर बच्चे का आगे बढ़ने का सपना पूरा होता है।
3: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।

क्या बात है, वाकई में गाना बहुत ही शानदार है कि बस याद याद याद याद रह जाती है। हर किसी के साथ बिताया हुआ वक्त और हर किसी के साथ एंजॉय किया हुआ वक्त, हमें सिर्फ यादें आती हैं। इसीलिए कहते हैं बड़े बुजुर्ग के साथ बैठना सीखिए, उनसे बात करना सीखिए, और अब जितना उनसे प्यार सने लूट सकते भैया लूट लीजिए, वरना फिर तस्वीरें और यादें ही रह जाती हैं। और वाकई में इस गाने के आप एक एक शब्द सुनेंगे ना तो फील करने वाला ये गाना है। वाकई में आई लव दिस सॉन्ग, बहुत अच्छा है। बेवफा मूवी से आपने ये गाना एंजॉय किया है, बहुत ही खूबसूरत गाना। और अब हम बात करेंगे आप सभी के जो मैसेज आए हैं प्यारे प्यारे। देखिए कोई भी हो, हर किसी के साथ आप घूमते हैं एंजॉय करते हैं तो कोशिश करिए, देखिए आप दोबारा नहीं मिल सकते तो अपने फोन की गैलरी में ना फोटो अपने साथ रखिए और अच्छे से टाइम स्पेंड करिए, तभी आपको कल का जो आने वाला दिन है आप अच्छे से याद कर पाएंगे कि कल यानी कि आज की तारीख हम वहां थे उसके साथ से कितना मजा किया था हमने, कितना एंजॉय किया था। चलिए फिलहाल पहले मैसेज की अगर मैं बात करूं जो और मैसेज हैं हमारे पास। हेलो गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग सर, रीना जी कैसी हैं आप? बहुत अच्छे हैं जी, आई होप कि आप भी बहुत अच्छे होंगे। जिला मुरादाबाद ग्राम बीजना से रिजवान जी कनेक्ट होते हैं। रीना जी एक गाना सुनना चाहते हैं, दिल लेकर गया चोर। अय हय, चोर को पकड़ के लाते हैं सर। और अगले मैसेज की बात करूं तो हेलो मैम गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग सर, और ये हमारे साथ कनेक्ट होते हैं, माय नेम इज प्रिंस, मुरादाबाद से कनेक्ट होते हैं और ये गाना सुनना चाहते हैं ऐसा दीवाना। सोनू निगम की आवाज में ये गाना सुनना चाहते हैं। और समय की बात करूं मॉर्निंग मसाला शो में तो समय हो चुका है 11:32, और भी आप मैसेज कर सकते हैं हमें तो कोई बात नहीं है, अभी आपके पास समय है तो आप मैसेज करते रहिए और अपना गाना एंजॉय करते रहिए। फिलहाल अगले मैसेज की बात करूं तो कश्मीर से मिराज उद्दीन जी कनेक्ट होते हैं और ये गाना सुनना चाहते हैं, तेरे तेरे मेरे बीच में। ओके अगले मैसेज की बात करूं तो गुड मॉर्निंग रीना जी कैसी हैं आप? बहुत अच्छे हैं जी, आप बताइए कैसे हैं। और ये गाना सुनना चाहते हैं, एल्बम गाना सुनना चाहते हैं, दिल ले गई कुड़ी गुजरात दी। अय हई, गुजरात दी कुड़ी दिल ले गई, लेकिन उससे पहले उत्तराखंड जो सर हैं उमा शंकर जी की रिक्वेस्ट पर ये गाना, भैया इस गाने को सुनकर

का लुटेरा कोई आया। कुमार सानू और अलीशा की आवाज़ में आपने बहुत ही शानदार वाला गाना एंजॉय किया श्रोताओ। और ये गाना यानी कि अजय देवगन और काजोल के ऊपर फिल्माया गया, यानी कि 1995 में आई थी मूवी। और चलिए फिलहाल आप सभी के मैसेज की तरफ बढ़ेंगे। मॉर्निंग मसाला शो में आरजे रीना के साथ आप कनेक्टेड, और समय की बात करूँ तो 11:42 हो चुके हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग रीना जी, आपका शो सुन रहे हैं और हमेशा की तरह बहुत ही अच्छा लग रहा है। उम्मीद है कि आप भी बिल्कुल ठीक होंगी और आपका दिन भी बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। बिल्कुल जी, आज आपके शो में मेरी तरफ से एक छोटी सी फरमाइश है। बिल्कुल जी, फरमाइश करिए जो भी आप गाना सुनना चाहते हैं। और इनका कहना है कि अगर आप अपनी आवाज़ में गुनगुना दे तो और क्या ही बात है, बहुत बहुत शुक्रिया होगा आपका मेरी आवाज़ में। लेकिन ये गाना अगर मैंने पूरा सुना होता ना सर, तो बिल्कुल मैं ज़रूर गुनगुनाती। राहत फ़तेह अली खान की आवाज़ में ये गाना सुनना चाहते हैं, डेफिनेटली हम आपको ये गाना सुनवाने वाले हैं। मन झूम झूम तन, ये वाला गाना सुनना चाहते हैं। अगले मैसेज की बात करूँ तो संजू जी हमारे साथ कनेक्ट होती हैं और गाना सुनना चाहती है, जीना हुआ मुश्किल तेरे बिना।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: सिरदर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
2: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
3: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
4: देश के हर गरीब, हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
3: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।

चोर, क्या बात है जी। गोविंदा की ये मूवी आई है, क्या ही बात है। और इनकी वो भी आज अदाए अभिजीत सिंह की आवाज में आपने खूबसूरत गाना एंजॉय किया है। दिल ले गया चोर, पकड़ो पकड़ो, फिलहाल पकड़ लीजिए चोर को, कहाँ गया वो चोर। आरजे रीना के साथ आप कनेक्ट है मॉर्निंग मसाला शो में। और समय की बात करूँ तो 11:51 हो चुके हैं श्रोताओं, और फिलहाल आप सभी की महसूस की बारी। नीलम यादव जी हमारे साथ कनेक्ट होती है। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग जी। जामा मस्जिद वाराणसी नगरी यानी कि गली नंबर 3 से कनेक्ट होती है। और इनके साथ रिहान अली, और ये गाना सुनना चाहती है, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अगले मैसेज की बात करूं तो हाय, आई एम सानू खान जी हमारे साथ कनेक्ट होते हैं फ्रॉम मुरादाबाद से। गुड मॉर्निंग रीना जी, वेरी गुड मॉर्निंग सर, क्या हाल है आपके। बहुत अच्छे हैं जी। हरियाणवी गाना सुनवा दीजिएगा कोई भी। ओके, अगले मैसेज की बात करूं तो हाय गुड मॉर्निंग, ये रामपुर से हमारे साथ शमा कनेक्ट हो। अगले मैसेज की बात करूं तो हेलो मैम, कैसी हैं आप। बहुत अच्छे हैं जी, आप बताइए कैसे हैं। फरजान रामपुर से कनेक्ट होती हैं, और फरजान जी की रिक्वेस्ट है भैया, तुमको देखा तो क्या दिल घायल हो गया। बिल्कुल जी, गाना हम आपको सुनवाएंगे अभी, और आप सभी के जो मैसेज है वो भी शामिल करेंगे, लेकिन फिलहाल और भी जो गाने हैं वो सुनते हैं और फिर कनेक्ट होते हैं मैं आप सभी के साथ।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: क्या आप एक ही जगह पर दुनिया की सैर और जबरदस्त रोमांच का मजा लेना चाहते हैं? तो चले आइए सात अजूबे पार्क। यहाँ शानदार अजूबों के दीदार के साथ आपको मिलेगा तीरंदाजी और मैकेनिकल बुल राइड जैसी एक्टिविटीज का फुल ऑन थ्रिल। तो पूरे परिवार के साथ आ जाइए सात अजूबे पार्क, न्यू मुरादाबाद।
3: न्यू मुरादाबाद, और आप सुन रहे हैं अपने शहर का सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे। गर्ड वाली आफ्टरनून है जी। आफ्टरनून इसलिए क्योंकि 12:01 हो चुके हैं, लेकिन आप सभी के भी मैसेज हैं, तो हमने सोचा कि भैया चाहे कुछ भी हो जाए, आप सभी के मैसेज और गाने छूटने नहीं चाहिए। चाहे थोड़ी देरी भर सही, लेकिन गाने आप सभी के ज़रूर प्ले किए जाएंगे और आप सभी के मैसेज वो भी शामिल किए जाएंगे। समय 12:01 हो चुके हैं, गर्ड वाली आफ्टरनून है और आज की तारीख 12 सितंबर। चलिए देखते हैं भैया किनका मैसेज अभी रह चुके हैं। कोमल शर्मा जी कनेक्ट होती हैं और ये गाना सुनना चाहती है, दिल ने ये पुकारा आजा। बिल्कुल जी, हम आपको ये गाना डेफिनेटली सुनाएंगे। और वेरी गुड मॉर्निंग रीना जी, गुड वाली आफ्टरनून है सर। और ये हमारे साथ कनेक्ट होते हैं रवि सैनी लाइन पर मुरादाबाद से, और ये गाना सुनना चाहते हैं, जीने के है 4 दिन आए हाय, बाकी है बेकार दिन। जीने के सारे दिन हैं, बस अच्छे से इंजॉय करिए और हर किसी के साथ मिलजुल कर रहिए। आपका ये जो सफ़र है वो बहुत ही अच्छा रहेगा, और हर किसी से ना मीठे शब्द बोलिए, कभी ऐसे कड़वे शब्द का यूज़ ना करें जो किसी को हर्ट करे और अच्छा ना लगे, तो उसको भी बुरा लगेगा और साथ ही साथ आपका मूड ऑफ होएगा, वो अलग बात है। लेकिन अपना गुस्सा किसी के ऊपर हमें नहीं दिखाना चाहिए। हर किसी के साथ हैप्पी के साथ रहिए, किसी को पता ना चले कि आपका मूड ऑफ है, बस सामने वाला देखे और कहे कि वाह इसकी ज़िंदगी में बहुत खुशी है, तो मैं क्यों नहीं खुश रह सकता हूँ। तो ऐसी ज़िंदगी इंजॉय करिए और हर किसी के साथ इंजॉय करिए, हर किसी के साथ मिलजुल कर रहिए। जैसे हम 90s 80s के फ़ोटो इंस्टाग्राम पे डाल रहे हैं, तो कोशिश करिए कि वही दौर हम इंजॉय करें। और यहाँ से मैं लेती हूँ जाने की इजाज़त। हम मिलेंगे आफ्टरनून में, मिलने वाले हैं आप सभी को, यानी कि फरमाइश शो में करेंगे ढेर सारी बातें। और अभी से ही अपना गाना भैया सूझ कर लीजिए कि आपने कौन सा गाना सुनना है, और जो गाने होते हैं ना सच में सुनकर बड़ा ही मज़ा आता है, तो इसीलिए

अपना गाना एंजॉय करिए और आरजे रीना के साथ यूं ही कनेक्ट रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे गुनगुनाते रहे जी बाय बाय।

0: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM.
1: मुरादाबाद तैयार हो जाइए हंसी के धमाके के लिए।
2: जैसे ही पापा गए मैंने प्रतिज्ञा ले ली। छोटे बच्चे बहुत फुद्दू होते हैं। मैंने प्रतिज्ञा ले ली, मैंने ऐलान किया पूरे घर में। मैं कहा सुनो ध्यान से सारे, ये जो आदमी अभी गया घर से बाहर, इसकी कमाई का एक दाना तक नहीं खाऊंगा मैं।
1: फैशन फार्मर्स लेकर आ रहे हैं इंदिर साहनी कॉन्सर्ट लाइव इन मुरादाबाद 12 सितंबर रात 8 बजे ड्राइव इन 24 में रेडियो पार्टनर एफएम मुरादाबाद 89.6। तो बनिए इस अनफॉरगेटेबल नाइट का हिस्सा। मोर डिटेल्स के लिए व्हाट्सएप करें 9837896896।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: 25 से 29 सितंबर तक ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में सजेगा यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का महामंच।
2: जापान, रूस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम की साझेदारी से यूपी के कारोबार को मिलेगा वैश्विक बाजार, जिसमें होगी इंटरनेशनल बायर्स के साथ साथ देश के B2B और B2C खरीदारों की भागीदारी। डिफेंस, एरोस्पेस, AI और इलेक्ट्रॉनिक्स पर खास फोकस के साथ 27 से ज्यादा सेक्टर होंगे शामिल।
1: UPI-TSF बेहद खास, पूरी दुनिया अब यूपी के साथ।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।

0: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं सेहत सही लाभ कई। पिछले दो एपिसोड में हमने HPV वैक्सीन को लेकर डर, अफवाह, पीरियड्स और बांझपन की बात की। आज हम एक और जरूरी सवाल पर आते हैं। ठीक है, मान लिया कि टीका जरूरी है, सुरक्षित है और अफवाहों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन आम परिवार क्या करे, कहाँ जाए, कितना खर्च होगा, क्या सरकारी अस्पताल में मिलेगा, क्या पहले रजिस्ट्रेशन होगा और क्या सिर्फ बेटी का टीका ही काफी है या फिर घर की बड़ी महिलाओं को भी कुछ करना चाहिए। इस सारे सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ फिर से है टीकन देवी और सुनीता। सुनीता, अब आपका मन कैसा है?
1: अब पहले जैसा डर नहीं है, पर अब चिंता दूरी है। प्रक्रिया की, कहाँ जाए, किस से पूछे, कागज क्या लेंगे, भीड़ होगी या नहीं, लौटना ना पड़ जाए, हमारे जैसे परिवारों में यही व्यवहारिक बातें भी बड़ा फर्क डालती हैं।
2: बिल्कुल, और सही स्वास्थ्य सेवा तभी काम आती है जब वह लोगों की पहुंच के अंदर हो, समझ में आए और लोग बिना शर्म बिना डरे सेवाओं का लाभ उठा सकें। इसलिए आज हम सिर्फ क्या नहीं कैसे की बात करेंगे।
0: तो सबसे पहले सीधी सूचना, उपलब्ध सरकारी सामग्री में साफ बताया गया है कि HPV वैक्सीन 14 वर्ष की लड़कियों के लिए नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर निशुल्क उपलब्ध है, यानी पैसा नहीं होना सही इलाज के लिए वादा नहीं है, सुरक्षा जेब की मोहताज नहीं है, यही सरकार द्वारा निशुल्क सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं की बुनियादी सोच है।
1: यह बात मेरे दिल को छू गई लगी, क्योंकि सच कहूं अगर यह बहुत महंगा होता तो शायद हम टाल देते, पर हम जैसे घरों में बीमारी से ज्यादा कभी कभी इलाज का खर्चा डराता है।
2: और यही कारण होता है कि मुफ्त उपलब्धता कोई छोटी बात नहीं, ये बराबरी की बात है। इसका मतलब ये है कि रोकथाम सिर्फ शहरों के बड़े निजी अस्पताल या पैसे वालों तक सीमित ना रहे, गाँव कस्बे कम आय वाले परिवार सबकी बेटियां सुरक्षा पाएं।
0: लेकिन सिर्फ मुफ्त कहना काफी नहीं, लोगों को रास्ता भी साफ चाहिए। तो टीकन भाभी, कोई परिवार क्या क्या कर सकता है?
2: पहला रास्ता, अपने नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, प्राथमिकता स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला अस्पताल या सरकारी मेडिकल कॉलेज में जानकारी लें। दूसरा, यदि स्कूल से सूचना आए तो स्कूल से पूछें कि कैंप कहां और कब लगेगा। तीसरा, अपने इलाके की आशा, ANM या स्वास्थ्य कार्यकर्ता से बात करें। चौथी बात, जहां लागू हो UWIN डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण और अपॉइंटमेंट की जानकारी ली जा सकती है। पांचवा, यदि कोई बात समझ ना आए पूछने में शर्म ना करें, स्वास्थ्य सेवा सवाल पूछने वालों के लिए ही है।
1: UWIN का नाम तो सुना है, पर सबको मोबाइल चलाना थोड़ी आता है।
2: बिल्कुल सही, इसीलिए डिजिटल सुविधा एक रास्ता है, एकमात्र रास्ता नहीं। अगर मोबाइल इंटरनेट OTP ये सब मुश्किल लगे तो सीधे स्वास्थ्य केंद्र जाओ या आशा से मदद लो, तकनीकी मदद के लिए छाटने के लिए नहीं।
0: यह बिंदु बहुत अहम है, भारत जैसे समाज में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स उपयोगी हैं, लेकिन उनमें वर्ग, लिंग और पहुंच की असमानताएं भी होती हैं। इसलिए सेवा का ऑफलाइन रास्ता हमेशा मजबूत रहना चाहिए।
1: हाँ, हमारे यहाँ तो कई घरों में मोबाइल भी पति के पास रहता है, ऊपर से ऐप डाउनलोड, नाम लिखना, अंग्रेजी पढ़ना सब आसान नहीं।
2: तो फिर सीधा रास्ता अपनाओ, स्वास्थ्य केंद्र जाओ, यही तो सरकारी व्यवस्था का मतलब है, जनता को दरवाजे पर सुविधा मिले।
0: जरा दृश्य बता दें, सुनीता, टीकन भाभी और मैं आपका दोस्त सरकारी केंद्र पहुंच गए हैं। सुनीता के मन में हिचक है और उन्हें लग रहा है लोग क्या कहेंगे, क्या पूछेंगे, कहीं डांट ना दें। लेकिन कई परिवारों को भी यही स्थिति होती है, तो अब आप जरा अपना अनुभव श्रोताओं के साथ साक्षात करें।
1: मैं तो सच कहूं, पहली बार गई तो लगा कोई कहेगा इतनी देर से क्यों आई या पहले जानकारी क्यों नहीं ली, पर जब वहां बैठी ANM बहन ने ठीक से समझाया तो आधा डर वहीं उतर गया।
2: यही तो भरोसा बनता है, स्वास्थ्य व्यवस्था का चेहरा सिर्फ इमारत नहीं, वहाँ बैठा इंसान भी होता है, अगर वह सम्मान से बात करें तो सेवा का असर दो गुना हो जाता है।
0: और यही एक भी सीख है। सार्वजनिक स्वास्थ्य सिर्फ इंजेक्शन या दवा नहीं, संवाद, सम्मान और भरोसा भी है, खासकर महिलाओं और किशोरियों के मामले में।
1: एक और बात समझ में आई, हम बेटी के टीके के लिए गए थे पर वहाँ महिलाओं की जांच की भी बात हुई। पहले तो लगा यह अलग मुद्दा है, फिर समझ आया कि नहीं, यह जुड़ा हुआ है।
2: बिल्कुल जुड़ा हुआ है। अधिकार संदेश साफ कहते हैं, सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम में दो चीजें महत्वपूर्ण हैं, कम उम्र की लड़कियों के लिए समय पर HPV वैक्सीन और महिलाओं के लिए नियमित स्क्रीनिंग। इसका मतलब ये नहीं कि टीका सब कुछ अकेले कर देगा, इसका मतलब ये है कि सुरक्षा की एक श्रृंखला है। पहला कदम टीका, बाद के वर्षों में जांच और समय पर पहचान।
0: और उपलब्ध सरकारी संचार में यह भी कहा गया है कि महिलाओं के लिए सर्वाइकल जांच नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में निशुल्क उपलब्ध हो सकती है, तथा समय पर पहचान जीवन रक्षक हो सकती है। यानी घर की बड़ी महिलाओं को यह नहीं सोचना चाहिए कि यह तो लड़कियों की बात है, इससे क्या लेना।
1: यही बात मेरे मन को लगी, मैं बेटी के साथ गई थी पर वापस आते वक्त लगा कि मुझे खुद भी अपनी जांच के बारे में पूछना चाहिए। हम औरतें अक्सर यही सोचते हैं, अभी क्या जरूरत है, सब कुछ लक्षण होने तक देखेंगे, पर जब तक देर हो जाए तो।
2: इसीलिए जागरूकता जरूरी है, जो बीमारी रोकी जा सकती है उसे चुपी और देर के भरोसे ना छोड़ा जा सके।
0: अब बात करते हैं उस घरेलू तनाव की जो अक्सर फैसले के रास्ते में आता है। मान लीजिए माँ तैयार है पर दादी कहती हैं हमारे जमाने में यह सब नहीं था। पति कहता है देख लो मुझे नहीं पता। पड़ोसन कहती है सरकारी चीज है संभल कर जरा। ऐसे में क्या करें।
1: यही तो हुआ मेरे साथ, एक तरफ बेटी का भविष्य, दूसरी तरफ घर की अलग अलग आवाजें। फिर लगा कि अगर मैं हर किसी को खुश करने लगूंगी तो शायद सही फैसला कभी नहीं ले पाऊंगी।
2: इसीलिए निर्णय की दूरी साफ रखो, घर की राय सुनो पर अंतिम आधार प्रमाण हो। जो बात डॉक्टर, मंत्रालय, वैज्ञानिक, जागरूकता सामग्री और विश्वसनीय स्रोत कह रहे हैं वही प्राथमिक होनी चाहिए। परिवार का डर सम्मान के लायक है पर झूठ का आधार नहीं।
1: और अब मुझे यह भी लगता है कि एक माँ को सिर्फ भावुक कहकर किनारे नहीं कर देना चाहिए। वह सवाल पूछ रही है, इसका मतलब वह जिम्मेदार है।
2: सही कहा, सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों में माताओं की भूमिका केंद्रीय होती है, लेकिन उन्हें जानकारी और सहारा दोनों चाहिए, सिर्फ निर्देश नहीं।
0: यह बात नीति निर्माताओं, स्वास्थ्य कर्मियों और संचार कार्यकर्ताओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। यदि अभियान में सम्मानजनक संवाद नहीं होगा तो अफवाह खाली जगह भर देगी। यदि परिवार को सिर्फ आदेश मिलेगा समझ नहीं तो भरोसा नहीं बनेगा। इसलिए ऐसे सेल के जैसे कार्यक्रम जहाँ सवाल छोटे नहीं माने जाते।
1: टीकन भाभी, जब मैं केंद्र गई थी वहाँ किसी ने कहा कि पहले रजिस्टर हो जाओ फिर तारीख मिलेगा, किसी ने यू विन कहा, मुझे लगा फिर वही मुश्किल।
2: पर तुमने पूछा ना?
1: हाँ पूछा, तब समझ आया कि विकल्प है, अगर ऑनलाइन मदद मिले तो ठीक है, नहीं तो केंद्र पर ही जानकारी मिल सकती है। पहले मैं पूछने से डरती थी, अब नहीं।
2: यही नागरिक समझ है, मुझे नहीं आता कह देना हार नहीं है, मुझे समझाइए कहना अधिकार है।
0: यह बहुत महत्वपूर्ण बात कही आपने। श्रोताओं ध्यान से सुन लीजिए, स्वास्थ्य सेवाओं में जानकारी मांगना झिझक की नहीं अधिकार का विषय है, खासकर उन समुदायों के लिए जो अक्सर औपचारिक संस्थानों में से दूरी महसूस करते हैं।
1: और एक बात, जब मैंने सुना कि यह लड़कियों के लिए मुफ्त है तो मन में एक राहत आई, पर साथ ही एक दर्द भी है। कितनी बार महिलाएं और लड़कियां ऐसे चीजों से सिर्फ इसलिए वंचित रह जाती हैं कि उन्हें पता ही नहीं होता कि सुविधा उनके लिए है।
2: यही सूचना असमानता है, सुविधा होती है पर खबर पहुंचती नहीं, या खबर पहुंचती है तो उसके साथ अफवाहें भी पहुंच जाती हैं। इसीलिए जानकारी को सिर्फ जानकारी देना काफी नहीं, उसे समझ में आने वाली भाषा में भरोसे वाले माध्यम से पहुंचाना भी जरूरी है।
0: और यही कारण है कि सामुदायिक रेडियो, स्थानीय स्वास्थ्य संवाद, आशा कार्यकर्ता, स्कूल, महिला समूह, ये सब इतनी बड़ी भूमिका निभाते हैं। एक दिल्ली वाला संदेश तभी असर डाल करता है जब वह गांव की बोली, कस्बे की चिंता और घर की रसोई तक पहुंचे।
1: हम जैसे घरों में तो रेडियो की बात मोबाइल से ज्यादा भरोसेमंद लगती है, क्योंकि यहाँ कोई हमारे ही जैसे लोगों की भाषा में बात करता है।
2: हाँ, क्योंकि ये उपदेश नहीं, साथ चलने वाली बातें होती हैं।
0: अब एक उपयोगी सूची बना लेते हैं। यदि आपकी बेटी 14 वर्ष की है तो आप क्या करें? पहला, निकटतम सरकारी स्वास्थ्य केंद्र, PHC, CHC, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, जिला अस्पताल या स्कूल कैंप की जानकारी लें। दूसरा, आशा, ANM या डॉक्टर से पूछें कि HPV वैक्सीन कहां और कब उपलब्ध है। तीसरा, यदि उपलब्ध हो तो UWIN पर पंजीकरण की जानकारी लें। चौथा, किसी भी फॉरवर्ड, वीडियो या बिना स्रोत के दावे की अंतिम सच को ना माने। पांचवा, बेटी से खुलकर बात करें, उसे बताएं कि यह सुरक्षा का कदम है। छठा, घर की 30 वर्ष से ऊपर की महिलाओं के लिए सर्वाइकल स्क्रीनिंग के बारे में भी पूछें। सातवा, किसी भी झिझक या भ्रम को लेकर वापस सवाल पूछने से ना हिचकें।
1: यही सूची में लिख लेना चाहती हूँ, क्योंकि बातों में बहुत कुछ भूल जाती हूँ, पर लिखी चीजें साथ रहती हैं।
2: लिखो और चाहो तो दीवार पर चिपका दो। जैसे राशन की सूची लगती है, वैसे ही सेहत की सूची भी लगे।
0: बहुत सुंदर बात कही, क्योंकि स्वास्थ्य भी घरेलू योजना का हिस्सा होना चाहिए, कोई आकस्मिक घटना नहीं।
1: ईकन, अब मैं बेटी के टीके लेकर तैयार हूँ, पर एक अजीब सी बात है, पहले जो डर था अब उसी की जिम्मेदारी आ गई है। लगता है अब मुझे औरों को भी बताना चाहिए।
2: यही तो सार्वजनिक भलाई है, जब एक घर समझता है तो अगला घर थोड़ा आसान हो जाता है। तुम अपनी पड़ोसन से कह सकती हो, मैंने जाकर पूछा, मुझे ये जानकारी मिली। ये उपदेश नहीं, अनुभव साझा करना है।
1: मैं अपनी जानी को भी कहूँगी कि अपनी जांच के बारे में पूछे। वे हमेशा कहती हैं, हमारे लिए कौन सा समय है। अब मैं कहूँगी, समय नहीं बताना, निकालना पड़ता है।
2: सही, और ये सिर्फ बीमारी से लड़ने वाली बात नहीं, अपने जीवन की कीमती पहचान की बात है।
0: यही बुनियादी संदेश है, महिलाओं की सेहत फुर्सत का विषय नहीं है, बेटियों की रोकथाम और माताओं की जांच दोनों परिवार की मुख्य जिम्मेदारी है, अतिरिक्त बोझ नहीं।
2: और मैं यही कहूँगी, सरकारी दरवाजा तभी अपना लगता है जब हम उस तक जाने की हिम्मत करें। डर, संकोच और क्या कहेंगे को पीछे छोड़ो, पूछो, समझो, फिर फैसला करो।
1: और मेरी तरफ से, मैं अब सिर्फ अपनी बेटी को टीका दिलवाने नहीं जाऊंगी, मैं अपने घर की महिलाओं की जांच की बात भी उठाऊंगी, क्योंकि सुरक्षा आधी अधूरी नहीं होनी चाहिए।
0: बहुत सही, यही सेहत सही लाभ कई, एक सवाल से शुरू होकर पूरे परिवार की समझ तक पहुंचना। यदि आपकी बेटी 14 वर्ष है, अपने नजदीक सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में जानकारी लें, और यदि आपके घर में 30 वर्ष से अधिक आयु की महिलाएं हैं तो सर्वाइकल स्क्रीनिंग के बारे में अवश्य पूछें। अगले कार्यक्रम तक याद रखिए, सही जानकारी, समय पर कदम, सम्मानजनक संवाद, यही असली सुरक्षा है। अंत से पहले आज की मुख्य बातें। एक, 14 वर्ष की लड़कियों के लिए HPV वैक्सीन नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर निशुल्क उपलब्ध है। दूसरा, जहां सुविधा हो UWIN पर पंजीकृत और अपॉइंटमेंट की जानकारी ली जा सकती है। जहां ना हो सीधे स्वास्थ्य केंद्र या आशा ANM से संपर्क करें। तीन, डिजिटल सुविधा मदद के लिए है, बाधा के लिए नहीं। चौथा, सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम में किशोरियों का टीकाकरण और वयस्क महिलाओं की नियमित स्क्रीनिंग दोनों महत्वपूर्ण हैं। पांचवा, परिवार की राय सुनिए, पर अंतिम निर्णय प्रमाणित जानकारी और डॉक्टर की सलाह पर टिकाइए। छठा, सवाल पूछना शर्म नहीं, अधिकार है। सातवा, जो सुविधा आपके लिए बनी है उसके बारे में जानकारी लेना। सातवा, जो सुविधाएं आपके लिए बनी है उसके बारे में जानकारी लेना, यह आपकी ताकत है। और साथियों, यह एक बात और जोड़ना जरूरी है, जब हम कहते हैं कि सेवा सरकारी केंद्र पर उपलब्ध है तो उसका मतलब सिर्फ जाइए और इंजेक्शन लगवा लीजिए नहीं होता है, इसका मतलब भी है कि नागरिक को सेवा के बारे में स्पष्ट सूचना मिले, सम्मान मिले और उसके सवालों को हल्के में ना लिया जाए। सार्वजनिक स्वास्थ्य तभी मजबूत होगा जब स्वास्थ्य जवाबदेह हो और लोग उस जुड़ने का भरोसा रख। सार्वजनिक स्वास्थ्य तभी मजबूत होगा जब व्यवस्था जवाबदेही हो और लोग उससे जुड़ने का भरोसा रखें।
2: और जवाबदेही तो दो तरफ से होती है। व्यवस्था को समझना चाहिए और लोगों को पूछना चाहिए। कई बार हम बिना पूछे ही मान लेते हैं कि यह हमारे बस की बात नहीं, यही दूरी कम करनी है।
1: अब मुझे लगा कि यह सिर्फ मेरी बेटी का मुद्दा नहीं है, हमारे पूरे मोहल्ले का मुद्दा है। क्योंकि अगर एक घर जानकारी से जुड़ा है और दूसरा अफवाह से, तो फर्क साफ दिखेगा।
2: बिल्कुल, और यही वजह है कि जागरूकता अभियान सिर्फ पोस्टर लगाकर पूरे नहीं होते, उन्हें बातचीत बनानी पड़ती है। आंगन में, स्कूल में, महिला समूह में, रेडियो पर, तभी देश जीत रहता है।
0: यह बिंदु विशेष रूप से उन क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण है जहां भाषा, डिजिटल पहुंच और स्वास्थ्य संस्थानों के साथ दूरी जैसे चुनौतियां हों। हमें यह नहीं मान लेना चाहिए कि सूचना जारी हो गई इसलिए काम पूरा हो गया। नहीं, इसका असली काम तब पूरा होगा जब घर की महिलाएं कहें, मुझे समझ में आ गया है।
1: सही कहा, पहले मुझे भी सिर्फ इतना पता था कि कोई नया टीका है। अब मुझे पता है क्या है, कहाँ मिलेगा, किससे पूछना है और अपने लिए क्या पूछना है।
2: यही बदलाव है, अधूरी खबर से पूरी समझ तक।
0: एक और अंतिम व्यावहारिक बात, यदि किसी कारण से पहली बार केंद्र जाकर पूरी जानकारी ना मिले, या भीड़ हो या कोई स्टाफ उपलब्ध ना हो, तो हार मत मानिए, दोबारा जाइए, आशा से पूछिए, उच्चतर केंद्र की जानकारी लीजिए। सार्वजनिक सुविधा का उपयोग करना धैर्य भी मांगता है, लेकिन उसके बिना बराबरी नहीं आती।
1: अब मैं यह भी समझ गई हूँ कि एक बार लौट आने का मतलब छोड़ देना नहीं होना चाहिए।
2: बिल्कुल नहीं, सेहत का काम धक्का देकर नहीं, ठहर कर करना पड़ता है।
0: और शायद यही इस पूरे सिलसिले का सबसे बड़ी सीख है, सुरक्षा एक घटना नहीं, प्रक्रिया है। जानकारी, सवाल, सेवा, टीका, जांच और सामूहिक जिम्मेदारी, इन्हीं से भविष्य सुरक्षित होता है। हम सब मिलकर आज ये शपथ लेते हैं कि हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे,
2: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है।
1: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे।
0: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके।
2: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।
1: संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे।
0: महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
2: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा, तभी भारत समृद्ध बनेगा।
0: सेहत सही तो लाभ कई।
1: सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6। अब मिलेंगे आपको अगले एपिसोड में।

0: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
1: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
2: नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 पर। मैं हूं आपके साथ आपके दोस्त RJ खुशी। आज तो हमारे गांव में कुछ अलग ही माहौल है। सुबह सुबह इतनी भीड़ और ये लाउड स्पीकर आवाज, सभी लोग ध्यान दीजिए। आज प्राथमिकता स्वास्थ्य केंद्र में HPV टीकाकरण शिविर है। अरे भाई, ये HPV क्या होता है और इतनी भीड़ क्यों लगी है? अरे सेहतिया सिंह जी, जरा इधर आइए, आप तो हमेशा सही जानकारी देते हैं, जरा बताइएगा ये क्या चल रहा है?
3: RJ साहिबा, आज बड़ा अच्छा दिन है गांव के लिए और भी हमारी बेटियों के लिए भी। आज जो कैंप लगा है ना, ये कोई साधारण टीकाकरण कैंप नहीं है, ये आगे चलकर एक बहुत बड़ी बीमारी से बचाने वाला टीका है। पर HPV के बारे में तो विस्तार से जानने के लिए आपको पहले कहानी बताता हूँ। यहाँ एक गांव था, गांव का नाम था बड़की टोला। सुबह का समय था, सूरज अभी पूरी तरीके से निकला भी नहीं था, लेकिन सावित्री देवी का दिन कब का शुरू हो चुका था। पहले चूल्हा जलाना, फिर पानी भरना, बच्चों को तैयार करना और उसके बाद खेत का काम भी अलग। सावित्री देवी एक 12 साल की बेटी थी, जो हम कह सकते हैं गुड़िया, गांव में गुड़िया कहा जाता। पढ़ने में तेज लेकिन थोड़ी शर्म। सावित्री चाहती थी कि उसकी बेटी बहुत कुछ बन जाए बड़े होकर, जिससे उसकी जिंदगी और बेहतर हो जाए। एक दिन गांव में आशा दीदी आई और उन्होंने बताया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में HPV टीकाकरण शिविर लगने वाला है। उन्होंने समझाया कि टीका लड़कियों को आगे चलकर एक खतरनाक बीमारी सर्वाइकल कैंसर से बचाता है। सावित्री देवी पहले तो थोड़ी हिचकिचाई, फिर उन्होंने अपने पति रामपाल से बात। रामपाल पहले तो बोले, अरे हमारी बेटिया तो बिल्कुल ठीक है ना, तो क्या जरूरत पड़ी है इस टीके की? लेकिन आशा दीदी ने धैर्य से समझाया, भैया यही सही समय है, यह टीका बीमारी होने के बाद नहीं पहले काम करता है, अगर अभी लगवा दिया तो आगे चलकर बड़ी बीमारी से बचाव हो सकता है। रामपाल कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने आसपास के लोगों से भी पूछा, लेकिन किसी के पास पूरी जानकारी नहीं थी, बस अफवाहें थी जो सुनी सुनाई। तभी एक दिन उन्होंने रेडियो पर एक कार्यक्रम सुना, जिसमें मेरे जैसे ही एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता समझा रहे थे कि टीका सुरक्षित है और क्यों जरूरी है। उस दिन के बाद रामलाल का नजरिया ही बदल गया। उन्होंने कहा, अगर एक छोटा सा टीका मेरी बेटी की जिंदगी को बीमारियों से बचा सकता है तो हम पीछे क्यों रहे। अगले ही दिन सावित्री और रामपाल अपनी बेटी गुड़िया को लेकर कैंप पहुंचे। वहां कई और लड़कियां भी आई हुई थी। शुरुआत में गुड़िया थोड़ी सी डरी हुई थी, लेकिन जब उसने देखा कि बाकी लड़कियां तो बिल्कुल हिम्मत से टीका लगवा रही हैं, उसने भी मुस्कुराते हुए कहा, अम्मा मैं भी लगवाऊंगी। टीका लगने के बाद बस थोड़ा सा दर्द हुआ, लेकिन दो दिन में सब ठीक हो गया। धीरे धीरे गांव में और भी लोग इससे प्रेरित हुए। सावित्री देवी अब खुद दूसरी महिलाओं को समझाने लगी। रामपाल भी पंचायत में इस विषय पर बात करने लगे। कुछ महीने बाद एक बदलाव साफ दिखने लगा, ज्यादा लड़कियां टीका लगवा रही थी, लोग अफवाहों की जगह सही जानकारी पर भरोसा करने लगे, और सबसे बड़ी बात, अब बेटियों की सेहत को लेकर गंभीरता बढ़ गई। सावित्री देवी अक्सर कहती थी, पहले हम सोचते थे ये सब शहरों की बातें हैं, लेकिन अब समझ आया ये हमारी बेटियों की भविष्य की बात है। ये कहानी सिर्फ सावित्री और गुड़िया की ही नहीं है, ये हर परिवार की कहानी हो सकती है जो सही समय पर सही फैसला ले।
2: अच्छा, लेकिन ये HPV नाम तो बड़ा भारी लगता है, जरा खुलकर विस्तार में बताइए।
3: चलिए आपको अच्छे से ही बता देता हूँ। HPV का मतलब है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। नाम बड़ा है पर बात आसान है। ये एक ऐसा वायरस है जो अगर शरीर में आ जाए और समय रहते हुए रोका न जाए तो महिलाओं के अंदर आगे चलकर सर्वाइकल कैंसर यानी गर्भाशय में मुंह का कैंसर पैदा कर सकता है।
2: मतलब ये सीधे सीधे जानलेवा बीमारी तक ले जा सकता है?
3: हाँ जी बिल्कुल, और सबसे खतरनाक बात पता है क्या है आर्य साहिबा?
2: जी सेहतिया जी, अब तो आप थोड़ा डरा ही रहे हैं।
3: डराने के लिए नहीं, समझाने के लिए कह रहा हूँ। इस बीमारी की सबसे बड़ी चालाकी ये है कि शुरू शुरू में इसका कोई लक्षण नहीं होता, ना कोई दर्द, ना बुखार, ना कोई ऐसी परेशानी जिससे लगे कि अंदर कुछ गड़बड़ चल रही है।
2: मतलब इंसान को पता ही नहीं चलता?
3: बिल्कुल, और यही वजह है कि जब तक लोगों को इसका पता चलता है तब तक कई बार बहुत देर हो चुकी होती है, बीमारी काफी आगे बढ़ चुकी होती है।
2: अरे बाप रे बाप, ये तो बहुत खतरनाक बात है। तो फिर इससे बचने का कोई तरीका तो होगा ना?
3: यही अच्छी खबर है, जहाँ एक तरफ इसका इलाज मुश्किल हो सकता है, वहीं दूसरी तरफ इसका बचाव बहुत आसान है।
2: सच में? कैसे?
3: HPV वैक्सीन से, एक छोटा सा टीका जो आगे चलकर आपको बड़ी बीमारी से बचा सकता है।
2: जरा इसे और आसान करके समझाइए ना, ताकि हमारे गाँव के लोग भी अच्छे से समझ सके।
3: चलो आप कहते तो समझा देता हूँ। ठीक, एक उदाहरण से समझिए। जब हम खेत में फसल लगाते हैं तो क्या करते हैं?
2: चारों तरफ बाड़ लगाते हैं ताकि जानवर अंदर ना घुसे।
3: बिल्कुल सही कहा, ताकि फसल सुरक्षित रहे। ठीक वैसे ही ये वैक्सीन हमारे शरीर के लिए सुरक्षा की बाड़ की तरह काम करता है। ये वायरस को अंदर आकर नुकसान करने से रोकता है।
2: मतलब ये बीमारी को शुरू होने से पहले ही रोक देता है।
3: हाँ बिल्कुल सही समझा आपने, यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। ये कोई इलाज नहीं, यही बीमारी को जाने के बाद काम आए। ये तो पहले से ही सुरक्षा देता है ताकि बीमारी हो ही ना पाए।
2: तो फिर ये टीका किसे लगवाना चाहिए, कोई खास उम्र होती है?
3: हाँ, इसकी सबसे ज्यादा फायदा तो तब होता है जब इसे सही उम्र में लगवाया जाए। आमतौर पर 9 से 14 वर्ष की लड़कियों के लिए ये टीका लगवाना सबसे अच्छा माना जाता है।
2: और अगर कोई इससे बड़ी उम्र का हो?
3: तो भी कोई चिंता की बात तो नहीं है, ऐसे में डॉक्टर से सलाह लेकर बाद में भी ये टीका लगवाया जा सकता है, लेकिन जितनी जल्दी लग जाए उतना बेहतर है।
2: सेहतिया जी, एक बात मेरे मन में आ रही है, ये तो लड़कियों का टीका है, तो इसमें पुरुषों की क्या भूमिका होती है?
3: यही तो सबसे अहम बात है, महिलाओं की सेहत सिर्फ महिलाओं की जिम्मेदारी नहीं, इसमें पूरे परिवार की, खासकर पुरुषों की उतनी ही जिम्मेदारी होती है।
2: जरा विस्तार से बताइएगा।
3: जरूर, देखिए, एक पिता की जिम्मेदारी है कि वे अपनी बेटी को समय पर सही जानकारी दे और उसका टीकाकरण करवाए। एक भाई का कर्तव्य है कि वो अपनी बहन को समझाए, उसे डर या अफवाहों से दूर रखे। और एक पति की फर्ज है कि वह अपनी पत्नी की सेहत का ख्याल रखे, उसे हर जरूरी सुविधाओं और सहयोग दे।
2: सही कहा आपने।
3: अगर घर का पुरुष ही पीछे हट जाएगा या ध्यान नहीं देगा, आधी लड़ाई वह हारेगी। इसलिए पुरुषों की भागीदारी बहुत जरूरी है।
2: मतलब ये सिर्फ महिला स्वास्थ्य का मामला नहीं है?
3: बिल्कुल सही आरजे साहिबा, ये पूरे परिवार का मामला है। जब एक महिला स्वस्थ रहती है, पूरा परिवार स्वस्थ रहता है, और जब परिवार स्वस्थ होता है तभी गांव मजबूत बनता है।
2: लेकिन सेहतिया जी, एक बात है, गांव में तो तरह तरह की बातें चलती रहती हैं। कोई कहता है कि ये टीका लगवाने से लड़कियां कमजोर हो जाती हैं, और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि आगे चलकर माँ बनने में दिक्कत होती है।
3: देखिए आरजे साहिबा, यही सबसे बड़ी समस्या है, अधूरी और गलत जानकारी। ये सब जो बातें आप सुन रही हैं ना, ये सच नहीं है, बल्कि क्या है, अफवाहें।
2: मतलब इसमें कोई सच्चाई नहीं है?
3: बिल्कुल भी नहीं, मैं आपको एक एक करके चलिए साफ साफ करके बता देता हूँ। पहली बात, लोग कहते हैं कि टीका लगवाने से कमजोरी आ जाती है, जबकि सच्चाई तो यह है कि टीका लगवाने के बाद बस हल्का सा बुखार आता है या हाथ में थोड़ा सा दर्द हो सकता है, क्योंकि मात्र 1 से 2 दिन में आप अपने आप ठीक हो जाएंगे, इसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है।
2: अच्छा, और जो लोग कहते हैं कि इससे आगे चलकर बच्चा पैदा करने में दिक्कत होती है?
3: यह भी पूरी तरीके से गलत। इस वैक्सीन में मां बनने की क्षमता से कोई लेना देना ही नहीं है, ये सिर्फ एक वायरस से बचाने के लिए होता है और कुछ भी नहीं।
2: और एक बात जो अक्सर लोग कहते हैं, अगर लड़की बिल्कुल ठीक है तो टीका लगवाने की क्या जरूरत है?
3: यही तो सबसे बड़ी गलतफहमी है। देखिए, ये टीका बीमारी होने के बाद नहीं बल्कि बीमारी होने से पहले लगवाना है, और तभी ये काम करता है। अगर लड़की अभी स्वस्थ है तो वही सबसे सही समय है टीका लगवाने का। जैसे हम बारिश आने से पहले छाता रखते हैं ना, वैसे ये पहले सुरक्षा देता है। जरा सोचिए आरजे साहिबा, अगर एक छोटा सा टीका आपकी बेटी को एक बड़ी और जानलेवा बीमारी से बचा सकता है, तो क्या हमें इंतजार करना चाहिए?
2: बिल्कुल नहीं, जब बचाव इतना आसान है तो देर क्यों करें? सेहतिया जी, एक बात बताइए, क्या हमारे गांव में भी लोग इसे लगवा रहे हैं?
3: हाँ, धीरे धीरे लोग समझने तो लगे हैं और आगे भी आ रहे हैं, लेकिन अभी भी कई लोग डर और अफवाहों के कारण पीछे हटे जाते हैं। यही वजह है कि आज जैसे कैंप बहुत जरूरी है, ताकि सही जानकारी हर घर तक पहुंचे। जहां जानकारी नहीं पहुंचती, वहां ऐसी कुछ रानी जैसी केस हो जाते हैं। उसी इलाके के पास एक गांव था, छोटा पुरवा, यही रहती थी कमला देवी और उनकी बेटी रानी। रानी भी गुड़िया की उम्र की ही थी, हसमुख, चंचल और पढ़ाई में बहुत अच्छी। जब गांव में HPV टीकाकरण की बात आई तो आशा दीदी यहां भी आई थी और लोगों को समझाने लगी। उन्होंने कमला देवी से भी कहा, बहन, अपनी बेटी को टीका जरूर लगवा देना। लेकिन कमला देवी के घर का माहौल थोड़ा अलग था, उनके पति महेंद्र इन बातों पर विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने साफ मना कर दिया, ये सब नई नई बातें हैं, हमारे जमाने में कौन सा टीका लगता था, और हम तो ठीक हैं। कमला देवी भी डर गई। गांव में कुछ लोगों ने और बातें फैलाई, इससे लड़की कमजोर हो जाएगी, आगे चलकर बच्चा नहीं होगा। इन अफवाहों के बीच सच की आवाज वहीं दब गई। रानी ने एक दिन अपनी माँ से पूछा, अम्मा, मेरी सहेली गुड़िया टीका लगवाने गई थी, मैं क्यों नहीं जा सकती? कमला देवी के पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने बस इतना कहा, बेटी तुम्हारे बाबूजी मना कर रहे हैं। समय बीतता गया, बात वहीं रह गई। सालों बाद जब रानी बड़ी हुई, शादी हुई और एक दिन उसे बार बार कमजोरी असहजता महसूस होने लगी। शुरू में सबसे इसे सामान्य समझा, लेकिन जब हालत बिगड़ने लगी तो शहर के अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने जांच के बाद बताया उसने पूरे परिवार को हिला दिया। यह सर्वाइकल कैंसर का मामला है और अब यह काफी आगे बढ़ चुका है। कमला देवी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें वही दिन याद आया जब आशा दीदी ने समझाया था, जब रानी ने खुद पूछा था। महेंद्र भी चुप हो गए, अपनी आंखों में पछतावा सिर्फ साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने धीमे से पूछा, वो अगर उस दिन हमने टीका लगवा दिया होता तो शायद आज ये दिन देखना ना पड़ता। इलाज शुरू हुआ लेकिन अब रास्ता मुश्किल था। बार बार अस्पताल के चक्कर काटना, बढ़ता खर्च, परिवार की चिंता, दर्द, रानी की बीमारियों से सिर्फ उसकी जिंदगी नहीं पूरे परिवार को झिंझोड़ दिया था। आज कमला देवी हर घर जाकर एक ही बात कहती है, अफवाहों पर मत जाओ, हमने अपनी गलती से बहुत बड़ा नुकसान देखा है, तुम ऐसा कभी मत करना। उनकी आंखों में आंसू होते हैं लेकिन आवाज में सिर्फ एक विनती, अपनी बेटियों को बचा लो समय रहते।
2: तो जो लोग अभी हमें सुन रहे हैं उन्हें क्या करना चाहिए?
3: इन्हें इंतजार नहीं करना चाहिए, आज ही अपनी नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं, आशा दीदी से बात करें और अपनी बेटियों का नाम टीकाकरण के लिए दर्ज करवाएं। और सबसे जरूरी बात, जो सही जानकारी आपने आज सुनी है उसे ही दूसरों तक पहुंचाएं, अफवाहों को नहीं सच्चाई फैलाएं।
2: तो दोस्तों आज हमने जाना कि HPV क्या है, ये कैसे एक गंभीर बीमारी का कारण बन सकता है और एक छोटा सा टीका कैसे हमें बड़ी परेशानी से बचा सकता है।
3: और याद रखिए, महिलाओं की सेहत सिर्फ उनकी अपनी जिम्मेदारी नहीं है, ये पूरे परिवार की जिम्मेदारी है। और सही समय पर लिया गया एक छोटा सा फैसला जिंदगी भर का बड़ा बदलाव ला सकता है।
2: छोटी सी तैयारी बड़ी बीमारी से बचाव,
3: बेटी का टीका।

0: और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा। सेहत सही तो लाभ कई। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में एक नए विषय और कुछ अलग जानकारी के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए और सुनते रहिए आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहिए।
1: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशाद जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंकवेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
2: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।

0: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
1: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
0: पता लाइन पार्क प्रकाश नगर चौराहा मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
2: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
3: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
4: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुँचाना भी सरकार की प्राथमिकता।
3: आज ही अपनी नजदीकी आंगनबाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनबाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 आपके शहर का सामुदायिक रेडियो स्टेशन। एक बार फिर से मैं आनंद हाजिर हूं लेकर आपका फेवरेट प्रोग्राम जिसको आप सुनते हैं हमेशा मुरादाबाद 89.6 पर। प्रोग्राम का नाम है सोच बदलो। जी हां श्रोताओं, अगर आप अपनी सोच बदलोगे तो हमारा समाज और हमारा देश कैसे तरक्की करेगा ये आप और मैं सोच भी नहीं सकते। और आज इस प्रोग्राम को लेकर मैं अकेला हाजिर नहीं हूं, मेरे साथ इस प्रोग्राम में मेरा साथ दे रही है मेरी प्यारी सी दोस्त प्राची। प्राची बहुत बहुत अगेन स्वागत है स्टूडियो में और हमारे प्रोग्राम में आपका स्पेशली स्वागत है। प्रोग्राम का नाम है सोच बदलो, तो आपका भी स्वागत है इस प्रोग्राम में।
1: धन्यवाद
0: जी। प्राची कैसा लग रहा है, पहले तू बताओ हमारे प्रोग्राम का नाम कैसा लगा तुम्हें?
1: नाम तो बहुत अच्छा और ऐसा लगता है कि ये हमारे श्रोताओं को सोच बदलने के लिए बहुत ज्यादा प्रेरित करेगा।
0: एब्सोल्युटली, इसीलिए हमने अपने युवाओं को ध्यान में रखते हुए अपनी बहनों को, अपनी माताओं को, अपने सारे जितने भी हमारे लिसनर हैं उन सभी को ध्यान में रखते हुए इस प्रोग्राम को डिजाइन किया है सोच बदलो। और मुझे लगता है कि आज के जमाने में ना लोगों को सोच बदलने की बहुत जरूरत है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने।
0: तो दोस्तों, मैं और प्राची इस प्रोग्राम में काफी सारी बातचीत करेंगे और आज का हमारा स्पेशल मुद्दा है वो ये है कि बता दें या फिर प्राची थोड़ा सा ब्रेक लें अभी, क्या लगता है आपको, ब्रेक लेना चाहिए या श्रोताओं को बताना चाहिए?
1: मुझे लगता है कि हमें हमारी श्रोताओं को बता देना चाहिए।
0: अच्छा, ताकि वो कहीं और जाए ना, है ना? बहुत बढ़िया। तो प्राची आज हम बात करने वाले हैं अपने श्रोताओं से ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट फ्रॉड के बारे में। कई बारी होता है ना, तुमने देखा होगा बहुत सारी एप्स एंड वेबसाइट्स आ जाती हैं जहां पर हमें दिखाई देता है कि भैया आप इतने पैसे लगाओ आपको उसके डबल मिल जाएंगे। बहुत सारी ऑनलाइन एप्लीकेशन आ गई हैं आजकल मार्केट में, समझ ही नहीं आता ओरिजिनल कौन सी है, लोकल कौन सी है।
1: हाँ, ये तो आपने बहुत सही मुद्दा उठाया है और मुझे लगता है कि हमें इस पे बात करने की बहुत बहुत जरूरत है।
0: एब्सोल्युटली, स्पेशली इस डिजिटल टाइम में, ना?
1: हाँ, बिल्कुल, जब तो, हर किसी का रुख
0: डिजिटल
1: की तरफ पड़ा है।
0: करेक्ट। तो श्रोताओं, आप कहीं मत जाइए, प्राची और आनंद के साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। प्रोग्राम का नाम है सोच बदलो और आपके लिए अभी एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, एक छोटा सा अंतराल, उसके बाद वापस आएंगे मैं और प्राची, तो इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आप सुनते रहिए आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन मुरादाबाद 89.6 रेडियो। बजाते रहो, गुनगुनाते रहो।

0: एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने शहर के सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम पर। आनंद और प्राची के साथ आप सुन रहे हैं प्रोग्राम
1: सोच बदलो श्रो।
0: बिल्कुल, और सोच बदलेगी तभी हमारा समाज बदलेगा।
1: बिल्कुल ठीक कहा आपने।
0: तो आज का हमारा मुद्दा है श्रोताओं, आज हम बात कर रहे हैं ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट फ्रॉड के बारे में। अच्छा प्राची, कई बार तुम्हारे पास भी ऐसे बहुत सारे लिंक्स आते होंगे फ्रेंड्स के थ्रू, या कुछ एड्स आ जाती होंगी व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम या फेसबुक पे, कि आप जो है ये ऐप डाउनलोड करो, इसमें आप इतने पैसे लगाओगे तो आपको इतने मिल जाएंगे, या फिर अगर आप इतने रुपए जमा करते हो तो इसका इतना मिल जाएगा आपको। इस तरीके के बहुत सारे ऐप्स आते हैं, बहुत सारे लिंक्स आते हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स पे हमें दिखाया जाता है। ऐसा कभी तुम्हारे सामने कोई सीन हो आया हो कभी?
1: हाँ हाँ, मेरे पास तो ऐसे बहुत आते हैं और मुझे लगता है कि सभी के फोन पे आते हैं और हमें इससे सावधान रहने की बहुत जरूरत है।
0: करेक्ट, बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे मैं आपको कुछ बताता हूँ कि ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट फ्रॉड कैसे काम करता है। सोशल मीडिया एड्स, व्हाट्सएप से ये संपर्क करते हैं, उसके बाद हाई रिटर्न का आपको लालच देंगे। जैसे अगर आप 10,000 जमा करोगे तो आपको 1,00,000 रुपया देंगे। उसके बाद ये फेक एप्स और कुछ वेबसाइट जो है बनाती है जिसपे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। शुरुआत में आपको ये फेक पोर्टफोलियो दिखाते हैं अपना, मतलब एक प्रोफाइल बनाते हैं फेक, जिसपे आपको बड़ा जेन्युइन लगेगा सारी चीजें। एंड उसके बाद ये एक बड़ा अमाउंट जैसे ही मतलब आप उनके पास डालोगे, सपोज आपने 10,000 डाला, उन्होंने बोला हम आपको 1,00,000 देंगे इसके बदले में, आप 10,000 जमा करोगे, विड्रॉल का ऑप्शन ही बंद हो जाएगा वहां से। तो इस तरह की जो चीजें ये लोग डिजाइन करते हैं, इसे हम कहते हैं ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट फ्रॉड।
1: बिल्कुल आनंद, आपने बिल्कुल ठीक जानकारी दी हमारी श्रोताओं को। और ये इतना जेन्युइन अपना पोर्टफोलियो दिखाते हैं कि बहुत अपने बहुत लोगों के फीडबैक भी रखते हैं, तो जिसे देखकर जो हम होते हैं हमारे मन में ऐसा हमें लगता है कि ये बहुत जेन्युइन प्लॉट प्लेटफॉर्म है, पर अक्सर ऐसा होता नहीं है।
0: एग्जैक्टली श्रोताओं, इसी पर और बहुत सारी बातचीत मैं और प्राची करते रहेंगे, लेकिन आइए जरा एक खास इन्फॉर्मेशन आपको सुनवाते हैं इसी प्रोग्राम के अंतर्गत। आप सुन रहे हैं सोच बदलो, सोच बदलेगा तो समाज बदलेगा। और आज हम सोच बदलो प्रोग्राम में डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट फ्रॉड के बारे में। क्योंकि देखिए, अगर हम अपनी सोच नहीं बदलेंगे हर चीज पे, अगर हम लगेगा कि यार डिजिटली करना है तो आगे चल के दिक्कत हो सकती है। इसीलिए सिर्फ सोच को बदलने की जरूरत है, क्योंकि एक छोटी सी आपकी थॉट प्रोसेस आपको कहीं से कहीं पहुंचा सकती है। आप सोच बदलो, आपकी चीजें बदल जाएंगी, कहीं ना कहीं अल्टीमेटली कनेक्टेड है चीजें। देखिए, अब आप सोच रहे होंगे कि ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट फ्रॉड से सोच बदलने का क्या सीन है, तो मैं ये भी आपके लिए यहां पर क्लियर कर देता हूं। क्या होता है ना, हमारी सोच ये हो गई है आज के समय में प्राची, कि हमें हर चीज बैठे बिठाए करनी है, हर चीज हमें अपने फोन से करनी है।
1: बिल्कुल ठीक है आप,
0: हमें शॉपिंग करनी है अपने फोन से करनी है, हमें सब्जियां मंगानी है अपने फोन से मंगानी है, हमें ना हर चीज बैठे बिठाए चाहिए प्राची। तो कहीं ना कहीं हमारी सोच ही तो है जो हम ऑनलाइन पूरी तरीके से हम जो है निर्भर हो गए हैं। है ना, तो कहीं ना कहीं दोस्तों, बस कहने का मुद्दा सिर्फ इतना सा है मेरा और प्राची का आज इस प्रोग्राम के जरिए, कि अगर हम अपनी सोच को बदले, हमें क्यों सोचना है कि हमें एक का डबल चाहिए। भाई अगर हमें इस तरह की कोई पॉलिसी देखनी है तो हम फिजिकली अपने पैसे को सेफ और अच्छी जगह लगाएंगे ना, हम अपने आसपास में जाएंगे, बहुत सारे इंश्योरेंस हैं, बहुत सारे बैंक हैं हमारे नियर बाय, हम

0: वहाँ जाके कर सकते हैं। और भी बहुत सारे तमाम ऑप्शन हैं, ऑनलाइन ही क्यों करना, मैं ये नहीं कह रहा कि आप ऑनलाइन मत करिए श्रोताओं, ऑनलाइन करिए बहुत जरूरी है, लेकिन सोच समझ के सही चीजों का इस्तेमाल करिए ना।
1: हाँ बिल्कुल ठीक कहा आपने आनंद।
0: तो इसी पर देखिए हमारे पास एक और खास बातचीत है जो स्पेशली हम अभी आपको सुनवा रहे हैं, शायद आपको कुछ समझ में आ जाए, तो मैं और प्राची लौटेंगे बस इसी देर में, जरा ये सुनिए उसके बाद हम आपको मिलते हैं।
2: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़। मैं हूं आपका दोस्त और इस शो का होस्ट आरजे राज। आज फिर मैं वापस लौट कर आया हूं आप सबके लिए एक महत्वपूर्ण बात लेकर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे साइबर अपराध की जो लोगों की सालों की बचत और जीवन भर की कमाई कुछ ही दिनों में खत्म कर देता है। इस अपराध का नाम है निवेश घोटाला, मतलब पैसे लगाओ और 10 मिनट में दोगुने करके वापस पाओ। हाँ जी, आखिर निवेश घोटाला क्या है श्रोताओं? निवेश घोटाला वह धोखाधड़ी है जिसमें ठग बहुत ज्यादा मुनाफे का लालच देता है, कहते हैं कोई जोखिम नहीं है, गारंटी रिटर्न का वादा करते हैं। वह लोगों को फर्जी ट्रेडिंग ऐप, नकली वेबसाइट, व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए निवेश के लिए उकसाते हैं। चलिए आपको एक ड्रामे के जरिए मैं सारी बातें समझाने की कोशिश करता हूँ। अरे इस ग्रुप में लिखा है हर दिन 5% मुनाफा बिना किसी जोखिम के, इतना मुनाफा कहीं धोखा तो नहीं? नहीं यार, देखो स्क्रीनशॉट भी है, सब लोग मुनाफा कमा रहे हैं, पहले 10,000 लगाए हैं, अरे वाह ऐप में तो मुनाफा दिखाई दे रहा है, अब तो 50,000 रुपए लगा देता हूँ, मैं पैसे निकालना चाहता हूँ। निकासी से पहले वेरिफिकेशन फीस जमा करनी होगी। कुछ देर बाद ऐप गायब हो जाता है और समझ जाता है कि वह निवेश घोटाले का शिकार हो चुका है। निवेश घोटाले इतने खतरनाक क्यों हैं? श्रोताओं, निवेश घोटाले इसलिए खतरनाक हैं क्योंकि ये लालच का फायदा उठाते हैं, पढ़े लिखे लोग भी फंस जाते हैं, लोग अपनी पूरी जमा पूंजी लगा देते हैं, कई मामलों में रिटायरमेंट का पैसा चला जाता है, कर्ज लेकर निवेश किया जाता है, परिवार पर आर्थिक बोझ बढ़ जाता है। निवेश घोटाले से रिलेटेड चलिए मैं आपको बताता हूँ रेड फ्लैग। गारंटेड मुनाफा दिखाई दे तो आप समझ जाइए कि शायद यहाँ पर आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। बिना जोखिम के निवेश, हाँ जी आप कहीं पर अगर निवेश कर रहे हैं तो पहले वहाँ पर देखिए कि कितना जोखिम है कितना नहीं। आज आखिरी मौका है, जब आपके साथ या फिर आपसे कोई व्यक्ति ऐसा कहता है कि अभी निवेश करो आज आखिरी मौका है, तो आप समझ सकते हैं कि शायद आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। अनजान व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप, किसी भी वजह से किसी भी कारण किसी भी ऐसे ग्रुप में अगर आप ऐड होते हैं और ग्रुप में ऐड होने के बाद आप निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं तो ऐसा नहीं करना है। ऐप या कंपनी का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। हाँ अगर आप कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं और वहाँ पर अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो कुछ चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। क्या सच में वो ऐप वेरीफाइड है या फिर नहीं है, इन बातों का ध्यान भी रखना होता है। याद रखिए असली निवेश में जोखिम होता है, ज्यादा मुनाफा मतलब ज्यादा जोखिम। निवेश करने से पहले क्या करें? निवेश से पहले ये बातें जरूर जांचें कि कंपनी या प्लेटफॉर्म सरकारी रजिस्टर्ड में दर्ज है या फिर नहीं है। किसी अधिकृत वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। इंटरनेट पर रिव्यू और जानकारी खोजें। अनजान लोगों बातों में न आएं। कभी भी बैंक लॉगिन, ओटीपी, यूपीआई पिन साझा बिल्कुल ना करें। बुजुर्गों और नए निवेशकों के लिए मैं एक संदेश देना चाहूँगा श्रोताओं, निवेश घोटालों के शिकार अक्सर बुजुर्ग, रिटायर्ड कर्मचारी, पहली बार निवेश करने वाले लोग होते हैं, इसलिए परिवार में निवेश से पहले चर्चा करें, जल्दी मुनाफे के लालच से बिल्कुल बचें, शक हो तो नहीं कहना सीखें, ठगी हो जाए तो क्या करें? अगर आपके साथ निवेश घोटाला हो गया है तो तुरंत कॉल करें 1930 पर, शिकायत दर्ज करें www.cybercrime.government.in पर। याद रखिए जितनी जल्दी शिकायत उतनी ज्यादा मदद मिलने की संभावना। साइबर सुरक्षा से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए आप www.staysafeonline.com पर विजिट कर सकते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ सुरक्षित निवेश के 5 सुनहरे नियम। गारंटेड मुनाफा सबसे बड़ा धोखा, अनजान प्लेटफॉर्म बड़ा खतरा, जल्दबाजी मतलब नुकसान, जानकारी साझा करना गलती, समझदारी सबसे बड़ी सुरक्षा। जाते जाते श्रोताओं मैं आपसे इतना चाहूंगा कि पैसा मेहनत से कमाया जाता है और एक गलत फैसले से चला भी जाता है, लालच नहीं जानकारी के साथ निवेश करें। जागरूक रहें और सुरक्षित रहें। हाँ जी दोस्तों, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़, आपके शहर का पहला रेडियो स्टेशन जो आपको एंटरटेनमेंट के साथ साथ काम की जानकारियां भी देता है।
0: तो श्रोताओं, मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो इन्फॉर्मेशन है आरजे राज के द्वारा जो आपको दी गई है, आई एम श्योर ये आपके काम की होगी और आपको जरूर इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, क्यों प्राची?
1: हाँ बिल्कुल,
0: और मुझे लगता है कि यही सारी चीजें हैं जो हमें अपनी सोच में परिवर्तन करनी है। जब हम अपनी सोच बदलेंगे तो हम इन चीजों के शिकार होने से भी कहीं हद तक बच सकते हैं। सही कहा ना?
1: बिल्कुल आपने सही कहा, और हमारा जो ये कार्यक्रम प्रसारित करने का जो उद्देश्य है वो भी तभी पूरा होगा।
0: एब्सोल्युटली, तो श्रोताओं हमारा भी उद्देश्य है एक म्यूजिक प्ले करने का। आप सुन रहे हैं आपके शहर का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6, आनंद और प्राची के साथ एक छोटा सा अंतराल, उसके बाद हम पुनः लौट कर आएंगे इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे, और इससे पहले कुछ और खास और महत्वपूर्ण जानकारियां आपके साथ साझा करेंगे इसी प्रोग्राम के अंतर्गत। आपके हिम्मत जाइए, सुनते रहिए आरजे आनंद और प्राची को।
3: अरे पापा, सीट बेल्ट तो लगा लो।
4: अरे बेटा, बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
3: पर पापा।
4: अरे बेटा, बस मैं यू गया और यू आया।
5: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश एफएम मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद।
6: ये पर

0: बहुत ही खूबसूरत गीत श्रोताओं भी आपने एंजॉय किया। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके इस शहर के पहले कम्युनिटी रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम पे आनंद और
1: प्राची के साथ।
0: क्या बात है प्राची, आज का हमारा प्रोग्राम लगभग अब समाप्ति की ओर है। आज हमने ढेर सारी बातचीत करी अपने श्रोताओं से। आज हम बात कर रहे थे ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट फ्रॉड के बारे में और मुझे पूर्ण रूप से भरोसा है कि हमारे श्रोताओं ने काफी एंजॉय भी किया होगा और उनको काफी जानकारियां भी मिली होंगी इस प्रोग्राम के जरिए।
1: बिल्कुल किया है कि आपने बताया भी, सारी इन्फॉर्मेशन आपने श्रोताओं को बिल्कुल सटीक और सरल भाषा में दी।
0: एब्सोल्युटली, और हमारा मकसद ये है कि हमारे जो सामुदायिक है, हमारा जो कम्युनिटी है मुरादाबाद के, जो आसपास के क्षेत्र के लोग हमें सुन रहे हैं, उनको सही और अच्छी जानकारी मिले। देखिए, एंटरटेनमेंट के साथ साथ सही जानकारियों का होना भी बहुत जरूरी है
1: और हमारा जागरूक रहना भी जरूरी है।
0: सही कहा आपने। तो प्राची, कुछ टिप्स हैं मुझे लगता है, सही जानकारियों का होना भी बहुत जरूरी है
1: और हमारा जागरूक रहना भी जरूरी है।
0: सही कहा आपने। तो प्राची, कुछ टिप्स हैं मुझे लगता है कि जो हमें अपने श्रोताओं को बता देनी चाहिए, जिसे हम कहते हैं रेड फ्लैग्स, अगर ये दिखे तो उनको रुक जाना चाहिए। तो प्राची, वो कौन कौन से रेड फ्लैग्स हैं जिनको देखते ही अगर ये सिम्टम्स नजर आए तो हमें रुक जाना चाहिए तुरंत? प्लीज बताओ जरा हमारे श्रोताओं को।
1: हाँ बिल्कुल, तो हमारी श्रोताओं, आपके लिए ये जानकारी है कि अगर आपको ये रेड फ्लैग्स दिख जाते हैं तो आपको तुरंत रुक जाने की जरूरत है। अगर वो गारंटेड प्रूफ प्रॉफिट या रिस्क फ्री रिटर्न की बात करते हैं तो ये भी एक रेड फ्लैग हो सकता है। कृपया अच्छे से आप उसकी जांच करें।
0: बिल्कुल,
1: जल्दी इन्वेस्ट करने का प्रेशर, अगर वो कंपनी की साइड से आपको बहुत जल्दी इन्वेस्ट करने का प्रेशर आ रहा है, एक कॉल्स आ रही है एक के बाद एक और आपको लग रहा है ये जेन्युइन नहीं है, क्योंकि जो जेन्युइन कंपनी होती है वो इतना बार बार आपको
0: प्रेशराइज
1: नहीं करती है।
0: करेक्ट करेक्ट।
1: और अगर वो व्हाट्सएप और ये टेलीग्राम ग्रुप, खासकर मैं बताना चाहूंगी टेलीग्राम ग्रुप पे तो उनका इतना बड़ा नेटवर्क है
0: और मोस्टली जो पीपल्स हैं, जो न्यू जनरेशन हैं, वो सारे लोग टेलीग्राम पे ज्यादा एक्टिव रहते हैं। आई थिंक
1: इतने ज्यादा फेक प्रोफाइल है, आपको उनसे सजग रहने की जरूरत है। और हाँ, अगर वो आपको पर्सनल बैंक अकाउंट में पैसा भेजने को कह रहे हैं तो ये भी एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग हो सकता है। कृपया ऐसे अगर आपको सिम्टम्स साइंस नजर आते हैं तो आप सावधान रहें। और जाते जाते मैं आपको एक बात भी बताना चाहूंगी जरूरी, आप ये जरूर जांच कर ले कि वो जो कंपनी है वो सीपी से रजिस्टर्ड है या नहीं,
0: मतलब वेरिफिकेशन उसका है या नहीं, करेक्ट तरीके से वेरीफाई है या नहीं।
1: जी
0: बिल्कुल। प्राची, थैंक यू सो मच फॉर प्रोवाइडिंग दिस इन्फॉर्मेशन एंड आई एम रियली श्योर जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं सोच बदलो प्रोग्राम के जरिए, उनको जरूर ये इन्फॉर्मेशन काम में आएंगी और मुझे लगता है कि आनी भी चाहिए। इनफैक्ट हम लोगों को भी चीज ध्यान में रखनी है यार, बिकॉज हम लोग भी बहुत ज्यादा सोशल मीडिया चलाते हैं, नो डाउट। भले हम अपना टाइम हमारा फिक्स है बट हम यूज तो करते हैं यार।
1: हाँ, और कभी कभी तो हम लोग भी धोखा खा जाते हैं।
0: एब्सोल्युटली, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम तो उसके शिकार हो गए, आप ना हो, बट अगर आपको लगता है कि अगर आपके साथ कोई स्कैम हो गया है तो आपको क्या करना है, आपको तुरंत 1930 पे कॉल करना है, 1930 पे आप कॉल करें, ये साइबर हेल्पलाइन का नंबर है या ये टोल फ्री नंबर है, आई रिपीट नंबर 1930, इस पे आप कॉल कर सकते हैं और अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। बैंक को तुरंत इन्फॉर्म करें अगर आपने किसी को अपनी डिटेल्स प्रोवाइड करा दी और आपको लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है, तो प्लीज अपने नजदीकी ब्रांच में जाके डेफिनेटली उनको इन्फॉर्मेशन दें कि आपने किसको क्या इन्फॉर्मेशन दी है। सो बस श्रोताओं, छोटी छोटी बातें हैं, इनका ख्याल रखिए और बाकी अपना भी ख्याल रखिए। अभी हमारे जाने का समय हो रहा है तो मैं और प्राची आपसे लेते हैं इस प्रोग्राम से इजाजत अनुमति, फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, एक नए एपिसोड के साथ इसी प्रोग्राम में जिसका नाम है
1: सोच बदलो।
0: जी हाँ, सोच बदलेगी तो चीजें अपने आप बदल जाएंगी। फिलहाल आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो।
1: बजाते रहो, गुनगुनाते रहो।
0: बाय बाय, टेक केयर।

0: सीने में दर्द, सांस फूलना या तेज धड़कन को बिल्कुल नजरअंदाज ना करें।
1: श्री साई हॉस्पिटल में डॉक्टर अखिल कौशिक टीएम कार्डियोलॉजी द्वारा
0: एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर एवं अत्याधुनिक कार्डियक कैथ लैब की सुविधा उपलब्ध है। मोबिक किफायती रेट्स पर, स्वस्थ दिल, सुरक्षित जीवन। आज ही अपॉइंटमेंट ले। श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल करें 7066002430।
2: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।

0: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
1: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
3: दिस साइड आर्जेरीना एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और फिर से एक नए टॉपिक के साथ आप सभी के साथ कनेक्ट हो गए हैं और मेरे साथ है एडवोकेट डॉक्टर अनुरुद्ध सर है। तो सर आपका मोस्ट वेलकम है हमारे रेडियो में।
4: धन्यवाद रीना जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
3: सर ये बताइए, आप मतलब मोस्टली मेरे साथ तो ये तीसरा सेशन होगा
4: जी,
3: तो आपको हमारे रेडियो आगे पहले कैसा लगता है?
4: नहीं, मुझे तो लगता है कि मैं अगर शायद यहाँ पे नहीं आऊँ आपके इनवाइट पे तो मैं मिस करूंगा कुछ।
3: अरे अरे क्या बात है।
4: तो ये तो एक मतलब जो एक अपॉर्चुनिटी है कि मैं आपके माध्यम से समाज में कुछ अच्छा कुछ मैसेज दे पा रहा हूँ, उनके लीगल राइट्स को बता पा रहा हूँ। और ये आपका प्रोग्राम सबसे बड़ी चीज है, आपने जो सोसाइटी का मुद्दा उठाया है आपने।
3: बिल्कुल हाँ जी, हाँ जी सर।
4: क्योंकि मैंने आज तक इतने प्रोग्राम्स और भी सुने, मैंने रेडियो पे भी सुने और न्यूज में भी, तो लीगल मैटर्स को लेके लोग ज्यादा कोई प्रोग्राम रखते नहीं है, अवेयरनेस प्रोग्राम। तो मैं पहले तो आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। आप लोग बहुत बधाई के पात्र हैं कि आपने इतना अच्छा ये प्रोग्राम लीगल टॉक्स जो आपने शो रखा है श्रोताओं के लिए, और निश्चित तौर पर आप लोग जो है इस शो के माध्यम से उनकी एक सेवा कर रहे हैं, एक अवेयरनेस उनके बीच में क्रिएट कर रहे हैं आप।
3: बिल्कुल सर। तो हम अपने सिलसिले की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन है सर आपसे कि सबसे पहले बताइए कि स्टे ऑर्डर होता क्या है?
4: देखिए, बहुत से लोग आपने देखा होगा बातचीत करते हुए कहते हैं कि भाई हमारा जो है एक फैमिली डिस्प्यूट चल रहा था प्रॉपर्टी को लेके और कोर्ट से स्टे हो गया है या कोर्ट से स्टे कराना, तो ये स्टे क्या चीज होती है? स्टे ऑर्डर जो होता है वो अदालत कोर्ट के द्वारा दिया अस्थाई आदेश होता है, जिसके माध्यम से आप किसी कार्य को, निर्णय को, कार्रवाई को कुछ समय के लिए आप लोग जो है उसको रोक सकती है। कोर्ट के पास ही अधिकार होता है कि जब तक मामले की पूरी सुनवाई ना हो जाए, तो कोर्ट स्टे ऑर्डर के माध्यम से आपको इंस्ट्रक्ट कर सकती है, डायरेक्शन दे सकती है कि आपको इस डिस्प्यूटेड मैटर में कोई भी छुआछेड़ नहीं करनी है और ये यहाँ पे यथास्थिति बनाए रखनी है। तो उसको कोर्ट स्टे दे देती है, तो उसी को हम स्टे ऑर्डर बोलते हैं।
3: बिल्कुल सर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अदालत किन परिस्थितियों में स्टे ऑर्डर जारी करता है?
4: देखिए, जब एक पिटिशनर या प्लेंटिफ होता है जो कि कोर्ट में अपनी एक एप्लीकेशन पिटिशन फाइल करता है, याचिका दायर करता है, और अदालत को लगता है कि इस कार्रवाई से किसी पक्ष को गंभीर नुकसान हो सकता है या न्याय प्रभावित हो सकता है, तब अदालत उस कार्रवाई को स्थायी रोकने के लिए स्टे ऑर्डर जारी कर सकती है।
3: सो मेरा अगला क्वेश्चन है सर, क्या कोई भी व्यक्ति अदालत से स्टे ऑर्डर की मांग कर सकता है?
4: हाँ, अगर उसका लीगल कोई जो राइट बनता है या उसका कोई डैमेज होता है, तो कोई भी व्यक्ति किसी कानूनी विवाद में शामिल है, उसे लगता है कि अगर अधिकारों का नुकसान हो सकता है, तो अदालत के समक्ष अपनी एप्लीकेशन और पिटीशन दायर करके स्टे ऑर्डर की मांग कर सकता है।
3: स्टे ऑर्डर और इंजेक्शन में क्या अंतर होता है?
4: देखिए, स्टे ऑर्डर किसी निर्णय या कार्रवाई को अस्थायी रूप से रोकने के लिए दिया जाता है, जबकि इंजेक्शन एक आदेश होता है जिसमें अदालत किसी व्यक्ति को कोई कार्य करने या करने के लिए निर्देश देती है।
3: सो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जब अदालत किसी मामले पर स्टे लगा देती है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है?
4: देखिए, जब अदालत किसी चीज पे स्टे लगा देती है तो स्टे लगाने के उस मामले में जुड़ी कार्रवाई तत्काल प्रभाव से तुरंत रोक दी जाती है, और तब तक आगे उस दिशा में कोई भी कार्रवाई जब तक अदालत नहीं कहती है या अदालत उस आदेश को अपने आगे नहीं

0: आती है उस पर कुछ नहीं कर सकते।
1: हाँ बिल्कुल सर, उस पर जब रोक लग चुकी है तो कुछ कर नहीं सकते,
0: तो कोर्ट का आदेश आपकी मानना, आपको मानना भी है और बाध्यता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल सर, और मुझे लगता है कि कोई भी ऑर्डर मिले उसको हमें फॉलो करना चाहिए, मानना चाहिए। सो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्या स्टे ऑर्डर हमेशा के लिए होता है?
0: नहीं, देखिए इसमें स्टे ऑर्डर हमेशा के लिए नहीं होते हैं, ये कोर्ट के जो है विवेक पे डिपेंड करता है। कुछ केसेस में हमने ये भी देखा है कि कोर्ट टेम्परेरी स्टे भी देती है और कुछ केसेस में वो परमानेंट स्टे भी देती है, लेकिन जब स्थितियां सामान्य हो जाती है, पक्षों में एक जजमेंट हो जाता है या जो है कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, तो उस स्टे को कोर्ट खुद ही हटा भी देती है। तो स्टे ऑर्डर समानता स्थायी होता है, यहाँ तब तक लागू होता है जब तक अदालत मामले की अगली सुनवाई में कोई नया आदेश जारी नहीं करती।
1: क्या बात है। सो अगला क्वेश्चन है, अगर कोई व्यक्ति स्टे ऑर्डर का उल्लंघन करता है तो क्या होता है?
0: देखिए इससे पहले भी एक हमने अपना सीरीज थी पूरी, एक हमारी लीगल टॉक्स की, उसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हमने पढ़ा था।
1: बिल्कुल, बिल्कुल
0: आपने पढ़ा होगा। तो अगर कोर्ट ने स्टे दे दिया कि भाई आपको ये काम नहीं करना है, इसको ऐसे ही रोके रखना है, इस पे कुछ नहीं करना है आप, और आपने कोर्ट का ऑर्डर नहीं माना, तो एक तरीके से आप कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं।
1: बिल्कुल,
0: तो कोर्ट
1: बिल्कुल,
0: के आदेश की जब अवहेलना हो गई तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आ गया।
1: बिल्कुल,
0: तो स्टे ऑर्डर कोर्ट ने दिया, फिर आपने स्टे ऑर्डर को नहीं माना, आपने कंटेम्प्ट किया, तो आपने दोबारा कोर्ट के आदेश की अवहेलना करी।
1: बिल्कुल,
0: तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आ जाता है और स्टे ऑर्डर का उल्लंघन है, तो उसके खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्रवाई हो सकती है। इसमें संबंधित प्रावधान जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 में दिए गए हैं, उसके तहत आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है।
1: सो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्या उच्च न्यायालय निचली अदालत के फैसले पर स्टे लगा सकते हैं?
0: हाँ बिल्कुल लगा सकती है, अगर किसी पक्ष को लगता है कि निचली अदालत का फैसला गलत है या उससे नुकसान हो सकता है तो वो उच्च अदालत में अपील कर सकता है, और अपील करने पर फैसले पर अगर स्टे हाईकोर्ट दे देती है तो स्टे निचली अदालत के फैसले पर स्टे भी हो सकता है।
1: क्या बात है। सो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्या स्टे ऑर्डर के बाद में हटाया भी जा सकता है?
0: जी हाँ बिल्कुल हटाया जा सकता है, अगर अदालत को लगता है कि स्टे ऑर्डर की अब जरूरत नहीं है या परिस्थितियां बदल गई हैं, तो वह उसे हटाने या संशोधित करने का आदेश भी दे सकती है।
1: क्या बात है सर, एक लास्ट क्वेश्चन है, जाते जाते आप हमारे श्रोताओं को क्या एक आदेश देना चाहेंगे?
0: बस यही आपको मैं बोलूंगा, सारे जितने भी आपके लिसनर्स हैं कम्युनिटी रेडियो के, कि आप अपनी लीगल राइट्स को जानें और छोटी छोटी बातों को जो आपके व्यवहार में डेली रूटीन में जो चीजें होती हैं, हर कहीं ना कहीं हम लोग सड़क पे भी अगर जा रहे होते हैं तो हम देखते हैं बहुत से लोग अपने लीगल राइट्स को नहीं जानते हैं या राइट जो कानून तोड़ रहे होते हैं, तो आप अगर एक अच्छे समाज का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप अपने लीगल राइट्स को जानिए और समाज में किसी अन्याय को सहन मत करिए, और कोई किसी पे अन्याय करे तो उसकी हेल्प करिए, उसके खिलाफ बोलना सीखिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल सर, ये तो है सर कि अपने हक के लिए बोलना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है, अगर आप नहीं बोलते तो फिर मतलब ये होता है कि कुछ भी हो लेकिन अपने हक के लिए तो हमें बोलना ही बोलना।
0: बिल्कुल आपको बोलना चाहिए, आपको लीगल राइट्स पता होंगे तभी आप बोल पाएंगे, और छोटी छोटी बातों को आप समाज में जो हमारे हनन होता है उसको आप उसका विरोध करिए, अगर आपके लीगल राइट्स का कोई भी हनन करता है तो आपका अधिकार है कि आप जो है उसको कानून की नॉलेज दें और उसके खिलाफ एक्शन भी लें।
1: बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच सर, आज आपके साथ बातें करके मुझे भी बहुत चीजों के बारे में पता चला है, जो कि इसके बारे में तो मुझे सच बताऊं तो पता नहीं था।
0: देखिए बहुत लीगल बहुत मैटर जो डीप में है लीगल, जो अगर हम लीगल टॉपिक्स की बात करते हैं तो हम भी रोज नए नए टॉपिक्स आते हैं, उसको स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, तो ये तो इतना ज्ञान का सागर है कि आप जितना पढ़ोगे उतना कम है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, और वही बात है ना, जितने गागर को आप भरोगे उतना ही ज्ञान भरता ही
0: जी,
1: जाएगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: चलिए सर, थैंक यू सो मच सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा मुझे।
0: बहुत बहुत

0: जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने मलेशिया, वियतनाम और इथियोपिया के नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। अबू धाबी के युवराज के साथ भी मुलाकात की। यमन में हौसी विद्रोहियों के महत्वपूर्ण द्वीपों पर कब्जे से लाल सागर में प्रमुख नौवहन मार्गों पर पकड़ मजबूत। सऊदी अरब ने हमले के बाद महत्वपूर्ण पाइपलाइन बंद की। छत्तीसगढ़, तेलंगाना और विदर्भ में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। और भारतीय महिला टीम ने चीन के मोकी में दक्षिण कोरिया को 5-1 से हराकर जूनियर एशिया कप हॉकी के फाइनल में प्रवेश किया। और अब समाचार विस्तार से। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन अब से कुछ ही देर में नई दिल्ली के भारत मंडप में शुरू हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम स्थल पर पहुंच गए हैं। दो दिन के सम्मेलन में 11 पूर्ण सदस्य देश और 10 साझेदार देशों सहित कुल 21 देश हिस्सा ले रहे हैं। 11 पूर्ण सदस्य देशों में ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिश्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया शामिल हैं, जबकि बेलारूस, बोलिविया, कजाकिस्तान, क्यूबा, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान और वियतनाम साझेदार देश के रूप में भाग ले रहे हैं। सम्मेलन में वैश्विक शासन, बहुपक्षवाद, व्यापार और निवेश, प्रौद्योगिकी, खाद्य एवं सुरक्षा, स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन और महत्वपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। भारत की अध्यक्षता में हो रहे इस शिखर सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। और अब अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं भारत मंडपम में मौजूद हमारे संवाददाता अंकित से। जी अंकित।
1: जी जागृति, देखिए।
0: हेलो अंकित, अभी आप शिखर सम्मेलन के आयोजन स्थल पर मौजूद हैं और ये बताइए कि इस समय कार्यक्रम स्थल का माहौल कैसा है और इस सम्मेलन के बारे में आपके पास क्या कुछ अन्य जानकारियां हैं।
1: जी जागृति, देखिए इस समय ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का जो आज का सत्र है अब से कुछ देर में शुरू होने वाला है। विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष सम्मेलन स्थल पर पहुंच रहे हैं। अब से कुछ देर बाद 11 सदस्य देशों के नेता क्लोज डोर सेशन में हिस्सा लेंगे। इस दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के नेता समावेशी वैश्विक शासन और बहुपक्षवाद को मजबूत करने के मुद्दे पर विचार विमर्श करेंगे ये नेता। इसके बाद भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी का भी अवलोकन करेंगे। इसके बाद वे संयुक्त रूप से पौधारोपण करेंगे और फैमिली फोटो के लिए भी एकत्रित होंगे। शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले ब्रिक्स नेताओं के लिए सम्मान में भव्य रात्रि भोज का आयोजन करेंगे। ये देखिए, भारत की अध्यक्षता में यह ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा है जब दुनिया एक महत्वपूर्ण बदलाव के दौर से गुजर रही है। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था इस समय आर्थिक बिखराव, तकनीकी बदलाव और भू राजनीतिक अनिश्चितता का सामना कर रही है। इसके साथ ही जलवायु परिवर्तन और संसाधनों पर बढ़ता दबाव इन चुनौतियों को और जटिल बना रहे हैं। इन आपस में जुड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए ऐसे सहयोग की जरूरत है जो समावेशी, व्यवहारिक और विभिन्न देशों की परिस्थितियों के अनुरूप हो। देखिए, ब्रिक्स इन चुनौतियों से निपटने के लिए संवाद और समन्वित कार्रवाई के माध्यम से एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करता है। इसकी वजह यह भी है कि ब्रिक्स देश दुनिया की लगभग आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके अलावा वैश्विक जीडीपी में इन देशों की हिस्सेदारी करीब 40% और वैश्विक व्यापार में करीब 25% हिस्सेदारी है। जी जागृति।
0: जी धन्यवाद अंकित इस तमाम जानकारी के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। सम्मेलन में भाग लेने के लिए शी चिनफिंग आज नई दिल्ली पहुंचे हैं। और अब अधिक जानकारी के लिए हम बात करते हैं हमारे संवाददाता आनंद से। जी आनंद, प्रधानमंत्री आज शिखर सम्मेलन से अलग अब तक किन किन देशों के साथ द्विपक्षीय वार्ता कर चुके हैं और अगर आज की बात करें तो किन देशों के साथ अभी द्विपक्षीय वार्ता होने का कार्यक्रम है?
2: जी जागृति, आज का दिन भारत के लिए द्विपक्षीय और राजनयिक संबंधों के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि अब से कुछ ही देर बाद ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का पहला सत्र शुरू होने वाला है।
0: जी,
2: आज सुबह से ही ब्रिक्स सदस्य देशों और भागीदार देशों के नेताओं के साथ लगातार द्विपक्षीय बैठकें कर रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली के साथ द्विपक्षीय बैठक की। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम, अबू धाबी के क्राउन प्रिंस और वियतनाम के प्रधानमंत्री के साथ बैठकें की। इथियोपिया ने भारत के साथ रक्षा सहयोग को और मजबूत करने में रुचि जताई है। इथियोपिया के ने विशेष रूप से भारतीय खनन कंपनियों को आमंत्रित किया है। वहीं मलेशिया के साथ सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में मौजूदा अवसरों पर चर्चा हुई। अगर आज हम शाम के कार्यक्रम की बात करें तो जागृति आज शाम को प्रधानमंत्री मोदी की चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय बैठक होने का कार्यक्रम है। यह राष्ट्रपति शी जिनपिंग की करीब 7 वर्षों में भारत की यह पहली यात्रा है। दोनों नेताओं के बीच बातचीत मुख्य रूप से सीमा पर तनाव कम करने और व्यापार असंतुलन के मुद्दों पर केंद्रित रहने की संभावना है। जी जागृति
0: जी, आनंद धन्यवाद इस जानकारी के लिए। बेलारूस के विदेश मंत्री मार्क्सिम रिजनकोफ आज नई दिल्ली पहुंचे। भारत और बेलारूस के संबंध प्रगाढ़ और मैत्रीपूर्ण हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय और बहुपक्षीय स्तर पर सहयोग लगातार बढ़ रहा है। इससे पहले आज ही सुबह विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉ टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस भी सम्मेलन में शामिल होने के लिए नई दिल्ली पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कल नई दिल्ली में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन और संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन के साथ मुलाकात की। इससे पहले शिखर सम्मेलन से अलग कल उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की थी। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया के हालिया घटनाक्रम पर चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने दोहराया कि सभी मुद्दों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से होना चाहिए। इस बीच चाइना सदर्न एयरलाइंस इस महीने की 21 तारीख से ग्वांगझोउ और नई दिल्ली के बीच नियमित यात्री उड़ानें फिर शुरू करेगी। इसके साथ ही 6 साल से बंद ये हवाई सेवा बहाल हो जाएगी। कोविड महामारी के बाद वर्ष 2020 में भारत और चीन के बीच हवाई सेवाएं निलंबित कर दी गई थी। ये सेवा चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के भारत दौरे के बीच शुरू हो रही है। इस साल मार्च में भारतीय विमानन कंपनी इंडिगो ने भी शंघाई और कोलकाता के बीच दैनिक उड़ानें शुरू की थी, जिससे दोनों देशों के बीच हवाई संपर्क और मजबूत हुआ है। इस बीच ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को देखते हुए आज रात 9 बजे तक दिल्ली के प्रमुख मार्गों पर यातायात में परिवर्तन और नियंत्रित आवागमन लागू किया गया है। दिल्ली यातायात पुलिस ने लोगों से सार्वजनिक परिवहन विशेषकर मेट्रो का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। ये समाचार हमारे NewsOnAIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
3: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़े।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आयोजित भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी का उद्देश्य उच्च शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों में विकसित नवाचारों को दुनिया तक पहुंचाना है। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रदर्शनी में आए सभी गणमान्य अतिथियों का स्वागत करना देश के लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत की नवाचार व्यवस्था तेजी से विकसित हुई है।
4: इंडियाज इनोवेशन,
5: भारत का नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र तेजी से विकसित हुआ है। भारत इनोवेटिव्स की यात्रा से विकसित हुआ है। भारत इनोवेटिव्स की यात्रा ने नीस में आयोजित अपने पहले वैश्विक प्रदर्शन के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव स्थापित किया है। भारत के ब्रिक्स की अध्यक्षता संभालने के साथ हम अनुसंधान, नवाचार और उद्यमिता के क्षेत्र में एक मजबूत साझेदारी बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रयोगशाला से बाजार तक और भारत से विश्व।
4: फ्रॉम लैब टू मार्केट, फ्रॉम इंडिया टू वर्ल्ड।
0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के आज 7 वर्ष पूरे हो गए हैं। छोटे और सीमांत किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से ये योजना वर्ष 2019 में आज ही के दिन शुरू की गई थी। योजना के अंतर्गत छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद हर महीने कम से कम 3,000 रूपये की पेंशन सुनिश्चित की गई है। सऊदी अरब ने ड्रोन हमले के एक दिन बाद देश भर में फैली एक बड़ी तेल पाइपलाइन बंद कर दी है। सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन को बंद कर दिया गया है। इस तेल पाइपलाइन को ऐसे समय में बंद किया गया है जब यमन के हौसी विद्रोहियों ने मोखा बंदरगाह और पेरिम द्वीप पर कब्जा कर लिया है, जिससे पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष में एक नया मोर्चा खुल गया है। बाब अल मंदेब जलडमरू बध्या दुनिया के प्रमुख नौवहन मार्गों में से एक है। पंजाब पुलिस के गैंगस्टर रोधी कार्यबल AGTF और देश छोड़कर भागे लोगों की निगरानी और प्रत्यर्पण की शाखा OFTEC ने केंद्रीय एजेंसियों के समन्वय से फरार अपराधी अमृतपाल सिंह उर्फ अमृत दलम को मोल्दोवा गणराज्य से भारत प्रत्यर्पित कराने में सफलता हासिल की है। गैंगस्टर रोधी कार्यबल के पुलिस अधीक्षक विक्रमजीत सिंह बराड़ के नेतृत्व में पंजाब पुलिस की 4 सदस्यीय टीम आज सुबह उसे भारत लेकर आई। बिहार में बाढ़ की स्थिति में धीरे धीरे सुधार हो रहा है, हालांकि कई इलाके अब भी प्रभावित हैं। राज्य के 14 जिलों के 2000 से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव अभियान जारी है।
6: प्रदेश में गंगा, सोन, बागमती, घाघरा और पुनपुन समेत प्रमुख नदियों के जलस्तर में गिरावट जारी है। हालांकि गंगा और पुनपुन कई स्थानों पर अब भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। ताजा रिपोर्ट के अनुसार गंगा का जलस्तर पटना के गांधी घाट समेत राज्य के लगभग सभी स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर है। पुनपुन नदी श्रीपालपुर में खतरे के निशान से 1 मीटर से अधिक ऊपर बह रही है। जलस्तर में कमी के साथ गंगा, गंडक, कोसी और सोन के तटवर्ती इलाकों में कटाव का खतरा बढ़ गया है। जल संसाधन विभाग ने संवेदनशील तटबंधों और कटाव संभावित स्थलों पर निगरानी बढ़ा दी है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निदेश श्री।
0: मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, तेलंगाना और विदर्भ में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में भी कल तक तेज बारिश की संभावना है। ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। तमिलनाडु, पुदुचेरी, आंध्र प्रदेश, कराईकल, विदर्भ, बिहार, राजस्थान और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कल तक आंधी तूफान की आशंका है। दिल्ली में आज शाम हल्की बारिश का अनुमान है। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने तमिल विद्वान प्रोफेसर सोलोमन पपैया के निधन पर शोक व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधा कृष्णन ने कहा कि प्रोफेसर पपैया की वाक्पटुता और विद्वता ने देश की साहित्यिक और सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध किया है। गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रकाश पर्व पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। गृहमंत्री ने कहा कि गुरु ग्रंथ साहिब जी की शिक्षाएं सेवा, त्याग, समानता, करुणा और मानवता की भावना को बढ़ावा देती हैं और समाज को मानव कल्याण के लिए प्रेरित करती हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: ये आकाशवाणी है। महिला जूनियर एशिया कप हॉकी में भारत ने फाइनल में जगह बना ली है। चीन के मोकी में पहले सेमीफाइनल में भारत ने दक्षिण कोरिया को 5-1 से हराया। भारत की ओर से सुप्रिया ने हैट्रिक लगाई जबकि मधु और सुखवीर कौर ने 1-1 गोल दागा। फाइनल में भारत का मुकाबला मेजबान चीन से होगा। इससे पहले पुरुषों के जूनियर एशिया कप हॉकी में भारत ने कल पहले सेमीफाइनल में मलेशिया को 3-1 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। अमरीकी ओपन टेनिस के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में अमरीका के बेन शेल्टन का मुकाबला जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव से होगा। महिला

0: सिंगल्स में मौजूदा चैंपियन बेलारूस की आर्याना सबालेंका आज रात फाइनल में कजाकिस्तान की एलेना रायबाकिना का सामना करेंगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, भारत की अध्यक्षता में दो दिन के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए विश्व के नेता नई दिल्ली पहुंचे। अब से कुछ ही देर में शुरू होगा सम्मेलन। वैश्विक शासन, बहुपक्षवाद, व्यापार, सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखला जैसे मुद्दों पर होगी चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने मलेशिया, वियतनाम और इथियोपिया के नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। अबूधाबी के युवराज के साथ भी मुलाकात की। यमन में हौसी विद्रोहियों के महत्वपूर्ण द्वीपों पर कब्जे से लाल सागर में प्रमुख नौवहन मार्गों पर पकड़ मजबूत। और भारतीय महिला टीम ने चीन के मोकी में दक्षिण कोरिया को हराकर जूनियर एशिया कप हॉकी के फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी है। अब प्रस्तुत है आकाशवाणी पुणे के सौजन्य
2: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है नौवा राष्ट्रीय पोषण माह।
3: देश के हर गरीब, हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
2: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
4: यार, सोना कितना महंगा हो गया है। काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
5: अरे, सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
4: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 705-07-0552।
6: मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे रीना, और मेरे साथ आरजे खुशी है, और आप सभी के लिए लेकर आ गए हैं महिला मंच शो, जहाँ हम बात करने वाले हैं जनगणना के बारे में। सो मोस्टली देखा जाता है कि घर पर हमारी प्यारी महिला ही रहती है, और कई बार जल्दी जल्दी में हम ऐसी जानकारी भी दे देते हैं जो हमें नहीं देना चाहिए। इसीलिए आज के इस खास एपिसोड में हम बात करेंगे जनगणना में क्या बताना सही है, क्या नहीं, और कैसे खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रखना है। याद रखिए, सही जानकारी देना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन ओटीपी, एटीएम, पीआईएन, बैंक पासवर्ड या मोबाइल पर आया कोई कोड किसी को भी नहीं बताना होता है। अगर कोई व्यक्ति जनगणना के नाम पर बैंक डिटेल या ओटीपी मांगे तो तुरंत सतर्क हो जाए, क्योंकि असली सरकारी कर्मचारी कभी ऐसी जानकारी नहीं मांगते हैं। तो चलिए आज के इस जरूरी और जागरूक करने वाली बातचीत के शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे जनगणना की। जनगणना यानी देश में रहने वाले लोगों की गिनती और उससे जुड़ी जरूरी जानकारी इकट्ठा करना। इसमें सिर्फ संख्या नहीं बल्कि उम्र, शिक्षा, रोजगार और परिवार की जानकारी भी शामिल होती हैं। सरकार इन्हीं आंकड़ों के आधार पर तय करती है कि कहाँ स्कूल बनेगा, कहाँ अस्पताल की जरूरत है और किन इलाकों में सुविधाएं पहुँचानी हैं। लेकिन दोस्तों, याद रखिए, सही जानकारी देना ही जरूरी है।
7: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन, और रीना जी ने बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन, जानकारियां दे रही हैं बैक टू बैक। शो का नाम है महिला मंच, और दोस्तों जनगणना क्यों जरूरी है? अगर सरकार को यही नहीं पता होगा कि किस इलाके में कितने लोग रहते हैं तो विकास की योजना कैसे बनेगी? जनगणना सरकार को ये समझाने में मदद करती है कि कहाँ सड़क चाहिए, कहाँ अस्पताल, कहाँ स्कूल, आपकी एक सही जानकारी देश के भविष्य को बेहतर बना सकती है, लेकिन सावधान रहें, कई बार सरकारी कर्मचारी आपसे बैंक OTP या फिर ATM पिन नहीं मांगता। अगर कोई मांगे तो समझ जाइए कुछ गड़बड़ है। सही जानकारी दें, लेकिन अपनी निजी जानकारी सुरक्षित रखें।
6: क्या बात है, बहुत अच्छी बात बताई तुमने खुशी। और अब मैं आप सभी को बताऊंगी कि सही जानकारी देना क्यों जरूरी है। अगर लोग गलत एज, गलत संख्या, गलत जानकारी, तो सरकारी रिकॉर्ड भी गलत बनेगा, और जब रिकॉर्ड गलत होगा तो योजनाएं भी सही तरीके से नहीं पहुंच पाएगी। इसीलिए हमेशा सच बोलिए, लेकिन ध्यान रखिए बैंक डिटेल, पासवर्ड और OTP जैसी चीजें कभी शेयर मत करिए। जागरूक बनिए, देश के विकास में योगदान दीजिए। और श्रोताओं, एक बात और मैं आप सभी से कहना चाहूंगी, बहुत सी महिलाएं जो घर पर ही होती हैं और वो घबरा जाती है जब उनसे कोई पूछने के लिए आते हैं जनगणना के समय में, तो आपने घबराना नहीं है, बस सही जानकारी देनी है। कभी कभी होता है ना कि हम भाई सच नहीं बोलेंगे, हम गलत बोल देते हैं, और जब आप गलत बोलते हैं तो आपकी सारी जो डिटेल्स है वो गलत ही साबित हो जाती है, तो फिर जो आपको योजनाएं मिलने वाली होती है उसमें भी दिक्कत आती है, रुकावटें आने लग जाती है, तो उसी के बाद हमें फिर से चक्कर लगाने पड़ जाते हैं। इसीलिए हमेशा सच बोलिए, सही जानकारी दीजिए।
7: कि सही जानकारी देना बहुत जरूरी है। जब आप सही जानकारी देंगे तब आपके आने वाले फ्यूचर में भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, एंड आप गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम आएगी तो उसमें भी आप लाभ उठा सकते हैं। और आजकल तो मोबाइल फ्रॉड बहुत बढ़ गया है दोस्तों। OTP यानी वन टाइम पासवर्ड आपके बैंक खाते और ऑनलाइन अकाउंट की सुरक्षा के लिए होता है। इसे किसी के साथ शेयर करना खतरनाक हो सकता है। याद रखिए, सरकारी कर्मचारी कभी OTP नहीं मांगते। अगर कोई जनगणना के नाम पर OTP मांगे तो तुरंत सावधान हो जाइए। आपकी जागरूकता ही आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा है,
6: क्योंकि जागरूक रहना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और अब हम बात करेंगे पहचान पत्र कब दिखाना चाहिए। जब कोई सरकारी अधिकारी जानकारी लेने आए तो पहले उसका पहचान पत्र जरूर देखें। बिना पहचान पत्र वाले किसी व्यक्ति को आधार कार्ड, पैन कार्ड या जरूरी दस्तावेज हाथ में मत दीजिए। सही अधिकारी हमेशा अपनी पहचान बताते हैं। याद रखिए, सुरक्षा सबसे पहले, जागरूक रहे और दूसरों को भी जागरूक बनाए, और इस चीज में बिल्कुल ना घबराए, क्योंकि जो आपसे जनगणना के लिए आ रहा है वो भी आपको बताएगा कि हम सरकार की तरफ से, उसके गले में आई कार्ड जरूर होगा, इस चीज का ध्यान रखना है।
7: बैंक डिटेल क्यों नहीं बतानी चाहिए ये मैं आपको बताती हूँ। कई बार क्या होता है ना, कुछ फ्रॉड इंसान भी आ जाते हैं और वो ऐसे ही डिटेल्स कुछ पूछ लेते हैं जो पर्सनली होती हैं, जो हम हर किसी से हमें नहीं शेयर करने चाहिए। दोस्तों, जनगणना में आपकी बैंक जानकारी नहीं पूछी जाती। अगर कोई व्यक्ति बैंक अकाउंट नंबर, ATM पिन या मोबाइल बैंक पासवर्ड पूछे तो समझ जाइए कि वह धोखेबाज हो सकता है। सरकारी प्रक्रिया में आपकी निजी बैंक जानकारी जरूर नहीं होती, इसलिए सतर्क रहें और किसी भी अनजान व्यक्ति पर तुरंत भरोसा मत कीजिए। तो श्रोताओं, अभी आपसे मिलते हैं म्यूजिकल ब्रेक के उस पार और करेंगे आपसे और भी बातें, बहुत सारी जानकारियाँ आज हमारे पिटारे में है। शो का नाम है महिला मंच, करेंगे आपसे और भी गुफ्तगू और बहुत सारी जानकारियाँ जो आपके लिए, हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है।

0: नमस्कार श्रोताओ, एक बहुत ही प्यारे गाने के बाद फिर से हम आप सभी के साथ कनेक्ट हो गए हैं, जहां हम महिला मंच में जनगणना के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि सही जानकारी देना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। सो अब हम बात करेंगे महिलाओं के लिए जागरूक सावधानी। अगर घर में महिलाएं अकेली हो तो किसी भी अनजान व्यक्ति को तुरंत घर के अंदर ना आने दे। पहले पहचान पत्र देखे, जरूरी हो तो पड़ोसी या परिवार के सदस्य को बुला ले। सुरक्षा और जागरूकता दोनों जरूरी है। याद रखे, सही जानकारी दे लेकिन अपनी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखे।
1: जागरूकता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और आपने कहा जैसे कि अकेली महिलाएं घर में होती हैं और कोई भी अनजान व्यक्ति आ जाता है तो वो लाइक घर में आने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें तुरंत उनको अंदर नहीं अलाउ करना चाहिए। और आपको लगता है कहीं अगर कोई डाउट है कि ये व्यक्ति सही नहीं लग रहा है तो आप अपने पड़ोसी को भी बुला सकते हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स को भी बुला सकते हैं, उसके बाद ही उनसे बातचीत करें। और कार्यक्रम को हम बैक टू बैक आगे बढ़ा ही रहे हैं, जानकारियां भी आपके लिए लेकर आए हैं श्रोताओं। तो अक्सर बुजुर्ग लोग जल्दी भरोसा कर लेते हैं, आपने देखा होगा जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो जल्दी भरोसा कर लेते हैं।
0: बिल्कुल,
1: उन्हें समझाइए कि ओटीपी, एटीएम पिन और बैंक पासवर्ड किसी को ना दें। अगर कोई फोन पर या घर आकर निजी जानकारी मांगे तो पहले परिवार के किसी सदस्य से सलाह लें। जागरूक परिवार ही सुरक्षित परिवार होता है रीना।
0: सिर्फ इसमें बुजुर्ग और महिलाएं नहीं बल्कि हमें बच्चों को भी सावधान करना चाहिए, क्योंकि बच्चे होते हैं मन के सच्चे, उनसे जो पूछो वो सच ही बताते हैं, क्योंकि उनको नहीं पता होता कि क्या हमें नहीं बता। इसीलिए अपने साथ साथ बच्चों को भी जागरूक करें। सो अब हम बात करेंगे बच्चों को क्या सिखाए। बच्चों को बचपन से ही सुरक्षा की बातें सिखाना जरूरी है। उन्हें बताइए कि घर की निजी जानकारी किसी अनजान व्यक्ति को ना बताए। ओटीपी और पासवर्ड क्या होते हैं ये सभी समझाइए। सुरक्षा की शुरुआत घर से ही होती है, क्योंकि जब आप बच्चों को सिखाएंगे, कहते हैं ना जैसा बीज बो फल भी आपको वैसा ही मिलता है। इस तरीके से जैसे आप बच्चों को समझाएंगे बच्चे वही काम करेंगे। और बच्चे सच बताओ बड़े सिंसियर होते हैं, क्योंकि एक बार आपने उस चीज के लिए मना कर दी कि ये काम नहीं करना है तो वो बिल्कुल भी नहीं करेगा। और मुझे लगता है कि बच्चों को समझाना उनके आगे भविष्य के लिए भी बहुत जरूरी है।
1: अच्छा रीना, कई बार ना फर्जी कॉल आ जाते हैं।
0: हाँ ये तो है।
1: और फर्जी कॉल से कैसे बचें दोस्तों, ये हम आपको बताते हैं। अगर कोई आपको फोन करके कहे कि जनगणना के लिए बैंक डिटेल दीजिए, सरकारी कर्मचारी फोन पर ओटीपी या बैंक पासवर्ड नहीं मांगते। अनजान नंबरों पर भरोसा करने से पहले जांच जरूर करें, आपकी समझदारी ही आपकी सुरक्षा है।
0: और साथ ही साथ आपको भी पता है कि डिजिटल जमाना हो गया है, सोशल मीडिया पर आजकल हर चीज अवेलेबल है, आपको वहीं से जानकारियां भी मिल जाती है। और कभी कभी ऐसा फेक न्यूज भी आ जाता है जहां आपको कहा जाता है कि हम आपको लिंक शेयर करेंगे, आपको इसको फिल करना है, पूरी डिटेल्स भरना है। लेकिन इस चक्कर में ना कभी कभी हम भी सच मान लेते हैं, यार ये तो सच होगा, और घर बैठे बैठे हम अपना फॉर्म भर सकते हैं और इससे अच्छा क्या ही होगा। लेकिन याद रखिए हर बार सही जानकारी और लिंक आपको ऐसा नहीं मिलता है। इसीलिए जब भी आप कोई लिंक सोशल मीडिया के थ्रू फॉर्म फिल करते हैं तो उन पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आजकल लोग आधार कार्ड और निजी दस्तावेज सोशल मीडिया पर शेयर कर देते हैं, ऐसा करना खतरनाक हो सकता है। अपने जरूरी दस्तावेज हमेशा सुरक्षित रखे और इंटरनेट पर सोच समझ कर ही कुछ पोस्ट करे। सुरक्षित इंटरनेट, सुरक्षित जीवन।
1: अरे वारीना, ये तो आपने बहुत कमाल की अपडेट बताई है, बहुत अच्छी जानकारी दी है। एक्चुअली कई बार ऐसा होता है रीना जी, सोशल मीडिया पर क्या होता है मैं आपको बताती हूँ कि हमें ना जैसे शॉपिंग को लेकर हो गया या फिर कोई ऐसी चीज है कि आपको घर बैठे जॉब मिल जाएगी, तो इस तरह से कि आपको ये आपको फॉर्म फिल करना है और आपको आसानी से आपको जो आप कोर्स करना चाहते हैं, चाहे मैनेजमेंट का हो चाहे वो ब्यूटी का हो, एंड बहुत सारे कोर्सेज होते हैं जो फेक भी होते हैं, उनकी फेक वेबसाइट होती है। अगर आप कोई भी फॉर्म फिल कर रहे हैं तो पहले पूरी जानकारी लें, उस वेबसाइट के बारे में पूरा जानें, उसके बाद ही आप किसी भी लिंक पर क्लिक करें। और दोस्तों अफवाहों से भी बच के रहिए, कई बार लोग अफवाहें फैला देते हैं लेकिन सही सरकारी प्रक्रिया में डरने की जरूरत नहीं होती है, बस जागरूक रहने की जरूरत होती है, सही जानकारी दें और अफवाहों से दूर रहें।
0: क्या बात है जी, बहुत अच्छी बात कही तुमने। और जनगणना और गांव की बातें करेंगे हम। जनगणना सिर्फ शहर के लिए नहीं होती, गांव के लिए भी उतनी ही जरूरी होती है। इसी से पता चलता है कि कहां सड़क चाहिए, कहां स्कूल और कहां अस्पताल की जरूरत है। आपकी जानकारी गांव के विकास में मदद कर सकती है। इसीलिए जब भी आपसे कोई पूछने आए, जनगणना करने आए, तो आपने जो डिटेल्स है वो शेयर करिए। और आपको भी पता है कि OTP, आधार कार्ड ऐसा कुछ नहीं शेयर करना है। सो आगे भी हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर लेते एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद लौट कर आते हैं, करेंगे ढेर सारी बातें। ये गाना एंजॉय करिए आप।

0: दोस्तों बहुत ही प्यारा सा ये गीत आपने एंजॉय किया आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और जनगणना और शिक्षा की अब हम बात कर रहे हैं साथियों। जनगणना से सरकार को पता चलता है कि कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं और कहाँ नए स्कूल की जरूरत है, यानी आपकी जानकारी बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने में मदद करती है। सही जानकारी देना देश की तरक्की में योगदान देना है।
1: सही जानकारी देश की तरक्की। सोचिए अगर आप बच्चे को स्कूल में भेज रहे हैं और देखा होगा कि गवर्नमेंट स्कूल में खुशी बहुत सी सुविधाएं बच्चों को मिलती है। इनफैक्ट ना कोई फीस लगता है वहाँ पर, ड्रेसेस और बच्चे के अकाउंट में पैसे भी आते रहते हैं
0: और बुक्स भी मिलती है।
1: हाँ, जूते, मतलब हर चीज अवेलेबल मिलता है वहाँ पर। तो मतलब यही है कि आप सही जानकारी देंगे तभी और भी सुविधाएं आपको मिल पाएगी। और अब हम बात करेंगे जनगणना और स्वास्थ्य। जनगणना से यही पता चलता है कि किस इलाके में अस्पताल और स्वास्थ्य सेवा जरूरत ज्यादा है, इसी आधार पर नई सुविधाएं शुरू की जाती है। इसीलिए आपकी सही जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर कहीं पर आपको, क्योंकि देखा जाए हम पानी के वेस्टेज बहुत ज्यादा करते हैं, कहीं किसी इलाके में नल नहीं है तो आप उससे इसके बारे में भी खुलकर बताएं। कहीं आसपास आपके जो नाले हैं वो बहुत गंदे हैं, काफी टाइम से सफाई नहीं हो पा रही है, तो उसके बारे में भी आप बताएं। लेकिन डिटेल आपने सही जानकारी देनी है।
0: मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगी रीना, जैसे आपने बोला कि साफ सफाई के बारे में भी हम बता सकते हैं कि कई बार क्या होता है ना अस्पताल के बारे में, कुछ गाँव ऐसे भी हैं अभी जहाँ पर अस्पताल की सुविधाएं नहीं होती हैं। जब तक वो शहर पहुँचते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो इसीलिए साथियों अगर आप सही जानकारी देंगे तो आपके गाँव में भी अस्पताल होंगे और जब अस्पताल होंगे तो जो मरीज को प्रॉब्लम है, जो पेशेंट होते हैं, वो जल्दी से उनको इलाज भी मिलेगा और जब इलाज सही समय पर मिलेगा तो उनका स्वास्थ्य भी एकदम स्वस्थ हो जाएगा। तो दोस्तों अभी हम बात कर रहे थे, रीना जी बात कर रही थी स्वास्थ्य और गणना के बारे में। अब मैं बात करना चाहूंगी मोबाइल फ्रॉड के बारे में। मोबाइल फ्रॉड से सावधान रहें। अगर साथियों कोई मोबाइल पर लिंक भेजकर जानकारी मांगे तो तुरंत क्लिक मत कीजिए। फर्जी लिंक आपके फोन और बैंक खाते को नुकसान पहुंचा सकता है, इसीलिए मैं आपसे कहती हूं सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। तो साथियों अभी लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद आपसे करेंगे और भी बातें। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आज लेकर आए हैं आप सभी के लिए। कार्यक्रम का नाम है महिला मंच, जहां पर महिलाओं की बातें भी होती हैं, बुजुर्गों की बातें भी होती हैं और छोटे बच्चों की बातें भी होती हैं और हम जैसे युवाओं की बातें भी होती हैं।

0: क्या बात है जी, बहुत ही प्यारा गाना एंजॉय किया आपने। और गाने के बाद फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है महिला मंच शो में, जहां हम बात कर रहे हैं जनगणना के बारे में। जागरूक नागरिक बनिए, देश की प्रगति सिर्फ सरकार नहीं बल्कि जागरूक नागरिक भी तय करते हैं। सही जानकारी देना और दूसरों को जागरूक करना हम सबकी जिम्मेदारी है। आइए मिलकर जिम्मेदार नागरिक बने। देखिए, अगर आपको पता चल जाए किसी चीज के बारे में कि हमें इसके ऊपर सही बोलना चाहिए, सही जागरूकता देनी चाहिए, तो आप अपने आसपास के जो व्यक्ति हैं, जो बोलने से झिझकते हैं, आप उनको भी समझा सकते हैं साथ ही साथ।
1: और मैं अभी बताना चाहूंगी, परिवार की सुरक्षा जरूरी है। अपने परिवार को ऑनलाइन फ्रॉड और धोखाधड़ी के बारे में जरूर बताइए। बच्चों और बुजुर्गों को विशेष रूप से जागरूक बनाइए। सुरक्षित परिवार ही खुशहाल परिवार होता है। देखिए, कई बार ऐसा होते ना श्रोताओं, मैं आपको बताती हूँ कि हमारी फैमिली में बड़े बुजुर्ग होते हैं और आजकल तो फोन हर किसी के हाथ में होता है, चाहे बच्चे हों, बड़े हों या फिर हम जैसे यूथ हों। तो हम तो क्या होता है, कई बार जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं वो इतना एजुकेटेड नहीं होते हैं, और कई बार होते भी हैं तो उनको फोन के बारे में इतनी नॉलेज नहीं होती है। कभी कभी वो क्या करते हैं, जैसे ऑनलाइन कॉल्स आ जाते हैं, बहुत सारे कॉल्स आ जाते हैं, फ्रॉड कॉल्स आ जाते हैं, जिस पर वो कॉल पर जानकारियां मांग लेते हैं जो आपकी पर्सनली होती है। तो आप अपने बड़े बुजुर्गों को समझाइए, छोटे बच्चों को भी बताइए कि ऑनलाइन कोई भी अगर फोन पर कोई लिंक आ रहा है तो उस पर तुरंत क्लिक ना करें, पहले घर में जानकारी लें, उसके बाद ही उसको टच करें, क्योंकि कई बार छोटी सी गलती ना

0: बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है।
1: जब कोई सरकारी अधिकारी आए तो सहज से सहयोग करें, जरूरी सवालों के सही जवाब दे और किसी भी बात को समझने में परेशानी हो तो पूछने में संकोच ना करे। जागरूकता और सहयोग दोनों जरूरी है। क्या होता है श्रोताओं, कभी कभी कुछ चीजें हमें समझ में नहीं आती है और वहाँ पर हम झिझकते हैं कि यार मैं इसे दोबारा पूछूं या ना पूछूं, कभी ये कुछ बोले ना। देखिए, आपको कोई भी कुछ नहीं बोलेगा, आप जितनी बार हो सके उतनी बार आप पूछ सकते हैं, क्योंकि जब आपको सही सवाल पता होगा तभी आप सही जानकारी दे पाए।
0: अब दोस्तों हमारे जाने का भी वक्त हो गया है और जाते जाते बस अंतिम संदेश आपको हम देना चाहेंगे। साथियों, जनगणना देश के विकास का आधार है। सही जानकारी दीजिए, लेकिन OTP, ATM, पिन, बैंक पासवर्ड और निजी दस्तावेज किसी अनजान व्यक्ति के साथ शेयर मत कीजिए। जागरूक बनिए, सुरक्षित रहिए और देश के विकास में अपना योगदान दीजिए। मैं RJ खुशी अब लेती हूँ आपसे जाने की अनुमति। सुनते रहिए, ऐसे ही बहुत सारी जानकारी वाले कार्यक्रम लेकर आते हैं हम आपके लिए एवरीडे महिला मंच में। तो अब हमें जाने की अनुमति दीजिए, मिलेंगे आपको कल नए एपिसोड में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
1: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
0: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
1: अरे नहीं,
2: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
1: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड क्वाइन जीतने का मौका भी है।
0: अच्छा?
2: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता जैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद। DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
3: प्राथमिक विद्यालयों का समर्थता स्वरूप, यूपी में शिक्षा का निखरता रूप।
4: ऑपरेशन कायाकल्प ने प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों की बदली तस्वीर।
3: पीएम पोषण से पौष्टिक भोजन, तो स्मार्ट क्लास से मिल रही है आधुनिक शिक्षा की नई रोशनी।
4: शारदा कार्यक्रम से आउट ऑफ स्कूल बच्चों विद्यालय से जुड़े, समर्थ के माध्यम से दिव्यांग बच्चों की समावेशी शिक्षा के द्वार खुले।
3: अब यूपी में हर बच्चा पढ़ता है, हर बच्चे का आगे बढ़ने का सपना पूरा होता है।
4: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।

0: हेलो जी, गुड वाली आफ्टरनून है। फरमाइश शो में आर्जरीना के साथ अब कनेक्टेड श्रोता हो। और समय की बात करूँ तो 3:11 हो चुके हैं और आपका ध्यान ओए होए थोड़ा इधर उधर है, तो कोई बात नहीं जी। अब देख लीजिए घड़ी में, यानी कि 3:11 हो चुके हैं और आपका फरमाइश शो है वो शुरू हो चुका है। और आज की तारीख 12 सितंबर और टेम्परेचर मुरादाबाद की अगर मैं बात करूँ तो 33 डिग्री सेल्सियस, यानी कि हवाओं के साथ बादल। हाय हाय, बड़ा ही मजा आ रहा है बाहर सच में। धूप के साथ साथ बादल और बादल के साथ साथ हवाएं। लेकिन जब भी रात होती है ना भैया, ये हवाएं पता नहीं कहाँ लुप्त हो जाती हैं, एक पत्ता नहीं हिलता है, लेकिन दिन में हवाएं चलती रहती हैं। खैर, फिलहाल हम अपने अगले कॉलर से बात करते हैं, यानी कि फर्स्ट कॉलर से बात करते हैं कि कौन हमारे साथ कनेक्ट होती हैं और कौन सा गाना सुनना चाहती हैं। हेलो
1: हेलो, अस्सलाम वालेकुम मैम।
0: जी वालेकुम सलाम, क्या नाम है आपका?
1: मैं सीमा अंसारी बोल रही हूँ।
0: हाँ जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप? मुरादाबाद से।
1: जी
0: ओके जी, क्या करती हैं आप?
1: मैं सिलाई करती हूँ।
0: अच्छा, सिलाई करती हैं आप, सूट वगैरह बनाती हैं आप, है ना?
1: जी मैम।
0: जी बताइए, कौन सा गाना सुनना चाहती हैं आज?
1: अरिजीत सिंह वॉइस में सुना देना, गहरा हुआ।
0: ओके, किन के लिए सुनना है आपको ये गाना?
1: मेरी फैमिली और मैं, मेरी सिस्टर।
0: ओके चलिए, उन्हीं के साथ आपको ये गाना सुनवाते, ठीक है? तो चलिए श्रोताओं, अरिजीत सिंह की आवाज में गाना सुनते हैं, गहरा हुआ। बहुत ही शानदार गाना है, धुरंधर मूवी से ये गाना है। और इस गानों को एंजॉय करिए और आप भी हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। नंबर है 9837896896 पर कॉल करके। आपके जो फरमाइश वाले कॉल गाने हैं उसको हम प्ले करने के लिए आ गए आप सभी के बीच। लेकिन एक बात आपने ध्यान रखना है कि जिन्होंने मंडे सैटरडे, यानी कि मंडे ट्यूसडे वेनसडे थर्सडे कॉल किया है, तो कृपया वो ना करें। इनफैक्ट फ्राइडे तक भी जिन्होंने कॉल किया है वो ना करें, और जिन्होंने कॉल नहीं किया है, जिनका नंबर नहीं मिला है, नहीं आया है, वो कॉल कर सकते हैं। क्योंकि हर किसी के फरमाइश सुनना बहुत ज़रूरी है और आपके साथ साथ उनके भी फरमाइश बहुत लाजवाब होते हैं।

0: जी गर्ल्ड वाली आफ्टरनून है और बहुत ही शानदार वाला आपने गाना एंजॉय किया है, गहरा हुआ, यानी कि अरिजीत सिंह की आवाज में, इरशाद कामिल जी की आवाज में, बहुत ही खूबसूरत गाना। और ऐसे ऐसे गाने इस मौसम में सुनने को मिल जाना तो मजा ही आ जाता है। आरजे रीना के साथ आप कनेक्ट हैं और समय की बात करूं तो 3:18 हो चुके हैं। और आइए अपने अगले कॉलर से बात करती हैं कि वो कौन सा गाना सुनना चाहती हैं। हेलो।
1: हेलो।
0: हाँ जी मैम, नमस्कार।
1: जी मैम नमस्कार।
0: क्या नाम है आपका, कहाँ से बात कर रही हैं?
1: मेरा नाम ज्योति साहू, मधुसूदनगढ़ जिला गुना मध्य प्रदेश से बात कर रही हूँ।
0: ओके मैम, वहाँ का वेदर कैसा है?
1: मैडम जी बहुत तेज गर्मी लग रही है, अभी बारिश हो गई थी रात के टाइम, अब फिर से बारिश बंद हो गई तो तेज गर्मी लग रही है बहुत तेज।
0: पंखा चला लीजिए।
1: अभी अभी जस्ट अभी लाइट गई, 10 मिनट ही हुए लाइट को गए हुए।
0: अच्छा, बारिश भी और लाइट भी दोनों खक गए है ना?
1: हाँ, वो आज है ना एनिमेटर चार्ज नहीं किया था तो वो भी बैठ गया।
0: मतलब वो कह रहे कि हम भी रेस्ट कर लेते हैं थोड़ा सा। ओके, करते क्या है आप? अच्छा अच्छा चलिए बहुत अच्छी बात है। तो बताइए कौन सा गाना सुनना चाहती हैं आज आप?
1: गाना वो सुनना चाहती हूँ, साजन मेरा उसकी पार है, मिलने को दिल में बेकरार है।
0: चेंज कर दिया आपने तो।
1: हाँ यार मैडम जी एकदम से हुआ वो चेंज। वो है गाना, सात समंदर पार में तेरे पीछे आ गई।
0: मैंने कहा एकदम कैसे चेंज हो गया।
1: नहीं नहीं वो अरे है ना वो टीवी चल रही थी ना तो उसमें यही आ रहा था, इसलिए वो ही निकल गया एकदम से।
0: अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, हो जाती गलतियां तो होती रहती है, इंसान से गलतियां होती है वैसे भी।
1: मैडम जी सॉरी उसके लिए।
0: अरे अरे कोई बात नहीं, इट्स ओके मैम, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। बस आप ये बताइए कि कब से आप हमारा रेडियो सुन रही हैं और कैसा लगता है आपको हमारा रेडियो एफएम मुरादाबाद सुनना?
1: बहुत अच्छा लगता है मैडम जी, लगभग हमको हो रहा है 1.5 साल, हम भी सुनते हैं और अपनी शौक से हमारे पति भी सुनते हैं सुनील
0: साहू जी। ओके ओके, उनका भी कॉल आता है?
1: आता है शायद, लगाते हैं वो भी बोल रहे थे हम भी लगाते हैं, हफ्ता में एक बार लगाते हैं वो।
0: हाँ यही रूल है मैम, हफ्ते में एक बार ही लगाना।
1: हाँ हफ्ता में एक बार लगाते हैं वो।
0: ठीक है जी, हम आपको ये गाना सुनवाते हैं, किसी का नाम लेना है?
1: जी मेरे पति सुनील साहू जी है, वो अपनी शौक से सुन रहे होंगे अभी।
0: अच्छा अच्छा चलिए उन सभी के साथ आपको ये गाना सुनवाते हैं, ठीक है?
1: आपको भी मैडम जी आपके साथ
0: ही सुनते हैं हम। ओके ओके, मैं तो ऑलरेडी है सुनी रही हूँ आप सभी के फरमाइश। ठीक है जी, ओके बाय
1: बाय, धन्यवाद
0: जी, शुक्रिया। तो चलिए गाना सुनते हैं, सात समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, बहुत ही शानदार गाना है। विश्व आत्मा मूवी से ये गाना सुनेंगे, यानी कि 1992 में ये मूवी रिलीज हुई थी।

0: क्या बात है जी, बहुत ही शानदार आपने गाना एंजॉय किया है। और दिव्या भारती, सनी देओल इस मूवी के अंदर, यानी कि इनके ऊपर ये मूवी फिल्माया गया, जो कि मूवी सच में बहुत अच्छी है। अगर आपने नहीं देखी है तो एक बार ज़रूर देखिएगा। शारदा सरगम जी की आवाज़ में आपने गाना एंजॉय किया है। और अगर लिरिक्स की बात करूं तो आनंद बख्शी जी ने लिरिक्स दिया है इस मूवी के अंदर। और चलिए, समय की अगर मैं बात करूं तो समय हो चुका है यहाँ पर 3:27, और अपने अगले कॉलर से बात करते हैं कि वो कौन सा गाना सुनना चाहते हैं। हेलो हेलो
1: हेलो, नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी, कैसे हैं आप?
1: ठीक है जी, बहुत बढ़िया। और आदाबाद ही बातचीत हो रही है मेरी
0: जी। क्या नाम है आपका, कहाँ से बात कर रहे हैं ये बताइए
1: जी। मैं मनोहर लाल गांधी विजयनगर चाणक्य चौक गाजियाबाद से बोल रहा था
0: जी। क्या करते हैं सर आप
1: जी? मेरी कपड़े की शॉप है और मैं यही अपना रेडियो संगीत सुनता रहता हूँ।
0: अच्छा, कब से सुन रहे सर आप रेडियो
1: जी? मुझे 50 साल हो गए।
0: ओह, 50 साल। सबसे पहले आपने रेडियो सुनना कहाँ से शुरुआत करा था?
1: ये विविध भारती आता था पहले, वही सुनते थे हम।
0: अच्छा, विविध भारती।
1: उसके बाद फिर युवाणी आ गया, अजीबाबाद, ये सब।
0: ओके, इसके साथ साथ मुरादाबाद भी कनेक्ट हो गया।
1: हाँ जी, मुरादाबाद भी सुनने लगे हैं 2-3 साल से।
0: ओके,
1: बहुत अच्छे प्रोग्राम आते हैं, ये संगीत बहुत ही मनपसंद का बजता है यहाँ पे।
0: चलिए,
1: बहुत एंजॉय करते हैं हम।
0: बहुत अच्छी बात है कि सर आप सब एंजॉय करते हैं। तो बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: ये फिल्म का नाम डर है। इसके बोल है, जादू तेरी नजर, खुशबू तेरा बदन, ये सुना।
0: ठीक है जी, ये गाना सुनवाते हैं। किसी का नाम लेना चाहेंगे आप?
1: ये हमारे दोस्त है, ये हेलो परदाई स्टेज का ग्रुप है, तो वही हमें जो है मुरादाबाद की सब प्रोग्राम आना जानकारी मिलती रहती है।
0: ओके,
1: तो सभी दोस्तों के लिए मैं, शारुन नूर अंसारी जी हैं, लोकेंद्र वर्मा जी हैं, और भी बहुत सारे दोस्त हैं, मैं सभी के लिए गीत डेडिकेट करूँ।
0: ठीक है, ठीक है सर, आपको हमें ये गाना सुनवाते, कॉल करने के लिए शुक्रिया सर
1: जी। धन्यवाद।
0: तो गाने से पहले कुछ कमर्शियल एड ब्रेक का टाइम हो गया, उसके बाद हम गाना सुनवाएंगे। फिलहाल आप कॉल करते रहे, नंबर है 9823789689।
2: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM.
3: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का थ्रिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
4: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
5: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार, तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
6: किरण, आई लव यू, आई लव यू किरण।
7: वाह, क्या तेवर है सुनील के आने का।

0: क्या बात है जी। जादू तेरी नजर का डर मूवी से आपने ये गाना एंजॉय किया है उदित नारायण जी की आवाज में, साथ ही साथ आनंद बख्शी जी की आवाज में। बहुत ही खूबसूरत गाना। और कुछ गाने ना बहुत ही शानदार वाले होते हैं जो दोपहर को भी ना बिल्कुल एकदम शांत माहौल वाला, क्योंकि ये समय ऐसा है कि बहुत से इस टाइम ना आराम से सोते हैं, रिलैक्स फील करते हैं कि पूरा दिन काम करते हैं, लेकिन एक दोपहर का ऐसा समय मिलता है कि आराम से हम सो सके, चैन की नींद ले सके, और साथ ही साथ आपके पसंद के गाने मिल जाए तो और भी अच्छी तरीके से नींद भी आ जाती है। तो आपने क्या करना है जी, आपके जो ये फरमाइश शो है वो शुरू हो चुका है, यानी कि समय की बात करूँ तो 3:34 हो चुके हैं और आप हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर है 9837896896 पर, क्योंकि कल तो संडे है और संडे को आपको फिर ये मौका नहीं मिल पाएगा। इसीलिए जिन्होंने इस वीक कॉल नहीं किया है आराम से कॉल करिए, अपना गाना सुनकर एंजॉय करिए। चलिए फिलहाल अपने अगले कॉलर से। ओके ओके ओके। तो मुरादाबाद रेडियो कब से सुन रहे हैं आप?
1: मुरादाबाद रेडियो तो हम बहुत दिनों से सुन रहे हैं, बहुत दिनों से। जब
0: ओके ओके ओके
1: आपके यहाँ पे आरजे आनंद जी नहीं कर रहे थे उसके पहले से जानते हैं।
0: ओके ओके। चलिए बहुत अच्छी बात है सर। तो बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
1: गाना तो हम सुन लेंगे, क्या आपके प्लेटफॉर्म पे कुछ दिल की भी बातें श्रोता कह सकते हैं कि नहीं
0: अरे
1: कर
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: कह सकते हैं?
0: हाँ हाँ कहिए।
1: हमने सुना है कि शायद आप लोग ज्यादा टाइम नहीं देते हैं श्रोताओं को या किसी भी
0: नहीं देखिए, अगर आपको शायरी सुनाना है तो बिल्कुल सुनाइए सर, कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए। हाँ हाँ सुना सकते हैं, बोलिए।
1: ये आपको भी मालूम होगा, अगर हम इसी पेशे से जुड़े हैं तो जाहिर सी बातें हैं, सब रेडियो की बातें एक आरजे को खबर पता चलता ही है,
0: जी,
1: और हमें भी सारी खबरें मिलती रहती हैं। हमारे प्लेटफॉर्म की भी सारी खबरें शायद हर किसी रेडियो चौकी को भी मिलता होगा,
0: ओके हाँ जी बिल्कुल सही कहा आपने।
1: और हमारे रेडियो प्लेटफॉर्म पे तो एक नहीं दो दो तीन तीन लोग बात करते हैं, और जिनकी जितनी
0: एक
1: इच्छा
0: मिनट सर,
1: होती
0: मैं ऑफ एयर आपसे बात करती हूँ, ठीक है? पहले मैं गाना प्ले कर दूँ, फिर ऑफ एयर बात करते हैं। तो चलिए श्रोताओं, पहले ही हम गाना सुनते हैं, उसके बाद आप सभी के साथ कनेक्ट होंगे और करेंगे ढेर सारी।

0: जी गर्ज वाली आफ्टरनून है आर्जरीना के साथ एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे गुनगुनाते रहे जी। और समय की अगर मैं बात करूं तो 3:53 हो चुके हैं और आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, 5:43 हो चुके हैं। और इसके लिए अगर आप चाहते भैया कि आप अपने पसंद का गाना सुने तो हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर है 9837896896 पर कॉल करके आप अपने फेवरेट वाला गाना एंजॉय कर सकते हैं फरमाइशों में। फिलहाल हम अपने अगले कॉलर से बात करते हैं कि वो कौन सा गाना सुनना चाहती हैं। हेलो,
1: हेलो फरमाइश
0: जी, बोलिए। बहुत बढ़िया हूँ, आप बताओ कैसी हो?
1: मैं भी बहुत अच्छी हूँ
0: दी। और अपना नाम भी बता दो जरा श्रोताओं को।
1: जी जी बिल्कुल, मैं अक्का भीकनपुर मुरादाबाद से अफरोज फातिमा बोल रही हूँ।
0: जी अफरोज फातिमा जी, क्या कर रही हैं अभी आप राइट नाउ?
1: जी अभी तो मतलब काम से फ्री हुई हूँ और आपका प्रोग्राम सुन रही हूँ।
0: ओके, घर का पूरा काम कर लिया आपने यानी कि?
1: हाँ जी, कुछ फाइनल हो गया है, कुछ रह भी गया, खाना
0: वाना बनने का रह गया है। अरे वो तो शाम को ही बनेगा ना।
1: हाँ जी, क्योंकि आज आलू के पराठे बनेंगे ना, तो एक घंटा बाद से ही तैयारी शुरू कर दूंगी।
0: ओ, आलू के पराठे खुशबू आ रही है मुझे तो।
1: आ जाइए
0: बिल्कुल, आपने बुलाया और हम आ गए। जी बताइए कौन सा गाना सुनना चाहती हैं आप?
1: जी आज मैं सॉन्ग सुनना चाहती हूँ, हमें तुमसे मोहब्बत मिली है, ओ जाने मन
0: टू लव मी। ओके, किन के साथ आप ये गाना सुनना चाहते हैं?
1: ये सॉन्ग स्पेशली मेरी बेस्टी लाइबा के लिए है। और साथ में मेरी सिस्टर नजमा दरसदा, राबिया, रुकैया, आसिया, राम हुसैन, शबनम भी।
0: चलिए जी,
1: जितने भी लिसनर सुन रहे हैं सभी को डेडिकेट है ये सॉन्ग।
0: ओह, सभी के साथ सुनना चाहती हैं?
1: दीदी अच्छा लगता है क्योंकि कभी कभी सुन लेना चाहिए सभी के साथ।
0: ये तो बात सही कहा आपने।
1: हाँ दी, मैं एक शायरी सुनाना चाहती हूँ।
0: हाँ।
1: दिल की किताब में गुलाब उनका था, दिल की किताब में गुलाब उनका था, रात की

0: नींदों में ख्वाब उनका था, कितना प्यार करते हो जब हमने पूछा उनसे, कितना प्यार करते हो जब हमने पूछा उनसे, मर जाएंगे तुम्हारे बिना, ये जवाब उनका था।
1: क्या बात है, बहुत बहुत ही गहराई वाली शायरी सुना दी आपने तो।
0: जी जी मुझे अच्छा लगता है शायरी करना रेडियो पे, मतलब मैं करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है।
1: अच्छी बात है, जो आपके अंदर हुनर है उसको मतलब प्रेजेंट करना भी बहुत जरूरी होता है।
0: जी जी मैं बचपन से सोचती थी जी मैं रेडियो पे कॉल करूँ, लेकिन उस टाइम पे हम रामपुर का अभी भारती सुनते तो हमारी कॉल शामिल नहीं होती थी, लेकिन जब से हमारे मुरादाबाद में रेडियो स्टेशन शुरू हुआ है तब से हमारी कॉल लग भी जाती है, हमारी बात भी होती है और दोस्ती भी इतनी अच्छी हो गई है आप लोगों से।
1: वो तो सर मैम देखिए, जब हम बात करते रहते हैं ना वो तो इंसान की बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करता है ना।
0: जी जी बिल्कुल, क्योंकि इंसान का नेचर ही मतलब अच्छा होना चाहिए थी, तभी तो इंसान दोस्ती करता है ना।
1: और क्या, अगर आप आगे से आपको आपको लग रहा है कि भाई मेरी डिसरिस्पेक्ट हो रही है तो फिर वहाँ पे कैसे हो सकता है?
0: बिल्कुल नहीं हो सकता ना, वो हर किसी से तो बिल्कुल नहीं हो सकता ना जी।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, और हर किसी से वाइब भी नहीं मिलती है।
0: बिल्कुल नहीं मिलती, क्योंकि हर कोई ऐसा नहीं होता ना, एक जैसा नहीं होता ना, सब अलग अलग ही होते हैं।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने। तो चलिए मैं आपको ये गाना सुनवाती हूँ, ठीक है?
0: उर्दी सदनम भी की मैंने ना कॉल सुनी है ना उनका कोई मैसेज आ रहा है, अगर वो सुन रहे हो तो कॉल कर ले आज।
1: जी बिल्कुल, आपकी आवाज सुन ली होगी तो वो कर ही लेंगी।
0: जी जी क्योंकि बहुत दिनों से मैंने उनकी कॉल सुनी नहीं है और ना ही कोई मैसेज डाला है उन्हें।
1: ओके ओके, तो आप फोन करके पूछ सकती है उनसे।
0: मेरे पास नंबर नहीं है ना दी उनका,
1: मेरी
0: आवाज सुनने को मिल जाती है।
1: ओके ओके चलिए अच्छी बात है, अगर सुन रही होंगी तो वो कर ही लेंगी कॉल।
0: दीदी अगर सुन रही होंगी तो उनका कॉल जरूर आएगा।
1: चलिए हम आपको ये गाना सुनवाते, ठीक है?
0: थैंक यू दी, बाय।
1: ओके बाय। चलिए गाना सुनवाने से पहले कुछ कमर्शियल एड ब्रेक।
2: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
3: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का थ्रिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम, स्पा एंड मच मोर।
4: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
5: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
6: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
5: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना, पुराना सोना लाओ नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर, 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर, किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी, 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद, कॉल करें 7055070552।

0: This email has...
1: हमें तुमसे मोहब्बत हुई है और जाने मन do you know. क्या बात है जी, बहुत ही शानदार वाला आपने गाना enjoy किया है वेलकम मूवी से. और सच में कुछ गाने ना बड़े ही लाजवाब वाले होते हैं, जिसे सुनकर ना दिल गार्डन ही गार्डन हो जाता है. और समय की अगर मैं बात करूँ तो 3:54 हो चुके हैं और आप हमारे पास कॉल कर सकते हैं, नंबर है 9823789698 पर. चलिए फिलहाल हम अपने अगले कॉलर से बात करते हैं कि वो कौन सा गाना सुनना चाहते हैं. हेलो जी सर, गुड आफ्टरनून.
2: गुड आफ्टरनून मैम
1: जी, बताइए क्या नाम है आपका.
2: मेरा नाम शमसुल इस्लाम
1: जी. कहाँ से बात कर रहे हैं.
2: ग्राम खेड़ा टांडे से.
1: ओके, क्या काम करते हैं आप.
2: मैम अभी पढ़ाई पूरी की है.
1: अच्छा, अभी पढ़ाई कंप्लीट कर ली आपने, चलिए बहुत अच्छी बात है. तो आप आगे क्या करना चाहते हैं.
2: आगे मैम फार्मेसी की पढ़ाई की है और फार्मेसी में कोई काम कर रहे
1: हैं. अच्छा, फार्मेसी. डी फार्मा बी फार्मा.
2: डी फार्मा.
1: अच्छा, डी फार्मा सीधा डिग्री.
2: डिप्लोमा इन फार्मेसी.
1: ओके, और बैचलर.
2: बैचलर नहीं किया मैम.
1: तो वो तो जरूरी है सर इसके लिए.
2: नहीं नहीं कर पाए.
1: अच्छा अच्छा, चलिए बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं.
2: रब ने बनाया तुझे मेरे लिए मुझे तेरे.
1: ओके, किसी का नाम लेना चाहते हैं.
2: मोहम्मद तालिम, मोहम्मद कामिल, वसीम भाई.
1: चलिए सभी के साथ आपको ये गाना सुनवाते हैं, ठीक है. ओके, तो चलिए श्रोताओं, लता मंगेशकर जी की आवाज़ में खूबसूरत गाना सुनते हैं, रब ने बनाए तुझे मेरे लिए और मुझे तेरे लिए. अनिल कपूर और श्रीदेवी के ऊपर ये मूवी फरमाया गया है. सो इस मूवी के गाने को सुनते हैं और उसके बाद लौट कर आते हैं आप सभी के साथ, करेंगे क्या ढेर सारी बातें.

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: सिरदर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
2: स्किन एलर्जी, मस से नाखून बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग। यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2, निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद, 7983153386।
3: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार, तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।

0: हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है आरजे रीना के साथ एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और देखिए श्रोताओं, दूसरे घंटे की शुरुआत हो गई है, यानी कि 4:07 हो चुके हैं और मुरादाबाद का टेम्परेचर धूप के साथ, बादल के साथ, हवाएं ठंडी हवाओं के साथ आप इस मौसम का आनंद ले रहे हैं और साथ ही साथ दोपहर में सोने का अलग ही मज़ा होता है। लेकिन सोचिए, अगर आप सोए और जब भी आपको नींद आई और 2 सेकंड के अंदर आपको कोई उठाने के लिए आ गया तो भैया सर भारी हो जाता है। इसीलिए आप अपना पूरा काम ख़त्म करके ही सोए, तभी आपको आनंद आएगा। अदरवाइज तो भैया बोलेंगे कि यार अभी सोया था, अभी उठ गया, मैं सर भारी लग रहा है मेरा। तो इस चीज़ का भी आपने प्रॉपर ध्यान रखना है। और कल संडे हैं तो संडे को आपको ये मौका नहीं मिल पाएगा, यानी कि फरमाइशों में कनेक्ट होने के लिए। तो आज ही आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हो और अपने पसंद के गाना सुन सकते हो और किसी को डेडिकेट कर सकते हो। तो चलिए अपने अगले कॉलर से बात करते हैं कि वो कौन सा गाना सुनना चाहते हैं। हेलो
1: मैम, आदाब
0: जी। आदाब, कैसे हैं आप?
1: मैम खैरियत से हैं, आप कैसी हैं मैम?
0: बहुत बढ़िया हैं। क्या नाम है आपका?
1: मैम मैं आरिफ खान मंसूरी बात कर रहा था
0: जी। कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: मैं भोपाल एमपी से बात कर रहा था मैम।
0: ओह, भोपाल से। कैसा है भोपाल का वेदर?
1: मैम भोपाल का मौसम, अभी बारिश हो रही थी आधे घंटे पहले, अब धूप निकल रही है।
0: अच्छा, गर्मी हो गई अब फिर से?
1: नहीं गर्मी नहीं, ठंडी हवाएं चल रही है, बाकी धूप निकल रही है हल्की।
0: अच्छा, हल्की धूप निकल रही है, चलिए बहुत अच्छी बात है। बताइए सर, और क्या करते हैं आप?
1: मैम मैं टेलर हूँ और अभी सिलाई कर रहा था।
0: अच्छा, सिलाई करते करते आपने सोचा कि चलो गाना सुन लेते हैं।
1: और 3:11 से आपका शो शुरू हुआ है, मैं शुरू से सुन भी रहा था, क्योंकि हम 3 से 5 जरूर सुनते हैं ये शो आपका।
0: अच्छा अच्छा, उसके बाद नहीं सुनते हैं आप?
1: उसके बाद मैम फिर हम नहीं सुनते हैं।
0: अच्छा, बस सिर्फ फरमाइश शो आपको अच्छा लगता है?
1: ये फरमाइशों का अच्छा लगता है, क्योंकि नए नए श्रोता बात करते हैं और उनकी पसंद जो होती है वो बहुत अच्छी होती है। और
0: ओके सर, और भी शो सुना करिए, आपको अपडेट्स मिलेगा देश दुनिया में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है।
1: जी मैम सुनेंगे।
0: जी बिल्कुल, सुनिएगा ना आप?
1: जी सुनेंगे, जरूर सुनेंगे मैम।
0: जी तो बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
1: आप मुझे सुनवा दीजिए, गीत के बोल है चांदी जैसा रंग है तेरा सोने जैसे बाल।
0: ओके, किन के लिए आप ये गाना सुनना चाहते हैं?
1: ये हमारे मित्र हैं, गजराज लोधी जी हैं, केला राजपूत जी हैं।
0: ओके,
1: और एक और है सारू नूर अंसारी जी, ये उनके लिए रहेगा मैम।
0: चलिए उन्हीं के साथ आपको ये गाना सुनवाते हैं और सभी सुनने वालों के साथ।
1: ठीक है, थैंक यू मैडम।
0: ओके वेलकम जी। तो चलिए गाना सुनते हैं और एंजॉय करते हैं और आप भी कॉल करते रहे, नंबर है 9823789 8296।

0: धन्यवाद जी, बहुत ही शानदार आपने पंकज जी की आवाज़ में बहुत ही खूबसूरत आपने गाना एंजॉय किया है, चांदी जैसे रंग है तेरे सोने जैसे बाल। और जिस खूबसूरती से इस गाने को फरमाया गया है ना भैया, अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आप इस गाने में मग्न हो जाएंगे, गुम हो जाएंगे। जैसे आप FM मुरादाबाद रेडियो सुनते हैं सुबह से लेकर शाम तक, आपको आनंद ही आनंद आता है। तो फिलहाल आरजे रीना आप सभी के साथ कनेक्ट है, इवनिंग गुड वाली इवनिंग है। और समय की बात करूं तो 4:17 हो चुके हैं, और आइए बिना किसी देरी के अपने अगले कॉलर से बात करते हैं कि वो कौन सा गाना सुनना चाहते हैं। हेलो
1: जी, हेलो फरमाइश।
0: जी सर, हेलो फरमाइश।
1: कहते हैं कि कौन हेलो फरमाइश में आज शामिल हो रही है हमारी, किसी ने आज का दिन का नजारा भी है बड़ा ही प्यारा। तो रीना जी आपकी शान में कबूल हो मोहब्बत भरा नमस्कार हमारा।
0: जी आपको भी नमस्कार, बताइए क्या नाम है आपका।
1: मैं जिला रामपुर ग्राम खेतांडे से वसीम अकरम बात कर रहा हूँ आपसे।
0: जी बताइए कैसे हैं आप।
1: एकदम अच्छे हैं, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है, आपकी दुआएं हैं। और मैं जानना चाहूंगा कि आपकी फैमिली में और स्टूडियो में सभी लोग कैसे हैं।
0: सब एकदम बहुत बढ़िया है सर, बहुत मस्त है।
1: देखिए मैम, सभी मस्त रहे, स्वस्थ रहे, आप हमेशा हंसती रहे, मुस्कुराती रहे, हम तो यही कामना करते हैं।
0: हाँ जी, तो बताइए आप कौन सा गाना सुनना चाहते हैं।
1: देखिए मैम, गाने से पहले मैं दो लाइनें कहना चाहूंगा।
0: बोलिए बोलिए।
1: जब दिल की तड़प को दिल में ही छुपा लेते हैं, अब दिल की तड़प को दिल में ही छुपा लेते हैं, जब रोना आता है तो बेवजह मुस्कुरा लेते हैं, कोई पूछ ना ले हमसे इस उदासी की वजह, बस नींद आ रही ये कहकर पलके झुका लेते हैं।
0: अच्छी बात है सर, पूछ लेनी चाहिए। अच्छी शायरी थी आपकी।
1: देखिए मैम, जब रामपुर से कॉल शामिल हो रही है तो एक सॉन्ग सुनवा देना।
0: हाँ,
1: बेवफाई के ऊपर सॉन्ग है मैम।
0: अच्छा चलिए जी, हम आपको बेवफाई के ऊपर ही
1: जी, मैं कहना चाहूंगा कि झूठी हंसी चेहरे पर सजा कर बैठा हूँ।
0: ओके।
1: हंसी चेहरे पर सजा कर बैठा हूँ, सारे इल्जाम खुद पर लगा कर बैठा हूँ, और हाथों को कांपना लाजमी है, इसमें हैरत कैसी, मैं खिलौना नहीं मैं महबूब गवा कर बैठा हूँ।
0: सर देखिए, आपकी इतनी खूबसूरती शायरी के लिए मेरे पास अवार्ड तो नहीं है, लेकिन आपको मैं फ्री में गाना सुना सकती हूँ।
1: जी जी गाना सुना दीजिए मैम, और मेरे साथ में मेरे कुछ फ्रेंड है
0: जी,
1: डिस्ट्रिक्ट रामपुर ग्राम खेत अंडर से मोहम्मद कामिल, और जितने भी FM मुरादाबाद 89.0 इस टाइम लाइव सुन रहे हैं सभी के लिए मैम ये सॉन्ग सुनाना चाहूंगा मैम।
0: चलिए जी, सभी के साथ आपको ये गाना सुनवाते हैं, ठीक है।
1: चलते चलते मैम दो लाइनें कहना चाहूंगा।
0: अरे अरे अरे सर,
1: एक जनाजे के खातिर सारा जहां निकला, एक जनाजे के खातिर सारा जहां निकला, एक वो ना निकला जिसके खातिर जनाजा निकला। और परवीन साकिर कह रहे हैं कि ऐ सनम मैं कैसे आता तेरे जनाजे के पीछे, ऐ सनम मैं कैसे आता तेरे जनाजे के पीछे, मेरा अपना खुद का जनाजा था तेरे जनाजे के पीछे।
0: चलिए जी, बहुत अच्छी आपकी शायरी है, और अब हम आपको गाना सुनवाते हैं, ठीक है।
1: थैंक यू मैम।
0: जी भैया, लगता है कि गहरी चोट तो नहीं लगी हुई है भाई, इतनी शायरी, इतनी शायरी, ओ माय गॉड। चलिए, और गाना भी बेवफा है, हाय शीशे का दिल। फिलहाल ये बेवफा गाना है, शीशे का कोई दिल नहीं है, क्योंकि वो टूट जाएगा तो जुड़ेगा नहीं, और इसीलिए दिल कभी टूटता नहीं है क्योंकि हम उसको खुद तोड़ लेते हैं, क्योंकि अटैचमेंट शब्द ना बहुत ही गहरा वाला होता है। जब वो किसी से अटैचमेंट हो जाता है ना, तो भैया फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे, फिर तो मलहम लगाने से भी वो ठीक नहीं होता है। चलिए फिलहाल गाना सुनते हैं।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: सीने में दर्द, सांस फूलना या तेज धड़कन को बिल्कुल नजरअंदाज ना करें। श्री साई हॉस्पिटल में डॉक्टर अखिल कौशिक डीएम कार्डियोलॉजी द्वारा एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर एवं अत्याधुनिक कार्डियक कैथ लैब की सुविधा उपलब्ध है, वो भी किफायती रेट्स पर। स्वस्थ दिल, सुरक्षित जीवन, आज ही अपॉइंटमेंट ले। श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल करें 7060002430।
2: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार, तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
3: प्राथमिक विद्यालयों का समर्था स्वरूप, यूपी में शिक्षा का निखरता रूप।
4: ऑपरेशन कायाकल्प ने प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों की बदली तस्वीर।
3: पीएम पोषण से पौष्टिक भोजन, तो स्मार्ट क्लास से मिल रही है आधुनिक शिक्षा की नई रोशनी।
4: शारदा कार्यक्रम से आउट ऑफ स्कूल बच्चों विद्यालय से जुड़े। समर्थ के माध्यम से दिव्यांग बच्चों की समावेशी शिक्षा के द्वार खुले।
3: अब यूपी में हर बच्चा पढ़ता है, हर बच्चे का आगे बढ़ने का सपना पूरा होता है।
4: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।
5: हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है। फरमाइश शो में आर्जरीना के साथ आप कनेक्ट है। और समय की बात करूं तो 4:26 हो चुके हैं और आज की तारीख 12 सितंबर और दिन शनिवार का।

0: उत्सव को लेकर ना बहुत ही जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं हर जगह जगह भैया उनकी तैयारियों के लिए ना बस कोई भी कमी ना रह जाए, कोई भी त्रुटि ना रह जाए, इसके लिए मतलब अच्छे से तैयारियां की जा रही हैं। तो आप सभी की तैयारियां कैसे चल रही हैं गणेश उत्सव की? और उसी दिन राधा अष्टमी भी है। देखिए राधा अष्टमी भी और गणेश उत्सव भी मतलब कितना ही अच्छा दिन है ना, बहुत ही सुहावन दिन। और दिन रहेगा उस दिन शनिवार का ही, जी शनिवार का ही दिन रहने वाला है आज। आज यानी कि 12 तारीख और शनिवार को गणेश उत्सव और साथ ही साथ राधा अष्टमी। आप सभी को ढेरों सारी एडवांस में शुभकामनाएं। और चलिए फिलहाल अपने अगले कॉलर से बात करेंगे कि वो कौन सा गाना सुनना चाहते हैं और कहां से हमारे साथ कनेक्ट होते हैं। हेलो हेलो
1: हेलो नमस्कार
0: जी। नमस्कार, क्या नाम है आपका?
1: मैं नाम बताने से पहले दो लाइन में आपको शेयर कर देता हूँ।
0: ओके।
1: उदासी में चेहरे की शान चली जाती है, टूटे हुए दिलों की पहचान चली जाती है। हम तेरी जिंदगी से ऐसे चले जाएंगे जैसे किसी हादसे में जान चली जाती है।
0: अरे अरे अरे अरे सर, इतना दुख दर्द वाला शायरी।
1: जी मैम, मेरा नाम अजय कुमार सिहा लिखा जिला मुर्दाबाद से बात कर रहा हूँ।
0: जी जी जी बताइए। और सर फैमिली में कैसे हैं?
1: जी मैम बढ़िया है, आप लोगों की दुआ से। आप बताइए मैम।
0: बहुत बढ़िया है सर, क्या करते हैं आप?
1: मैम मैं पढ़ाई करता हूँ, वैसे भी पेंट का भी काम सीख रहा हूँ मैम।
0: ओके ओके ओके, चलिए सर बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आज?
1: मैम सॉन्ग सुनना है जिंदगी ना टूटे लड़ी।
0: जिंदगी की ना टूटे लड़ी, ओके। किसी का नाम लेना चाहते हैं सर आप?
1: हाँ मैम, जितने सुनने वाले सुता है इनका नाम रेशम मोहित हमारे साथ हैं, इनको और अपनी मम्मी पापा के साथ, फैमिली हमारी भी सुनती है इनके साथ में।
0: चलिए सभी कम
1: आपके साथ, आपके साथ।
0: ओके ओके ओके सर, चलिए अब हम आपको गाना सुनवाते हैं, ठीक है?
1: जी मैम, थैंक यू।
0: ओके वेलकम। तो चलिए गाना सुनते हैं, बहुत ही शानदार गाने की रिक्वेस्ट है। जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। तो इस गाने को एंजॉय करते हैं और आप भी कॉल करते रहिए, नंबर है 9837896896।

0: घड़ी, क्या बात है जी। क्रांति मूवी से आपने ये गाना एंजॉय किया है, बड़ा ही खूबसूरत। जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। लता मंगेशकर जी की आवाज में, नितिन मुकेश जी की आवाज में बहुत ही खूबसूरत आपने ये गाना एंजॉय किया है। और आरजे रीना आप सभी के साथ कनेक्ट है फरमाइश शो में। और समय की बात करूं तो 4 बजकर यानी कि 35 मिनट हो चुके हैं। तो आइए अपने अगले कॉलर से बात करते हैं कि वो कौन सा गाना सुनना चाहते हैं। हेलो
1: जी मैम, जय श्री महाकाल।
0: महाकाल जी कैसे हैं?
1: मैं बहुत बढ़िया मैम। मैं आपका नियमित श्रोता शिवा लोहट एमपी विदिशा से बात कर रहा हूँ मैम।
0: जी, कैसे हैं, क्या काम करते हैं आप?
1: मैम मैं एक्चुअली ब्लाइंड हूँ मैम, समाज सेवा के कार्यों में लगा रहता हूँ। जैसे गाय को चारा रखना हो गया, पक्षियों को दाना रखना हो गया।
0: चलिए
1: और
0: बहुत अच्छा काम है फिर आपका तो।
1: समय समय पे गरीब लोगों को भोजन कराना हो गया मैम, और हर 3 महीने में रक्तदान भी करते रहते हैं मैम।
0: चलिए बहुत अच्छा काम करते हैं सर आप, भगवान की कृपा आपके ऊपर हमेशा बरसती रहे। और बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: जी मैम, गाना जरूर सुनूंगा मैं आपको और आपकी पूरी टीम को और आपको पूरे घर परिवार को और सभी सुनने वालों को आने वाली गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगा और आने वाली तीज की भी।
0: आपको भी जी हमारी तरफ से एडवांस में बहुत बहुत शुभकामनाएं गणेश चतुर्थी की।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मूवी का नाम है मैम कौन है जो सपनों में आया, और उसमें एक गाना रहेगा भीगती आंखों से रुखसत ना करो।
0: ओके जी, चलिए हम आपको ये गाना सुनवाते हैं, ठीक है?
1: जी बिल्कुल मैम, थैंक यू
0: ओके
1: मैम।
0: वेलकम। तो चलिए गाना सुनते हैं भीगती आंखों से, बहुत ही शानदार गाना है, और लौट कर आते हैं।

0: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM.
1: सीने में दर्द, सांस फूलना या तेज धड़कन को बिल्कुल नजरअंदाज ना करें। श्री साई हॉस्पिटल में डॉक्टर अखिल कौशिक टीएम कार्डियोलॉजी द्वारा एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टिक, पेसमेकर एवं अत्याधुनिक कार्डियक कैथ लैब की सुविधा उपलब्ध है। मूविक किफायती रेट्स पर, स्वस्थ दिल, सुरक्षित जीवन। आज ही अपॉइंटमेंट ले। श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल करें 7060002430।
2: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
1: यार, सोना कितना महंगा हो गया है। काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
3: अरे, सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
1: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना
4: हेलो
1: सोना
4: जी, गुड वाली इवनिंग है आरजेडी।
1: मेकिंग चार्जेस पर 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा, लाइन पार, मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
4: हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है। फरमाइश शो में आरजेडीना के साथ आप कनेक्ट है और समय की बात करूं तो 4:45 हो चुके हैं। और आइए बिना किसी देरी के अपने अगले कॉलर से बात करते हैं। हेलो
5: जी मैम।
4: जी नमस्कार।
5: जी नमस्कार।
4: क्या नाम है आपका?
5: नाम है अरसलान।
4: हाँ जी
5: अरसलान।
4: ओके, कहाँ से बात कर रहे हैं?
5: हम बात कर मुरादाबाद।
4: मुरादाबाद
5: जी, पत्थर का चौराहा।
4: हाँ जी,
5: पत्थर का चौराहा।
4: सर, आपकी वॉइस ना क्लियर नहीं आ रही है।
5: अच्छा
4: जी, गाना बताइए, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
5: तू ही हकीकत ख्वाब दो।
4: तू ही हकीकत, तू ही ख्वाब दो। किसके साथ सुनना चाहते हैं?
5: दोस्तों के साथ, दोस्त यहाँ बैठे हैं, असगर भाई, उसके बाद दोस्ती, समीन, साहिल, अरसलान।
4: ठीक है सर, उन्हीं के साथ। हाँ जी,
5: आप कैसे हैं मैम?
4: सर मैं बहुत बढ़िया हूँ, एकदम मस्त हूँ। आप बताइए, आपके फैमिली में सब कैसे हैं?
5: जी बढ़िया है। मौसम कैसे है
4: इधर? तो कभी बादल, कभी धूप, कभी छांव, कभी ठंडी ठंडी हवाएं।
5: धूप आ रही है।
4: हाँ, तीन तीन मौसम के आनंद ले रहे हैं सर मुरादाबाद में। चलिए हम आपको ये गाना सुनवाते हैं, ठीक है? ओके, तो चलिए, इमरान हाशमी इस फिल्म में है भैया, इन्हीं का गाना सुनते हैं, तू ही हकीकत, तू ही ख्वाब। और आप भी कॉल करते, देखते हैं लास्ट लकी कॉलर कौन बनते हैं हमारे साथ।

0: क्या कर रही हो?
1: आज तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट दिन है ना, यू हैव टू लुक गुड।
0: ओके, कैन आई गो?
1: यस।
0: ओके,
2: बहुत ही शानदार आपने गाना एंजॉय किया है। तुम सफर तू ही हकीकत, ख्वाब तू दरिया तू। आय हाय, क्या बात है जी, ऐसे ऐसे गाने को सुनने को मिल जाए ना तो मजा ही आ जाता है। फिलहाल आप फरमाइशों में आरजे रीना के साथ कनेक्ट है। समय की बात करूं तो 4:52 हो चुके हैं और अब बारी है, क्या बारी है जी, यानी कि अब मेरा यहाँ से जाने की इजाज़त लेंगे हम आप सभी से, और आपको मिलेंगे, यानी कि हम मिलेंगे आपको मंडे को इवनिंग मस्ती शो में, यानी कि 5:00 से लेकर 7:00 तक, यानी कि सैटरडे का एक ऐसा मौका है जो मेरे को दिन में शो करने का मौका मिल जाता है, तो हम आप सभी के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। फिलहाल अगर आप मेरा शो एंजॉय करना चाहते हैं तो शाम को इवनिंग मस्ती शो में कनेक्ट हो सकते हैं, 5:00 से लेकर 7:00 तक, मंडे टू फ्राइडे, ठीक है जी। चलिए फिलहाल अपने लास्ट लकी कॉलर से बात करते हैं कि वो कौन सा गाना सुनना चाहते हैं। हेलो।
3: हेलो, नमस्कार रीना जी।
2: जी नमस्कार, क्या नाम है आपका?
3: सतेंद्र बोल रहे हैं।
2: जी सतेंद्र जी, कैसे हैं आप?
3: बढ़िया है मैम जी, आप सुनाइए कैसे?
2: बहुत बढ़िया, क्या करते हैं आप?
3: टाइम कटता रहता और क्या।
2: ओके, बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
3: राणा जी माफ करना।
2: अच्छा, राणा जी माफ करना। चलिए जी, हम आपको ये गाना सुनवाते हैं, राणा जी माफ करना। ओके सर, ओके। चलिए भैया, इसी के साथ दीजिए हमें जाने की इजाजत। हम मंडे को मिलने वाले हैं और करेंगे वहां पर ढेर सारी बातें। अभी के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और यूं ही जिंदगी में मुस्कुराते रहिए और खुशियां बांटते रहिए। बाय।

0: उसकी एनर्जी भरी लाइफ के लिए सिर्फ साथ।
1: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM।
2: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का थ्रिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
3: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
4: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।

0: साइड आर्जेरीना एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे। श्रोताओं, आप सभी को पता है कि हम आप सभी के लिए कुछ नया टॉपिक लेकर आते रहते हैं, लेकिन आज का हमारा टॉपिक है यानी कि किशोर अवस्था में बच्चों के अंदर कौन कौन से चेंजेस होते हैं। और एक्चुअली में कभी ऐसा होता है कि हम घबराने लग जाते हैं, गलत भ्रांतियां है जो हम उनको सुन लेते हैं और उसको ही अपने लाइफ में फॉलो करने लग जाते हैं। तो मुझे लगता है कि इसकी जानकारी आप सभी तक पहुंचे और तभी आप फॉलो कर पाएंगे। सो इसी से रिलेटेड हम बात करने के लिए आज मैं आई हूँ विमेन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। मेरे साथ डॉक्टर सोना मैम कनेक्ट है। तो मैम, मैं आपसे ही जानना चाहूंगी पहले तो आपके बारे में।
1: नमस्कार रीना जी, और आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं डॉक्टर सोनम रस्तोगी हूँ, स्त्री व प्रसूति रोग विशेषज्ञ, महिला जिला अस्पताल मुरादाबाद।
0: मेरा सबसे पहले आपसे यही क्वेश्चन है कि किशोर अवस्था आखिरकार होता क्या है और इसकी शुरुआत कब से मानी जाती
1: है? देखिए, किशोर अवस्था एक बहुत ही उम्र का ऐसा पड़ाव है जब एक बच्चा अपने उसका बचपन खत्म हो रहा है और वो वयस्क होने के रास्ते पर है। तो अभी उसका बचपन पूरा खत्म नहीं हुआ है, शरीर में और मानसिक तौर पे और शारीरिक तौर पे बहुत से बदलाव आते हैं। शारीरिक तौर में बहुत सारे हॉर्मोन्स की वजह से चेंजेस आते हैं जिससे वो एडल्टहुड में प्रवेश करता है, और मानसिक बदलाव भी इसलिए आते हैं कि बच्चा खुद नहीं समझ पाता है, उसके अंदर बहुत नए तरीके के विचार आते हैं, बहुत नए तरीके से वो दुनिया को देखता है, दोस्तों से उसकी बातचीत होती है। तो वो ना बचपन में है, उससे बच्चों से उसको ज्यादा पता है, और ना वो भी वयस्क हुआ है
0: जी।
1: उसको लगता ये है कि मैं बड़ा हो रहा हूँ, लेकिन ये ट्रांजिशन फेस है, बदलाव वाला है, बच्चा खुद ही कंफ्यूज हो जाता है। और दूसरी बात ये है कि हॉर्मोन्स क्योंकि बदल रहे हैं तो इसलिए

0: भी विचार उसके मन में आते हैं, वो ये जज नहीं कर पाता है कि ये चीजें जो मुझे नई बातें पता चल रही हैं ये सही है या नहीं। तो ये लगभग आप मान लीजिए कि 12 वर्ष 13 वर्ष की आयु से लेकर 18 वर्ष की आयु तक ये किशोरावस्था रहती है, टीनेज, जिसमें बच्चे एक बीच वाले एज की स्टेज में है, अपने बचपन उनका खत्म हो रहा है और वयस्क होने के, जवान होने के उसमें आ रहे हैं,
1: मतलब 12 के प्लस होने के बाद।
0: हाँ,
1: तो मैम हमारा अगला क्वेश्चन है, यानी कि किशोर अवस्था में बच्चे के शरीर के साथ साथ उनके व्यवहार में, सोच में अचानक बदलाव क्यों आने लग जाते हैं और इससे वो कभी कभी घबरा भी जाते हैं कि अचानक मेरे अंदर ऐसे चेंज क्यों आने लग गए हैं।
0: बिल्कुल घबरा जाते हैं, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल तो उनके हॉर्मोन्स का है, चाहे लड़कियां हों या लड़के हों, दोनों अपने एडल्ट फेज में जाते हैं तो शरीर में बहुत तरीके के चेंजेस आते हैं। वो बदलाव का जो टाइम है वो यही किशोरावस्था के दौरान ही शरीर में सारे बदलाव होते हैं, उनसे दिमाग पे, हॉर्मोन्स के लेवल पे बहुत सारी चीजों में फर्क पड़ता है। और मानसिक तौर पे इसलिए वो घबरा जाते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि बचपन से ज्यादा उनको चीजें पता है, आजकल इंटरनेट का भी जमाना है, बच्चे आपस में बात करते हैं, बहुत सी नई नई चीजें उनको पता चलती हैं, लेकिन अभी उन्हें ये नहीं पता है कि ये ज्ञान जो है वो उनके पास पूरा ज्ञान नहीं है, अभी अधूरा ज्ञान है। और नई चीजों के बारे में पता चलता है तो बच्चों के मन में क्रेज बहुत होता है, बच्चों के मन में क्रेज बहुत ज्यादा रहता है और उनको ये लगता है कि अब हम बड़े हो गए हैं, हम वो थोड़ा माँ बाप से भी अपनी चीजें शेयर करने में हिचकिचाते हैं कि माँ बाप कहीं ऐसा ना हो, समझे ना, उनको गलत ना समझ लें, ये चीजें रहती हैं।
1: तो मैम हमारा अगला क्वेश्चन है, अगर कोई बच्चा अपने शरीर में बदलाव को लेकर डर रहा हो, शर्म महसूस कर रहा हो, अपने माता पिता से, उनके जो माता पिता है उनकी हेल्प कैसे करे?
0: माता पिता सबसे पहले तो ये पहले से समझ लें कि बच्चा जिस बदलाव से गुजर रहा है वो उसके लिए एक स्ट्रेसफुल फैक्टर है, बॉडी के लिए एक स्ट्रेस है, तो बच्चे का व्यवहार थोड़ा शुरू से बदला हुआ हो सकता है, उसमें माँ बाप जो है वो जजमेंटल ना हो जाए एकदम से, अपने बच्चे को पहले से ही कोई विचार ना बना ले, पहले से ही कोई बायस ना बना ले कि ये इसके दोस्तों का ग्रुप हो गया है इस वजह से बच्चों में चेंज आ रहा है, या इसने कोई गलत चीजें कर ली होंगी इसलिए चेंज आ रहा है, या ये बड़ा हो गया है अब हमारी बात नहीं मान रहा है, उनको ये समझना होगा।
1: जी,
0: तो अपना दौर भी ये याद करना होगा कि कुछ सालों पहले हम भी इस दौर से गुजरे हैं, हमारे मन में भी क्या चीजें आई थी वही सब चीजें अब इन बच्चों के मन में भी आ रही होंगी, तो अगर हम इनसे खुल के बात नहीं करेंगे तो ये दूसरे सोर्सेज ढूंढ लेंगे जानकारी के लिए, जो सही भी हो सकते हैं और गलत भी हो सकते हैं। तो बच्चे के लिए सबसे बड़े जो शुभचिंतक है वो उसका परिवार ही होता है, तो माँ बाप को थोड़ा फ्रेंड्स की तरह बच्चों से ट्रीट करना चाहिए, उनको एकदम उनकी किसी बात को सिरे से नहीं नकारें, उसको समझने की कोशिश करें, उनसे बात करें। बच्चे अगर डरेंगे नहीं कि ये बात करने से हमारे अपने माता पिता से डांट पड़ सकती है, अगर उनको लगेगा कि माता पिता डांटेंगे नहीं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को भी समझ रहे हैं, तो बच्चे अपनी बातें माँ बाप से शेयर करेंगे। और हमारा मेन पर्पस ये है कि बच्चे किसी गलत चीज में ना पड़ जाए, तो हमसे वो बात करेंगे तो हम उन्हें पूरी जानकारी दे सकते हैं।
1: लेकिन मैम अभी भी कई घरों में ऐसा होता है कि मम्मी पापा बच्चे के साथ मतलब बातें शेयर नहीं करते हैं, उनको लगता है कि ये बातें अभी तक बच्चों के साथ शेयर नहीं करना चाहिए।
0: यही बातें तो उनको समझनी है, और आपका रेडियो तो इस माध्यम से एक बहुत अच्छा ये काम कर रहा है, आपने एक बहुत अच्छा ये चीज टॉपिक देखा है कि आपने एक बहुत अच्छे टॉपिक को उठाया है। इससे माँ बाप होता क्या है, माँ बाप अपने काम में लगे हुए हैं, वो बच्चे के बारे में बहुत मन से सब अच्छा चाहते हैं लेकिन बच्चे को टाइम नहीं दे पा रहे हैं। और दूसरा एक सोशल फैक्टर होता है कि माँ बाप के जो साथी लोग हैं, कई बार वो लोग कहते हैं अरे तुम्हारा बच्चा तो ऐसा है, अरे उसको छोड़ो, वो इस तरीके से कर रहा है, तो बहुत चीजों से माँ बाप के विचार गवर्न होते हैं कि आसपास की सोसाइटी वाले क्या कर रहे हैं। तो माँ बाप को सबसे पहले ये देखना है कि मेरे लिए मेरा बच्चा सबसे जरूरी है। बच्चे एंग्जाइटी टेंशन से भी डील कर रहे हैं आजकल माँ बाप, फोन और इंटरनेट के आने के बाद से बच्चे माँ बाप से थोड़ा कम बात करते हैं, माँ बाप भी कम बात करते हैं क्योंकि वो भी फोन पे सब लोग होते ही हैं, और रील्स फोन ये सब ऐसी चीजें हैं कि अगर आपके हाथ में फोन आ गया तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि वक्त कहाँ निकल गया।
1: ये करेक्ट, बिल्कुल सही कहा आपने। और कभी कभी मैम अब तो वैसे बता दे कि रील्स पर हर कोई बिजी रहता है, वहीं से गलत धारणाएं मिल जाती है उनको, तो उसी चीज को फॉलो करने लग जाते हैं।
0: बिल्कुल, क्योंकि अगर माँ बाप से बच्चा देखिए ये क्यूरियोसिटी वाली एज है, उसके शरीर में भी चेंजेस हो रहा है, उसके सोच में भी चेंज हो रहा है, उसकी भावनाओं में भी बदलाव हो रहा है, वो ये कैसे जानेगा कि क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है, और वो बस सब तरफ से जानना चाह रहा है। अगर उसको वो इन्फॉर्मेशन माँ बाप से नहीं मिलेगी तो वो दूसरे सोर्सेज ढूंढेगा, वो इंटरनेट पे सर्च करेगा, वो दोस्तों से मिलेगा। सब जगह से सब चीज सही नहीं पता चल सकती, क्योंकि उसके पीयर ग्रुप में जो दोस्त हैं वो भी उसी उम्र के हैं।
2: जी जी,
0: उनको भी तो नहीं पता सही क्या है।
1: मैम ऐसा भी हो सकता है ना कि जैसे जरूरी हो कि बच्चे पूछे मम्मी पापा से।
0: माँ बाप को इनिशिएशन लेना चाहिए, माँ बाप भी इनिशिएशन ले सकते हैं। जब उनको पता है कि बच्चा उस दौर में प्रवेश कर रहा है तो माँ बाप को भी धीरे से खुल के बच्चों से बातें करनी चाहिए, उनको बताना चाहिए कि अब तुम जिस उम्र में हो तुम्हारे शरीर में कुछ चेंजेस आएंगे, थोड़ा सा तुम्हारे दोस्तों के साथ कैसा रिलेशन रहेगा, कहाँ जाना है, कैसे सेफ्टी का ध्यान रखना है। अगर माँ बाप उनसे उनके हालचाल भी जाने कि तुमको स्कूल में कैसा लग रहा है, तुम्हारे दोस्त लोग कैसे हैं, आप बच्चों की चीज में इंटरेस्ट लीजिए। ऐसा नहीं है कि आपका काम सिर्फ घर का काम करना या अपना प्रोफेशन का काम करना है, घर में भी आप उतनी ही आपको जिम्मेदारी लेनी है, क्योंकि बच्चे को जीवन तो माँ बाप ने दिया है।
2: जी बिल्कुल बिल्कुल,
0: तो बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी माँ बाप की है।
2: राइट,
0: उन्हें
2: एग्री विद यू,
0: उन्हें उस चीज पे देखना पड़ेगा कि बच्चे के जीवन में जो कुछ हो रहा है उनसे जो बन पड़ रहा है वो बच्चों से बात करें। बात करना बहुत जरूरी है,
1: ये तो बिल्कुल सही कहा आपने, बात करना बहुत जरूरी है। लेकिन आज के टाइम में कोई भी टाइम नहीं दे पा रहा है, क्योंकि फोन हर किसी के पास है, हर कोई फोन में लगा हुआ। तो फिलहाल मैम मेरा अगला क्वेश्चन है, कौन से बदलाव सामान्य होते हैं और कौन से ऐसे संकेत होते हैं जिन्हें बच्चों को पता होना चाहिए, या तो वो अपने पेरेंट्स से पूछे या डॉक्टर से पूछे।
0: देखिए, बदलाव शारीरिक और मानसिक, इमोशनल, सब तरीके के बदलाव है। शरीर में जो बदलाव आ रहे हैं वो जेन्युइन बदलाव है, वो सबके अंदर आते हैं। हालांकि हाँ, अगर वजन बहुत बढ़ रहा है तो उसमें ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि वजन अगर चाहे लड़के हो चाहे लड़कियां हो, अगर वजन बढ़ता है उससे शरीर के अंदर जो हॉर्मोन्स हैं
2: जी
0: उनका लेवल बहुत गड़बड़ हो जाता है, उनसे आगे चल के उनमें बहुत बीमारियां होती हैं, जैसे महिलाओं में या चेहरे पे बाल आ जाते हैं।
2: जी जी,
0: महावारी अभी शुरू होती है लड़कियों की, तो शुरू में महावारी थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, 6-7 महीने रेगुलर नहीं होता है, उसमें घबराने की बात नहीं है। ब्लीडिंग अगर बहुत ज्यादा हो रही है तो डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं बिल्कुल, लेकिन थोड़ा बहुत आगे पीछे हो रहा है तो घबराने की बात नहीं है। और उसका भी एक फिक्स्ड एज नहीं है कि महावारी किसी एज में आनी चाहिए। पहले महावारी 12-13 साल में आती थी, आजकल महावारी 9 साल में भी शुरू हो रही है, क्योंकि बच्चों का एक्सपोजर बहुत बढ़ रहा है, जो चीजें उनको पता है इंटरनेट से बहुत चीजें बदलाव आ रहे हैं, इसलिए वो जल्दी आ रहा है। तो अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, नॉर्मल ब्लीडिंग है, तो घबराने की बात नहीं है। लेकिन अगर दर्द बहुत ज्यादा है और 2-2, 3-3 महीने का डिफरेंस आ रहा है, वजन बहुत ज्यादा है, या लग रहा है कि लड़कियों की आवाज भारी हो रही है, या चेहरे पे बाल आ रहे हैं, ये कंडीशंस हैं, तो उनको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। और संकेत क्या है जिसमें घबराने की जरूरत है या जिसमें आपने पूछा कि ध्यान रखने की जरूरत है, थोड़ा बहुत चिड़चिड़ा बच्चा हो सकता है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि बच्चा अकेले ज्यादा रहना चाह रहा है।
1: बहुत से बच्चे होते हैं जो खुद अकेले महसूस करते हैं।
0: हाँ, लेकिन एक चीज आजकल देखिए, डिप्रेशन बहुत आ रही है। पहले बहुत बड़े बड़े परिवार होते थे, माँ बाप के पास टाइम नहीं है तो सारे बच्चे आपस में ही खेलते कूदते रहते थे। आपने देखा होगा कि पहले डिप्रेशन इतना नहीं होता था,
1: कहानियां सुनते रहते थे,
0: नानी सुनते रहते थे, नानी दादी से आपस में लड़ भी रहे हैं तो उन्हें पता है कि ये सब तो चलता रहता है दुनिया में। अब क्या है, न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई है ज्यादातर, माँ बाप के पास अपना टाइम नहीं है, बच्चों के पास भी टाइम नहीं है, अपना पढ़ाई में प्रेशर है, कई तरीके की परेशानियां हैं, तो कन्वर्सेशंस खत्म हो रहे हैं।
2: जी
0: ठीक है, तो और बच्चों में प्रेशर भी बहुत ज्यादा आ रहा है कि ये फर्स्ट आ रहा है तो मुझे भी फर्स्ट आ रहा है, या मेरे 99 ना हो के मेरे 97 ना हो गए इस नंबर हो गए, इसमें भी बच्चों को डिप्रेशन हो गया। तो हमें ये लक्षण देखने हैं कि ऐसा तो नहीं कि पहले बच्चा ठीक था, अब अचानक से वो अकेले कमरे में रहना पसंद कर रहा है
2: जी।
0: या इतना हमें ऊपर से ध्यान रखना चाहिए कि उसके जो दोस्त हैं वो किस तरीके के हैं, अच्छी कंपनी में रहेगा तो ठीक रहेगा, है ना। और बच्चा कोई बहुत एडवेंचरस चीज तो नहीं हो गया है, एडवेंचरस काम तो नहीं करना चाह रहा है कि आज मुझे कोई रिस्की काम ना करना चाह रहा हूँ, ये कुछ चीजें हैं जो, या नॉर्मल बात में बच्चा सामान फेंक रहा है, कान बंद कर रहा है, चिल्ला रहा है, वो चीजें हैं जब हमें डॉक्टर को कंसल्ट करने की जरूरत है। और जरूरी नहीं है कि अच्छा मानसिक, आपने जैसे पूछा मानसिक स्वास्थ्य पहले एक स्टिग्मा हुआ करता था, लोग इस बारे में बात नहीं करते थे, चाहे वो बच्चों की हो या बड़ों की हो, उसको बस एक बिहेवियर करार दे दिया जाता था कि ये थोड़ा गुस्सेल है। लेकिन अब अच्छी बात ये है कि मानसिक स्वास्थ्य पे सरकार भी बहुत ध्यान दे रही है, एनजीओस भी ध्यान दे रहे हैं। आप लोग के माध्यम से भी मैं लोगों से कहना चाहूंगी कि मानसिक स्वास्थ्य में अगर किसी के परेशानी हो रही है तो ये कोई स्टिग्मा नहीं है, आपको इसे किसी से छुपाने की जरूरत नहीं है और ये कोई शर्म की बात भी नहीं है। जैसे शरीर में बाकी ऑर्गन्स हैं ऐसे ही शरीर में दिमाग भी है।
1: जी बिल्कुल।
0: तो जैसे इंसान डायबिटीज है, शुगर हो गया, हाइपरटेंशन, ब्लड बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर हो गया, इनकी दवाइयां खाता है तो वो दिमाग की परेशानी की भी दवाई खा सकता है। ये कोई स्टिग्मा नहीं है कि इसकी दिमाग की दवाई चल रही है। तो पहले जैसे लोग डॉक्टर्स के पास जाना अवॉइड कर, और जरूरी नहीं है कि आप दिमाग के ही डॉक्टर के पास जाएं, आपके पास जो डॉक्टर अवेलेबल है, आप जिनसे अच्छे से बात कर सकते हैं, आपको लगता है कि वो आपको अच्छे से बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं, आप उनके पास जाइए, आपको सही गाइडेंस मिलेगी। और हर चीज में दवाई की जरूरत नहीं होती है, कई चीजों में काउंसलिंग से भी काम हो जाता है। कई बार माँ बाप को यही नहीं पता होता है कि बच्चे की स्थिति से हमें डील कैसे करना है।
1: जी,
0: तो अपने जो भी नजदीकी डॉक्टर्स हैं उनसे बात करें, अपने परिवार में बात करें, दोस्तों से बात करें, सब तरफ से हमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव मिलता है।
1: और मैम एक कॉमन क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि इस पर बात करना बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल, पूछिए।
1: जैसे कि आपने बोला भी था कि डिप्रेशन और फिर बच्चे अकेले रहते हैं, और आज के टाइम में तो बच्चे जॉब भी कर रहे हैं, वो बाहर रहते हैं, रूम में भी अकेले रहते हैं, जबकि वो घर पर सभी फैमिली वालों के साथ है, और इस वजह से वो डिप्रेस भी हो जाते हैं, और खासकर लड़कियों में यानी कि पीरियड्स की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाती है। उनका यही कहना होता है कि 15 दिन डिले हो जाते हैं, 20 दिन डिले हो जाते हैं, तो क्या ये अकेलेपन का भी है कुछ?
0: हाँ, अकेलेपन से आपका दिमाग परेशान है, आप स्ट्रेस्ड है, आपका हार्मोन लेवल चेंज होगा, हार्मोन लेवल चेंज होगा तो आपकी महावारी भी चेंज होगी, आपके शरीर में बहुत सारे चेंजेस आएंगे। तो अपना वॉक पे जाइए, जो लोग जॉब करते हैं, जो लोग फैमिली से अलग रहते हैं, उनके लिए मैं कहूंगी कि उनको रेगुलरली, वो अपने परिवार के साथ नहीं रह सकते हैं, लेकिन डेली वॉक पे जाइए, आप एक्सरसाइज करिए, वॉक पे जाइए, मेडिटेशन, योगा, इन सब चीजों से शारीरिक तो बहुत फायदा होता ही है, मानसिक तनाव में भी बहुत कमी आती है, मानसिक तनाव बहुत कम हो जाता है। ये चीजें करें, गाने सुने और लोगों से बात करें, लोग कुछ भी हो बात करना नहीं बंद करना चाहिए, बातें करनी बहुत जरूरी है, बातें सुननी बहुत जरूरी है।
1: लेकिन मैम आज के टाइम में इतना टाइम कहाँ किसी के पास होता है?
0: देखिए, आप जिस चीज को प्रेफरेंस देंगे उस चीज के लिए आप कैसे ना कैसे टाइम निकाल लेंगे,
1: ये तो है।
0: अगर आपको कहीं घूमने जाना है या आपको कोई काम करना है, जैसे अब देखिए हम लोग सीरीज देखते हैं तो इतने बिजी शेड्यूल में भी सब लोग सीरीज तो देख ही रहे ना, या कहीं घूमने जाना है, कोई आपको किसी मंदिर धाम कहीं भी जाना है, आप कैसे ना कैसे टाइम निकाल
1: चली जाए,
0: बस अपने हेल्थ को फोकस देना है। हम ठीक है तो बाकी सब चीजें ठीक है, अगर हम ही ठीक नहीं है, तबीयत ही नहीं ठीक है, तो हमको सोने की चीज भी दे दी जाए हमको क्या खुशी मिलेगी।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो मैम एक छोटा सा लास्ट मैसेज जो आप देना चाहें
0: किशोरों के लिए, मैसेज ये है कि आपके शरीर में और मानसिक चीजों में जो बदलाव आ रहे हैं वो किसी भी तरीके से एबनॉर्मल नहीं है, वो शरीर में जो बदलाव आ रहे हैं वो एक नॉर्मल प्रक्रिया है, और जिस दौर से आप लोग गुजरे हैं उसी दौर से आपके बड़े दीदी, बड़े भैया, माता पिता, दादा दादी सब लोग गुजरे हैं। तो कुछ भी विचार आ रहे हैं तो एकदम से आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है, अपने लिए जजमेंटल भी नहीं होना है कि ये क्या मैं गलत कर रहा हूँ या मैं गलत कर रही हूँ, और जो भी विचार है वो आप घर में किसी से भी क्लोज है, स्पेशली माँ से, माता पिता से, और माँ से, बड़ी दीदी है, मौसी है, आप लोग सबसे बात करिए, अपने जो डाउट्स हैं आप लोग ये विश्वास रखिए कि ये लोग आपका मजाक नहीं उड़ाएंगे, वो लोग आपको समझेंगे क्योंकि सब आपके शुभचिंतक हैं। हाँ, ये हो सकता है कि वो अलग जनरेशन में पैदा हुए हैं, आप अलग जनरेशन में पैदा हुए हैं, उन लोगों के समय चीजें दूसरी थी, आप लोगों के समय में चीजें दूसरी हैं, तो आप लोग ये जरूर सोच सकते हैं कि मेरे माँ बाप मुझे समझते ही नहीं है, लेकिन आप ये सोचिए जब आप बोल भी नहीं पाते थे तब भी वो आपको दूध पिलाते थे, तब भी खाना देते थे, तब भी आपको क्लीन करते थे, तो वो आपको समझेंगे। आप लोग थोड़ा भरोसा करके उनसे अपनी चीजें शेयर करिए, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपके माता पिता आपको समझ के आपको सही राय दें, क्योंकि कोई सोच गलत नहीं है, बस आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो सही मिलनी चाहिए।
1: तो मैम जाते जाते आप एक कुछ आपके पसंद का कोई गाना हो जो हम रेडियो पे श्रोताओं को आप डेडिकेट करना चाहें?
0: हाँ बिल्कुल, एक गाना है नारायण मिल जाएगा, जुबिन नौटियाल जो सिंगर है उनके द्वारा गाया गया है, और इसको प्ले कीजिएगा। और ये मुझे इसलिए भी बहुत पसंद है कि चाहे हम किसी भी धर्म के हो, हिंदू है तो नारायण को मान रहे हैं, दूसरे धर्म के हैं तो अपने गुरु को या अल्लाह को मान रहे हैं, सब अल्टीमेटली एक हैं। और इसका बेसिक एक जो जिस्ट मुझे इस सॉन्ग का मिला वो ये है कि आप अपनी तरफ से अच्छे कर्म करिए, भगवान जो है या जो गुरु है वो सब देख रहे हैं, तो जैसे आप करेंगे आपको उन चीजों का अच्छा फल जरूर मिलेगा।
3: वही बात आ गई ना, जैसा बीज बोएंगे वैसा ही फल मिलेगा।
0: बिल्कुल, और अपने पे भरोसा रखें सब।
3: करेक्ट है।
0: थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।
3: मैम मुझे भी बहुत अच्छा लगा, और आई होप कि हमारे श्रोता है उनको भी बातें समझ में आ गई होगी।
0: रेडियो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है
3: जी जी,
0: क्योंकि सब लोग सुनते हैं, सुनी हुई चीजें याद रह जाती हैं, और इसके माध्यम से आप शहर में गांव में हर जगह तक आपकी आवाज पहुंच रही है, तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट क्रिएट करता है। मुझको ऐसा लगता है कि ये बहुत अच्छा माध्यम है और आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और मेरी तरफ से बहुत गुड विशेज हैं आप लोगों के लिए।
3: थैंक यू सो मच।
4: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM. क्या आप एक ही जगह पर दुनिया की सैर और जबरदस्त रोमांच का मजा लेना चाहते हैं? तो चले आइए सात अजूबे पार्क। यहाँ शानदार अजूबों के दीदार के साथ आपको मिलेगा तीरंदाजी और मैकेनिकल बुल राइड जैसी एक्टिविटीज का फुल ऑन थ्रिल। तो पूरे परिवार के साथ आ जाइए सात अजूबे पार्क, न्यू मुरादाबाद

बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।

0: करो।
1: दिस साइड आर्जेरीना एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और वेलकम बैक है श्रोताओं, और फिर से हम आप सभी के बीच लेकर आ गए एक नई जानकारी जो आप सभी तक ना कोशिश करते हैं यानी कि पहुंचती रहनी चाहिए। तो अब हम बात करने वाले हैं कंटम ऑफ कोर्ट के बारे में, यानी कि न्यायपालिका का सम्मान और उनके आदरों का पालन करना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। सो इसी टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ एडवोकेट अनुरुद्ध अरोरा जी हमारे

0: साथ कनेक्ट है। सर आपका बहुत बहुत वेलकम। पहले तो सर आप अपने बारे में हमारे श्रोताओं को बता दीजिए।
1: देखिए, मैं बाय प्रोफेशन एडवोकेट हूँ। मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मैं प्रैक्टिस करता हूँ। मेरा नाम अनिरुद्ध अरोड़ा एडवोकेट है। और जो है, हम बेसिकली जो समाज में किसी के साथ शोषण होता है या किसी को सताया जाता है, अगर हमें भी कुछ लगता है डेली हमारी डेली लाइफ में, तो हम लोग उसको हेल्प करते हैं, उसको लीगल गाइडेंस देते हैं हम लोग। और मैं समझता हूँ कि सबको अपने कानूनी जितने अधिकार है उसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि डेली रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत देख रहे होते हैं और हम इग्नोर कर देते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो सबसे
0: सही।
1: बड़ी चीज है, ये इग्नोर करने से ही क्राइम पनपता है और बढ़ता है।
0: सही कहा।
1: तो पहले लेवल पे ही अगर हम उसको रोक लेते हैं तो एक हम आगे आने वाले बहुत बड़े किसी क्राइम से या किसी घटना से बच सकते हैं।
0: बिल्कुल सर। तो अब तो हमारे श्रोता भी आपके बारे में रूबरू हो चुके हैं।
1: श्रोताओं से ही बात करना अच्छा लगता है मुझे और मैं उन्हीं के लिए आता हूँ आपके।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही सर। और कोशिश करते हैं कि उनके तक अच्छी अच्छी जानकारियाँ पहुँचती रहे।
1: जानकारी उनको अच्छी अच्छी मिलनी चाहिए जिससे वो अपने कानूनी अधिकारों को जान पाए।
0: बिल्कुल सर। तो हम शुरुआत करते हैं, यानी कि पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले बताइए कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है।
1: देखिए, आमतौर पे हम लोग बहुत सुनते हैं इस वर्ड को कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है। अब अधिकतर आपने देखा होगा कि भाई कोर्ट का आदेश जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर दिया, लोग बोल देते हैं, लेकिन होता क्या है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट? तो ये सबसे बड़ी चीज, देखने में एक बहुत छोटा सा वर्ड है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, लेकिन इसका जो मतलब है वो बहुत मीनिंगफुल मतलब है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है यानी अदालत की अवमानना करना। अब जब जो बात, जो अदालत ने जो बात कह दी है, आप उस चीज को नहीं मान रहे, उस ऑर्डर को नहीं मान रहे हो, अदालत का आप अपमान कर रहे हो, तो उसको हम कंटेम्प्ट की श्रेणी में मानते हैं। आप कोई न्यायिक प्रक्रिया में बाधा डालते हैं या अदालत के आदेश का आप पालन नहीं करते हैं, तो उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बोला जाता है। और भारत में इससे संबंधित जो प्रावधान दिए गए हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में, वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 में दिए गए हैं। तो आप सोचिए कि अगर कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया है और आप उसको नहीं मानते हो, तो आप कोर्ट का अपमान कर रहे हो, तो उसका जो है कोर्ट आपको पनिशमेंट भी देती है।
0: शो आगे बढ़ते हैं, यानी कि म्यूजिकल ब्रेक के बाद। सो हमारा अगला क्वेश्चन होगा सर, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कितने टाइप के होते हैं?
1: देखिए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं। एक सिविल कोर्ट का कंटेम्प्ट होता है, क्रिमिनल कोर्ट का कंटेम्प्ट होता है। तो अदालत की अवमानना, अगर सिविल कोर्ट, सिविल कंटेम्प्ट की हम बात करते हैं, तो कोई व्यक्ति अगर अदालत के आदेश या फैसले का पालन नहीं करता है, तो उसको जो है सिविल कंटेम्प्ट की श्रेणी में लाते हैं। उसमें सिविल में ये होता है कि अदालत उसको सिर्फ फाइन से ही छोड़ देती है, कई बार ऐसा देखा गया है। और क्रिमिनल कंटेम्प्ट जो होता है, क्रिमिनल कंटेम्प्ट में अगर कोई अदालत का अपमान करता है या न्यायिक प्रक्रिया में बाधा डालता है, तो कोर्ट को इतनी ज्यादा पावर भी होती है, हालांकि पावर सिविल में भी होती है, तो लेकिन क्योंकि क्रिमिनल कंटेम्प्ट है, तो कोर्ट उस पर फाइन और सजा भी उसको दे सकती है,
0: सुना सकती है। बिल्कुल।
1: हाँ, जेल भी भेज सकती है यहाँ तक।
0: अगर कोई व्यक्ति कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करता है तो उसे क्या सजा हो सकती है?
1: देखिए, अदालत की अवमानना करने पर जो दोषी होता है उसको अदालत के विवेक पे निर्भर करता है वैसे तो सजा, लेकिन वो 6 महीने तक की जेल या जुर्माना दोनों सुना सकती है। रिट होती है वो या तो सुप्रीम कोर्ट में दायर हो सकती है या हाई कोर्ट में दायर हो सकती है। एक प्रकार का रिट जो होती है, एक प्रकार का विशेष आदेश होती है जो अदालत किसी व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करने या किसी सरकारी संस्था को उसका कर्तव्य निभाने के लिए जारी कर सकते। भारत में रिट जारी करने का अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को दिया गया है। ठीक है, तो अगर हम रिट्स की बात करते हैं तो ये विशेष तौर पर कई श्रेणी में मतलब आती है। अगर हम हाई कोर्ट में अलग रिट दाखिल कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट में अलग रिट दाखिल कर सकते हैं।
0: सो इनके टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं सर?
1: विशेष तौर पे 5 तरीके की रिट्स होती है ये भारत में। कुल जो 5 तरीके की रिट्स हमारी बताई गई है, इसमें मुख्यतः जो 5 रिट्स हैं उसका नाम मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट है इसमें हैबियस कॉर्पस, नाम नोट करिए, हैबियस कॉर्पस। विशेष तौर पे अगर आप बच्चे LLB के मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो उनको तो सब पता ही होगा, तो उनको तो इस समय पढ़ाई में भी वो लोग ये पढ़ते होंगे, तो उनको

0: 5381।
1: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।

0: नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका FM मुरादाबाद 89.6 पर। मैं हूं आपकी दोस्त प्राची और मेरे साथ हैं अखिल। और आज हम बात करेंगे हमारे विशेष कार्यक्रम विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश, और हमारा स्पेशल टॉपिक रहेगा लखनऊ की मक्खन मलाई और चाट।
1: नमस्कार उत्तर प्रदेश, आप सुन रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश, जहां बात होती है विकास की, विरासत की और उस स्वाद की जो दिल में उतर जाए।
0: और आज हम पहुँचे हैं बाबू की शहर, तहजीब की शहर यानी लखनऊ में, जहाँ पहले आप सिर्फ एक जुमला नहीं बल्कि जिंदगी जीने का अंदाज है।
1: अब यही लखनऊ अपने शानदार स्वादों की वजह से भी दुनिया में नई पहचान बना रहा है।
0: योगी सरकार की वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन यानी ODOC पहल ने लखनऊ के पारंपरिक व्यंजनों को लोकल से ग्लोबल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है।
1: दोस्तों, लखनऊ सिर्फ बड़ा इमामबाड़ा, चिकनकारी और अदब के लिए नहीं जाना जाता, बल्कि यहाँ का खाना भी शहर की रूह माना जाता है।
0: और भाई, लखनऊ का खाना सिर्फ पेट नहीं भरता बल्कि एहसास भी भर देता है।
1: यही वजह सरकार अब इन पारंपरिक स्वादों को ब्रांडिंग, पैकेजिंग और आधुनिक मार्केटिंग से जोड़ रही है, ताकि दुनिया लखनऊ को सिर्फ नवाबी शहर नहीं बल्कि स्वाद की राजधानी के रूप में भी पहचाने।
0: और अब बात करते हैं लखनऊ की सर्दियों की सबसे नाजुक मिठास, मक्खन मलाई की।
1: वाह, नाम सुनते ही जैसे मुंह में मिठास घुल गई। मक्खन मलाई, जिसे कुछ लोग निमिष भी कहते हैं, इतनी हल्की होती है कि मुंह में रखते ही पल भर में घुल जाती है, जैसे ठंडी सुबह धूप की पहली किरण, बिल्कुल वैसा एहसास।
2: ये सबसे पहले अपना नाम हमें बता दें।
3: हमारा नाम पप्पू जी है।
2: पप्पू जी, पप्पू जी आपका ये प्रतिष्ठान कब से है?
3: 40-45 साल हो गया।
2: खासियत क्या है, क्योंकि भीड़ काफी कुछ का बहुत देखने
3: जैसे हम लोगों का यहाँ छोला समोसा मिलता है और यहाँ से व्यवहार भी बहुत अच्छा, हम लोग बहुत अच्छे आते हैं सबसे।
2: जी जी, इसकी खासियत क्या है?
3: खासियत हमारे यहाँ लहसुन पड़ता है, सोयाबीन पड़ता है और क्वालिटी भी अच्छा रहता है हमारे यहाँ।
2: मैंने सुना है लहसुन
3: प्लेट में पड़ता है।
2: तो उससे क्या स्वाद है?
3: स्वाद आप खाएंगे खुद जान जाएंगे, खा के देखिए।
2: बिल्कुल, ये भीड़ तो मुझे बता ही रही है कि उसमें जरूर कोई ना कोई खासियत है, तभी इतनी ज्यादा भीड़ आपके यहाँ हमेशा बनी हुई। वैसे जैसे मैंने आपको बताया कि मुख्यमंत्री हमारे जो है योगी जी, उनके एक प्रोजेक्ट के तहत एक जनपद एक व्यंजन हम यहाँ पे आपको चुने हैं। ये लहसुन वाला छोला आपका काफी प्रसिद्ध है, जिसकी वजह से हम आए और आपसे खास वार्ता हो रही है। तो योगी जी के लिए क्या कहना चाहेंगे?
3: बहुत धन्यवाद है, हमारे उत्तर प्रदेश के राजा हैं, उनका क्या पूछा जाए।
2: हमारे शहर के राजा हैं,
3: हमारे शहर के क्या, हमारे पूरे देश के राजा हैं।
2: बिल्कुल बिल्कुल, हम भी उन्हें महाराज हैं।
4: धन्यवाद योगी जी।
0: और दोस्तों, इसकी सबसे खास बात ये है कि ये मिठाई सिर्फ स्वाद नहीं बल्कि लखनऊ की पुरानी नवाबी परंपरा का भी हिस्सा है। कहा जाता है कि पुराने समय में नवाबों की रसोई में भी इसे बड़े अंदाज में तैयार किया जाता था,
1: और इसे बनाने की प्रक्रिया भी किसी कला से कम नहीं। सबसे पहले ताजे दूध को घंटों तक धीमी आंच पर पकाया जाता है, फिर उसमें मलाई तैयार की जाती है।
0: उसके बाद असली जादू शुरू होता है। पूरी रात उस दूध को खुले आसमान के नीचे रखा जाता है, ताकि सर्दियों की ओस और ठंडी हवा उसकी मिठास

0: उसमें घुल जाए।
1: यानी ये सिर्फ मिठाई नहीं है बल्कि मौसम और मेहनत का अनोखा संगम है।
0: बिल्कुल, और सुबह सुबह जब हलवाई उस दूध को बड़े प्यार से फेंटता है तो धीरे धीरे उसमें हल्के हल्के झाग बनने लगते हैं।
1: उसमें डाली जाती है केसर की खुशबू, इलायची का स्वाद और ऊपर से पिस्ता बादाम की हल्की सजावट। उफ़, ये सुनकर ही दिल खुश हो जाए।
0: और खास बात ये भी है कि मक्खन मलाई सिर्फ सर्दियों में ही मिलती है क्योंकि इसकी असली पहचान ही ठंडी हवा और ओस से जुड़ी हुई है।
1: इसलिए लखनऊ में लोग सुबह सुबह दूर दूर से इसे खाने निकल पड़ते हैं। कई लोग तो कहते हैं कि अगर आपने सर्दियों में चौक की मक्खन मलाई नहीं खाई तो समझिए लखनऊ को पूरी तरह महसूस ही नहीं किया।
0: और चौक, अमीनाबाद और पुराने लखनऊ की गलियों में सुबह के वक्त बड़े पीतल के बर्तनों में सजी मक्खन मलाई का नज़ारा अपने आप में एक अलग ही अनुभव होता है।
1: लखनऊ के चौक इलाके में मक्खन मलाई कॉर्नर पर सर्दियों में सुबह सुबह लोगों की भीड़ लग जाती है। कोई कुल्हड़ में खा रहा होता है, फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर डाल रहा होता है।
0: यानी पारंपरिक स्वाद अब नई पीढ़ी को भी खूब पसंद आ रहा है।
1: और अब ODOC योजना के जरिए इस मिठाई को नई ब्रांडिंग और पहचान मिल रही है जिससे छोटे दुकानदारों को भी बड़ा फायदा होगा। दोस्तों, ODOC योजना सिर्फ लखनऊ के पारंपरिक स्वादों को पहचान दिलाने तक सीमित नहीं है बल्कि इससे जुड़े हलवाइयों, चाट विक्रेताओं, छोटे उद्यमियों और कारीगरों को आगे बढ़ाने का भी एक बड़ा माध्यम बन रही है।
0: बिल्कुल, सरकार इन पारंपरिक व्यंजनों से जुड़े लोगों को प्रशिक्षण, कौशल विकास और आधुनिक व्यावसायिक तकनीकों की जानकारी उपलब्ध कराने पर जोर दे रही है।
1: भिन्न भिन्न सरकारी योजनाओं के माध्यम से छोटे उद्यमियों को ऋण, वित्तीय सहायता और स्वरोजगार से जुड़ी सुविधाओं का लाभ भी दिलाया जा सकता है ताकि वे अपने व्यवसाय का विस्तार कर सकें।
0: स्वयं सहायता समूह, महिला उद्यमियों और युवाओं को भी इस पहल से जुड़कर नए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर सृजित किए जा रहे हैं।
1: सरकार की कोशिश है कि छोटे दुकानदारों और पारंपरिक व्यंजन बनाने वाले कारीगरों को बेहतर पैकेजिंग, ब्रांडिंग और मार्केटिंग की सुविधाएं मिले जिससे उनके उत्पाद बड़े बाजारों तक पहुंच सके।
0: डिजिटल प्लेटफॉर्म, फूड फेस्टिवल, रिटेन आयोजनों और विशेष प्रदर्शनियों के माध्यम से चार प्रसार का अवसर दिया जा रहा है।
1: यानी ODOC योजना स्थानीय स्वादों को वैश्विक पहचान देने के साथ साथ हजारों परिवारों की आय बढ़ाने और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का भी काम कर रही है।
0: और यही वजह है कि लखनऊ की मक्खन मलाई, चाट और रेवड़ी जैसी पारंपरिक स्वाद अब नए बाजारों और नए ग्राहकों तक भी पहुंच रहे हैं।
1: अब चलिए लखनऊ की गलियों में जहाँ चाट की खुशबू देर से लोगों को अपनी ओर खींच रही है।
0: अरे भाई, लखनऊ की चाट मतलब स्वाद का धमाका। खस्ता, आलू टिक्की, मटर चाट, दही बड़े, हर चीज में नवाबी अंदाज।
1: और सबसे खास बात यह है कि लखनऊ की चाट सिर्फ तीखी या मसालेदार नहीं होती बल्कि उसके स्वाद में एक संतुलन होता है। खट्टापन, मिठास, मसाले और कुरकुरापन, सब कुछ बिल्कुल सही मात्रा में।
0: सही कहा, यहाँ की चाट वाले खाने सिर्फ खाना नहीं बल्कि हर प्लेट को बड़े प्यार और कला से सजाते हैं।
2: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी, रेडियो की जुबानी, नई

0: मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
1: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
0: नहीं मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
1: अरे नहीं,
2: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
1: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड कॉइन जीतने का मौका भी है।
0: अच्छा?
2: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता जैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद। बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
3: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज पे आरजे आनंद को। प्रोग्राम में आप सभी का फेवरेट हेलो डॉक्टर, और आज इस प्रोग्राम में मैं हूं आपका दोस्त आरजे आनंद, और आज हमारे स्टूडियो में एक बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं। आज हम उनसे ढेर सारी बातचीत करने वाले हैं। इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में एक खास मेहमान को इन्वाइट किया है, आमंत्रित किया है, जरूर मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, आंखें हमारे शरीर का सबसे अनमोल हिस्सा है, लेकिन अक्सर हम उन्हीं की देखभाल को नजरअंदाज कर देते हैं। उन्हीं जरूरी बातों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर संजय चंदा, कॉर्निया स्पेशलिस्ट, सीएल गुप्ता आई इंस्टीट्यूट से मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 के स्टूडियो में। कैसे हैं आप, सबसे पहले ये बताइए।
4: थैंक यू आनंद, मेरा नाम डॉक्टर संजय चंदा है
3: जी।
4: मैं सीएल गुप्ता आंखों के संस्थान में कॉर्निया डिपार्टमेंट में स्पेशलिस्ट हूं।
3: जी सर।
4: मेरी ट्रेनिंग एलवी प्रसाद आई इंस्टीट्यूट हैदराबाद में हुई, जहां मैंने हाई वॉल्यूम कॉर्नियल ट्रांसप्लांट सर्जरी, रिजेक्टिव सर्जरी और कैटरेक्ट सर्जरी में काफी दक्षता हासिल करी है।
3: अरे वाह, ब्यूटीफुल। सर ने बहुत ही मतलब प्यार के साथ जो है अपना इंट्रोडक्शन दिया है मुरादाबाद वालों को। तो सर सबसे पहले आप मुझे ये बताइए, आपको हमारे एफएम स्टूडियो में आके कैसा लग रहा है, मुरादाबाद के रेडियो में आके कैसा लग रहा है आपको?
4: जी, मैं बहुत खुश हूँ, आज अपने आपको बहुत गवर्नमेंट भी महसूस करता हूँ।
3: अरे वाह, वेरी नाइस,
4: हम आपसे जुड़ सके हैं और इसके जरिए हम बाकी लोगों से भी अपने प्रिय बाकी सबसे जुड़ेंगे। इस बात में बहुत देर सारी खुशी।
3: क्या बात है, थैंक यू सो मच संजय जी। सर आप यहाँ पर इतना कीमती समय निकल कर आए हैं डॉक्टर संजय जी। सर मैं आपसे यहाँ पर डेफिनेटली सवाल जवाब करूंगा, लेकिन उससे पहले अभी मैंने अपने लिसनर्स के साथ किया था, उनसे मैंने साझा करी कि हमारी शरीर की सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे खूबसूरत चीज होती है हमारी आंखें, जिनको हम अक्सर अवॉइड कर देते हैं ना, उसका ध्यान नहीं रखते हैं। तो आप मुझे सबसे पहले यही बताइए कि हमारे शरीर का कितना महत्वपूर्ण अंग है हमारी आंखें, जिनसे हम पूरी कायनात, पूरी ये दुनिया देखते हैं खूबसूरत।
4: जी, आपने बखूब कहा कि आंखें हमारी एक महत्वपूर्ण इंद्रियों में से है।
3: बिल्कुल,
4: और सटीक जानकारी, समय पे चेकअप और अपनी सूझबूझ के जरिए हम अपनी आंखों की सेहत को लंबे समय तक अच्छी सेहत में रख सकते हैं। विषय पे हम आपसे चर्चा करेंगे।
3: बिल्कुल बिल्कुल। सो देखिए, हम साथ डॉक्टर संजय चंदा जी मौजूद हैं, आज आपको बहुत सारे आपके सवालों के जवाब मिलेंगे। एंड ऑफ कोर्स जब बात आती है हमारे सीएल गुप्ता इंस्टीट्यूट की, तो डेफिनेटली आंखों की बातें होना तो बनता है। फिलहाल डॉक्टर साहब आपका हम वंस अगेन वेलकम करेंगे, और लिसनर्स चलिए सर से सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। तो डॉक्टर साहब सबसे पहले आप हमारे श्रोताओं को बताएंगे कि आंखों को स्वस्थ रखने के लिए हमें रोजाना कौन कौन सी चीजें हैं जिनको अपने रूटीन में डेफिनेटली ध्यान में रखना चाहिए।
4: देखिए आनंद, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि हमें आंखों की सेहत को शारीरिक स्वास्थ्य से अलग नहीं देखना चाहिए।
3: ट्रू, 100%।
4: डेली अच्छी नींद लेना, पौष्टिक आहार करना, समय पे आंखों की चेकअप करवाना, ये सारी चीजें हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। साथ ही साथ जो लोग लंबे समय पे स्क्रीन पे काम करते हैं, वो अपनी आंखों को मसले नहीं और टाइम टू टाइम अच्छे ब्रेक ले, रिलैक्स हो। जो कड़ी धूप में आउटडोर एक्टिविटी करते हैं, वो अपनी धूप में सन प्रोटेक्शन करें। बच्चे या युवा जो लंबे समय तक अपनी आंखों की चेकअप नहीं कराए, वो अपने रिफ्रेक्टिव करेक्शन की अच्छी जांच कराए। एट द सेम टाइम हमारे लिए ये भी जरूरी है कि आप पौष्टिक अच्छे खाना खाएं, जिसमें से विटामिन ए रिच जाए, जैसे दूध हो गए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गए, या फिर वो सारे जो आंखों की सेहत के लिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, उसमें आती है कि जितने लाल पीले आपको फ्रूट्स या सब्जियां दिखे, जिनमें से पपाया, मैंगो, कद्दू, ये हमारे लिए बहुत अच्छी चीजें हैं।
3: अच्छा, कैरेट्स का कितना इम्पोर्टेंट रोल होता है?
4: जी जी, आपने सही कहा, कैरेट्स एक विटामिन ए रिच एक अच्छी सब्जी और अच्छी हमारी आंखों की हेल्दी मेंटेनेंस के लिए जरूरी है। टाइम टू टाइम इसका भी आप सेवन करते हैं तो हमारी आंखों को विटामिन ए की पर्याप्त परिमाण मिलती है, जिससे आंखें बिल्कुल सेहतमंद रहती है।
3: डॉक्टर साहब, कहा जाता है गाजर खाने से हमारी आंखों की रोशनी बढ़ती है, तो क्या सच में ये जेन्युइन है?
4: जी जी जी, गाजर में अच्छी परिमाण में विटामिन ए है, और विटामिन ए हमारे विजुअल साइकिल को बनाए रखने में बेहद मदद करती है। ये वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट है, और मुझे लगता है केवल गाजर ही नहीं, जो आपको गाजर ना मिले तो सारे लाल पीली सब्जियां जिसमें सारी भरपूर परिमाण में विटामिन ए होती है, उन सारी चीजों का, फ्रेश वेजिटेबल्स का, अच्छे से सेवन करिए, इससे आंखों की सेहत अच्छी बनी रहे।
3: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छी जानकारी आप दे रहे हैं। सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम पे आरजे आनंद को, प्रोग्राम आपका फेवरेट है हेलो डॉक्टर। और आज इस प्रोग्राम में हमारा साथ दे रहे हैं डॉक्टर संजय चंदा जी, जो कॉर्नियो स्पेशलिस्ट हैं सीएल गुप्ता आई इंस्टीट्यूट में, हमारे साथ आज स्टूडियो में उपस्थित हैं, ढेर सारी बातें कर रहे हैं। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच, आप इतना टाइम निकाल के आए हैं और सवालों की जो ढेर सारी मैंने एक पूरी चिट्ठी रखी हुई है आपके लिए, एंड आई एम श्योर आप इन क्वेश्चंस का आंसर डेफिनेटली देंगे। और बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो मेरे नहीं, हमारे लिसनर्स के भी हैं। तो दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपको पता है डॉक्टर साहब आजकल ना कम उम्र के जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, उनमें चश्मे लगने का जो मामला है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, बढ़ोतरी होती जा रही है, तो आखिर ये क्यों हो रहा है, क्या इसको रोका जा सकता है?
4: जी आनंद, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा है। हमारा ये मानना है कि देखिए आज के बच्चे और युवा बहुत ज्यादा अपना टाइम लैपटॉप मोबाइल टीवी स्क्रीन पे दे रहे हैं, बिताते हैं, तो इससे क्या होता है कि आउटडोर एक्टिविटी बिल्कुल कम हो गई, बाहर खेलना कूदना और ये वक्त बिताना उनका बिल्कुल कम हो गया
3: है। राइट,
4: देखिए एक 2024 में जर्नल में आर्टिकल आई है जिसपे उन्होंने अनुमान लगाया कि 2050 तक लगभग आधी मानव जाति 50% ह्यूमन पॉपुलेशन चश्मा लेकर पहन के बाहर घूमते रहेंगे। इसका मतलब ये हुआ आप और हम जब सड़क चलेंगे हर दूसरे आदमी की आंखों में चश्मा होगा, और ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज के दिन अगर हम चाइना में देखें तो कक्षा 10 में पास होते हुए बच्चों में 100 बच्चों में से केवल 10 ही बच्चे ऐसे नॉर्मल होंगे जो बिना चश्मे से, 90% चश्मे पहन रहे। और हमें उन देशों से भी सीखना चाहिए जो आर्थिक तरीके से पूरे सशक्त है। जैसे मैं ये उदाहरण देना चाहूंगा, जैसे स्वीडन, आज से कुछ सालों पहले उन्होंने ऐसी मुहिम चलाई कि वो पेपरलेस हो चुके और 100% डिजिटल रिवॉल्यूशन को अपनाया। सारी पढ़ाई लिखाई जॉब और सारी चीजों में उन्होंने डिस्प्ले स्क्रीन इंट्रोड्यूस कर दिया। इसका उन्हें भारी खामियाजा भुगतना पड़ा। आज के जमाने में जितने युवा निकले न केवल उनकी मेमोरी रिटेंशन कम हो गई, उनकी अटेंशन स्पैन कम हो गई और सारे सबको चश्मा लगना चालू हो गया। ये एक सरप्राइजिंग घटना है कि जिससे हमें सीख लेनी चाहिए कि एक्चुअली अब उन्होंने हजारों करोड़ की लागत से ये नया मुहिम चलाया कि अब उनको वापस पेन एंड पेपर पे वापस जाना है। और एट द सेम टाइम हमें भी ये सोचना होगा कि इन सारी चीजों के पीछे अल्टीमेटली गोल क्या है। आप अपने मानव जाति को क्या चश्मे के साथ देखना चाहते हैं या उतना स्वस्थ देखना चाहते हैं? देखिए अमेरिकन एकेडमी ऑफ ऑप्थल्मोलॉजी ये कहती है कि कोई भी बच्चा अगर 2 साल से नीचे है तो उसकी स्क्रीन टाइम एब्सोल्युटली 0 होनी चाहिए, उसके हाथों में बिल्कुल कोई भी डिस्प्ले स्क्रीन नहीं दिया जाना चाहिए। अगर 2 से 5 साल के बीच में तो दिन में महज 30 मिनट या उससे ज्यादा नहीं। इसका रिलेवेंस ये कि देखिए एक्सेप्शंस भी है, आजकल वर्किंग वुमेन है, अपने बच्चों को घर रख के जाते हैं तो अपने मम्मी पर नाना नानी से कुछ समय के लिए तो वीडियो कॉल में जरूर वो मिल सकते हैं।
3: एब्सोल्युटली।
4: और आगे की मुहिम ये कि हमारे सेल आंखों के अस्पताल में हमने मायोपिया क्लिनिक बनाई है। मायोपिया क्लिनिक में उन बच्चों को अब दिखा जाता है जिसमें उनके चश्मे चढ़ते हैं, उनके लिए हम ग्लासेस देते हैं ताकि वो 100% अच्छी रोशनी दिख पाए। न केवल वो रोशनी को अच्छा एंजॉय कर पाए पर हमारे पास वो सिस्टम है जिससे हम उन बच्चों को ढूंढ निकालते हैं जिनमें मायोपिया प्रोग्रेस होने के चांसेस है, जिसमें चश्मे के नंबर बढ़ने के चांस। ऐसे हालात में हम उनको अगर चुनिंदा बच्चों को DIMS जो कि डिफोकस इंड्यूस मायोपिक सेगमेंट ग्लासेस देते हैं, लो डोज एट्रोपिन की आई ड्रॉप्स देते हैं, इनसे दिखा गया कि आगे जाके के चश्मे के नंबर बढ़ने के तादाद कम हो जाते हैं। तो डेफिनेटली अगर आप मुझे पूछते हैं कि ये क्या तरीका रहेगा जिससे हम आंखों के नंबर कम कर पाएंगे, तो डेफिनेटली आपको स्क्रीन टाइम कम करना होगा।

0: बच्चों को धूल मिट्टी धूप में खेलने देना होगा और जिनमें चश्मे चढ़ गए हैं उनको जरूर आंखों के चेकअप के लिए अस्पताल तक आंखों की स्क्रीनिंग या चेकअप के लिए आना पड़ेगा।
1: लगातार उनको कंसल्ट करना पड़ेगा, अपने डॉक्टर विजिट करना पड़ेगा। तो देखिए बहुत ही कमाल की जानकारी जो है आज आपको मिल रही है हमारे स्टेशन के जरिए। आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट प्रोग्राम हेलो डॉक्टर और आज हमारे साथ संजय चंदा जी मौजूद है स्टूडियो में जो ढेर सारी आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। आपकी आई से जुड़ी आज हम बात कर रहे हैं। हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होती है हमारी आंखें जिस पर हम बहुत कम ध्यान दे पाते हैं, तो आज बस उसी सारी प्रॉब्लम्स जो आप कई बारी क्वेश्चंस भी हमें भेजते हैं आज उन्हीं को हमने सोचा सर के साथ में जो है हम पूछेंगे और सर से उन सारे सवालों के जवाब लेंगे। इस वक्त सीएल गुप्ता आई इंस्टीट्यूट से हमारे बीच में डॉक्टर संजय जी मौजूद हैं। डॉक्टर साहब आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। इसी बीच एक और सवाल, लगातार आपको भी पता है मोबाइल लैपटॉप टीवी और तमाम सारी टेक्नोलॉजी जिस पर आजकल हमारा यूथ बहुत समय बिताता है, क्या लगातार हम जब स्क्रीन पे रहते हैं तो इससे हमारी आंखों पे कोई फर्क पड़ता है? जो मोबाइल की लाइट है, जो लैपटॉप की लाइट है, जो हमारी स्क्रीन की लाइट है, वो कैसे हमारी आंखों को नुकसान पहुंचाती है?
0: जी देखिए इसके दो पहलू है।
1: जी
0: आजकल ज्यादातर लोग, युवा या प्रोफेशनल लोग, सभी ज्यादातर वक्त अपना डिस्प्ले मॉनिटर्स पे काम करते हैं।
1: बिल्कुल,
0: बच्चे कहिए वो स्कूल के होमवर्क या फिर प्रोफेशनल लोग के लिए लंबे घंटों तक डिजिटल आई स्ट्रेन के शिकार है। डिजिटल आई स्ट्रेन या फिर कंप्यूटर विजन सिंड्रोम वो स्थिति है जिसमें आप लंबे समय कंप्यूटर पे बिताने के कारण आपकी आंखें ड्राई हो जाती है, जैसे सूखापन, आंखों में जलन होना और धुंधलापन की शिकायत होती है। और यही जब लंबे समय तक चले तो आंखों में साथ साथ आपको सरदर्द होने लगती है, कंधे में दर्द और इसके साथ अलग अलग तरह की शिकायतें आनी शुरू होती है आपको।
1: जी जी।
0: तो देखिए इसके दो पहलू है। पहली बात है एक तो मनोरंजन और दूसरी बात है जरूरत। आज अगर हम देखेंगे तो ज्यादातर बच्चों ये एक लत लगी हुई है कि वीडियो गेम, कार्टून और इन चीजों पे वो बहुत जरूरत से ज्यादा वक्त बिताते हैं।
1: एडिक्शन होने लग गई है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और जरूरत एक ऐसी चीज है जिसमें हम चीजों को चाहते हुए भी अवॉइड ना कर पाए।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि जमाने के साथ साथ एडवांस रहने के लिए आप टेक्नोलॉजी को पूरी तरह से नकार नहीं सकते।
1: एब्सोल्युटली।
0: अब ऐसे हालात में हमारे पास एक ही तोड़ बचता है, जो लंबे समय तक स्क्रीन पे बचे हैं वो 20-20-20 रूल को फॉलो करें। हर 20 मिनट पे एटलीस्ट 20 सेकंड के लिए 20 फुट की दूरी पे आपको ध्यान देना है। इससे क्या होगा कि आपकी आंखें जो कंस्टेंटली एक जगह स्क्रीन पे फोकस कर रही है वो साइकिल ब्रेक होगा। और देखिए आप और हम जैसे सहज भाषा में बात कर रहे तो हर मिनट में जाने अनजाने हमारी पलकें लगभग 17 या 18 बार ब्लिंक कर रही है।
1: ओके।
0: लेकिन जब हम ध्यान से एक ही जगह पे फोकस कर रहे हैं तो पूरे मिनट में केवल वो 2 या 3 बार ब्लिंक करती है।
1: करेक्ट।
0: इससे ये होता है कि आंखों के सामने आए हुए जो आंसू के परत है पूरी तरह से सूख जाते हैं और ये सारी समस्या उससे जुड़ी हुई है। आंखों का थक जाना, लाल हो जाना, बर्निंग सेंसेशन आना, ये सारी कंप्यूटर विजन सिंड्रोम की शिकायतें हैं। देखिए कंप्यूटर विजन सिंड्रोम को डील करने के लिए या डिजिटलाइज स्ट्रेन को डील करने के लिए आपको नियमित आंखों की चेकअप की जरूरी होगी। अगर सूखेपन की शिकायत होगी तो आपको डॉक्टर के पास आके लुब्रिकेंट की दवाइयां इस्तेमाल करनी होगी, आई ड्रॉप्स इस्तेमाल करना होगा। अगर डिस्प्ले यूनिट पे लंबे समय पर आप है तो ब्लू कलर ग्लासेस का इस्तेमाल करना होगा जो आपकी डिजिटल आई स्ट्रेन को कम कर सकती है। इसके साथ ही आपकी सिटिंग पोजीशन, जिसे हम कहते हैं एर्गोनॉमिक्स, आपकी स्किन की ब्राइटनेस इतनी कम होनी चाहिए कि आंखों को तकलीफ ना दे। सिटिंग पोजीशन ऐसी हो ताकि आपकी आंखों के लेवल से नीचे डिस्प्ले यूनिट हो। एक ही साथ आपने बैठने की कला, कंप्यूटर स्क्रीन को एटलीस्ट एक हाथ दूरी पे रखे, ये सारी चीजें महत्वपूर्ण है। अगर इन चीजों को बारीकी से हम ध्यान दें, आपके डिस्प्ले यूनिट या कंप्यूटर सिस्टम के आसपास मॉइस्चर बनाए रखने के लिए अगर ह्यूमिडिफायर इस्तेमाल करें और एक ही साथ हम ये भी ध्यान दें कि कोई तेज गति में चलता हुआ एसी या पंखा आपके चेहरे या आंखों पे डायरेक्टली हवा ना डाले, इन सारी चीजों को अगर हम फॉलो कर सकते हैं तो डिजिटल आई स्क्रीन या लैपटॉप या स्क्रीन से आते हुए दिक्कतों को हम ओवरकम कर सकते हैं।
1: देखिए डॉक्टर साहब ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो है आपके साथ साझा करी है। लिसनर्स इस वक्त आप आनंद के साथ हैं और ऐसी तमाम सारी जानकारियां जो है आज लगातार आपको मिलती रहेंगी इस प्रोग्राम में। और अगर आप भी कुछ पूछना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं अपने नाम के साथ अपना सवाल 9837968। ये मेरे स्टूडियो का नंबर है। इस स्टूडियो के नंबर पे आप जो भी कुछ पूछना चाहते हैं वो डेफिनेटली पूछ सकते हैं। हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं। आज हम सर से ढेर सारी बातचीत कर रहे हैं। डॉक्टर साहब मानसून का मौसम है और ऐसे में जो है बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो कहीं ना कहीं हमारी आंखों के लिए हम खतरनाक हैं, लेकिन हम अक्सर अवॉइड करते हैं। मॉनसून का मजा लेने के लिए घर से बाहर निकल जाते हैं, बट हमें पता ही नहीं होता है कि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी आंखों के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। कई बार हम बारिश से आते हैं, हमारी आंखें लाल होती है, हम अवॉइड कर देते हैं। हमें लगता है कि नहीं ये तो नॉर्मली पानी आंख में चला गया, इसलिए सच में मॉनसून में भी हमारी आंखों को कोई प्रॉब्लम हो सकती है।
0: बिल्कुल बिल्कुल आनंद, आपने जो पॉइंट उठाया मॉनसून और ये बारिश हमारे लिए सजा भी है और मजा भी।
1: ये तो टैगलाइन बनी, सजा और मजा।
0: जैसे मई जून के महीने में कड़ाके की गर्मी होती है और तुरंत बारिश,
1: राइट,
0: बारिश के बाद सडनली टेम्परेचर कम हो जाना, ऐसे ही माहौल में प्रचंड परिमाण में चारों और एनवायरनमेंट में, पर्यावरण में ये वायरसेस का फैलना चालू होता है।
1: जी जी।
0: इसमें सबसे कॉमन है वो एडिनोवायरल कंजंक्टिवाइटिस, जिसे भाषा में हम कहते हैं कि आई फ्लू। ऐसे जब लोगों को आई फ्लू हो जाए, आंखों में लाली होना, आंखों में पानी आना, सूजन आना और एक ही साथ में धुंधलापन होने की शिकायत होती है।
1: जी जी।
0: आई फ्लू एक ऐसी स्थिति है जिसमें छुआछूत की परिस्थिति रहती है।
1: ओके।
0: आपको ये ध्यान देना होगा कि इसी बरसात के मौसम में हम देखते हैं ज्यादातर स्कूलों में, कॉलेजों में या फिर कोई भी प्रतिष्ठानों में जहाँ पे बहुत सारे लोग एक साथ काम कर रहे हैं, इनमें एक दो लोगों को अगर आई फ्लू हो जाए, साथ में सबको एक ही साथ वो देती हुई जाती है, एक के बाद एक सबको होता रहता है। इसका सबसे कॉमन कारण है ये कम्युनिकेबल डिजीज है। आपको इसके लिए कुछ सावधानियां बरतनी होगी। बार बार आंखों को छूना नहीं है, हैंड वॉश करते रहना है, जिनकी आंखें लाल हो उनसे थोड़ी दूरी बनाए रखनी है, उनके इस्तेमाल किए हुए तौलिए, गमछे या प्लेट, इन सारी चीजों को दूरी बनानी है। और अगर आंखें लाल के साथ होने के साथ साथ आपको दर्द भी होता है तो डॉक्टर की चेकअप जरूर करानी है। कॉमन आई फ्लू के सिवा कुछ चीजें और है, जैसे लोग मैदानों में कीचड़ में अगर फुटबॉल खेले, क्रिकेट खेले, ऐसे में कोई कीचड़ आंखों में आ जाए तो माइक्रोस्पोरिडियल कंजंक्टिवाइटिस, ये भी एक स्थिति है जो आंखों में रोशनी धुंधलापन और यही फ्लू जैसे लक्षण लाते हैं। अक्सर इन चीजों में डिफरेंशिएट कर पाना मुश्किल होता है, तो अगर आपके पास कोई भी ऐसी परिस्थिति हो जो दो दिन से ज्यादा आंखों में दर्द, दुखन, लाली लाए, तो आप बेझिझक आपकी आंखों के डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि यही मानसून का सीजन है जो हमें इस सारी चीजों में दिखते को मिलता है कि सबसे ज्यादा आंखें इन्हीं चीजों से परेशान रहती है।
1: देखिए मानसून में आप डेफिनेटली एंजॉय कीजिए, बारिश में भीगना सभी को पसंद है, आप जरूर भीगिए, आप चाय पकौड़ों का भी आनंद लीजिए, लेकिन अपनी हेल्थ के साथ साथ अपनी आंखों की हेल्थ का भी विशेष कर ध्यान रखना आपके लिए जरूरी है और इसको रखना ही पड़ेगा। डॉक्टर साहब ने अभी आपके साथ बहुत सारी बातें साझा करी, तो उन बातों को अवॉइड नहीं करना है, ये बहुत ही काम की चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें, अक्सर हम इनको अवॉइड करते हैं बट वही चीजें होती हैं जो बाद में हमारे ऊपर बहुत ज्यादा मुश्किलें लेकर आ जाती हैं। क्यों डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब मेरा सवाल रहेगा, मोतियाबिंद और काला मोतिया, इन दोनों में क्या अंतर है? क्या काला मोतिया बिना लक्षण के भी हो सकता है? कई लोगों में ये मिथ होता है कि नहीं, बिना सिम्टम्स के तो होगा ही नहीं।
0: जी जी जी आनंद, जब हम जन्म के साथ आते हैं कुदरती तौर पर हमारी आंखों की जो लेंस होती है वो बिल्कुल पानी की तरह स्वच्छ या पारदर्शी होती है, कांच की तरह, जिसमें 100% रोशनी आर पार जाती है और हमें साफ दिखता रहता है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती रहती है, लगभग 50 के दशक में वही जो पारदर्शी ह्यूमन क्रिस्टलिन लेंस है वो धीरे धीरे सफेद बनने चालू होती है, और एक वक्त ऐसा आता है जब वो मोमबत्ती जैसी सफेद बनने लगती है।
1: Okay.
0: अब क्या होता है, जो पहले 100% रोशनी आंखों के अंदर जा रही थी, केवल 10% या 20% रोशनी पहुंच पाती है और इससे आंखों में धुंधलापन जाता है। यही है सफेद मोतिया या जिसे कैटरेक्ट कहते हैं। कैटरेक्ट एक बार उम्र के साथ बन जाए तो उसकी आई ड्रॉप, चश्मे, गोलियां और एक्सरसाइज से कोई इलाज नहीं हो पाता। इसका एक ही तरीका है कि आपको ऑपरेशन करा के सही चश्मों का इस्तेमाल करना। जबकि ग्लूकोमा एक ऐसी स्थिति है जिसमें आंखों की ऑप्टिक नर्व को नुकसान पहुंचता है। अक्सर ये प्रेशर से जुड़ी हुई हालात होती है जिसमें आंखों में टे हुए आंखों की प्रेशर जो बढ़ी हुई रहती है नसों को इतनी डैमेज कर देती है कि उसके रोशनियां कम हो जाती है। अब सवाल ये कि ऐसी हालात में इसके कोई लक्षण नहीं होते
1: जी।
0: जब तक आपकी आंखों की रोशनी उतनी ना कम हो जाए कि आपको महसूस हो कुछ गड़बड़ हो, तब तक अपनी ये ग्लोकोमा काफी आगे बढ़ चुका होता है। इसलिए इसे थीफ ऑफ विजन भी कहा जाता है या रोशनी की चोर भी कही जाती है। हर इंसान के लिए ये जरूरी है कि अगर आपके परिवार में कोई ग्लोकोमा के पीड़ित है, जैसे मम्मी, पापा, भाई बहन, तो आपके लिए अनिवार्य है कि आंखों की चेकअप करके ग्लोकोमा को ढूंढने निकालना, और कोई भी व्यक्ति जो 40 साल की उम्र से ऊपर है उनकी नियमित साल में एक बार चेकअप जरूर हो, ताकि अगर ग्लोकोमा उनमें छुपी हुई हो तो वक्त से पहले न केवल हम जांच से ढूंढ निकाले बल्कि सही इलाज करके उनको घटती हुई रोशनी से रोक सके।
1: डॉक्टर साहब बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने साझा करी, थैंक यू सो मच। एक और सवाल मेरे जहन में है, मैं चाहूंगा सीधा आपसे पूछ लेता हूँ बिना इधर उधर बातें घुमाए। डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर का जो मतलब आंखों की रोशनी पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? जो इसके पेशेंट होते हैं उनकी आंखों पर क्या इसका कोई फर्क पड़ता है सर? और कितने समय में उसको अपनी आंखों की जांच करानी चाहिए अगर वो मरीज इससे ग्रस्त है तो?
0: जी, डायबिटीज और हाइपरटेंशन दोनों ही एक ऐसी परिस्थिति है जो उम्र के साथ लगभग सबको आती रहती है।
1: ठीक है।
0: अब ऐसी परिस्थिति में ये दोनों ही डायबिटीज और हाइपरटेंशन आंखों की रक्त नलिका या फिर ब्लड वेसल्स को अफेक्ट करती है। डायबिटीज में छोटे छोटे ब्लड वेसल्स से लीक होने लगते हैं जिसके कारण पर्दों में या फिर रेटिना में खून के धब्बे आ जाते हैं। आंखों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है मैकुला, पर्दे का एक अंग, उसमें सूजन आ जाती है जिसे डायबिटिक मैकुलर एडिमा कहते हैं। अक्सर प्रेशर बढ़ने के कारण खून की नसें जो अंदर में फट जाती है जिससे खून और रक्त प्रवाह रुक जाती है, इसे वास्कुलर ऑक्लूशन कहते हैं, जो कि ब्रांच रेटिनल वेन या सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूशन हो सकती है। आपके लिए जरूरी है कि अगर आपको बीपी और शुगर की डायग्नोसिस बनी है, अगर आपकी नियमित चेकअप नहीं हुई, तो साल में एक दफा जरूर आंखों की पर्दे की चेकअप करें क्योंकि ये पर्दे को नुकसान देती है। और अगर पहले से ऑलरेडी आप डायग्नोस हो चुके हैं कि आपकी डायबिटिक रेटिनोपैथी या बीपी स्थिति के कारण कुछ परिवर्तन आ चुके हैं, तो डॉक्टर के कहे अनुसार आपको साल में हर 6 महीने में या उनके कहे मुताबिक और ज्यादा चेकअप की भी जरूरत है।
1: ओके, बहुत ही बेहतरीन। डॉक्टर साहब, अगर आंखों में चोट लग जाए या आंखों में धूल, केमिकल या कोई बाहरी चीज चली जाए तो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो बरतनी चाहिए और इसका असर क्या होता है, इसका कारण क्या होता है, इस पे भी आप बताइए। जैसे कॉर्नियल अल्सर क्या है, इसके बारे में भी मैं जानना चाहूंगा।
0: जी जी, ये आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा है, क्योंकि बच्चे और बड़े युवा सब में हमने कभी ना कभी आंखों में चोट को महसूस किया है। अब ऐसी परिस्थिति में सभी हम ये थोड़े हक्के बक्के रह जाते कि आगे हमें क्या करना है। देखिए, छोटे धूल कण और धूल मिट्टी आंखों में आ जाए तो उसे साफ पेयजल से आप इसे आंखों को साफ करिए। अगर इससे ज्यादा कुछ है, मान लीजिए आंखों में नुकीले कुछ चीजें चुभ गई है और उससे आपको बहुत दर्द हो रहा है, तो ऐसी में इसमें आपको आंखों के चेकअप के लिए डॉक्टर के पास आना ही जब पड़ेगा, ताकि आप इसे कोई जाने अनजाने में आंखों को कुछ एक्स्ट्रा नुकसान ना दे दे। देखिए, केमिकल पड़ जाना भी बहुत एक स्वाभाविक तरीका है। जैसे बच्चे खेलते खेलते हुए फेविकॉल गिरा देते हैं, वॉल की पेंटिंग चल रही है वो टर्पेंटाइन ऑयल गिरा देते हैं, चूने आंखों में लगा देते हैं। दिवाली में हमने देखा कि सबसे ज्यादा उन्होंने कार्बाइड गन से अपनी आंखों को इंजरी किया। अक्सर बड़े अपनी वॉशरूम या टॉयलेट क्लीन करते हुए तेजाब आंखों में गिरा देते हैं। ये हर्पिक जैसी चीजें जिससे टॉयलेट क्लीन कर जाते हैं वो भी आंखों में गिर जाए तो बहुत खतरनाक नुकसान आंखों को दे सकते हैं। देखिए, ऐसी कोई भी परिस्थिति आ जाए तो बेझिझक आप अपने सेफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर से आंखों को ज्यादा समय तक एटलीस्ट 15-20 मिनट अच्छे से धोइए और बिना कोई वक्त गवाए आप एटलीस्ट डॉक्टर की चेकअप में आइए, ताकि इसके जुड़े हुए आगे जो नुकसान है उसको हम तुरंत झेलने से बच सके।
1: बहुत ही इम्पोर्टेंट बात अभी डॉक्टर साहब ने हमारे साथ साझा करी। डॉक्टर साहब, वंस अगेन थैंक यू, और सच में आप बहुत ही तमाम ऐसी खास जानकारियों और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां आज आप हमारे रेडियो के जरिए तमाम शहरवासियों को आप साझा कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपके इंस्टीट्यूट का, जिन्होंने इतना इम्पोर्टेंट टाइम और ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन वाला सेगमेंट हमारे साथ शेयर किया। आई एम वेरी वेरी हैप्पी। डॉक्टर साहब, ये लेजर रिफ्रैक्टिव सर्जरी क्या है, लेजर रिफ्रैक्टिव सर्जरी के उम्मीदवार कौन होते हैं और इसमें उन्हें क्या लाभ मिलता है, थोड़ा सा इसके विषय में भी आप बताइए।
0: जी आनंद, लेजर रिफ्रैक्टिव सर्जरी वो प्रक्रिया है जिससे हम आंखों के सामने कॉर्निया की शेप बदल देते हैं। इसका मेन फायदा ये है कि जो लोग लंबे अरसे से चश्मा पहन रहे हैं,
1: हाँ जी,
0: और वो चाहते हैं कि वो अपने चश्मे हटाकर बिना चश्मे से अपनी पूरी रोशनी देख पाए। देखिए, लोगों की अपनी अपनी जरूरतें हैं। जैसे कुछ लोगों का शौक है कि मुझे स्विमिंग, हैवी स्पोर्ट्स, फुटबॉल, क्रिकेट खेलना है। कुछ लोगों के लिए ये जरूरी है कि मेरी शादी है, मेरी शूटिंग है जिसमें मेरा चेहरा सुंदर दिखना है। कुछ लोगों की ये जरूरत है कि मेरी सिलेक्शन हो गई है आर्मी, डिफेंस, पुलिस, नेवी, और मेरा एग्जाम फिट आया, लेकिन अब मुझे मेडिकल फिटनेस में इतना दिखाना है कि मेरी रोशनी बिना चश्मे से फुल 6x6 या 100% है। ऐसे हालात में उन कैंडिडेट्स के लिए बिल्कुल एक नायाब तरीका है जिसमें हम लेजर की प्रक्रिया से आंखों की पुतली में ऐसी परिवर्तन लाते हैं जिससे आप जो भी माइनस नंबर हो, प्लस नंबर हो, उसे लेसिक PRK जैसी पद्धति से आपकी रोशनी को फुल बिना चश्मे या कॉन्टेक्ट लेंस से पूरी रोशनी दिलाने की प्रयास करते हैं। इसके लिए ये जरूरी है कि जो भी कैंडिडेट अपनी ये ऑपरेशन कराना चाहे वो अपनी आंखों की स्क्रीनिंग करे। इसमें हम मेनली ये देखना चाहते हैं कि क्या आपकी पुतली में उतनी ताकत है कि वो इस तरह के ऑपरेशन को झेल जाए। अक्सर पुतली के मोटापे पे ये निर्भर करता है। अगर वो लेसिक या PRK के लिए सूटेबल ना निकले तो उनमें दूसरी पद्धति जैसे ICL जैसी पद्धति से हम पूरी रोशनी दिला सकते हैं। अक्सर इसके लिए ये जरूरी होता है कि उनकी उम्र 20-21 साल से ऊपर हो और पुतली में अच्छे मोटापे हो। सो लेजर डिफेक्टिव सर्जरी की पद्धति से हम उन सारे तमाम लोगों को वो नई उम्मीदें देते हैं जो लंबे समय तक कॉन्टेक्ट लेंस और मोटे चश्मे पहनकर थक चुके हैं और अपनी कॉन्फिडेंस और जिंदगी को वापस पाना चाहते हैं।
1: बेहतरीन सर, बहुत ही बेहतरीन इन्फॉर्मेशन आपने शेयर करी। डॉक्टर साहब, मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, इसी बीच नेत्रदान बेसिकली क्या है और कौन है जो अपनी आंखों को दान कर सकते हैं और नेत्रदान से किस प्रकार के मरीजों को जो है मतलब लाभ होता है?
0: जी, आपने ये बहुत एक महत्वपूर्ण सवाल पूछा है। देखिए, नेत्रदान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लोगों की मृत्यु के पश्चात वो अपनी आंखें किसी और को दान दे जाते हैं ताकि उनकी जिंदगी में दोबारा रोशनी बन सके।
1: बिल्कुल।
0: देखिए, भारत में आज के दिन लगभग 13-14 लाख लोग ऐसे हैं जो कॉर्नियल ब्लाइंडनेस के शिकार है। कॉर्नियल ब्लाइंडनेस एक ऐसी अंधता है जिसमें आंखों की काली पुतली जो पारदर्शी होती है उसमें किसी प्रकार की सफेदी आ जाती है। वो अलग अलग कारणों से हो सकती है, कभी घाव लग जाना, चोट लग जाना या जन्मगत आए हुए कुछ कृत्रिम या विकृतियों के कारण उनकी आंखों की पुतली स्वच्छ नहीं रह पाती। देखिए, नेत्रदान कोई भी कर सकता है मृत्यु के पश्चात। इसके लिए कोई भी उम्र का, कोई भी ब्लड ग्रुप वाला, कोई भी लिंक हो, इसमें किसी तरह की परहेज नहीं होती। राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1919 पे आपको फोन करना है। वो राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर से जो कोऑर्डिनेटर होते हैं आपके सबसे नजदीकी आई बैंक को सूचित करते हैं। जब भी आपके प्रियजनों की किसी मृत्यु होती है तो आप उनसे संपर्क करें। जो नजदीकी आई बैंक के टेक्नीशियन है वो बेझिझक आपके घर पहुंच जाएंगे और हम आपकी आंखों में से कॉर्निया, केवल नेत्रदान में हम आंखों की कॉर्निया को ही लेते हैं, जिसमें चेहरे में किसी किस्म की विकृति नहीं होती, ना ही कोई खून बहता है और ना ही चेहरा खराब लगता है। ऐसे हालात में आए हुए उन दो पुतलियों से हम एटलीस्ट दो लोगों की जिंदगी को नई रोशनी दे सकते हैं। अब ये नेत्रदान के फायदे उन लोगों को होता है जो कॉर्निया रिलेटेड ब्लाइंडनेस से सफर करते हैं। तो नेत्रदान एक महादान है बाकी सब दानों में, जिसमें हमारी आज के दिन में जो इंडिया की मौजूदा स्टेटिस्टिक्स है इसमें साल में 30,000 से ज्यादा नए पुतली की जरूरत वाले मरीज जुड़ते चले जा रहे हैं, जबकि ट्रांसप्लांट केवल 20 या 25 लोगों को हो पा रहा है। तो नेत्रदान की आज के दिन में हमें बहुत आवश्यकता है, जिसमें लोगों की जागरूकता कम होने के कारण हम इस प्रक्रिया को पूरी नहीं कर पा रहे। तो मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को आग्रह करूंगा कि वो नेत्रदान के विषय में अपनी जागरूकता बढ़ाए और अपने प्रियजनों की मृत्यु के बाद राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1919 पे जरूर कॉल करें, ताकि एक अंध व्यक्ति की जिंदगी में हम दोबारा कॉर्निया ब्लाइंडनेस से जुड़ी हुई तक उन कमियों को कमियों को निकाल के हम उनकी अच्छी रोशनी दिला सके।
1: क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत जो है एक संदेश भी था शोषणी लोगों के लिए, और बहुत ही अच्छा आपने जो है कहीं ना कहीं इसको ये भी आपने एक संदेश दे दिया कि सिर्फ आंखें हमारे लिए नहीं होती, हमारे जाने के बाद किसी और की जिंदगी को भी वो रोशन कर सकती है। बहुत ही खूबसूरत। तो दोस्तों कहते हैं ना कि कर दिखाइए कुछ ऐसा ये दुनिया करना चाहे आपके जैसा, तो वो चीज आप भी कर सकते हैं, बस जरूरत है सही जज्बे की, है ना। और डॉक्टर साहब इसी बात के साथ मैं एक चीज और आपसे पूछना चाहूंगा, कॉर्निया प्रत्यारोपण के बारे में मैं जानना चाहता हूँ। कॉर्निया प्रत्यारोपण या कॉर्निया ट्रांसप्लांट के विभिन्न तकनीकों में कौन सी एक ऐसी नेत्रदान और कितने मरीजों को इसका लाभ हो सकता है?
0: जी जी, देखिए आधुनिक उपकरणों से आज के दिन नेत्र प्रत्यारोपण या कॉर्नियल ट्रांसप्लांट सर्जरी इतनी एडवांस हो चुकी है कि आज के दिन हम केवल ये चुनना चाहते हैं कि जिनकी कॉर्नियल ब्लाइंडनेस है पुतली की कौन सी लेयर उसमें प्रभावित है, जो परत प्रभावित है हम सिलेक्टिवली केवल उसी परत को बदलने की काबिलियत रखते हैं। मान लीजिए कोई मरीज है बचपन में लगे हुए चोट के कारण उनकी जो सफेदी है केवल आगे की लेयर पे है, ऐसे परिस्थिति में हम एंटीरियर लेमेला केराटोप्लास्टी करते हैं, जिनमें पहले हो चुके मोतियाबिंद ऑपरेशन या पुतली की अंदरूनी लेयर जिसे एंडोथेलियम कहते हैं उसकी कमजोरी के कारण अंदरूनी लेयर में कुछ कमजोरी आ गए, तो सिलेक्टिवली केवल 10 से 15 माइक्रोन की अंदरूनी लेयर बदलते हैं जिसे एंडोथेलियल केराटोप्लास्टी कहते हैं, जिसके तरीके डिसेक डीमेक हो सकते हैं। और जिनको पूरी कॉर्निया टोटली आपकी सफेद हो चुकी है या पूरी के सारे लेयर पड़ चुके हैं उनके हम फुल थिकनेस पेनिट्रेटिंग केराटोप्लास्टी करते हैं। तो एक दान में मिली कॉर्निया से आगे की लेयर से हम एक आदमी की आगे की परत को बदल सकते हैं, उसी दान में मिली पुतली की पीछे के लेयर से एक दूसरे बंदे की पीछे खराब हुई लेयर को बदल सकते हैं। अब उनके दान में मिली पुतली में जो स्टेम सेल होते हैं उससे किसी ऑकुलर सरफेस रिकंस्ट्रक्शन में भी हमें मदद मिल जाती है। तो कहीं ना कहीं आप अगर समझे कि एक पुतली एक कॉर्निया से शायद हम दो से ज्यादा लोगों की जिंदगी में उजाले की उम्मीद रख सकते हैं।
1: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। डॉक्टर संजय चंदा जी जो कॉर्निया स्पेशलिस्ट हैं सीएल गुप्ता आई इंस्टीट्यूट से आज हमारे स्टूडियो में मौजूद थे, तमाम जानकारियां उन्होंने आज आपके साथ हमारे मुरादाबाद के लिसनर्स के साथ साझा करी। इनफैक्ट मुरादाबाद के बाहर भी लोग हमें सुनते हैं, तमाम सुनने वालों के साथ ये छोटी छोटी जानकारी जो शायद मुझे और आपको पता भी नहीं थी वो तमाम जानकारियां आज डॉक्टर संजय जी ने हमारे साथ साझा करी। सर आपका FM मुरादाबाद RJ आनंद दिल से थैंक यू करता है, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड वंस अगेन वंडरफुल टॉकिंग टू यू। बहुत मजा आया आपके साथ बातचीत करके एंड बहुत अच्छे से आपने इन्फॉर्मेशन को डिलीवर किया। जाते जाते हमारी तमाम मुरादाबाद की जनता को या जो लोग हमें मुरादाबाद के बाहर भी सुन रहे हैं उनको आप क्या संदेश देंगे जाते जाते अपनी ओर से, कोई एक मैसेज जो आपको लगता है बहुत जरूरी है जनता के लिए?
0: देखिए मैं सभी से ये कहना चाहूंगा कि आंखें और ये विजन की सेंस एक दुर्लभ इंद्रियों में से है जो हमारे पास एक बहुत बेशकीमती है। अब हमें इस चीज की जिम्मेदारी अपनानी होगी कि आपकी रोशनी के लिए आप अपना बहुत ज्यादा अच्छे से ख्याल रखें और साथ ही में समाज में जो लोग डिप्राइव्ड है जिनकी रोशनी कम है उनके प्रति भी थोड़ी सेंसिटिविटी दिखाए। नेत्रदान जैसी चीजों को आप बहुत ज्यादा बढ़ावा दीजिए। हम ट्रांसप्लांट करने में सक्षम है लेकिन हमें ट्रांसप्लांट के लिए उचित परिमाण में कॉर्निया नहीं मिल पा रही, जिसके लिए सोशल अवेयरनेस एक बहुत जरूरी चीजें हैं। आप जितनी ज्यादा अवेयरनेस करेंगे उतनी ज्यादा हमें आई डोनेशन मिलेगी, उतनी ही ज्यादा जिंदगियों में हम रोशनी भर पाएंगे। और जब जब हमें मायोपिया लेसिक, लेजर रिफ्लेक्टिव सर्जरी, इन सारी चीजों की जरूरत होगी। आप जरूर याद करिए, वर्ल्ड क्लास अरेंजमेंट के साथ सीएल गुप्ता आंखों के इंस्टीट्यूट में ये सारी उपलब्धियां हैं, और आप हमसे जरूर मिले जब जब आपकी ये जरूरत होगी। हम आपको बेशक बिल्कुल दिल से पूरी सर्विसेज देंगे। और इसके साथ आप सभी लोगों को ढेर सारा प्यार, और मैं सबको सभी स्वस्थ रहे।

0: अच्छे रहे, आपका दिन शुभ हो।
1: थैंक यू सो मच डॉक्टर संजय चंदा जी, कॉर्निया स्पेशलिस्ट सीएल गुप्ता इंस्टीट्यूट से हमारे बीच में मौजूद थे। डॉक्टर संजय चंदा जी का हम दिल से थैंक यू करना चाहते हैं। आज तमाम जानकारियां उन्होंने एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम के माध्यम से हमारे तमाम लिसनर तक पहुंचाई, ये छोटी छोटी जानकारियां। मुझे उम्मीद है श्रोताओं आपको ये जानकारियां जरूर पसंद आएंगी और डेफिनेटली आप इन जानकारियों को अपनी लाइफ में जरूर ऐड करेंगे। श्रोताओं छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन होती है अक्सर, जैसे कि मैंने पहले भी काम जाते हैं, तो हमें इन जानकारियों को बिल्कुल नहीं भूलना है। और जैसे कि डॉक्टर संजय चंदा जी ने बहुत ही उपयोगी जानकारियां आपके साथ साथ करी, आंखों की देखभाल के बारे में जो महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन दी है, मुझे उम्मीद है कि आपको आज की हमारी बातचीत डेफिनेटली पसंद आएगी। श्रोताओं तो आप अपनी आंखों का और भी बेहतर ध्यान रखें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। एंड अभी के लिए मैं लेता हूं आपसे जाने की इजाजत, एक बहुत ही बेहतरीन ट्रैक छोड़ के जा रहा हूं। वंस अगेन थैंक यू करना चाहता हूं सीएल गुप्ता आई इंस्टीट्यूट का, जिन्होंने इतना इंपॉर्टेंट सेशन हमारे साथ शेयर किया। थैंक यू सो मच वंस अगेन डॉक्टर संजय चंदा जी, आपका भी दिल से थैंक यू। सो गाइस चलिए बाय बाय, टेक केयर, सुनते रहिए आप एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। फिर मिलेंगे एक और नए सेगमेंट में कुछ और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून।
2: ओहो ना जाने ये खांसी कब पीछा छोड़ेगी।
1: अरे सिर्फ खांसी ही क्यों, अपनी सेहत से जुड़े सारे सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए हर रोज दोपहर 12:30 बजे एफएम मुरादाबाद का स्पेशल प्रोग्राम हेलो डॉक्टर। यहाँ आपको मिलेंगे शहर के जाने माने अनुभवी डॉक्टर्स, तो सुनना मत भूलिए हर रोज दोपहर को 12:30 बजे प्रोग्राम हेलो डॉक्टर।
3: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशाह जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
4: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
5: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो स्वच्छता की।

0: 2430।
1: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नईम अख्तर। मुख्य समाचार। भारत की अध्यक्षता में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन नई दिल्ली के भारत मंडपम में आज से शुरू। सम्मेलन के पहले दिन नई दिल्ली घोषणा पत्र को सर्वसम्मति से मंजूरी मिली। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन और भारत अफगानिस्तान T20 क्रिकेट मैच के कारण दिल्ली में कई मार्गों पर यातायात व्यवस्था में बदलाव। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में व्यय वित्त समिति की बैठक में शेख सराय में क्षेत्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला बनाने को मंजूरी दी गई। उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने दिल्ली प्रसूति और स्त्री रोग विशेषज्ञों के संघ के 48वें वार्षिक सम्मेलन में कहा, महिलाओं का स्वास्थ्य भारत की मानव पूंजी और भविष्य में निवेश है। और दिल्ली मेट्रो की सभी लाइनों पर मेट्रो सेवाएं कल सुबह 6 बजे से शुरू होंगी। अब समाचार विस्तार से। भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली के भारत मंडपम में जारी 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के पहले ही दिन सदस्य देशों ने सर्वसम्मति से नई दिल्ली घोषणा पत्र को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र के अंत में इस घोषणा पत्र को अपनाने का प्रस्ताव रखा था। समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र सदस्य देशों के साझा संकल्प को स्पष्ट दिशा प्रदान करता है।
3: हमारे समक्ष ब्रिक्स न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 का ड्राफ्ट प्रस्तुत है। इसमें हमारी चर्चाओं का सार प्रमुख वैश्विक और क्षेत्रीय विषयों पर हमारे दृष्टिकोण शामिल है, साथ ही ब्रिक्स कोऑपरेशन को और सुदृढ़ करने की प्राथमिकताएं समाहित है। किसी सदस्य की ओर से आपत्ति व्यक्त नहीं की गई है। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 को सर्वसम्मति से एडॉप्ट किया जाता है।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि नाविक वैश्विक व्यापार में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, फिर भी कठिन समय में उन्हें समय पर सहायता नहीं मिल पाती है।
3: क्या हम सी फेरर इमरजेंसी सपोर्ट नेटवर्क बना सकते हैं? इसके माध्यम से संबंधित देशों की मैरिटाइम अथॉरिटी और मिशंस को जोड़ा जाएगा। इससे डिस्ट्रेस अलर्ट्स, मेडिकल असिस्टेंस, परिवारों को सूचना तथा इवैक्यूएशन में सहयोग दिया जा सकता है।
2: ब्रिक्स के 20 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सदस्य देशों के नेताओं ने 2 स्मारक डाक टिकट भी जारी किए। इससे पहले उद्घाटन भाषण में श्री मोदी ने ब्रिक्स निरंतरता और कार्यान्वयन तंत्र का प्रस्ताव रखते हुए कहा कि ब्रिक्स की अध्यक्षता हर वर्ष बदलती रहती है, लेकिन इसकी संस्थागत गति बनी रहनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि कार्यान्वयन तंत्र 3 पक्षों के समूह ट्रोइका के माध्यम से सभी पहलों और उनके परिणामों की निगरानी करेगा।
3: ग्लोबल गवर्नेंस का वर्तमान स्ट्रक्चर एक पिरामिड जैसा दिखाई देता है। हमें इस पिरामिड ऑफ प्रिविलेज को प्लेटफॉर्म ऑफ पार्टनरशिप में बदलना है, जहां हर देश की आवाज हो, हर सदस्य का स्टेक हो, हर प्रयास के केंद्र में मानवता का विकास हो। इस उद्देश्य से मैं प्रस्ताव रखता हूं कि हम मिलकर ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म के 10 प्रपोजल्स तैयार करें।
2: ब्रिक्स देशों ने विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में बढ़ते ध्रुवीकरण तथा गुटबाजी पर चिंता व्यक्त की है। शिखर सम्मेलन के पहले दिन अपनाए गए नई दिल्ली घोषणा पत्र में ब्रिक्स नेताओं ने वैश्विक सैन्य खर्च में लगातार वृद्धि पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की। उन्होंने बहुपक्षीय दृष्टिकोण का आह्वान किया, जो सतत विकास, भूख और गरीबी का उन्मूलन तथा जलवायु परिवर्तन जैसे महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर सभी देशों के दृष्टिकोण का सम्मान करता हो। ब्रिक्स देशों ने पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हुए सभी तरह के आतंकवाद से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई और आतंकियों की सीमा पार आवाजाही, वित्त पोषण तथा सुरक्षित पनाह पर रोक लगाने की आवश्यकता पर बल दिया। दिल्ली के भारत मंडपम में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मद्देनजर नई दिल्ली नगर पालिका परिषद NDMC ने राजधानी के सौंदर्यीकरण और सजावट

0: के लिए व्यापक तैयारियां की हैं। परिषद ने प्रमुख गोल चक्करों, होटलों और सार्वजनिक स्थलों को आकर्षक रोशनी और फूलों से सजाया है। सजावटी रोशनी से एनडीएमसी क्षेत्र के प्रमुख स्थान जगमगा रहे हैं, जबकि सजे हुए उद्यान और हरियाली राजधानी की खूबसूरती बढ़ा रहे हैं। इन प्रयासों से नई दिल्ली को स्वच्छ, हरा भरा और आकर्षक रूप दिया गया है, ताकि ब्रिक्स सम्मेलन में विदेशी मेहमानों के सामने राजधानी की बेहतर छवि प्रस्तुत की जा सके। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं।
1: हर खबर से जुड़े रहिए, जहां भी हो, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें।
0: नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन और कल अरुण जेटली स्टेडियम में होने वाले भारत अफगानिस्तान T20 क्रिकेट मैच के मद्देनजर दिल्ली में कई मार्गों पर यातायात प्रभावित रहेगा। ब्रिक्स सम्मेलन के कारण आज रात 9 बजे तक 22 स्थानों पर यातायात में बदलाव और 35 से अधिक मार्गों पर नियंत्रित आवागमन रहेगा। एक रिपोर्ट।
2: दिल्ली यातायात पुलिस के अनुसार सरदार पटेल मार्ग, 3 मूर्ति मार्ग, 30 जनवरी मार्ग, राजेश पायलट मार्ग, मथुरा रोड, जनपथ अशोका रोड, बाराखंबा रोड, नीति मार्ग, पंचशील मार्ग और प्रेस एनक्लेव रोड सहित आसपास के अन्य प्रमुख मार्गों पर यातायात प्रभावित रहेगा। यातायात पुलिस ने लोगों से यात्रा के लिए पहले अतिरिक्त समय लेकर चलने और सार्वजनिक परिवहन, विशेषकर मेट्रो का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। साथ ही लोगों से परिवर्तित मार्गों और यातायात संबंधी दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा गया है। यातायात पुलिस ने बताया है कि आपातकालीन और आवश्यक सेवा वाहनों को प्राथमिकता के आधार पर रास्ता दिया जाएगा। आरजू की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: वहीं बारिश, वाहनों के खराब होने और गुरु पर्व के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के कारण भी कई प्रमुख मार्गों पर यातायात प्रभावित है। मोतीबाग से एम्स के बीच दोनों कैरिजवे, सराय काले खान स्थित बाबा बंदा सिंह बहादुर सेतु, वंदे मातरम मार्ग और मुख्य रोहतक रोड पर यातायात प्रभावित हुआ है। भारत अफगानिस्तान मैच कल शाम 7 बजे से रात 11:30 बजे तक होगा। दर्शकों की आवाजाही के कारण बहादुर शाह जफर मार्ग, DDU मार्ग और JLN मार्ग पर आवश्यकता के अनुसार यातायात प्रतिबंधित और मार्ग परिवर्तित किए जा सकते हैं। दर्शकों को उनके प्रवेश द्वार के अनुसार निर्धारित मार्गों से स्टेडियम पहुंचने की सलाह दी गई है। माता सुंदरी रोड, राजघाट पावर हाउस रोड और वेलोड्रम रोड पर निःशुल्क पार्किंग और पार्क एंड राइड सुविधा उपलब्ध रहेगी, जबकि स्टेडियम के आसपास सामान्य पार्किंग की अनुमति नहीं होगी। यातायात पुलिस ने लोगों से प्रभावित मार्गों से बचने, वैकल्पिक मार्ग अपनाने, यात्रा के लिए अतिरिक्त समय लेकर चलने और निर्धारित स्थानों पर ही वाहन पार्क करने की अपील की है। लोगों से यातायात कर्मियों के निर्देशों का पालन करने और उनका सहयोग करने को कहा गया है। इस बीच दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने बताया है कि 18वें ब्रिक्स सम्मेलन के कारण यातायात में संभावित रुकावटों को देखते हुए यात्रियों की सुविधा के लिए कल सभी लाइनों पर मेट्रो सेवाएं सुबह 6 बजे से शुरू हो जाएंगी। इससे परीक्षा देने वाले छात्रों और आम लोगों को समय पर अपने गंतव्य तक पहुंचने में सुविधा होगी। दिल्ली मेट्रो ने यह भी बताया है कि अगले आदेश तक सभी मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वो नवीनतम जानकारी के लिए दिल्ली मेट्रो की वेबसाइट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या दिल्ली मेट्रो सारथी ऐप देखें। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन की बेटी जहरा पेजेशकियन ने आज प्रधानमंत्री संग्रहालय और ब्रिक्स बाजार का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने भारत की लोकतांत्रिक विरासत और सांस्कृतिक धरोहर को करीब से देखा। इस संग्रहालय में भारत के प्रधानमंत्रियों और देश पर उनके प्रभाव की झलक मिलती है। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल आज नई दिल्ली में भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ICAI के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। देश भर में 23 केंद्रों पर आयोजित इस समारोह में श्री मेघवाल ने नए योग्य चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को सदस्यता प्रमाण पत्र प्रदान किए। इस अवसर पर श्री मेघवाल ने देश में किए जा रहे कानूनी सुधारों और शासन व्यवस्था में इनके महत्व का उल्लेख किया।
3: इसमें हमने 1725 ऐसे पुराने कानून जिसकी अब आवश्यकता नहीं, उनको हमने समाप्त किया। 40,000 से अधिक जो कंप्लायंस बर्डन है उनको कम किया। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग, ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस देने का काम किया। इसी रिफॉर्म जर्नी को आगे बढ़ाते हुए जनविश्वास अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजंस एक्ट 2026 के माध्यम से 79 सेंट्रल एक्ट्स की 784 प्रोविजंस में बदलाव किया गया। 717 प्रोविजंस को डीक्रिमिनलाइज किया गया। हमारा अप्रोच स्पष्ट है, छोटी प्रोसीजरल गलती के लिए अननेसेसरी क्रिमिनलाइजेशन नहीं बल्कि प्रोपोर्शनेट रेगुलेशन और वॉलंटरी कंप्लायंस को बढ़ावा देना ये हमारी अप्रोच का हिस्सा है।
0: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई आज वित्त समिति की बैठक में शेख सराय में क्षेत्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला बनाने को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग को इसका निर्माण कार्य 2 वर्ष में पूरा करने का लक्ष्य दिया है। लगभग 6,300 वर्ग मीटर भूखंड पर बनने वाली इस प्रयोगशाला का कुल निर्मित क्षेत्र 18,300 वर्ग मीटर होगा। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: इस परियोजना के लिए 151,81,00,000 रुपए बजट को भी स्वीकृति दी गई है। नई प्रयोगशाला से दक्षिण पूर्व और मध्य दिल्ली के जिलों को विशेष लाभ मिलेगा। यह रोहिणी स्थित मौजूदा फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला को भी अतिरिक्त वैज्ञानिक सहायता उपलब्ध कराएगी। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि नई क्षेत्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला से गृह विभाग और दिल्ली पुलिस को नए आपराधिक कानूनों की आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता मिलेगी। वहीं दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद ने कहा कि नई क्षेत्रीय प्रयोगशाला से मामलों से जुड़े साक्ष्यों की जांच और फोरेंसिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का काम अधिक तेज और सुगम होगा, जिससे आपराधिक मामलों के समय पर निपटारे में मदद मिलेगी। आरजू के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए सौम्या शरण।
0: दिल्ली पुलिस के अपराध शाखा ने साइबर धोखाधड़ी मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने सस्ते दाम पर वॉशिंग मशीन के पुर्जे देने के नाम पर गुजरात के एक व्यक्ति से 1.5 लाख रुपए ठगे थे। वहीं दिल्ली पुलिस के अपराध शाखा ने अंतर्राज्यीय अवैध शराब तस्करी मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 5,100 क्वार्टर अवैध शराब और अपराध में इस्तेमाल होने वाले एक पिकअप तथा स्कूटी भी बरामद की है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने एक अन्य अवैध मामले में 1 आरोपी को गिरफ्तार किया है। दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने आज दिल्ली प्रसूति और स्त्री रोग विशेषज्ञों के संघ AOGD के 48वें वार्षिक सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि महिलाओं का स्वास्थ्य भारत की मानव पूंजी और भविष्य में निवेश है। श्री संधू ने मातृ स्वास्थ्य देखभाल, समय पर जांच, कैंसर की रोकथाम और जीवन के हर चरण में समग्र स्वास्थ्य पर ध्यान देने पर जोर दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महिला नेतृत्व वाले विकास के दृष्टिकोण का उल्लेख करते हुए चिकित्सा क्षेत्र से AI, डिजिटल स्वास्थ्य और अनुसंधान का उपयोग बढ़ाने का आह्वान भी किया। दिल्ली सरकार में मंत्री रविंद्र इंद्राज सिंह ने आज जनता दरबार में दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों से आए नागरिकों की समस्याएं सुनी। उन्होंने नागरिकों की समस्याओं, जरूरतों और सुझावों पर संबंधित अधिकारियों को संवेदनशीलता के साथ विचार कर समयबद्ध और प्रभावी समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि जन प्रतिनिधि का दायित्व जनता की समस्याएं सुनना और उनके समाधान के लिए तत्परता से कदम उठाना है। इसके अलावा श्री सिंह ने आज बाजीतपुर ठाकरान स्थित दादा मालदेव मंदिर परिसर में ग्रामीणों से बातचीत की। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता आज दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन के लिए रवाना हुए, जहां वो कल से शुरू हो रहे 69वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में शामिल होंगे। 18 सितंबर तक चलने वाले सम्मेलन का मुख्य विषय बदलती विश्व व्यवस्था में अंतर्राष्ट्रीय कानून और संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करना है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रकाश पर्व पर देशवासियों और सिख समुदाय को लोगों की शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि गुरबाणी हमें सेवा, सिमरन, समानता और सर्वदा भला का मार्ग दिखाती है। उन्होंने कहा कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की शिक्षाएं पीढ़ियों से समाज को प्रेम, करुणा और भाईचारे से जोड़ती आई हैं। राजधानी दिल्ली में आज कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश हुई। विभाग ने बताया है कि कल राजधानी में बादल छाए रहने और सुबह से दोपहर के बीच बहुत हल्की से हल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत की अध्यक्षता में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन नई दिल्ली के भारत मंडपम में आज से शुरू। सम्मेलन के पहले दिन नई दिल्ली घोषणा पत्र को सर्वसम्मति से मंजूरी मिली। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन और भारत अफगानिस्तान T20 क्रिकेट मैच के कारण दिल्ली में कई मार्गों पर यातायात व्यवस्था में बदलाव। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में व्यय वित्त समिति की बैठक में शेख सराय में क्षेत्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला बनाने को मंजूरी दी गई और दिल्ली मेट्रो की सभी लाइनों पर मेट्रो सेवाएं कल सुबह 6 बजे से शुरू होंगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
1: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
2: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
1: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
2: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार फेज 2 दिल्ली रोड मुरादाबाद।
3: कॉल 7500153841।

0: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरो सर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने, तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
2: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
1: पता लाइन पर प्रकाश नगर चौराहा मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफरातबाद 89.6 पर। और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी। हम लेकर हाजिर हैं आपका अपना फेवरेट शो महिला मंच, और मेरे साथ में है प्राची। तो आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों, सपनों की कोई उम्र नहीं होती।
1: क्या सपनों पर भी कोई उम्र लिखी होती है? क्या कोई सपना 20 साल की उम्र में खूबसूरत होता है और 60 साल की उम्र में बेकार? जी नहीं बिल्कुल खुशी जी, क्योंकि सपनों की कोई उम्र नहीं होती। सपने तो बस सपने होते हैं, उन्हें देखने के लिए आंखों में रोशनी चाहिए और उन्हें पूरा करने के लिए दिल में हिम्मत चाहिए।
0: और एक बड़ी खूबसूरत सी शायरी भी है, उम्र की गिनती से कहां सपने मरा करते हैं, कुछ ख्वाब तो आखिरी सांस तक जिया करते हैं। लोग कहते हैं अब तुम्हारी उम्र नहीं रही, लोग कहते हैं अब तुम्हारी उम्र नहीं रही, हम कहते हैं सपने उम्र से नहीं हौसलों से चलते हैं।
1: क्या बात कही खुशी जी आपने। तो दोस्तों आज हम आपको सुनाएंगे एक कहानी, एक ऐसी महिला की कहानी जो बस आपकी दिल कुछ हो जाएगी।
0: एक ऐसी महिला की जिसने जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा दूसरों के सपने पूरे करते हुए गुजार दिया।
1: दोस्तों उनका नाम था सावित्री देवी, और सावित्री देवी की उम्र लगभग 62 साल थी।
0: उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में उनका घर था, पति सरकारी नौकरी में थे, दो बच्चे थे, जिंदगी बिल्कुल वैसी ही थी जैसे उस दौर की बहुत सी महिलाओं की होती थी।
1: जी हाँ दोस्तों, सुबह सुबह सबसे पहले उठना, घर संभालना, बच्चों को स्कूल भेजना, पति के लिए खाना बनाना, बुजुर्ग सास ससुर की सेवा कर, और दिन खत्म होते होते अपने लिए कुछ भी नहीं बचता था।
0: लेकिन दोस्तों सावित्री देवी के अंदर एक सपना था, उन्हें पढ़ने का बहुत शौक था। बचपन में वह स्कूल जाना चाहती थी, किताबें पढ़ना चाहती थी, उनके नाम के आगे एक डिग्री लगाना चाहती थी।
1: लेकिन दोस्तों उनकी घर की परिस्थितियां ऐसी थी कि 8वीं कक्षा के बाद उनकी पढ़ाई छुड़वा दी गई। उस समय लोग कहा करते थे कि लड़कियों का इतना पढ़कर क्या होगा, और सावित्री जी चुप हो जाया करती थी। लेकिन उनका सपना चुप नहीं हुआ,
0: वो सपना उनके अंदर कहीं रह गया। फिर शादी हो गई, बच्चे हुए, जिम्मेदारियां बढ़ती गईं, और धीरे धीरे उन्होंने भी मान लिया कि शायद अब पढ़ाई उनके लिए नहीं है।
1: एक दिन उनकी पोती जब स्कूल से घर आई, उसके हाथ में एक किताब थी। वह अपनी दादी से बोली, दादी ये कहानी आप पढ़कर सुनाओ ना।
0: सावित्री ने किताब हाथ में ली, उस सेकंड तक किताब को देखती रही, फिर मुस्कुराकर बोली, बेटा दादी को पढ़ना नहीं आता।
1: और दोस्तों आपको पता है पोती ने मासूमियत से क्या पूछा?
0: लेकिन दादी आपने स्कूल में पढ़ाई नहीं की थी क्या?
1: इस पर सावित्री देवी ने कहा कि तो थी बेटा, लेकिन बहुत थोड़ी।
0: पोती ने तुरंत कहा, तो आप कर लो।
1: बस यही दो शब्द सावित्री देवी के दिल में कहीं गहरे उतर गए थे। उसी रात सावित्री देवी काफी देर तक सो नहीं पाई। उन्होंने दोस्तों खुद से एक सवाल पूछा, अगर मेरी पोती 10 साल की उम्र में पढ़ सकती है तो मैं 60 साल की उम्र में मैं क्यों नहीं पढ़ सकती?
0: अगली सुबह उन्होंने अपने बेटे से कहा, मुझे पढ़ना है। बेटा हंस पड़ा, उसे मजाक लगा, उसे लगा माँ मजाक कर रही है।
1: और दोस्तों उसने कहा, माँ अब इस उम्र में पढ़कर क्या करूँगी? सावित्री देवी कुछ नहीं बोली, बस मुस्कुराई और कहा, शायद वही करूँगी जो मैं बचपन में करना चाहती थी।
0: और फिर उन्होंने पढ़ाई शुरू कर दी, पहले हिंदी की किताब, फिर अखबार, फिर अंग्रेजी के छोटे छोटे शब्द। उम्र 60 पार थी, लेकिन उनके अंदर की छात्रा शायद अभी भी 15 साल की थी।
1: दोस्तों सच में शुरुआत में सपने आसान कहाँ होते हैं, कभी वो अक्षर भूल जाया करती थी, कभी शब्द समझ में नहीं आते थे, कभी घर में कोई कह देता था अब इस उम्र में ये सब करने की क्या जरूरत है माँ, कभी पड़ोस की महिलाएं मजाक बनाया करती थी, अरे बहन जी आप परीक्षा देकर कलेक्टर बनोगी क्या?
0: सावित्री देवी हंस देती थी, लेकिन अंदर से वह और मजबूत हो जाती। उन्होंने एक कॉपी बनाई, उसके पहले पन्ने पर लिखा मेरा सपना, और उसके नीचे देर हुई लेकिन खत्म नहीं।
1: जी हाँ दोस्तों, उन्होंने क्या बढ़िया बात लिखी कि देर तो हुई है लेकिन खत्म नहीं हुआ। दिन गुजरते गए और सावित्री देवी ने आखिरकार पढ़ना सीख ही लिया, फिर लिखना सीखा, और कुछ समय बाद उन्होंने अपनी पहली परीक्षा दी,
0: और जब परीक्षा का परिणाम आया वह पास हो गई बहुत अच्छे नंबरों से नहीं, लेकिन उनके लिए वो नंबर दुनिया की सबसे बड़ी उपलब्धि थी।
1: क्योंकि दोस्तों वो सिर्फ पास नहीं हुई थी, उन्होंने उस सोच को भी हरा दिया था जो कहती थी कि सपने सिर्फ जवान लोग देखते हैं।
0: उस दिन उनकी पोती ने उन्हें गले लगाकर कहा, दादी मुझे आप पर गर्व है। सावित्री देवी की आंखों में आंसू थे, उन्होंने अपनी पोती से कहा, बेटा जिंदगी में कभी ये मत सोचना कि अब देर हो गई है।
1: जी हाँ दोस्तों, सावित्री देवी के ये शब्द बिल्कुल दिल को छू जाने वाले थे कि कभी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि जिंदगी में देर हो गई है। दोस्तों सपनों की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती, तो शायद यही बात हम सबको समझने की जरूरत है।
0: कितनी बार हम खुद से कहते हैं ना, अब मेरी उम्र नहीं रही, अब कौन नई शुरुआत करेगा, अब तो बच्चे बड़े हो गए, अब तो नौकरी की उम्र निकल गई, अब कौन मुझे मौका देगा। लेकिन जिंदगी हर बार हमसे यही कहती है, किसी ने कहा कि शुरुआत की कोई भी उम्र नहीं होती। आप इस पर राजी क्या कहना चाहेंगी?
1: खुशी, मैं अपने श्रोताओं को बताना चाहूंगी कि चाहे आप 20 के हैं, 30 के हैं, 40 के हैं, 50 के हैं या 70 के हैं दोस्तों, अगर दिल में कोई सपना अभी भी जिंदा है तो उसे एक मौका जरूर दीजिए। क्योंकि दोस्तों, कुछ ख्वाब अधूरे रहकर भी आवाज देते हैं, कुछ रास्ते उम्र के बाद भी बुलाते हैं। जो दिल से निकल जाए मैं कर सकता हूँ, दोस्तों जो आपकी दिल से निकल जाए मैं कर सकता हूँ, वो सपने उम्र नहीं बस हौसला मांगते हैं।
0: तो आज अगर आपके दिल में कोई सपना है जिसे आपने सालों से दबा कर रखा है, तो उसे आज फिर से बाहर निकालिए, शायद वो सपना अभी भी आपका इंतजार कर रहा हो।
1: दोस्तों, शायद वो सपना कह रहा हो, चलो अब बहुत इंतजार हो गया, अब मुझे जियो, अब मुझे भी तो अपनी जिंदगी में का हिस्सा बनाओ,
0: मुझे भी अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाओ। और सपनों को उम्र नहीं चाहिए, सिर्फ हिम्मत चाहिए, क्यों प्राची?
1: बिल्कुल खुशी जी, उम्र चाहे कितनी भी हो जाए, अगर आंखों में आपके सपने बाकी हैं तो जिंदगी में आप अभी भी जवान हैं।
0: बहुत खूब। तो दोस्तों, बिल्कुल सही कहा है कि सपनों की ना कोई उम्र नहीं होती है।
1: और सपनों के जीने की उम्र को छोड़ आया हूँ तो ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि दोस्तों सपनों की कोई उम्र नहीं होती।
2: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशाह जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
3: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।

0: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
1: प्राथमिक विद्यालयों का संवरता स्वरूप, यूपी में शिक्षा का निखरता रूप।
2: ऑपरेशन कायाकल्प ने प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों की बदली तस्वीर।
3: पीएम पोषण से पौष्टिक भोजन, तो स्मार्ट क्लास से मिल रही है आधुनिक शिक्षा की नई रोशनी।
2: शारदा कार्यक्रम से आउट ऑफ स्कूल बच्चों विद्यालय से जुड़े। समर्थ के माध्यम से दिव्यांग बच्चों की समावेशी शिक्षा के द्वार खुले।
3: अब यूपी में हर बच्चा पढ़ता है, हर बच्चे का आगे बढ़ने का सपना पूरा होता है।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।

0: बद्धता की पुष्टि की। घोषणा पत्र में सदस्य देशों के बीच गहन आर्थिक और विकासात्मक सहयोग का आह्वान। पश्चिम एशिया सहित सभी विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए संवाद और कूटनीतिक प्रयासों का आग्रह। भारत ने कहा, घोषणा पत्र को अपनाया जाना भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के प्रमुख परिणामों में से एक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, निर्णयों और परिणामों के बीच अंतर को साझेदारी और सामूहिक कार्रवाई के माध्यम से पाटना होगा। कहा, ब्रिक्स सभी को साथ लेकर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने द्विपक्षीय बैठक में रणनीतिक और दीर्घकालिक संबंधों पर बल दिया। कहा, मतभेदों का को विवाद नहीं बनने देना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिक्स देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने रेड कॉर्नर नोटिस के अंतर्गत वांछित अमृतपाल सिंह को मोल्दोवा से भारत प्रत्यर्पित कराया और अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में आज रात मौजूदा चैंपियन आरिना सबालेंका का सामना एलिना रिबाकिना से। और अब समाचार विस्तार से। भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली के भारत मंडपम में जारी 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के पहले ही दिन सदस्य देशों ने सर्वसम्मति से नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र के अंत में इस घोषणा पत्र को अपनाने का प्रस्ताव रखा था। समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र सदस्य देशों के साझा संकल्प को स्पष्ट दिशा प्रदान करता है।
1: हमारे समक्ष ब्रिक्स न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 का ड्राफ्ट प्रस्तुत है। इसमें हमारी चर्चाओं का सार प्रमुख वैश्विक और क्षेत्रीय विषयों पर हमारे दृष्टिकोण शामिल है। साथ ही ब्रिक्स कोऑपरेशन को और सुदृढ़ करने की प्राथमिकताएं समाहित है। किसी सदस्य की ओर से आपत्ति व्यक्त नहीं की गई है। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 को सर्वसम्मति से एडॉप्ट किया जाता है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज की चर्चा से स्पष्ट है कि बदलते हुए विश्व का संचालन पुराने संस्थानों से नहीं किया जा सकता है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि प्रतिनिधित्व, जवाबदेही और नियम निर्माण की प्रक्रिया में सुधार आवश्यक हैं। श्री मोदी ने कहा कि निर्णयों और उनके परिणामों के बीच के अंतर को साझेदारी और सामूहिक कार्रवाई के माध्यम से पाटना होगा। ब्रिक्स के ग्लोबल वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सदस्य देशों के नेताओं ने 2 स्मारक डाक टिकट भी जारी किए। इससे पहले उद्घाटन भाषण में श्री मोदी ने ब्रिक्स निरंतरता और कार्यान्वयन तंत्र का प्रस्ताव रखते हुए कहा कि ब्रिक्स की अध्यक्षता हर वर्ष बदलती है, लेकिन इसकी संस्थागत गति बनी रहनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि कार्यान्वयन तंत्र 3 पक्षों के समूह ट्रोइका के माध्यम से सभी पहलों और उनके परिणामों की निगरानी करेगा।
1: गवर्नेंस का वर्तमान स्ट्रक्चर एक पिरामिड जैसा दिखाई देता है। हमें इस पिरामिड ऑफ प्रिविलेज को प्लेटफॉर्म ऑफ पार्टनरशिप में बदलना है, जहां हर देश की आवाज हो, हर सदस्य का स्टेक हो, हर प्रयास के केंद्र में मानवता का विकास हो। इस उद्देश्य से मैं प्रस्ताव रखता हूं कि हम मिलकर ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म के 10 प्रपोजल्स तैयार करें।
0: श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स देशों को अगले 20 वर्षों के लिए नए और महत्वाकांक्षी एजेंडे पर काम करना होगा। इसकी शुरुआत हमें अपनी कार्यप्रणाली में सुधार से करनी होगी।
1: अब समय है कि हम ब्रिक्स में हमारी एकता और सहमति को वैश्विक मंच पर ठोस परिणामों में बदले। अगले 20 वर्षों के लिए हमें एक नए और एम्बिशियस एजेंडा पर काम करना होगा। इसकी शुरुआत हमें अपने खुद के वर्किंग सिस्टम से करनी होगी। ब्रिक्स की अध्यक्षता हर वर्ष बदलती है, किंतु इसकी वजह से हमारा इंस्टीट्यूशनल मोमेंटम नहीं रुकना चाहिए।
0: प्रधानमंत्री ने समुद्री अधिकारियों और संबंधित देशों के राजनयिक मिशनों को जोड़ने के लिए आपात स्थिति में नाविक सहायता नेटवर्क स्थापित करने का प्रस्ताव रखा।
1: क्या हम सी फेरर इमरजेंसी सपोर्ट नेटवर्क बना सकते हैं? इसके माध्यम से संबंधित देशों की मैरिटाइम अथॉरिटी और मिशंस को जोड़ा जाएगा। इससे डिस्ट्रेस अलर्ट्स, मेडिकल असिस्टेंस, परिवारों को सूचना तथा इवैक्यूएशन में सहयोग दिया जा सकता है।
0: श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स देशों के बीच की एकता और सहमति को वैश्विक मंच पर ठोस परिणामों में बदलने का समय आ गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स किसी देश के विरुद्ध नहीं है बल्कि सभी को साथ लेकर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता जन केंद्रित और मानवता को प्राथमिकता देने के दृष्टिकोण पर आधारित है तथा लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण भारत की प्रमुख प्राथमिकताएं रही हैं।
1: भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता पीपल सेंट्रिक और ह्यूमैनिटी फर्स्ट अप्रोच पर आधारित है। रिजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन और सस्टेनेबिलिटी हमारी प्राथमिकताएं रही हैं। इन प्राथमिकताओं के साथ हमने ब्रिक्स सहयोग को सामान्य जन से जोड़ने का विशेष बल दिया है।
0: संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकताओं पर बल देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अब इसे और नहीं टाला जा सकता है। प्रधानमंत्री ने बताया कि वैश्विक आर्थिक विकास को गति देने वाले देशों को वैश्विक आर्थिक शासन में भी उचित भूमिका निभानी चाहिए।
1: रिप्रेजेंटेशन के संबंध में मैं कहना चाहूंगा, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म अब और टाला नहीं जा सकता। इस पर टैक्स बेस्ड नेगोशिएशंस को निश्चित समय सीमा और स्पष्ट परिणाम से जोड़ना होगा। उसी तरह फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में वोटिंग पावर, लीडरशिप पोजीशंस और पॉलिसी प्रायोरिटीज आज की इकोनॉमिक रियलिटीज के अनुसार होनी चाहिए।
0: विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में नई दिल्ली घोषणा पत्र पर सहमति भारत की विभिन्न स्तरों पर वर्षों से चले सहयोग के परिणाम स्वरूप संभव हुई है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आज विदेश मंत्रालय के सचिव सुधाकर दलेला ने कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाना भारत की अध्यक्षता के प्रमुख परिणामों में से एक था। उन्होंने कहा कि आज के सत्र में ब्रिक्स नेताओं ने अपने अपने राष्ट्रीय दृष्टिकोण से बात की, लेकिन बहुपक्षवाद को मजबूत करने और वैश्विक शासन संस्थानों को अधिक प्रतिनिधि, समावेशी, प्रभावी और आज की वास्तविकताओं के प्रति उत्तरदायी बनाने की आवश्यकता पर व्यापक सहमति थी।
2: I would like to say that the outcome document...
3: मैं ये कहना चाहूंगा कि यदि आप नई दिल्ली घोषणा पत्र को देखें तो ब्रिक्स देशों ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की स्पष्ट रूप से निंदा की है। ब्रिक्स नेताओं ने पिछले साल जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले की भी कड़े शब्दों में निंदा की है।
2: जम्मू एंड कश्मीर दैट टुक प्लेस लास्ट ईयर।
0: ब्रिक्स देशों ने विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में बढ़ते ध्रुवीकरण तथा गुटबाजी पर चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली घोषणा पत्र में ब्रिक्स नेताओं ने वैश्विक सैन्य खर्च में लगातार वृद्धि पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सदस्य देशों ने बहुपक्षीय दृष्टिकोण का आह्वान किया जो सतत विकास, भूख और गरीबी का उन्मूलन तथा जलवायु परिवर्तन जैसे महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर सभी देशों के दृष्टिकोण का सम्मान करता हो।
4: ब्रिक्स सम्मेलन के पहले दिन जारी घोषणा पत्र में ब्रिक्स नेताओं ने पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव पर चिंता जताई। उन्होंने सभी पक्षों से अधिकतम संयम बरतने और ऐसे कदमों से बचने की अपील की जिनसे स्थिति और खराब हो सकती है। ब्रिक्स नेताओं ने कहा कि आम नागरिकों की सुरक्षा हर हाल में सुनिश्चित की जानी चाहिए। इसके अलावा बातचीत और कूटनीति के जरिए शांति, सुरक्षा और स्थिरता का रास्ता तलाशने की अपील की। ब्रिक्स नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र महासभा और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रासंगिक प्रस्तावों को लागू करने का भी आह्वान किया। उन्होंने सभी पक्षों से गाजा पट्टी में युद्ध विराम और मानवीय सहायता की पूर्ण तथा निर्बाध पहुंच सुनिश्चित करने की अपील की। ब्रिक्स नेताओं ने दोहराया कि इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष का समाधान केवल बातचीत से ही संभव है। आतंकवाद पर ब्रिक्स देशों ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि आतंकवाद का कोई भी रूप पूरी तरह अनुचित है। ब्रिक्स देशों ने पिछले साल 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले की कड़ी शब्दों में निंदा की और आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। इस घोषणा पत्र को सर्वसम्मति से अपनाया गया। सुपर्णा सेकिया के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने आज पुष्टि की कि भारत और चीन को अपने संबंधों के लिए रणनीतिक और दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और मतभेदों को विवाद नहीं बनने देना चाहिए। नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान द्विपक्षीय बैठक में दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष अगस्त में तियानचिन बैठक के बाद भारत चीन द्विपक्षीय संबंधों में निरंतर प्रगति का स्वागत किया। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए सहयोग जारी रखने पर सहमति व्यक्त की। इससे पहले दिन में प्रधानमंत्री मोदी ने शिखर सम्मेलन के दौरान इथियोपिया, मलेशिया और वियतनाम के प्रधानमंत्रियों तथा अबू धाबी के युवराज के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। श्री मोदी ने सबसे पहले इथियोपिया के प्रधानमंत्री डॉ आबी अहमद अली के साथ वार्ता की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के उद्देश्य से चर्चा की। इसके बाद श्री मोदी ने मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के साथ वार्ता की। दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, रक्षा और सुरक्षा तथा दोनों देशों के लोगों के संबंधों सहित विभिन्न क्षेत्रों पर सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हंग के साथ बैठक में श्री मोदी ने भागीदार देश के रूप में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में वियतनाम का स्वागत किया और प्रधानमंत्री ने अबू धाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ भी वार्ता की। दोनों नेताओं ने भारत यूएई व्यापक रणनीतिक साझेदारी के महत्व को दोहराया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर क्यूबा के विदेश मंत्री ब्रूनो रोड्रिगेस पारिल्ला से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच दक्षिण सहयोग पर सार्थक बातचीत हुई। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने आज रेड कॉर्नर नोटिस के अंतर्गत गिरफ्तार अमृतपाल सिंह उर्फ कुरपाल सिंह को मोल्दोवा से भारत प्रत्यर्पित कराने में सफलता हासिल की। वांछित भगोड़े को विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और पंजाब पुलिस के समन्वय से वापस लाया गया है। सीबीआई ने बताया कि अमृतपाल पंजाब में दर्ज कई गंभीर आपराधिक मामलों में वांछित था। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर उपलब्ध हैं और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
5: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
6: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
5: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने गुजरात में कल मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने बताया कि मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य महाराष्ट्र, सौराष्ट्र और कच्छ में भारी बारिश होने का अनुमान है। तटीय आंध्र प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी कल बारिश हो सकती है। विभाग ने कहा कि बिहार, झारखंड और अंडमान व निकोबार में गरज के साथ बौछारें गिर सकती हैं। दिल्ली में अगले 5 दिनों तक कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। इस बीच केरलम और माहे में कल गर्म और उमस भरा मौसम रहने के आसार हैं। अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स का फाइनल आज रात एलिना रायबाकिना और आरेना सबालिंका के बीच खेला जाएगा। सेमीफाइनल में एलिना ने कोको गॉफ को और आरेना ने जेसिका पेगुला को हराया था। पुरुष सिंगल्स का फाइनल बेन शेल्टन और अलेक्जेंडर ज्वेरेव के बीच खेला जाएगा। सेमीफाइनल में बेन शेल्टन ने फ्रांसिस टियाफो को और अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने करेन खचनोव को पराजित किया था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स देशों ने नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाया, बहुपक्षवाद को मजबूत करने और व्यापक सहयोग के लिए प्रतिबद्धता की पुष्टि की। घोषणा पत्र में सदस्य देशों के बीच गहन आर्थिक और विकासात्मक सहयोग का आह्वान, पश्चिम एशिया सहित सभी विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए संवाद और कूटनीतिक प्रयासों का आग्रह। भारत ने कहा, घोषणा पत्र को अपनाया जाना भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के प्रमुख परिणामों में से एक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, निर्णयों और परिणामों के बीच अंतर को साझेदारी और सामूहिक कार्रवाई के माध्यम से पाटना होगा। कहा, ब्रिक्स सभी को साथ लेकर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने द्विपक्षीय बैठक में रणनीतिक और दीर्घकालिक संबंधों पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की और अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में आज रात मौजूदा चैंपियन आरिना सबालेंका का सामना एलिना रायबाकिना से। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: सीने में दर्द, सांस फूलना या तेज धड़कन को बिल्कुल नजरअंदाज ना करें।
1: श्री साई हॉस्पिटल में डॉक्टर अखिल कौशिक डीएम कार्डियोलॉजी द्वारा
0: एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टिक, पेसमेकर एवं अत्याधुनिक कार्डियक कैथ लैब की सुविधा उपलब्ध है। वो भी किफायती रेट्स पर। स्वस्थ दिल, सुरक्षित जीवन। आज ही अपॉइंटमेंट ले। श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल करें 7060002430।
2: डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: यार आज तो मेरे साथ बड़ा अजीबोगरीब किस्सा हुआ भाई। मोबाइल लगा दिया चार्जिंग पे, 2 घंटे लगा के सो गया और जब उठा सोचा 100% हो गया होगा, देखा तो एक भी नहीं था क्योंकि स्विच ऑन करना भूल गया था। ऐसा आपके साथ हुआ है कभी? ऑफ कोर्स यार जरूर हुआ होगा। हेलो हाय, कैसे हालचाल, गुड इवनिंग, बंदे का नाम आनंद है। आपके साथ भी ये चीज होती रहती होंगी। लेकिन अभी मुद्दे की बात पे आते हैं। आज की शाम आपको ढेर सारी बातें बताने और कुछ नई नई जानकारियां लेकर मैं अकेला नहीं हूँ, स्टूडियो में मैं आ ही गया हूँ, लेकिन मेरे साथ अखिल भाई भी आए हैं। हेलो भैया, कैसे हो?
1: मैं बढ़िया हूँ, और आप कैसे हो आनंद?
0: मैं बहुत ही हैंडसम हूँ यार, आजकल फाउंडेशन थोड़ा ज्यादा ही हो रहा है मेरा।
1: अच्छा, एक बात बताओ, तुम अपने साथ ये छाता क्यों लेके आए हो?
0: यार छाता इसलिए लेकर आया था क्योंकि बाहर मौसम गड़बड़ आ रहा था।
1: मौसम गड़बड़ आ रहा था या सिर्फ आंधी तूफान चल रहे थे?
0: यार आंधी तूफान तो ही चल रहे हैं, ये तो मुरादाबाद की जनता भी जानती है। लेकिन हाँ, एक बात फैक्ट है कि आंधी तूफान अभी हम दोनों चलाने वाले हैं। तो अभी जो है हम आपके साथ कब तक रहेंगे ये तो मुझे भी नहीं पता है, जब तक ये घड़ी की सुइयां हमें बाहर ना निकाल दें इशारे कर करके तब तक। तो आज की शाम हम बहुत कुछ अच्छा करने वाले हैं, तो आप चिपक के बैठिए हमारे साथ। तो अखिल भाई और आनंद आपके साथ हैं।
1: चिपक के बैठने का मतलब ये भाई साहब, थोड़ी सी थोड़ी दूरी तो बना के रखनी
0: पड़ेगी। चिपक के आपको नहीं कह रहा, मैं रेडियो वालों को कह रहा हूँ कि आप अपने रेडियो सेट पे चिपके रहो, और अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो अपना कान रेडियो पे और ध्यान सड़क पे दोनों को जो है लगा के रखना।
1: और सड़क पे भी ना, गड्ढे पे ज्यादा ध्यान देना भाई साहब, गड्ढा कहाँ है
0: यार। वो वाटर लॉगिंग की वजह से हो रहे हैं आजकल, बहुत ज्यादा पानी हो जाता है अपने मुरादाबाद में, सच बता रहा हूँ मैं। चलो फिलहाल बातें ये जो है वो चलती रहेंगी। ऑफकोर्स हम आए हैं तो कुछ पहले गाने बजाते हैं फिर लौट के आते हैं। सो आप कहीं मत जाओ, कुछ कहना चाह रहे हो तो हमारे इंस्टाग्राम पे आ जाओ। मैं आपको मिलता हूँ रेडियो वाला आनंद के नाम से, अखिल भाई आपको मिलते हैं FM मुरादाबाद 89.6 के नाम से।
1: अखिल आनंद के नाम से भी मिलते हैं।
0: अच्छा, इनका अपना
1: भी है, ये नहीं चाहता कि दूसरे बंदे का भी भाई बोल दो।
0: देखो अगर आपने आनंद को फॉलो किया तो वहाँ कुछ ऐसी रील्स मिलेंगी जिनमें इनका भी इंस्टाग्राम दिख जाएगा,
1: फॉलो कर लेना।
0: ठीक है, चलो गाने बजा रहे हैं फिर आ रहे हैं।

0: एक बार फिर से स्वागत है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे, जो है आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। सही कहा ना आनंद?
1: बिल्कुल भैया, आप बिल्कुल सही कहते हो, इसमें तो कोई दो राय नहीं है।
0: और आज का जो शो है ना, सिर्फ फिल्म देखने वालों के लिए नहीं है, बल्कि उन लोगों के लिए भी है जो फिल्म खत्म होने के बाद ये पूछते हैं, अरे भाई इसका पार्ट टू कब आएगा। ऐसा हुआ है कोई मूवी तुमने
1: मेरे
0: देखी?
1: साथ तो अभी रिसेंटली हुआ है, मतलब मैं अगेन रिपीट करूंगा, मैं अभी जब हनुमान अंश देखकर आया, वो मैंने पहली बार कोई मूवी थी, वो भली स्पिरिचुअल मूवी है बट मैंने इतने ध्यान से देखी, वो मुझे कॉन्सेप्ट उसकी एक ही चीज मुझे बहुत अच्छे से दिमाग में आई एंड आई डोंट नो क्यों मैं इतना कनेक्टिविटी फील कर पाया उस मूवी से। और अब ऐसा लग रहा है कि इसका सेकंड चैप्टर बना डालो, मतलब जिन्होंने भी ये मूवी बनाई है, क्या नाम है, चतुर्वेदी जी, विशाल चतुर्वेदी जी, आप अगर सुने तो प्लीज इसका पार्ट टू जल्दी ले आओ यार।
0: ले आएंगे मगर मैं अभी जो बात चल रही थी वो ये चल रही थी कि
1: इसका पार्ट टू कब आएगा ना, ऐसे कुछ आप पूछ रहे थे।
0: हाँ, मैं नहीं मैं अरे आनंद तुम समझे नहीं, मैं ये कह रहा था, मैं उन लोगों की बात कर रहा था जो फिल्म देखने के बाद ये कहते हैं कि इसका पार्ट टू कब आएगा।
1: तो मैं कुछ हूँ
0: हाँ, मगर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं उन लोगों के लिए पूछना चाह रहा हूँ कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो फिल्म में पहले ही पूछ लेते हैं शुरू होने से पहले कि भाई इसका विलन कौन है, उसका हीरो कौन है,
1: पूरी स्टोरी पहले जानने के लिए उनके अंदर एक्साइटमेंट होती है। वो मैं भी करता हूँ, मतलब कोई मूवी स्टार्ट नहीं हो, मैं उसका पहले पंडित बन जाता हूँ, एस्ट्रोलॉजर है, इसमें ये हो सकता है, ये नहीं हुआ होगा, इसमें ये कब होगा। बहुत से लोग मुझे कहते हैं बेटा चुप होके बैठ जा, देखने आया ना अभी पता लगेगा, इतना दादा क्यों बन रहा है अभी से, इसने पैसा लगाया करोड़ों का, पहले देख तो सही होगा क्या, तो चुप होके बैठ, देख और देखने दे, तो हो जाता है कभी कभी। एनीवेज आगे क्या कहना चाह रहे थे अखिल जी आप?
0: मैं ये कहना चाह रहा था कि एक मूवी, एक गाना है जो मेरे दिमाग में घूम रहा है, जब सुनाओगे वो कौन सा गाना?
1: मैं गाना सुनाऊंगा नहीं, मैं उस म्यूजिक बजाऊंगा। सो ये आपका टास्क है, आप उसे पहचान लो ये।
0: हाँ ये सब पहचान लेंगे यार, एकदम हमारे श्रोता जो है बहुत ही तेज है।
1: बताओ। ये अब हम ये हम नहीं बताएंगे, ये हमारे लिसनर के ऊपर छोड़ दो। चलो एक बार रिपीट कर देते हैं, पाजी हो जाओ शुरू। लोगों ने गाड़ियां रोक ली अपनी, चलाते चलाते, अरे यार ये तो वही है, वही
0: अरे वही है, वही
1: दिमाग में आ रही है बट समझ में आ रहा है कि हाँ कुछ तो है।
0: कभी कभी गाड़ी निकल जाने के बाद याद आता है।
1: अच्छा,
0: यार इस गाड़ी
1: चलो एक और, एक इसका एक और क्लू देता हूँ, दिस इज योर हिंट। ये किसकी आवाज है जरा बताओ?
0: मिक्का पाजी की।
1: क्या बात है यार, सलमान खान जी पे मिक्का पाजी भी इतने बढ़िया जैसेंगे कभी मैंने सोचा नहीं था यार। खैर एनीवेज, आपको अगर समझ में आए कौन सी फिल्म है तो आज हम इसी की बात करेंगे, नाम लौट कर आएंगे फिर बताएंगे। अभी फिलहाल ये गाना तो नहीं, कोई और सा गाना आपके लिए लगा रहे हैं, ये सुनो और हम वापस आ रहे हैं, ठीक है अखिल जी?
0: बिल्कुल।
1: चलो जी आप कहीं मत जाओ, रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाओ, सुनते रहो एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो,
0: बजाते रहो
1: गुनगुनाते रहो।
2: सिरदर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं, बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
3: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
4: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
3: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
4: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह न्यूरोसर्जन पे, आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार फेज 2 दिल्ली रोड मुरादाबाद।
5: कॉल 7500153841।

0: यार ये जो गाने अभी आपने सुने ना, ये तो वो गाने थे जिनको सुन के हम भी कभी कभी खुश हो जाते हैं, और जब ऐसे गाने बहुत टाइम के बाद सुनते हैं तो मजा आ जाता है। एनीवे अखिल भाई, आप क्या कहना चाहोगे? आज मूवी का पंचनामा आप कर रहे हो, ऑफकोर्स
1: मूवी का पंचनामा क्या, लोगों ने अब तक तो गैस कर ही लिया है कि
0: आई डोंट नो, बहुत लोग ऐसे हैं जो गैस नहीं कर रहे होंगे, तो हम बता ही देते हैं यार उन्हें आज हम कौन सी मूवी की बात कर रहे हैं। आजकल जिम नहीं जा रहा हूं तो बॉडी नहीं बन पा रही है, गार्ड मेरे आसपास कोई होता नहीं है, तो
1: अच्छा अब तो तुमने बता ही दिया कि बॉडीगार्ड की बात चली थी। मगर आनंद एक बार मतलब मैंने देखा था तुम्हारी एक रील में कि तुम चल रहे हो, तुम्हारे पीछे दो बॉडीगार्ड चल रहे हैं, उसकी कहानी क्या थी?
0: यार वो मैं एक इवेंट में गया था, और मुझे, मैं सच बताऊं तो गाइस, मुझे ना एक्चुअली ये चीजें बहुत कम अच्छी लगती है। आई डोंट नो क्यों, मैं उस पर्सनैलिटी में बिल्कुल नहीं आता हूं कि जिनको ये शो ऑफ करना है कि उनके साथ बॉडीगार्ड घूमे ये वो इन ऑल दैट। अगर आप फेमस हो तो आप एकदम स्टाइलिश, एकदम झुमरू बाबा बन के घूमो, आई एम नॉट झुमरू बाबा यू नो, या फिर आप बहुत ज्यादा ऐसे मतलब बन ढंग के चलो, ठीक है यार, अपना अपना सबका एक स्टाइल होता है, अपने अपना सबका एक यू नो रहने का तरीका होता है। किसी को सिंप्लिसिटी पसंद आती है, किसी को थोड़ा सा ओवर फैशन पसंद आता है कि हाँ लाइक जैसे भैया मतलब लगना चाहिए, कोई निकला तो फुल ऑन वाइब आए ऐसी वाली, तो मुझे लगता है वो वाइब आपके काम से आनी चाहिए। एग्जैक्टली तो अभी जो आपने पॉइंट पूछा कि आप बॉडी गार्ड आपके साथ हूँ, एक इवेंट में गया था और एक मैम ने मुझे बहुत पुश किया कि नहीं तू जा तू जा, मैंने कहा जब सब जा रहे तो मैं भी इस हवा का मजा ले लूं, एंड मैं इतनी तेज भागा और बॉडी गार्ड भी मेरे साथ साथ भागने लगे। फिर बाद में किसी ने बताया भाई जब आप ऐसे जाते हो ना रैंप वॉक पे बॉडी गार्ड के, तो स्लो मोशन में जाना होता है। भैया पहली बार था ना, मैंने उनको कहा सर पहली बार था ना, बहुत जोश आ गया इसलिए मैं तुरंत भाग गया, तो मेरे को पता ही नहीं था। बट अभी सी वो कहते हैं ना हर चीज आपको सिखाती है, तो बस अब आज हम बॉडीगार्ड की बात कर रहे हैं, तो मैं ये बॉडीगार्ड जरूर देखूंगा, क्या पता इसमें मुझे कुछ आइडिया मिल जाए।
1: और इस बॉडीगार्ड मूवी की खास बात ये बताऊं कि हाँ। ये जो मूवी है ना, ये डब मूवी है मलयालम फिल्म की,
0: मतलब किसी और के ऊपर सीक्वल बना है इसका।
1: हाँ, मतलब मलयालम फिल्म में पहले भी मूवी आ चुकी थी,
0: ऑल राइट,
1: उसके बाद उसका सीक्वेंस उसके ऊपर देख के बनाया।
0: अरे वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया। आपने कितनी बार देखी है ये मूवी?
1: ये मैंने देखी है डेढ़ बार।
0: डेढ़ बार मतलब
1: एक बार पूरी देखी और दूसरी बार जब मैं देख रहा था तो आधी में से ही उठ गया था किसी काम की वजह से।
0: ओके वेरी नाइस। इसमें जो स्टार कास्ट है बहुत अच्छी है, करीना कपूर, सलमान खान, बाकी के लोग मुझे नहीं पता है गाइज, मैं इन दो चेहरे को जानता हूँ। और इनका गाना एक बहुत पॉपुलर था जो हम सभी का बहुत ही ऑल टाइम फेवरेट है, बहुत रोमांटिक नंबर है, थोड़ी देर में बजाएंगे। बताइए आप कुछ कहना चाह रहे हैं माइक कितने?
1: मैं बस यही कह रहा था, चलते चलते ये पूछना चाहता था, तुम बॉडी गार्ड रखते हो तो तुम उन्हें सैलरी क्या दोगे?
0: अगर मैं बॉडी गार्ड रखूंगा तो उन्हें सैलरी क्या दूंगा? मैं अगर रखूंगा ही नहीं पहली बात तो खुद की इतनी बॉडी बना लूंगा कि सब मेरे को अपने यहाँ पे हायर करें।
1: मैं तो सोचा था तुम ये ना कह दो कहीं कि मैं अपनी सारी सैलरी उन्हें दे दूंगा।
0: ना भाई अभी इतना मेरे बजट से बाहर है, आई होप ऐसा हो जाए तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। और फिलहाल मेरी तरफ से गाना था। ये क्या था यार?
1: ये तेरी मेरी के बाद
0: अच्छा वो हम दोनों की बात करके चली गई है शायद। चलिए कोई बात नहीं, मैं ट्राई करता हूँ।

0: बहुत अच्छा आनंदमय गाना है, लेकिन तेरी मेरी दो लफ्जों में बयान ना हो पाए, समझ नहीं आया।
1: ये एक्चुअली उसने दिल की बात बिल्कुल सही सही बोल दी, उसने साफ साफ बोल दिया भाई साहब, दो बातों में तो तेरी मेरी कहानी हो ही नहीं सकती भी।
0: क्या बात है, चलो
1: टाइम लगेगा।
0: चलो एक काम करते हैं, हम ज्यादा टाइम नहीं लगाते हैं, बढ़िया सा गाना बजाते हैं, फिर लौट कर आते हैं।

0: भाई ये गाने सुन के सच में मजा आ रहा है। अखिल भाई के साथ चिप्स, कुरकुरे, बिस्किट, पता नहीं क्या क्या लेकर आए हुए हैं। पूरी इन्होंने मेरी ये आगे की टेबल भर दी। इतना खाना तो मैंने जिंदगी में नहीं देखा, मतलब वो भी जंक फूड वाला। तो वैसे खाना तो नहीं खाते
1: कभी कभी, चीट डे कहते हैं ना, उसे चीट डे हो जाना चाहिए कभी
0: अपने साथ, है ना। दुनिया के साथ आप इंसाफी की बात करो, लेकिन खुद के साथ बेईमानी कभी कभी जरूरी है। किसी को पता नहीं है, जूते पड़ेंगे, जूते बता रहा हूँ आपको, इसलिए मुद्दे की बात पे आते हैं। एनीवे, वेलकम बैक है। आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना रेडियो FM मुरादाबाद 89.6, आनंद और अखिल के साथ बातें वही हो रही है जो आपका दिल चाह रहा है, फिल्मी शिल्मी वाली। तो भैया आप कह रहे थे बॉडीगार्ड मूवी के बारे में।
1: मैं बस ये कह रहा था, अभी तो हमने खूब सारी बातें करी हैं बॉडीगार्ड की,
0: यार जरूरी है।
1: तो बॉर्डर से रिलेटेड एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया, अगर आनंद तुम्हें किसी का बॉडीगार्ड बनाना का मौका मिले, किसी भी हीरो का, तो तुम कौन से हीरो का बॉडीगार्ड बनना चाहोगे?
0: शाहरुख खान का बन जाऊंगा, मुझे दुबई जाने का बहुत मन है, तो एटलीस्ट उसका बॉडीगार्ड बनके मैं यूएई तो पहुंच जाऊंगा। और दूसरी बात, वैसे मुझे किसी हीरो का बॉडीगार्ड क्यों ही बनना है, मैं तो कटरीना कैफ
1: हीरोइन का बॉडीगार्ड बनना है तुम्हें।
0: वैसे कटरीना कैफ के तो ऑलरेडी विक्की से है ही बात, नहीं तो मैं उसका कृति सेनन का बन जाऊंगा
1: क्या
0: बॉडीगार्ड। पूरी बात पूछा करो यार, क्या क्या मतलब क्या होता है यार।
1: मैंने कहा यार क्या पता तुम सोच रहे हो रिश्ता विश्ता आ गया हो तुम्हारे लिए।
0: अरे यार जब आएगा तो मैं सबको बता दूंगा यार, मैं बहुत ही सच्चे और सच्चे और खुले दिल का इंसान हूँ।
1: तो बिल्कुल, और जब शाहरुख खान की तुमने बात ही करी है ना, मुझे शाहरुख खान की
0: समझदार हो आप, इसलिए मैंने शॉर्टलिस्ट किया ये बंदा। हाँ बताओ बताओ बताओ।
1: मुझे शाहरुख खान साहब की एक मूवी तुम्हें याद है, तुमने देखी परदेश?
0: परदेश, अच्छा हाँ देखी है
1: भाई। अभी उसको ना मतलब 1997 की फिल्म जो सुभाष घई जी ने डायरेक्ट की,
0: सुभाष घई की फिल्मों की तो कि मैं क्या बात करूं। और जो तुम मूवी की बात कर रहे हो ना यार, ये मूवी तो मेरी बहुत ही फेवरेट है। और इसकी जो स्टोरी है, ये फॉरेन कंट्री में भी जाके इन्होंने शूट की है, बहुत अच्छी स्टोरी है, गंगा की कहानी है इसमें, महिमा चौधरी जो गंगा का रोल करती है। बहुत अच्छी मूवी है और बहुत अच्छा इसका एक गाना भी है जो बहुत बड़ा फेवरेट है हमारा,
1: क्योंकि कहानी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है ना भारत और अमेरिका के बीच में जो कल्चरल रेफरेंस है उसके ऊपर घूमता हुआ है।
0: एग्जैक्टली, और इसका ही गाना तो सबका फेवरेट होगा ऑफकोर्स। अगर आपने नहीं सुना है तो चलिए मैं थोड़ा सा प्ले कर देता हूँ आपके लिए। मैं कह रहा हूँ भाई से पीछे से बजा दो, नहीं तो पास कर लेगा।
2: तस्वीर से तो निकल के सामने आ।
0: अगर सच में तस्वीर से आ गई तो आप क्या बोलोगे इसे? महिमा चौधरी अगर निकल के बाहर आ गई
1: तो मुझे तो पैर छूने पड़ेंगे भाई साहब।
0: आप पैर छूओगे, मैं तो बोलूंगा मुझे गोदी में ले चलो।
2: मेरी महबूबा, मेरी महबूबा।
0: गाड़ी में बैठे लोग अपना क्रश याद कर रहे हैं और हमें गालियां पड़ेंगी उनकी बीवियों से। तो बेटर यही है कि कोई और गाना बजा दो इज्जत के साथ। और इसमें क्या चीज है जो आपको अच्छी लगी?
1: मुझे तो बस इसमें एक्चुअली जो जिस तरीके से डायरेक्शन सुभाष घई साहब ने किया था और किस तरीके से भारतीय मूल के लोग जो हैं विदेश में अपनी बदलती जिंदगी और अपनी जड़ों से जो रिश्ते हैं, जो उनकी जुड़े हुए रिश्ते हैं, उसके ऊपर जो पर्सपेक्टिव शो हुआ था, जो बनाया था, वो मुझे सबसे
0: अच्छा। मुझे जो एक चीज पर्सनली लगती है यार अखिल जी, कि जो सुभाष घई की मूवी हो या और भी जो पहले के लोग मूवी बनाते थे, उनकी मूवी के कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे थे। चाहे करण जौहर की बात करो या सुभाष घई की बात करो, इनकी फिल्मों में एक मतलब कुछ मैसेज भी होता था, लाजमी लेसन जिसे कहते हैं ना, कुछ लेसन देना। अब इसमें देशभक्ति का भी गाना था, आपको याद है?
1: हाँ,
0: कौन सा गाना था ये? राइट, I love my India कुछ गाना था।
1: हाँ, बहुत
0: बढ़िया।
1: उदित नारायण के बेटे की उसमें
0: आवाज थी, आदित्य नारायण
1: का, उन्होंने एक्ट भी किया है इस मूवी में।
0: अच्छा, छोटे से बच्चे का रोल करता है।
1: और एक पता, इस मूवी से मुझे एकदम बात याद आई, एक गाना था जो सोनू निगम साहब ने था, ये दिल
0: मैं वो ढूंढ रहा हूँ,
1: उस गाने का आनंद ये थी,
0: निकाल रहा हूँ मैं
1: कि वो गाना शाहरुख खान ने एयरपोर्ट मतलब जहाँ वो स्टे कर रहे थे जिस होटल में, उस होटल से ट्रेवल करते हुए, मतलब उस होटल से ट्रेवल करते हुए एयरपोर्ट तक के बीच में शूट किया है पूरा गाना। मतलब
0: ये कहाँ पर शूट हुआ था ये
1: गाना? और उसी दिन उनकी फ्लाइट थी वापस इंडिया आने की।
0: ये बात यही है ना,
1: बिल्कुल सही,
0: बहुत एनर्जेटिक गाना है यार। चलो हम भी डांस कर रहे हैं।

0: अरे
1: यार चलो गाने सुन लेते हैं।
2: दीवाना दीवाना है ये दिल।
1: अब यार जब ये गाना हमने सुन ही लिया है तो क्यों ना अखिल भाई इसको पूरा ही सुनवा दे अपने लक्ष्मण।
0: हाँ यार ये मतलब मजा आ जाएगा।
1: तो आप कहीं मत जाइए, रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाइए। मैं और अखिल भाई वापस आ रहे हैं इस गाने के बाद, जल्दी से आपको मिलेंगे। आप सुनते रहिए ऐसे ही
0: FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़
1: रेडियो, बजाते रहो
0: गुनगुनाते रहो।

0: सीने में दर्द, सांस फूलना या तेज धड़कन को बिल्कुल नजरअंदाज ना करें।
1: श्री साई हॉस्पिटल में डॉक्टर अखिल कौशिक डीएम कार्डियोलॉजी द्वारा
0: एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टिक, पेसमेकर एवं अत्याधुनिक कार्डियक कैथ लैब की सुविधा उपलब्ध है। वो भी किफायती रेट्स पर। स्वस्थ दिल, सुरक्षित जीवन। आज ही अपॉइंटमेंट ले। श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल करें 7060002430।
2: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।

0: सच में यार ये गाने सुन के तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं फाइनली अब ऐसे मूड में हूँ कि बस जल्दी से मुझे गेट खोल के बाहर निकाल दो, ऑन ईयर से ऑफ ईयर कर दो अखिल भाई। ऐसा लग रहा है कि बस जाके कुछ जल्दी से खा लूँ यार, क्योंकि जो तुमने मंगाया वो मैंने खाया नहीं है।
1: क्यों नहीं
0: खाया यार?
1: मतलब ये चिप्स भी खा सकते हैं।
0: नहीं चिप्स यार, वो उसमें मसाला ज्यादा है यार, तो आजकल डाइटिंग करने का मूड है वैसे भी।
1: मसाले से मुझे याद आया, एक पिक्चर का भी ट्रेलर आया, उसका भी खास मसाला भाई।
0: जोन सी फिल्म की बात कर रहे हो तुम?
1: मैं बात करता हूँ दृश्यम की।
0: अच्छा वो आ गई है या आने वाली है आपका?
1: अभी आने वाली है, तीसरा पार्ट आने वाला है उसका।
0: मैंने सुनी है यार वैसे।
1: दृश्यम अजय देवगन की ना अल्टीमेट भाई साहब। 2 अक्टूबर अगर तुम्हें कुछ याद हो ना हो, 2 अक्टूबर जरूर तुम्हें जिंदगी में याद हो जाएगा।
0: गांधी जी की वो थी,
1: गांधी जी के अलावा अगर याद है ना, गांधी जी जयंती के अलावा
0: और क्या था? तो
1: वो 2 अक्टूबर को अजय देवगन बताएंगे ना क्या था।
0: अच्छा अजय की कुछ
1: ये मूवी देख के आना एक बार।
0: अच्छा अच्छा,
1: अभी तक देखी नहीं तुमने?
0: मैंने एक भी सीक्वल नहीं देखा ना। आज ट्रेलर देखता हूँ।
1: तुम्हें ना अवेलेबल
0: है?
1: कहाँ थे आनंद तुम?
0: यूट्यूब पे अवेलेबल है।
1: हाँ ये यूट्यूब पे अवेलेबल है, और इसकी भी खास बात ये है कि ये भी मूल रूप से मलयालम फिल्म की ही डब है।
0: अच्छा?
1: मतलब उसके ऊपर ही एक उसकी कॉपी है, ये उसका रीमेक कह सकते हैं एक तरीके से।
0: तो अखिल भाई एक बात बताओ, इसमें क्या ऐसा तुम्हें इंटरेस्टिंग लगने वाला है? इस वाले में क्या लग रहा है कि
1: इस वाले में अगर जैसे तुमने मतलब अगर तुमने देखी नहीं है तो मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि
0: फर्स्ट,
1: हाँ इन शॉर्ट कि ये एक मर्डर मिस्ट्री के ऊपर है पूरी मूवी।
0: ओके।
1: और वो पहली मूवी में वो पहले मर्डर मिस्ट्री से बचता है, पता ही नहीं चलता है कि वो जो मर्डर किया है उसकी बॉडी कहाँ छुपा के रखी है।
0: ओके।
1: अच्छा सेकंड में क्या है, सेकंड भी उसी मर्डर को कंटिन्यू करते हुए, उसी मर्डर मिस्ट्री को कंटिन्यू करते हुए उसमें भी जो कूप्स जो भी उसमें घटनाएं घटी हैं वो भी अभी तक वो पकड़ नहीं पाए। मतलब सब ने जितने भी जो कॉप्स थे उसको मूवी में कॉप्स, वो अभी तक उस चीज को पता नहीं कर पाए। और थर्ड पार्ट अब क्या है, जो फर्स्ट और सेकंड में कॉप्स नहीं ढूंढ पाए और जितने सारे लिंक्स उन्होंने बनाए, तो शायद मुझे जहां तक लग रहा है उस थर्ड पार्ट में वही एक फेज होगा कि भाई अब तो ये लड़का पकड़ में आएगा।
0: अच्छा ओके।
1: अब तो ये हीरो पकड़ में आएगा, मगर अजय देवगन का ये ना चेहरे से इतना मासूम है कि पता ही नहीं चलता उन्होंने इतना किस तरीके से मास्टरी जो है अपने पीछे छुपा रखी, इतनी बड़ी मास्टरी कि आखिर सच है क्या। और ये ऑडियंस के लिए भी अभी तक एक वो है, क्वेश्चन मार्क है।
0: ओके क्या बात है। लेकिन मुझे 2 अक्टूबर से सिर्फ ये याद आता है, मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं को सिर्फ अक्टूबर आते ही गांधी जी रघुपति राजा राघव राजा राम वो स्कूल में कराते थे ना बल्कि। ये कौन सी फिल्म का सीक्वल है?
1: ये कौन सी फिल्म का सीक्वल नहीं है, मगर ये मेरे ख्याल से काजोल और शाहरुख है इस सीन में, मुझे एकदम एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा।
0: हमें कुछ नहीं पता भैया, हम यही कर लेते हैं,
1: कुछ कुछ होता होगा, कुछ कुछ हो।
0: चलो बहुत अच्छा, वेरी नाइस। तो अब भैया चलने का समय हो गया, रघुपति राघव राजा राम, हमें इजाजत दीजिए प्रभु महान, हम निकलने का करते हैं यहाँ से काम। तो अखिल भाई आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच।
1: अरे बस बस, जाने से पहले कुछ सुनाना चाहूंगा
0: प्लीज, कोई मतलब ऐसी शायरी जिसे सुन के मैं शर्मिंदा हो जाऊं ऐसी वाली सुना दो और मैं यहाँ से भाग जाऊं पानी पानी होके। सो प्लीज,
1: पानी की बोतल तो है तुम्हारे पास,
0: गो फॉर इट अखिल भाई प्लीज।
1: किससे बहुत है फिल्मों,
0: हाँ
1: मुझे हंसी आ रही है आज बहुत। किससे बहुत है फिल्मों के कहानी बहुत है, हर किरदार की अपनी निशानी बहुत है, पर्दे पर जो दिखे जरूरी नहीं सच वही हो, क्योंकि जिंदगी खुद एक फिल्म है और कहानी बहुत है।
0: अरे वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया हो गई एंड। क्या बात
1: तो
0: है?
1: दोस्तों आप इसी तरीके से हमसे मिलते रहें, हमें सुनते रहें और सुनने के बाद मुस्कुराते भी रहें।
0: बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अखिल भाई की ये शायरी सुन के वाकई में मुझे मजा आ गया है, और सच बताऊं इनकी शायरी सुन के मेरे अंदर से आवाज आ रही थी।
1: ठीक है चिंता मत करो, अभी ये जो तुमने बातें करी ना अभी तुमने, मैं स्टूडियो से बाहर निकलो सारी ईश्वर अल्लाह।
0: तो आप नीले ढाबे पे चाय पीने गए थे?
1: नीलकंठ
0: ढाबा। आज कौन से ढाबे पे जा रहे हो?
1: आज ही मैं उसी ढाबे पे जाऊंगा, मैं कल।
0: तो ऐसा लगता है गाइस वो इन्हीं का ढाबा है, झूठ बोल के अपना प्रचार करना चाहते। प्रचार से मुझे याद आया, वैसे आजकल आप भी अपना प्रचार करा सकते हो हमारे एफएम पे, है ना भाई? आजकल फेस्टिव सीजन है,
1: लोकल को वोकल हम करने को तैयार है, और इसके लिए आप संपर्क करें 9971717969। एक बार फिर से सुन लीजिए इसके बीच में,
0: बताओ
1: 9971717973 पे। चलो आप डीएम करें और आपको डिटेल्स भेज दिए।
0: चलो आप इनको फोन भी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ये नंबर इनका है या किनका आई हैव नो आइडिया, आई डोंट नो। आप फोन करके परेशान कर दो या ना करो, वो आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। फिलहाल काम से कॉल कर दो यार, हाँ। काम के लिए कॉल करो और एडवर्टीजमेंट के लिए हम यहाँ बैठे हैं। कोई भी आपको कभी भी कोई रिक्वायरमेंट है, आपको लग रहा है कस्टमर नहीं आ रहा है या जो भी आपको लग रहा है, बिजनेस ग्रो करना है, नया नया खुला है, तो रेडियो है भाई।
1: ज्यादा टेंशन नहीं लेने का साहब, जाइए सिर्फ चाप खाइए, क्योंकि ग्रिल्स तंदूरी जंक्शन का लोगो ही ये है, उनकी टैगलाइन यही है, आइए आप खाइए चाप।
0: चलिए मैं भजन के साथ जा रहा हूँ गाइस, आपको बस भगवान अच्छी नींद दे आज रात, बाय।

0: सीने में दर्द, सांस फूलना या तेज धड़कन को बिल्कुल नजरअंदाज ना करें।
1: श्री साई हॉस्पिटल में डॉक्टर अखिल कौशिक टीएम कार्डियोलॉजी द्वारा
0: एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर एवं अत्याधुनिक कार्डियक कैथ लैब की सुविधा उपलब्ध है। वो भी किफायती रेट्स पर। स्वस्थ दिल, सुरक्षित जीवन। आज ही अपॉइंटमेंट ले। श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल करें 7060002430।
2: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।

0: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशाल जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।

0: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
1: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
0: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
1: अरे नहीं,
2: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
1: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड कॉइन जीतने का मौका भी है।
0: अच्छा?
2: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता जैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।

0: House.
1: क्या आप एक ही जगह पर दुनिया की सैर और जबरदस्त रोमांच का मजा लेना चाहते हैं? तो चले आइए सात अजूबे पार्क। यहाँ शानदार अजूबों के दीदार के साथ आपको मिलेगा तीरंदाजी और मैकेनिकल बुल राइड जैसी एक्टिविटीज का फुल ऑन थ्रिल। तो पूरे परिवार के साथ आ जाइए सात अजूबे पार्क, न्यू मुरादाबाद,

आवश्यक सूचना 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन की मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।

0: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशाह जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।

0: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशाह जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।

अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।

0: सितंबर तक ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में सजेगा यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का महामंच।
1: जापान, रूस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम की साझेदारी से यूपी के कारोबार को मिलेगा वैश्विक बाजार, जिसमें होगी इंटरनेशनल बायर्स के साथ साथ देश के B2B और B2C खरीदारों की भागीदारी। डिफेंस, एरोस्पेस, AI और इलेक्ट्रॉनिक्स पर खास फोकस के साथ 27 से ज्यादा सेक्टर होंगे शामिल।
0: UPITSF बेहद खास, पूरी दुनिया अब यूपी के साथ।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।
2: Ahora che, abra los ojos, open your eyes.
3: Oye, holy, holy, que David

Gracias.